हृदय नाम न सर्वदया, बिन गुरु सबल न गत पथ पावे, राम नाम बिन नरक गया। तिन में वेश करे नटुआ जो, मोह पाप में गलत गया। इत उत माया देख पसारी, मोह माया के मगन भया। करे विकार विकार घनेरे, सुरत सबद दिन परम पया। हो मैं रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया। सुख संपद को आवत देखे, साकत मन अभिमान भया। जिसका एहो तन तन सो फिर लेवे, अंतर कैसा दुख पया। अंत काल किच साथ न चाले, जो दिसे सब तिसे मया। आज पुरख अपरम परसो प्रभ, हर नाम हृदय ले पार पया। मुए को रोवे किसे सुनावे, पैसा अगर असराल पया। देख कुटुंब माया गृह मंदिर।

गुरु ते पाया मुक्त पदार्थ शरण पया दुख सुख गुरु मुख सम कर जाना हरक सोग ते बिरकत भया आप मार गुरमुख हर पाए नानक सहज समाए लया राम कली दखनी मैला पैला जप सत संयम साच दृढ़ाया साच शब्द रस लीना मेरा गुरदयाल सदा रंग लीना एनस रह एक लिव लागी साचे देख पति ना रहाओ रह गगनपुर दृष्ट समय सर अनहत शब्द रंगीना सत बंद कुपीन परपुर लीना जेवा रंग रसीना मिले गुर साचे जिन रच राचे किरत विचार पतीना एक में सर्व सर्व में एका ये सतगुरु देख दिखाई जिनकी ये खंड मंडल ब्रह्मंडा सो प्रभु लखन न जाई दीपक ते दीपक प्रगासिया त्रिभुवन ज्योत दिखाई।

सतगुरु सच सिखाए राम कली मैला पहला औहठ हस्त मलि कर छाया करण गगन कल तारी गुरुमुख केती शब्द उधारी संतो रहाओ ममता मार हो मैं सुख है त्रिभुवन ज्योत तुम्हारी मनसा मार मने में राखे सतगुरु शब्द विचारी सिंगी सुरत अनाद बाजे सतकट ज्योत तुम्हारी पर पंच बेन तही मन राख्या ब्रह्म अगन पर जारी पंच तत् मिल एनस दीपक निर्मल ज्योत अपारी राम सच लोके एहो तन चिंगुरी वाजे शब्द निरारी शिव नगरी में आसन औदु अलख अगम अपारी काया नगरी एहो मन राजा पंच वसे विचारी शब्द रवे आसन कर राजा अदल करे गुणकारी काल विकाल कहे कह बपुरे जीवत मुआ मन मारी।

कर पाव सागर आत्म तत्व विचारी गुरु सेवा ते सना सुख पाया अंतर शब्द रव्या गुणकारी आपे मेल लय गुणदाता हो मैं तृष्णा मारी त्रै गुण में ते चौथे वर्ते तेहा भगत निरारी गुरमुख योग शब्द आत्म चिन्ह हृदय एक मुरारी मनुआ अस्थिर शब्दे राता एहा करनी सारी वेद बाद ना पखंड औदु गुरमुख शब्द विचारी गुरमुख जोग कमावे औदु जत सत शब्द विचारी शब्द मरे मन मा

खर्चे की चितनाएं सतगुरु नाल तेरी पावनी लागे ता ए सो जी पाए एहो जोग न होवे जोगी जे कुटुंब छोड़ पर पवन करें जे शरीर में हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रभ लहे एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया अनेक जतन पेख करे जोगी रोग ना जाए गवाया हर का नाम औखद है जोगी जिसनो मन वसाए गुरमुख होवे सोई बूझे जोग जुगत सो पाए जोगे का मार्ग दिखम है जोगी।

नानक मुक्त होवे जोगी। साथी रहे समाए राम करी मेला तीजा। भगत खजाना गुरुमुख जाता सतगुरु बूझ बुझाई। संतो गुरुमुख दे वडियाई रहाओ। सच रहो सदा सहज सुख उपजे काम क्रोध विचों जाई। आप छोड़ नाम लिख लागी ममता शब्द जलाई। जिसते उपजे तिसते बिनसे अंते नाम सिखाई। सदा हजूर दूर नह देखो रचना जिन रचाई। सच्चा शब्द रवे कट अंतर सच्चे सो लिवलाई। सत्संगत में नाम निर्मोलक वड़े पाग पाया जाई। परम न पूलो सतगुर सेवो मन राखो इकठाई। बिन नामे सब पूली फिर दी बिरथा जन्म गवाई। जोगी जुगत गवाई हंडे पाखंड जोग न पाई। शिव नगरी में आसन बैसे गुरु शब्दी जोग पाई। तातुर बाजी शब्द निवारे नाम वसे मन आई। त्यो शरीर सरवर है संतो स्नान करे लिवलाई। नाम स्नान करे से जन निर्मल शब्दे मैल गवाई।

गुरुमुख आप पछाणे संतो राम नाम लिवलाए आपे निर्मल पूज कर आए गुरु शब्दी खाए पाए पूजा करें पर विद नहीं जाने दूजे पाए मन लाए गुरुमुख होवे सो पूजा जाने पाणा मन वसाई पाणे ते सब सुख पावे संतो अंते नाम सकाई अपना आप न पछाणे संतो कूर करें वड्याई पखंड कीने जम नहीं छोड़े ले जासी पत गवाई जिन अंतर शब्द आप

निखंजन मेरा प्रभु अंत सखाई सब कुछ आपके आप वरत नानक नाम वडियाई राम कली महला तीजा हम कुचल कुचील।

एक पेक करे सिरे अभिमानी तिन जुए बाजी हारी एक अंगदिन भगत करे दिन राती राम नाम उधारी अंगदिन राते सहजे माते सहजे हो मैं मारी तय दिन भगत न हुई कभी तय पाए भगत सवारी माया मोह शब्द जलाया।

हारी सतगुरु ना सेवे माया लागे डूब मुए अहंकारी जिचर अंदर सांस तिचर सेवा की जय जय मिलिए राम मुरारी अंग दिन जागत रहे दिन रात।

जिस हृदय नाम वसाई, सच्चा आप सदा है साचा, वाणी सब सुनाई, नानक सुन वेख रहा विस्माद, मेरा प्रभ रहा सर्व थाई, राम कली महला पंजवा अष्टपदिया।

किन्ही मून औ तूत सदाया। कोई कह तो अनन पगौते मोहे दीन हर हर ओट लेते। किन्ही कया हो तीर्थवासी कोई अन पज पया उदासी। किन्ही पवन सब करती करया मोहे दीन हर हर दर परया। किन्ही कया मैं कुल्हे वड्याई।

मोहे दीन हर हर हर सेवा। कोई चतुर कहावे पंडित, को खट कर्म सहित सो मंडित। कोई करे आचार सो करनी, मोहे दीन हर हर हर सरणी। सगले कर्म कर्म जुग तो दे, दिन नामे यो मन ना प्रबोधे। कहो नानक जो साध संग पाया, बूजी कृष्णा महा शीतलाया। रामकली महला पंजवा, इस पानी ते जिन तू करया, माटी का ले बिहोरा करया। उकत जोत ले सुरत परीख्या, मात गर्भ में जिन तू राख्या। राखन हार समार जन

तिच सेवत मन आलस करे जिस विसरे एक मिनख ना सरे हम अपराधी निर्गुनियारे ना किस सेवा ना कर मारे गुरबोहित वड पाजी मिलिया नानक दास संग।

अगन रहे हर बूट, मात गर्भ संकट को छूट, जाका नाम सिमरत पौ जाए, कैसे संत जना राखे हर राय, ऐसे राखन हार दयाल, जब तक देखो तुम प्रतपाल रहाओ, जल पीवत ज्यों तुखा मितंत, तन बिगसै गृह आवत संत, लोभी का तन प्राण आधार, क्यों हर जन हर हर नाम प्यार, किसानी जो राखे रखवाला, मात पिता दया जो बाला, प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए, क्यों हर जन राखे

जो पावक संग सीत को नाश, ऐसे प्राचक संत संग विनाश। जो साबन कापर उजल होत, नाम जपत सब परम पौख होत। जो चकवी सूरज की आस, जो चातक बूंद की प्यास। जो कुरंक नाद करण समाने, क्यों हर नाम हर जन मने सुखाने। तुमरी कृपा ते लागी प्रीत, दयाल पै ता आए चीत। दया तारी तिन तारण हार, बंधन ते होई छुटकार। सब थान देखे मैं अलोए, किस दिन दूजा अवर न कोए। क्रम तै टूटे गुरु प्रसाद, नानक ते सो सब समाद। राम कली मैला पंजवा, जी जंत सब के।

कराए। पुत्र कलत्र मां बिख्या में गुरसाचे लाए तराई, अपने जीते आप संभाले आप लिए लड़ लाई, साथ कर्म का बेड़ा बांधिया पग जल पार पवाई, देश मार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई, अकाल मूरत अजूनी संभो कल अंधकार दिपाई, अंतर जामी जीवन का दाता देखत तृप्त अघाई,

रहाओ। खोजत खोजत लाल इक पाया, हर कीमत कह न जाए संतो, चरण कमल क्यों लागो त्याना, साचे दर्श समाई संतो, गुण गावत गावत पै निहाला, हर सिमरत तृप्त अघाई संतो, आत्म राम रविया सब अंतर, कट आवे कट जाई संतो, आप जुगादी है भी होसी, सब जिया का सुखदाई संतो, आप व्यंत अंत नहीं पाये, पूर रहा सब खाई संतो, मीत साजन माल जो बन सुत, हर नानक बाप मेरी माई संतो, राम करी मेला पंजवा, मन बच क्रम राम नाम चितारी, उमन केर महा अत बिखड़ी, गुरमुख नानक पार उतारी रहाओ, अंतर सूखा बाहर सूखा, हर जप मलन पै जुतारी, जिस ते लागे तिन्हें निवारे, प्रभ जियो अपनी कृपा धारी, उधरे

मार्ग चलना, लब्ध लोभ अहंकार पद कृष्णा बहुत नानी बोलना, समयो तिथि वालों की एक मार्ग जाना, गुरु प्रसादी जिन्नी आप तजिया हर वासना।

सब सोहला सतगुरु सुनाया। पवित्र होए से जना जिन्नी हर त्याया पवित्र होए गुरमुख जिन्नी त्याया। पवित्र माता पिता कुटुंब सहित।

कमाए सहसे जीव मलिन है तुझ संगम तोता जाए मन तो वो शब्द लागो हर्षो रहो चित लाए कह नानक गुरु प्रसादी सहज उपजे तू सहसा उजाए जियो मैले बारो निर्मल बारो निर्मल जियो तमैले तुन्नी जन्म जुए हारिया के तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया वेदा मैं नाम उत्तम सो सुने नाही फिर जो बेतालिया कह नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिन्नी जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी पूर्ति सोए पहुँचे नाही मनसा सच कमाणी जन्म रतन जिनी खटिया पल्ले सेवन जारे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले जे को सिख गुरु सेवकी सन्मुख होवे ता सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुरु नाले गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आत्मे समाले आप छद सदा रहे परने गुर बिन और न जाने कोए कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए जो को गुर के बेमुख होवे।

पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जप्यो सारंग पानी कह नानक सदा गावो ते सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी हर हर नित करे रसना कहा कछु न जानी चित जिन काहिर लया माया बोलन पैरवाणी कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुर का सबद रतन है हीरे जित जड़ाओ सबद रतन जित मन लागा।

रतन है हीरा जित गड़ाओ। सुर सकत आप उपाय कह करता आपके हुक्म वर्ताए, हुक्म वर्ताए आप वेखे गुरमुख किसे बुझाए। तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए, गुरमुख जिसनो आप करे सो होवे एक कस्यो लिवलाए। कहे नानक आप करता आपसे हुक्म बुझाए। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्ते सार न जानी, तत्ते सार न जानी गुरु बाजो तत्ते सार न जानी। तेरी गुणी संसार क्रम सुत्ता सुत्या रहन विहानी। गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वस्या बोले अमृत बाणी। कह नानक सो तत पाए जिसनो अंगिन हर लिव लागे।

जे अगन में आहार पहुंचावे, उसनो क्यों पोए न सकी जिसनो अपनी लिव लावे। अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिए, कह नानक एवट दाता सो क्यों मनो विसारी है। जैसी अगन उदर में तैसी बार माया, माया अगन सब को जे ही करते खेल चाया। जात पाना ताजमिया परवार पल्ला पाया, लिव सुरती लगी कृष्णा माया अमर वर्ताया। ए माया जित हर विसरे मोह उपजे पाओ दूजा लाया, कह नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विच माया पाया। हर आप अमूलक है मूल न पाया जाए, मूल न पाया जाए किसे वित्तों रहे लोक विल लाए। ऐसा सतगुरु जे मिले तिसनो सिर सौंपी है विच्चों आप जाए। जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसे मन आए, हर आप अमूलक है पाग चुना के नानका जिन हर पल्ले पाए। हर रास मेरी मनवन जारा, हर रास मेरी मनवन जारा सतगुरु ते रास जाने। हर हर नित जप्यो जियो लाहा खट्यो दिहाड़ी, एहो तन तिना मिलिया जिन हर आपे पाना। कह नानक हर रास मेरी मन हुआ बन जारा, ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास न जाए। प्यास न जाए होरत कीते जिच हर रस पल्ले न पाए, हर रस पाए पल्ले पिए हर रस बहुत न पुछना लागे आए। एहो हर रस करमी पाए सतगुरु मिले जिस आए, कह नानक होर अमरा सब विसरे जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरा हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग में आया, हर जोत रखी तुद विता तू जग में आया। हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया ता

हर मंगल गाँव सती गृह मंदिर बनया, हर गाँव मंगल नित सतिये शोक दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सपागे अपना फिर जापे, अनहत बाणी गुर सब ज्ञानी हर

आज मैं आए थे क्या तुझ कर्म कमाया, के कर्म कमाया तू शरीर आ जा तू जग में आया, जे हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया, गुरु प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया, कहे नानक हो शरीर परवान हुआ जिन सतगुरु से चितलाया, ए नेत्रो मेरे ओ हर तुम में जो तरी, हर दिन अवर न देखो कोई, हर दिन अवर न देखो कोई, नदरी हर ने आ लिया, यो विश्व संसार तुम देख दे, यो हर का रूप है हर रूप नदरी आया, गुरु प्रसादी बुझिया जा देखा, हर इक है हर दिन अवर न कोई, कहे नानक के नेत्र अंध से।

हमारा हर राम नाम समाया जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो सतगुरु करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज राखो हर जने केरी हर देहो नाम निरंजनो अंत चल दिया होए बेली जमदूत काल निखंजनो।

गुर जाए हर प्रभ पास जियो। सतगुरु पाणे अपने बह परवार सदाया, मत मैं पिछे कोई रोसी सो मैं मूल ना पाया।

सतगुरु परतक होंदे बहराज आप टिकाया सब सिख बंदक पुत पाई रामदास पैरी पाया अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो केशो गोपाल पंडित सद्यो

फुल हर सर पावे। हर पाया सतगुरु बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो। रामदास सोडी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो। सतगुर पुर

साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा जानियड़ा हर जानियड़ा नैन अलोएड़ा हर जानियड़ा नैन अलोया कट कट सोया

तारा अपर अपारा कट कट अंतर सोनिया एक दासी तारी सबल पसारी जी जंत लै मोनिया जिसनो राखे सो सच पाखे गुर का शब्द भी

कठिन ना विसारिय। राम रमा कंठ उर्धारिय, उर्धार हर हर पुरख पूरन पार ब्रह्म निरंजनो। पै दूर करता पाप हरता, दुसे दुख पव खंडनो। जगदीश ईश गोपाल माधो गुण गोविंद विचारिय। बिनवंत नानक मिल संग साधु, दिन सरेण चितारिय।

आसरा गुण बेअंत स्वामी तेरे कोई न जाने देख चलत दयाल सुन भगत वखाने जी जन सब तुझ त्या में पुरख पत परमेसरा सर्व जाचक एक

सुख निदान मिलिया दुख हरिया कृपा कर प्रभ राखिया हर चरण लागा परम पौ पागा हर नाम रसना पाखिया हर एक चितवे प्रभ एक गावे हर एक दृष्टि आया बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा पूरा सतगुरु पाया मिल रही है प्रभ साध जना मिल हर कीर्तन सुनिए राम दयाल प्रभु दामोदर माधो अंत न पाये गुनिए राम दयाल दुख हर शरण दाता सगल दोख निवारणो मोह सोग विकार बिखड़े जपत नाम उधारणो

विपत निवारण राम। संत प्रभ विपत निवारणो तिस बिन अवरण कोई जियो, सदा सदा हर सिमरिए जल थल मैयल सोए जियो। जल थल मैयल पूर रहा एक निमक मनो ना विसरे, गुर चरण लागे दिन सपागे सर्व गुण जगदीश रे। कर सेव सेवक दिन सरैणी तिस पावे सो होए जियो, बल जाए नानक सुखे दाते प्रगास मन तन होए जियो। श्लोक हर सिमरत मा

मन चिंदियड़ा फल पावो। राम कली मैला पंजवा रुति श्लोक इको अंकार। सतगुरु प्रसाद कर बंधन प्रभ पार ब्रह्म बाछो साधे तूर। आप निवार हर हर पजो नानक प्रभ भरपूर। किलविख काटन पै हरण सुख सागर हर राय। दीन दयाल दुख पंजनो नानक नीत त्याय। छंत

भगवंत चंत रुत सरस बसंत महाचेत वैसाख सुख मास जियो हर जियो नाओ मिलिया मौलिया मन तन सास जियो कर नाओ ने चल अनद सखिए चरण कमल पर फुल्लिया सुंदर सुगड़ सुजान बेता गुण गोविंद अमूल्या वड भाग पाया।

सर्व ठाई हर नाम नव निध गृह परे सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सब तरे त्रय रंग जागे नै छिद्र लागे कृपाल सद बख्शिंद जियो बिनवंत नानक हर।

अरे बिन मिल बे सांत ना उपजे, तिल पल रहन ना जाए, हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए। छंत रुत सर्द अडंबरो, असूकत के हर प्यास जियो, खोजंती दर्शन फिरत कब मिल।

आए हर कंत जियो, ग्रहलाल आए मनते आए सेज सुंदर सोहिया, वन त्रिन त्रिभवन पए हरिया देख दर्शन मोहिया, मिले स्वामी इच्छपुनी मन जपिया निर्मल मंत जियो, बिनवंत नानक नित करो रलिया, हर मिले श्री तरकंत जियो श्लोक।

लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला, रहाओ ससै सब जग सहज उपाया, तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वस्त परा।

गर्भ गले बिख खाया, गुर रस गीत बाद नहीं पावे, सुनिए गहर गंभीर गवाया, गुर सच कहया अमृत लया, मन तन साथ सुखाया।

आप अगोचर तंदै लोई, जोग जुगत जग जीवन सोई, कर आचार सच सुख होई, नाम विहूणा मुक्त किव होई, विण नाम है विरोध शरीर, क्यों ना मिले काटे मन पीर।

गुण में ज्ञान प्राप्त होए, गुणदाता विरला संसार, साची करनी गुर विचार, अगम अगोचर

है सोताओ, नदर सराफ वन्नी सचड़ाओ, जगत पशु अहंकाल कसाई, कर करते करनी कर पाई, जिनकी ती तिन कीमत पाई, और क्या कही है किछ कहन ना जाई, खोजत खोजत अमृत पिया, खिमा गही मन सतगुरु दिया, खरा खरा आखे सब कोए, खरा रतन जुग चारे होए, खात पियंत मुए नहीं जानिया, खिन मैं मुए जा शब्द पछानिया, अस्थिर चीत मरण मन मानिया, गुर कृपा ते नाम पछानिया।

लिविलाए गगन अगम अनाथ अजोनी अस्थिर चीत समाज सगोनी हर नाम चेत फिर पवे न जूनी गुरमत सार होर नाम बिहूनी कर दर फिर था की बहुतेरे जात असंख।

वार वर एक समाल गुरमुख मरण जीवन प्रभ नाल दै दिस टूंड करे मैं पाया मेल पया सतगुरु मिलाया गुरमुख गावे गुरमुख बोले गुरमुख तोल तुलावे तोले गुरमुख आवे जाए निसंग पर हर मैल जलाए कलंक गुरमुख नाद वेद विचार गुरमुख मज्जन चज आचार गुरमुख शब्द अमृत है सार।

मुक्त पया पक्षियों कर जाए। छी जय देख खुले एक गंड, छिया नित देखो जगहंड। तूप छाव जे सम कर जाने, बंधन काट मुक्त कर आने। छाया छूची जगत पुलाना।

बौड़ न पछोताये, पब्बे पाले गुरमुख बूजे ता निज करवासा पाये, पब्बे पौजल मार्ग विखड़ा आस निराशा तरिये गुर पर।

वन तिन तू डत फिर रही, मन मैं करो विचार, लाल रतन बहु मान की सतगुर हास भंडार, उत्तम होवा प्रभ मिले, एक मन एक पाए नानक।

दि हर पाय मत को परम कुला है सो साहो साचा जिस हर तन रास गुरमुख पूरा तिस्सा वास रूड़ी बाणी हर पाया गुर शब्दी विचार आप दया दुख कटिया हर वर पाया नार सोयना रूपा संचिए तन काचा बिखचार साव सदाए संच तन दुबदा हुए कुआर सचियारी सच संचिया साचो नाम अमो

मनमुख विद्या बिकरदा बिख खटे बिख खाए मूरख शब्द ना चीने सूझ बूझ नह काए पांदा गुरमुख आखिए।

सतगुरु प्रसाद। सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारो, तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारो। मस्तक काट तरी तिस आगे तन मन आगे देओ, नानक संत मिले सच पाइये सहज पाए जस लेओ। क्या पविये सच सूचा होए, साच शब्द बिन मुक्त न कोए। रहाओ कौन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा, कौन मार्ग कौन सुआओ। साच कहूं अरदास हमारी, हों संत जना बल जाओ।

कट कट बैस निरंतर रही है। चाले सतगुरु पाए सहजे आए हुकम सिधाए नानक सदार जाए। आसन बैसन थिर नारायण ऐसी गुरमत पाए गुरमुख बूझे आप पछाने सच्चे सच समाए। दुनिया सागर दुत्तर कहिए क्यों कर पाए पारो चरपट बोले औदू नानक देहो सच्चा बिचारो। आपे आखे आपे समझे तिस क्या उत्तर दीजे साच कहो तो

आहारो खाय औदू बोले ज्ञाने तीरथ नाये सुख फल पाये मैल न लागे काई गोरख पूत लोहारी पा बोले जोग जुगत बिद साई हाटी बाटी नींद ना आवे पर कर चित ना डुलाई बिन नावे मन टेक न टिकई नानक भूख न जाई हाट पटन कर गुरु दिखाया सहजे सचवा पारो खंडत निद्रा अलप आहारं नानक तत विचारो दर्शन पेश करो जोगिंद्रा मुंद्रा चोली खिंथा बारह अंतर एक सरेवो खट दर्शन एक पंथा इन विद मन समझाये पुरखा बाहुल चोट न खाये नानक बोले गुरमुख बूझे जोग जुगत इव पाये अंतर शब्द निरंतर मुद्रा हौ मैं ममता दूर करी काम क्रोध अंकार निवारे गुर के शब्द सो समझ परी

एहो मन लाया कित बिद आसा मन साखाई कित बिद जोत निरंतर पाई बिन दंता क्यों खाई सार नानक साचा करो विचार। सतगुर कै जन्मे गवन मिटाया अनहत राते एहो मन लाया मनसा आसा शब्द जलाई गुरमुख जोत निरंतर।

आज कमावे गत मित सब दे पाई। आद को विस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया, अकल पत मुद्रा गुर ज्ञान विचारियले, कट कट साचा सर्व जिया, गुर बचनी अवगत समाये, तत निरंजन सहज लह, नानक दूजी कार न करनी, सेवे सिख सो खोज लह, हुकम विस्माद हुकम पछाने, जी जुगत सच जाने सोई, आप मेट निरालम होवे, अंतर साच जोगी कही है सोई, अवगत तो निर्मायल उपजे, निर्गुण ते सरगुण थिया, सतगुर परचे परम पद पाये, साचे शब्द समाये लिया, एक एको सच एका जाने, हो मैं दूजा दूर किया, सो जोगी गुर शब्द पछाने, अंतर कमल प्रगास थिया, जीवत मरे ता सब किछ सूझे।

गुरमुख बाणी अगड़ कड़ावे, गुरमुख निर्मल हर गुण गावे, गुरमुख पवित्र परम पद पावे, गुरमुख रोम रोम हर त्यावे, नानक गुरमुख साज समावे, गुरमुख परचय वेद विचारी, गुरमुख परचय तरिये तारी, गुरमुख परचय सो शब्द ज्ञानी, गुरमुख परचय अंतर विद जानी, गुरमुख पाये अलख अपार, नानक गुरमुख मुकत द्वार, गुरमुख अकथ कथे विचार, गुरमुख निभे सब परवार, गुरमुख जपिये अंतर प्यार, गुरमुख पाये शब्द अचार, शब्द भेद जाने जानाई, नानक हो मैं जाल समाई, गुरमुख तरती साजे साजी, तिसमें ओपत खपत सोबाजी, गुर के शब्द रपे रंग लाए, साच रतो पत स्यों कर जाए, साच शब्द बिन पत नहीं पावे, नानक बिन नावे क्यों साच समावे, गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि, गुरमुख पाव जल तरिये सच शुद्धि, गुरमुख सर अपसर विद जाने, गुरमुख परवित नरवित पछाणे, गुरमुख तारे पार उतारे, नानक गुरमुख शब्द

जोग जुगत सच रह समाए, बारह में जोगी परमाए, सन्यासी छे चार। गुर के शब्द जो मर जीवे सो पाए मोख द्वार, बिन शब्द सब दूजे लागे देखो हृदय विचार। नानक वड्डे से वड़ पागी जिनी सच रखिया उधार, गुरमुख रतन लह लिवलाए, गुरमुख परखे रतन सुभाए, गुरमुख साची कार कमाए, गुरमुख साचे मन पति आए, गुरमुख अलख लखाए तिस पावे, नानक गुरमुख चोट न खावे। गुरमुख नाम दान इसनान, गुरमुख लागे सहज ध्यान, गुरमुख पावे दरगह मान, गुरमुख

वै कट कट तेद गुरमुख वैर विरोध गवावे गुरमुख सगली गणत मिटावे गुरमुख राम नाम रंग राता नानक गुरमुख खसम पछाता बिन गुर पर मैं आवे जाए बिन गुर काल न पवी थाए बिन गुर मनुआ अत डोलाए बिन गुर त्रिपत नहीं बिख खाए बिन गुर बिसियर डसे मरवाट नानक गुर बिन काटे काट जिस गुर मिले तिस पार उतारे अवगुण मेटे गुण निस्तार मुक्त महा सुख गुर शब्द विचार गुरमुख कदे ना आवे हार तन हटड़ी एव मन वन जारा नानक सहजे सचवा पारा गुरमुख बांध्यो सेत बिदाते लंका लूटी दैत संतापे रामचंद मार्यो एह रावण पेद बपीखण गुरमुख परचायण गुरमुख सायर पाहन तारे गुरमुख कोट तेती सुधारे गुरमुख चूके आवन जान गुरमुख दरगे पावे मान गुरमुख खोटे खरे पछाण गुरमुख लागे सहत्यान गुरमुख दरगे सिफत समाए नानक गुरमुख बंद ना पाए गुरमुख नाम निरंजन पाए गुरमुख हो मैं शब्द जलाए गुरमुख साचे के गुण गाए गुरमुख साचे रहे समाए गुरमुख साच नाम पत उत्तम होए नानक गुरमुख सगल पवन की सोजी होए कवन मूल कवन मत वेला तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला कवन कथा ले रहो निराले बोले नानक सुनो तुम बाले एक कथा का दे विचार पव जल शब्द लंगावन हार पवन आरंभ सतगुरु मत वेला शब्द गुरु सुरत तुन चेला अकथ कथा ले रहो निराला नानक जुग जुग गुरु गोपाला एक शब्द जित कथा विचारी गुरमुख हो मैं अग्न निवारी मैन के दंत क्यों खाये सार जित गर्भ जाए सो कवन आहार हृदय का कार मंदर अग्न पिराहन कवन गुफा जित रहे आवाहन इत उत किसको जान समावे कवन त्यान मन मन है समावे हौ हौ मैं विचों खोवे दूजा मेटे एको होवे जग करड़ा मन मुख गावार शब्द कमाये खाये सार अंतर बाहर एको जाने नानक अगन मरे सतगुर के पाने सच पैराता गर्भ निवारे एको जाता शब्द विचारे शब्द वसे सच अंतर हिया तन मन शीतल रंग रंगिया काम क्रोध बिख अगन निवारे नानक नदरी नदर प्यारे कवन मुख चंद हिवे कर छाया कवन मुख सूरज तपे तपाया कवन मुख काल जोहत नित रहे कवन बुद्ध गुरमुख पत रहे कवन जोत जो काल संगारे बोले बाणी नानक बिचारे शब्द पाखत सस जोत अपारा सस कर सूर वसे मिटे अंधियारा।

तत मिले मन माने दूजा जाए इकत कार्याने बोले पवना गगन गरजे नानक ने चल मिलन सहजे अंतर सुनंग बाहर सुनंग त्रिभवन सुनंग म सुनंग चौथे सुनने जो नर जाने ताको पाप न पुनंग कट कट सुन का जाने पेओ आद पुरख निरंजन देओ जो जन नाम निरंजन राता नानक सोई पुरख विदाता सुनो सुन कहे सब कोई अनहत सुन कहां ते होई अनहत सुन रते से कैसे जिस

पर सच भाए सो शब्द का कहां वास कथि अले जित तरिय पव जल संसारो त्रै सत अंगुल वाई कहिए तिस कहो कवन आधारो बोले खेले अस्थिर होवे क्यों कर अलख लखाए सुन स्वामी सच नानक प्रणवे अपने मन समझाए गुरुमुख शब्दे सच निव लागे कर नदरी मेल मिलाए आपे दाना आपे दीना पूरे पाग समाए सो शब्द को निरंतर वास अलखं जय देखा तह सोई पवन का वासा सुन निवासा अकल कला तर सोई नदर करे शब्द कट में वसे विचों परम गवाए तन मन निर्मल निर्...

आया माया नानक शब्द पछाणे त्रै सत अंगल वाई औदू सुन सच आहारो गुरमुख बोले सत बिरोले।

ऊपर साचा सतगुरु शब्द समाए मन का जियो पवन कथियले पवन कहाँ रखाई ज्ञान की मुद्रा कवन अवदू सिद्ध की कवन कमाई बिन शब्द रस न आवे अवदू हो मैं प्यास न जाई शब्द रते अमृत रस पाया।

काल न ग्रास है, रंग न राता, रस नहीं माता, बिन गुर शब्द है जल बल ताता, बिंद न राख्या शब्द न पाख्या, पवन न कादया सच न अरादया, अकथ कथा ले सम कर रहे तो नानक आ

वरन पेख अपरूप सो एको एको शब्द विदानी साच बिना सूचा को नाही नानक अकथ कहानी कित कित विद जग उपजय पुरखा कित कित दुख बिनस जाई हो मैं विच जग उपजय पुरखा नाम विसरे दुख पाई गुरमुख होवे सो ज्ञान तत विचारे हो मैं शब्द जलाए तन मन निर्मल निर्मल बाणी साचे रहे समाए नामे नाम रहे बैरागी साच रखिया उधारे नानक बिन नावे जोग कदे न होवे देखो हृदय बिचारे गुरमुख साच शब्द बिचारे कोए गुरमुख सच बाणी प्रगट होए गुरमुख मन पीजे विरला बूजे कोए गुरमुख निज कर वासा होए गुरमुख जोगी जुगत पछाणे गुरमुख नानक एको जाने बिन सतगुर सेवे जोग न होई बिन सतगुर पेटे मुक्त न कोई।

का प्रम कटिए ज्ञान प्राप्त होए, नानक एको नदरी आया जह देखा तै सोए। पौड़ी सच्चे तख्त रचाया बैसन को जाई, सब किछ आपे आप है गुर शब्द सुनाई। आपे कुदरत साजियन कर महल सराई, चंद सूरज दोए चानने पूरी बनत बनाई। आपे वेखे सुने आप गुर शब्द से आई, वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। रहा उस श्लोक कबीर मेहंदी करके कालिया, आप पिसाए पिसाए कैसे बात।

बीजा परम फुलाई सब जग फिरी फावी होई पाल सो सब सांत ना दे रही क्या चले तिस नाल गुर प्रसादी हर त्या

को सच कमावे नानक सो तपा मुख अंतर पावे महला तीजा सो तपा जे ओ तप काले सतगुरु नो मिले शब्द समाले सतगुरु की सेवा ओ तप परवान नानक सो तपा दरगे पावे मान पौड़ी रात दिन उपायन संसार की वर्तन गुरमती कर चानना आनेर बिनासन हुक्मे ही सब साजियन रविया सब वन त्रिन सब किस आपे आप है गुरमुख सदा हर पान सब देही तो जी पई सच्चे आप बुझाई श्लोक महला तीजा अभ्यागत ए नाखियन जिनके चित में परम तिस दै दित्ते नानका ते हो जेहा तरम अभय निरंजन परम पदता का पूखा होए तिसका पूजन नानका।

गहर गंभीर है। गुर शब्द बुझाई श्लोक महला तीजा, सच्चा नाम त्याए तू सबो वर्ते सच, नानक हुक्म में जो बुझे सो फल पाए सच, कथनी बदनी करता सिरे हुक्म ना बुझे सच, नानक हर का पाना मन्ने सो भगत हुए, विण मन्ने कच नी कच महला तीजा, मन मुख बोल न जा।

लोभेन नानक जित ओए लाए चित लगे ओए बपड़े क्या करेन पौड़ी सब नदरी अंदर रखदा जेती शिष्ट सब कीती इक पूर्क फत लायन मनमुख विभूति गुरमुख सदा ते आई है अंदर हर प्रीति जिनको पोते पुन है तिन वापस पीति नानक नाम से आई है सच सिफत सनाई श्लोक महला पहला सती।

को मिले वडाई, जिस कट पीतर सब दरवे, सब कट मेरे हो सब ना अंदर, जिसे खुआई तिस कौन कहे, जिसे दिखाला वाटड़ी तिसे फुलावे कौन, जिसे फुलाई पंग सिर तिसे दिखावे कौन, मेला पहला सो गिर ही जो निग्रह करे, जब तब संजम पीछा करे, पुन दान का करे शरीर, सो गिर ही गंगा का नीर, बोले ईश्वर सत स्वरूप, परम संत में रेखना रूप, मेला पहला सो अवधूती जो तू कह आप, पिख्या भोजन करे संताप, औ हठ पट्टन में पीख्या करे, सो अवधूती शिवपुर चढ़े, बोले गोरख सत स्वरूप, परम संत में रेखना रूप, मेला पहला सो उदासी जे पाले उदास, अर्ध

आया सब आत्मराम सचाता, बाहर मूल न खोजिए कर्माए विदाता, मन मुखार मंदर की सार न जाननी, तिन्नी जन्म गवाता, सब में एक वरदा।

पौड़ी पाया हंस तुर मेल करते लिख पाया। तब मैं गुप्त वर्त दा गुरमुख प्रगटाया। गुण गावे गुण उच्चरे गुण माए समाया। सच्ची बाणी सच है सच मेल मिलाया। सब किछ आपे

पौड़ी। नौ दरवाजे काया कोट है दसवें गुप्त रखी जय। वज्र कपाट ना खुलनी गुरु शब्द खुली जय। अनहद वाजे तुन वज दे गुरु शब्द सुनी जय। तित कट अंतर चानना कर भगत मिली जय। सब में एक वर्तदा जिन आपे रचन रचाई। श्लोक महला दूजा अंधे कह राह दसे अंधा होए सुजाए।

कोई जिते सो वस्त ना जाते आपे वर्तो जाने नानक गाहक क्यों ले सके न वस्त पछाण महला दूजा सो क्यों अंधा आखिया जे हुक्म अंधा होए नानक हुक्म ना बुझे अंधा कहिए सोए पौड़ी काया अंदर गरकोट है शब्द संतर देसा आपे ताड़ी लाइन सब में प्रवेशा आपे सृष्ट साजियन आप गुप्त रखे सा गुर सेवा ते जाने सच प्रतिये सा सब किस सच्चो

गए नानक नदरी कर्म होए जावे सगल विजोग पौड़ी मन मुख मोह गुबार है दूजे पाए बोले दूजे पाए सदा दुख है नित नीर विरोले गुरमुख नाम ते आई है मच तप कढोले अंतर प्रगास कट चानना हर लद्दा तोले आपके परम पुलाइंदा।

का सवार गर्भ न की जय नानका मत सिर आवे पार पौड़ी सो सत्संगत शब्द मिले जो गुरमुख चले सच त्यायन से सच्चे जिन हर फर्क तम पल्ले भगत सोन गुण गाउं दे गुरमत अचले रतन विचार मन वस्या गुर कै शब्द पल्ले आप

चित करे नानक सोई सेवी है सदा सदा जो दे नानक सोई सेवी है जित सेवी है दुख जाए अब गुण वंजन गुण रवे है मन सुख वस आए पौड़ी आपे आप वर्त।

मन तन हुए निहाल बिंदक नजर चास नौ निध नाम निधान गुर के शब्द लाग तिसे मिले संत खाक मस्तक जिसे पाग। श्लोक महला पंजवा हरनाथी को सच वैन सुनाई जो

जिस दा करता मित्र सब का सवारिया, जिस तू आवे चित सो प्रवान जन, जिस तू आवे चित बहुता तिस्तान, जिस तू आवे चित सो वड परवारिया।

सोवै चक्र बनाए माया नो बहुतावे अंदर मैल ना उतरे हो मैं फिर आवे जावे नींद व्याप्या काम संतापिया मुखो हर हर कहावे वैष्णो नाम कर्म हो जुगता।

तिन कदे ना चुकन हावे। मैला पंजवा सतगुर सिमरो आपना कट अव कट कट पाट, हर हर नाम जपंतिया कोई ना बंदे वाट पौड़ी।

ता पौड़ी जिस कै मस्त कर्म हुए सो सेवा लागा जिस गुर मिल कमल पर गासिया सो अंदिन जागा लगा रंग चरणार बिंद

सुखीव दे। दे गुना सत पैन पराव है पारंगत दान परीव दे। नानक राज चलाया सच कोट सखानी नीव दे। लेने करियोन छत सिर कर सिफ्ती अमृत पीव दे।

खती है, जोत पोहा जुगत साए सहकाया फेर पलटी है, चुल्ले सो छप निरंजनी मल तकत बैठा गुरहट्टी है, करे जे गुर फरमाया सिल जोग अलूनी चटी है, लंगर चले गुर शब्द हर कोट ना आवी खटी है, खर्चे दित खसम दी आखें दी खैर दबटी है, हो वैसे

मुद्रा मदद सहज तुन लागी सुखमन पोचन हारी रे। तीरथ बरत नेम सुच संजमे रव सस गहने दियो रे। सुरत प्याल सुधा रस अमृत यो महारस पियो रे। निजर धार चुए अत निर्मल ए रस मनु आरा।

दास कबीर पास मद माता उचक न कब हूँ जाई। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी ओट गई मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते रथ।

पूरब जन्म हम तुम्हारे सेवक, अब तो मिटिया न जाए, तेरे द्वारे तुन सहज की माथे मेरे दगाई। दागे हुए सुरन में जूझे, बिन दागे पग

लागे। जी मुखभेद गायत्री निपसै सो क्यों ब्राह्मण विसर करे। जा कह पाए जगत सब लागे सो क्यों पंडित हर ना कहे। काहे मेरे बामन हर ना कहे राम न बोले पांडे दोजक परे। रहाओ आपन ऊंच नीच कर भोजन हठ कर्म कर उदर परे। चौदस अमावस रच रच मांगे कर दीपक ले कूप परे। तू ब्राह्मण मैं काशी दुल्हा मोहे तोहे बराबरी कैसे कह बने। हमरे राम नाम कह उबरे वेद परोसे पांडे डूब।

अंतर जोत राम परदासा, गुरमुख बिरले जानी राव। पावर एक पोप रस बीदा, बारे ले उर्धरिया। सोरे मजे पवन चकोरिया, आकाशे फर फरिया। सहज सुन इक बिरवा उपजिया, करती जड़हर सोखिया। कह कबीर हो ताका सेवक, जिन इहो बिरवा देखिया। मुंदरा मून दया कर चोली,

करम दया कर बारी। कवन काज सिरजे जग पीतर जन्म कवन फल पाया, पवन इद तरन तारन चिंता मन इक निमख ना एहो मन लाया। गोविंद हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभु जीओ पिंड था दिया, तिसकी पाओ भगत नहीं सादी रहाओ। पर धन पर तन पर ती निंदा, पर अपवाद न छूटे, आवागमन होत है फुन फुन एहो प्रसंग न टूटे। जिहि कर कथा होत हर संतन, इक निमख न कीनो मैं फेरा। लंपट चोर दूत मतवारे, तिन संग सदा बसेरा। काम क्रोध माया मद मत्सर, ए संपै मोह माई। दया तरम अर गुर की सेवा, ए सुपनंतर ना।

जे सिमरन होए मुक्त द्वार, जाहे बैकुंठ नहीं संसार। निरपो कह कर बजावे तूर, अनहद बजे सदा परपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे, बिन सिमरन मुक्त कट नाहे। रहाओ जे सिमरन नाही ननकार, मुक्त करे उतरे बहु।

मंदर सोवे पटंबर तान सेज सुखाली बिगसै जियो सो सिमरन तू अंगन पियो जे सिमरन तेरी जाए बलाए जे सिमरन तुझको है नमाए सिमर सिमर हर हर मन गाये एहो सिमरन सतगुर ते पाये सदा सदा सिमर दिन रात।

बंदच बंधन पाया मुक्त गुर अनल बुझाया। जब नप सिख इव मन कीना तब अंतर मज्जन कीना पवन पत उन मन रहन खड़ा।

अंतर करे अपसार रहाओ। हीरा देख हीरे करो आदेश, कह कबीर निरंजन अलेख। दुनिया हुशियार बेदार, जागत मुसीयत हौरे पाई। निगम हुशियार पहरुआ देखत जम ले जाए रहाओ। नींब पयो आंब आंब भयो, नींबा केला पाका झारे। नालियेर फल सेबर पाका, मूरख मुग्ध गवार। हर भयो खांड रेत में बिखरियो, हस्ती चुनियो न जाई। कह कबीर कुल जा।

आकाश मदे परमियले पंच जना से बात बतौआ चीत सो डोरी राखियले मन राम नामा बेदियले जैसे कनक कलाचित मांडियले राव आनीले कुंभ पराईले उदक राजकुमार पुरंदरिये हस्त विनोद।

कबित ना गावोगो। अखंड मंडल निरंकार में अनहद बीन बजावोगो। बैरागी रामे गावोगो, शब्द अतीत अनाहद राता आकुल के कर जाओगो। रहाओ पीड़ा पिंगला और सुख मना पौने बंद रहाओगो। चंद सूरज दो सम कर राखो, ब्रह्म ज्योत मिल जाओगो। तीर्थ देख ना जल में पैसो, जीव जंत ना सतावोगो।

खेचर पूचर तुलसी माला गुर प्रसादी पाया नामा प्रणवय परम तत्व है सतगुरु हुए लखाया राम कली कर दूजा बनारसी तप करे उल्ट तीर्थ मरे अगन दह काया कल्प की जय अश्वमेध जग की जय सोना गर्भ दान दी जय राम नाम सर तऊ न पूजे।

राम नाम सर तौ न पूजय। अस दान गज दान सेजा नारी पूम दान ऐसो दान नित नित की जय। आसम जो निर्माइल की जय आप बराबर कंचन दी जय। राम नाम सर तौ न पूजय मने न की जय रोष जमे न दी जय दोष। निर्मल निर्वाण पद चीन ली जय जसरथ राय नंद राजा मेरा रामचंद्र प्रणवे नामा।

सार सतगुरु प्रसाद इड़ा पिंगुला और सुखमना तीन बसे इकठाई बेणी संगम तह प्राग मन मज्जन करे तुथाई संतो तहां

तह बाजे शब्द अनाहद वाणी, तह चंद ना सूरज पौन ना पानी, साथी जागी गुरमुख जानी, उपजे ज्ञान दुर्मत चीजे, अमृत रस गगनंतर बीजे, एस कला जो जाने पे हो, एते पास परम गुरुदेव, दशम द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की काटी, ऊपर हाथ हाथ पर आला, आले पीतल थाती।

या पाखे पांचो इंद्री बस कर राखे गुरु की साखी राखे चीत मन तन अर्पे कृष्ण प्रीत कर पल्लव साखा।

कोट कोट दोख बहुकी ने सब पर हर पास खरे रहाओ। हर हर नाम जपें आराधें सेवक पाए खरे।

नर नर हरे पंच दोख असाद नगर में एक खिन पल दूर करे वड पागी हर नाम के आवे हर के भगत हरे तिनकी संगत देह प्रभ जाचो मैं मूड मुगद निस्तरे कृपा कृपा तार जग जीवन रख ले वो शरण परे

अचनी हर तारी हर किरपले रहाओ हर हर अगम अगोचर स्वामी जन जप मिल सलल सलले हर के संत मिल राम रस पाया हम जन के बल बलले पुरुषोत्तम हर नाम जन गायो सब दालग दुख दलले विच देही दोख असाध पंच धातु हर किए खिन परले हर के संत मन प्रीत लगाई जो देखे सस कमले उनवे कन कन कन हर गर्जे मन बिरसे मोर मुरले हमरे स्वामी लोच हम लाई हम जीवे देख हर मिले जन नानक हर अमल हर लाए हर मेलो आनंद भले मत महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम सके गुर प्रसादी हर नाम दे आयो हम सतगुरु चरण पखे रहाओ उत्तम जगन्नाथ जगदीशर हम पापी शरण रखे तुम वड पुरख दीन दुख पंजन हर दियो नाम मुखे हर गुण ऊंच नीच हम गाए गुर सतगुर संग सके जो चंदन संग बस

मन जप हर हर राम रंगे, हर हर कृपा करी जगदीशर, हर त्यायो जन पग लगे रहाओ, जन्म जन्म के पूल चूक हम अब आए प्रभु शरण गे, तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी, हर राखो वड पाप गे, तुमरी संगत हर को ना

तुमरे गुण प्रभ कह न सके हम तुम वड वड पुरख वड गे जन नानक कहो दया प्रभ धारो हम सेवे तुम जन पगे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम मने जगन्नाथ कृपा प्रभ धारी मत गुरमत नाम बने रहाओ हर जन हर जस हर हर गायो उपदेश गुरु गुरु सुने किल बिख पाप नाम हर काटे जीव खेत कृसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानो हम कह ना सके हर गुने जैसे तुम कैसे प्रभ तुम ही गुण जानो प्रभ अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जप्यो खुल खुलने जो जल कुंचर तदुए बांधेओ हर चेत्यो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो जुग जुग ने तुमरी खा पाई नहीं पावे जन नानक के प्रभु वड ने नट महला चौथा मेरे मन कल कीरत हर प्रभ ने हर हर दयाल दया प्रभ धारी लग सतगुर हर जपने रहाओ हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी सब त्यावे हर

काल हर हो नगर निहाल राव हर का गृह हर आप सवारे हो हर रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हर लाल हर अपनी कृपा करी आप गृह आयो हम हर की गुर की है बसी थी हम हर देखे पई निहाल निहाल निहाल निहाल हर आपसे की खबर गुर पाई मन तन अनदो अनद भये।

हर अकथ कथा का जिन रस चाखिया तिस जन सब पूख लहंती नानक जन हर कथा सुन तृप्ते जप हर हर हर होवंती। नट महला चौथा कोई आन सुनावे हर की हर गाल तिसको हो बल बल बाल सो हर जन है पल पाल हर हो मेल निहाल रहाओ हर का मार्ग गुर संत बतायो गुर चाल दिखाई हर चाल अंतर कपट चुकावो मेरे गुर सुखो ने कपट कमावो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाए जिना हर प्रभ जान्यो मेरा नाल जन नानक को मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नत नारायण महला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद राम हो क्या जाना क्या भाव है मन प्यास बहुत दर्शावे रहाओ सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुच आवे कृपा करो जिस पुरख विदाते सो सदा सदा तू प्यावे कवन जोग कवन

जमकी त्रास मिति सुख पाया निकसी हूँ मैं पीर रहाओ। तपत बुझानी अमृत बानी तृप्ते ज्यो बार खीर मात पिता साधन संत मेरे संत सहाई वीर खुले प्रम पीत मिले गोपाला हीरे बेदे हीर विष्णु पय नानक जस दावत ठाकुर गुणी गहीर नट महला पंजवा अपना जन आपे आप उधारियो हाथ पैर जन के संग बस्यो मन ते नहीं विसारियो रहाओ बरन चेन नहीं किछ पेख्यो दास का कुल ना विचारियो कर कृपा नाम हर दियो सहज सुभाय सवारियो महा विखम अग्नि का सागर तिस्ते पार उतारियो पेख पेख नानक बिगसानो पुने पुने बलहारियो नट महला पंजवा हर हर मन में नाम कहो कोट अपराध मिटे खिन भीतर ताका दुख ना रहो रहाओ खोजत खोजत पयो बैरागी साधु संग लहो सगल त्याग एक लिव लागी हर हर चरण गयो कहत मुक्त सुनते निस्तारे जो जो शरण पयो सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना कहो नानक आनंद भयो।

पूरन पूर्व है कृपा निज कट कट दुष्ट समायन जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुल न लायन दो कर जोड़ नानक दान मांगे तेरे दासन दास।

खिन पल रह न सकूं बिन सेवा, मैं गुरमत नाम समारे रहाओ। हर हर हर हर हर मन प्यावो, मैं हर हर नाम प्यारे। दीन दयाल पे प्रभु ठाकुर, गुर के सब सवारे। मधुसूदन जग जीवन माधो, मेरे ठाकुर अग

रे सहस मूरत एको प्रभु ठाकुर प्रभ एको गुरमत तारे गुरमत नाम दमोदर पाया हर हर नाम उर्धारे हर हर कथा बनी अतमीठी जो गूंगा गटक समारे रसना साध चखे पाए दूजे हथी के लोग विकारे जो गुरमुख साध चखे राम नामा सब अंग साध विसारे गुरमत राम नाम तन

मैं गुरमत नाम समारे सास सास जाए ना मैं बिन सो बिरथा सास बिकारे कृपा कृपा कर दीन प्रभ सरनी मोको हर जन मेल प्यारे। नानक दासन दास कहत है हम दासन के पनिहारे।

किए कर सेवक पग लगवारे जगन्नाथ सब जंत्र उपाए नक्खीनी सब नथहारे नानक प्रभ खिंचे तिव चलिए जो पावे राम प्यारे नट महला चौथा राम हर अमृत सर नवारे सतगुरु ज्ञान मजन है नीको कीनू मिल कल मल पाप उतारे रहाओ। संगत का गुण बहुत अधिकाई परसुआ गणक उधारे परस न परस।

किछ ना समारे। जब कर मंदर आग लगानी तब कूप कदे पनिहारे। साकत सो मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम विसारे। साकत बचन बिछुआ जो डसी है तब साकत परे परारे। लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाए लग साधु संग सवारे। गुर के बचन सत सत कर माने मेरे ठाकुर बहुत प्यारे। पूरब जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे। गुर प्रसाद अमृत रस पाया रस गावे रस विचारे। हर हर रूप रंग सब तेरे मेरे लाल न लाल गुलारे। जैसा रंग दिल सो होवे क्या नानक जंत विचारे। नट महला चौथा राम गुर शरण प्रभु रखवारे। जो कुंचर तदुए पकड़ चलायो कर ऊपर कर निस्तारे रहाओ। प्रभु के सेवक बहुत अपनी के मन सरदा कर हर तारे। मेरे प्रभु सरदा भगत मन पावे जन की पै सवारे। हर हर सेवक सेवा लागे सब देखे ब्रह्म पसारे। एक पुरुष एक नगरी आवे

कहे सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया खावारे जो जन चंद्र हास दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना कर लूकी जा रे प्रभु को जन अंतर हृदय लोचे प्रभु जन के सांस निहारे कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए जन पीछे जग निस्तारे आपन आप आप प्रभु ठाकुर प्रभु आपे सृष्ट सवारे जन नानक आपे आप सब वरते कर कृपा आप निस्तारे नट महला चौथा राम कर कृपा लेहु उबारे ज्यो पकड़ द्रौपदी दुष्टा आनी हर हर लाज निवारे रहाओ कर कृपा

सत्संगत परम पद पाया कदमा सुन के गटकारे नित नित काया मज्जन किया नित मल मल देह सवारे। मेरे सतगुरु के मन बचन न पाए सब सोकट चार सिंगारे मटक मटक चल सकी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारे गुरुमुख सेवा मेरे प्रभु पाई मैं सतगुरु अलख अलख।

रिद अंतर हर जन पारे, सरदा सरदा उपाय मिलाए, मोको हर गुरु गुर निस्तारे, पवन सूत सब नीका करया, सतगुर शब्द विचारे, निज पर जाए अमृत रस पिया, बिन नैना जगत निहारे, तो गुण ईश बरन नहीं साको, तुम मंदर हम निकती रे, नाम के कृपा करो गुर मेलो, मैं राम जपत मन तीरे, नट महला चौथा, मेरे मन पद ठाकुर अगमा पा।

अनित जतन कर रहे हर अंत नाही पाया, हर अगम अगम अगाध बोध आदेश हर प्रवराया। रहाओ काम क्रोध लोभ मोह नित चगरते चगराया, हम रात रात दीन तेरे हर शरण हर प्रवराया। शरणांगति प्रभ पालते हर भगत वचन नाया, प्रहलाद जन हर नाथ पकड़िया हर राख लियो।

हर प्रभु आए मिले सुख पाया, सब तुल पाप गवाता। राम रसायन जिन गुरमत पाया, तिनकी उत्तम बाता, तिनकी पंख पाई है वड पागी, जन नानक चरण पराता। माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना, मन पावनी हर त्यायो, अपरंपरो पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो। रहाओ हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेतो हर रायो, हर आन मेलो सतगुरु, खिन बंद मुक्त करायो। प्रभु मस्तके तुरली खिया, गुरमति हर लिवलायो, पंच शब्द दरगे बाजिया, हर मिलियो मंगल गायो। पतित पावन नाम नर हर, मंद पागिया नहीं पायो, ते गर्भ जोनी गालिया, जो लोन जलाये गलायो। मत दे हर प्रभ अगम ठाकुर, गुर चरण मन में लायो, हर राम नामे रहो लागो, जन नानक नाम समायो। माली गौरा मेला चौथा, मेरा मन राम नाम रस लागा, कमल प्रगाश कया गुरु पाया, हर जप्यो क्रम को पागा। रहो कह पाए भगत लागो, मेरा हीरा मन सोयो गुरमत जागा, किलबित खीन पै शांति आई, हर उर्धार्यो वड पागा। मन मुख रंग कसुंब है कछुआ, जो कुसुम चार दिन चागा, खिन में बिनस जाए पर पापे, दंड करम राय का लागा। सत संगत प्रीत साध अत गूरी, जो रंग मजीठ बहु लागा, काया का पर चीर बहु फारे, हर रंग नाल है सवागा, हर चारे ओ रंग मिले गुर शोभा।

अवर टहला चूठियां नित करे जम सिर मार रहाओ जिना मस्तक लिखिया ते मिले संगार संसार पौ जल तारिया हर संत पुरख अपार नित चरण सेवो साध के तज लोभ मोह विकार सब तजो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार एक परम पूले साकता बिन गुर अंध अंधार तुर होव ना सो होया को ना मेटन हार अगम रूप गोविंद का अनेक नाम अपार।

नमस्कार। जास जपत होवत उधार रहाओ, जा कै सिमरन मिटे तंद, जा कै सिमरन छूटे बंद, जा कै सिमरन मूरख चतुर, जा कै सिमरन कुल्हे उदर, जा कै सिमरन पौ दुख हरे, जा कै सिमरन अपदा टरे, जा कै सिमरन मुच्चत पाप, जा कै सिमरन नहीं।

साध संगत पज पूरन काम रहाओ बूढ़त को जैसे बेड़ी मिलत बूजत दीपक मिलत तिलत।

जैसे पालन सरन सेंग गरुड़ मुख नहीं सर्प त्रास सुआ पिंजर नहीं खाए बिलास जैसो आंडो हृदय माहे जैसो दानो चक्की दराहे बहुत उपमा थोर कहे हर अगम अगम अगाध तुहे ऊंच मूचो बहु अपार सिमरत नानक परे।

नैन दर्श पेखो निस्पोर। हस्त हमरे संत टहल, प्राण मन तन संत बहल। संत संग मेरे मन की प्रीत, संत गुण बसे मेरे चीत। संत आज्ञा मने मीठ, मेरा कमल बिकसे संत दीठ। संत संग मेरा होए निवास, संतन की मोहे बहुत प्यास। संत बचन मेरे मने मंत्र, संत प्रसाद मेरे।

करन करावन हाजरा हजूर रहाओ। सुनत जियो जास नाम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। सगल निद हर हर हरे, मुन जनता की सेव करे। जा कै कर सगले समाहे, जिसते बिरथा कोए नाहे। जी जंत्र करे तत्पाल, सदा सदा सेवो कृपाल। सदा धर्म जा कै दीबान, बे मोहताज नहीं किछ कान। सब किछ करना अपन आप, रे मन मेरे तू ताको जाप। साध संगत को हों बलिहार, जास मिल हो वै उधार। नाम संग मन कहे रात, नानक को प्रभ करी दात। माली गौड़ा मैला पंजवा, दो पदे इको अंकार। सतगुर प्रसाद हर समरथ की सरना, जियो पिंड तान रास मेरी। प्रभ एक कारण करना रहाओ। सिमर सिमर सदा सुख पाये, जीवने का मूल। रव रया सर्वत ठाई, सुख मो अस्थूल। आल जाल विकार तज सब, हर गुना नित गाओ। कर जोड़ नानक दान मांगे, देहो अपना नाओ। माली गौड़ा महला पंजवा, प्रभ समरथ देव अपार। कौन जाने चलत तेरे, किछ अंत नाही पार रहाओ। इक खिने थाप उथाप दा, कर पन करने हार। जेत कीन उपार जना, प्रभ दान दे दातार। हर शरण आयो दास तेरा, प्रभ ऊंच अगम मुरार। कड ले हो पौजल बिखमते, जन नानक सब बलिहार। माली गौड़ा महला पंजवा, मन तन बस रहे गोपाल। दीन बांध भगत वछल, सदा सदा कृपाल रहाओ। आद अंते मद तू है, प्रभ बिना नाही कोए। पूर रहा सगल मंडल, एक स्वामी सोए। करन हर जस नेत्र दर्शन, रसन हर गुण गाओ। बलिहार जाए सदा नानक, देहो अपना नाओ। माली गौड़ा।

बाप मादो तू तन के सो सांवलियो बीठ लाए रहाओ। कर तरे चक्र बैकुंठ ते आए गज हस्ती के प्राण उधारी अले। दो शासन की सभा द्रौपदी अंबर लेत उबारी अले। गौतम नार अहल्या तारी पावन केतक तारी अले। ऐसा अदम अजात नाम दियो तो शरणा

अस्थावर जंगम कीट पतंगम कटकट राम समानारे। एकल चिंता राख अनंता और तजो सब आसारे। प्रणवे नामा पहने कामा को ठाकुर को दासारे। राग मारू मैला पहला कर पहला चौप दे।

नानक शरण तुहारी आ, देखो सदा हजूर शब्द पिछो राती सदड़ा नाम खसम काले है, खेमे छत्र सराय चे दिसन रथ पीड़े, जिन्नी तेरा नाम ते आया तिनको सद मिले।

खेमाए सुख थोड़े दुख अगले दुखे दुख विहाए। विछड़िया का क्या विछड़े मिलिया का क्या मेल साहिब सो सलाही है जिन कर देख्या खेल। संजोगी मेलावड़ा इत तन कीते भोग विजोगी मिल विछड़े नानक भी संजोग। मारू मैला पहला मिल मात पिता पिंड कमाया तिन करते लेख लिखाया। लिख दात जोत वड़े आई मिल माया सुरत गवाई मूरख मन का।

कागद मन मसवाणी बुरा पला दोए लेख पए। ज्यो ज्यो किरत चलाए त्यों चलिए तो गुण नाही अंत हरे। चित चेतस की नहीं बावरिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रहाओ जाली रैन जाल दिन हुआ जेती कड़ी फाही तेती। रस रस चोग चुगे नित फासे छूटस मूड़े कहन गुणी। काया आरण मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही। कोयले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत भई। पया मनूर कंचन फिर होवे जे गुर मिले तने हा। एक नाम अमृत उह देवे तो नानक त्रिष्टस देहा। मारू महला पहला बिमल मझार बसस निर्मल जल पद्मन जावल रे। पद्मन जावल जल रस संगत संग दोख नहीं रे। दादर तू कब है ना जान सरे पक्ष सिबाल बसस निर्मल जल अमृत ना लखस रे। रहाओ बस जल नित ना वस्त अलियल मेर चचा गुन रे। चंद कुमदनी दूरों निवसस अनपौ कारण रे। अमृत खंड दूध मद संचस तू बन चातुर रे। अपना आप तू कब हो ना छोड़स पिसन प्रीत ज्यो रे। पंडित संग वसे जन मूर्ख आगम सास सुने। अपना आप तू कब हो ना छोड़स स्वान पूछ ज्यो रे। एक पाखंडी नाम ना राचे एक हर हर चरणी रे। पूरब लिखिया पावस नानक रसना नाम जपरे। मारू महला पहला श्लोक। पतित पुनीत असंख हो है हर चरणी मन लाग। अठसठ तीरथ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक पाग। शब्द

तू दाना साहिब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा, पंत नानक अंदेसा एही, बिन दर्शन कैसे रवो सनेही। मारू मैला पहला मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाऊ सभागा, गुर की बचनी हाट बिकाना, जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतुराई, साहिब का हुक्म ना करना।

हवर पला संसार मारू महला पहला। इहो तन सर्व रहा भरपूर मन मुख फिर ऐसे जाने दूर। सो तन वखर नाम हृदय हमारे जिस तू दे तिसे निस्तार है रहाओ। ना एहो तन जले ना तस्कर ले जाए ना एहो तन डूबे ना इस तन को मिले सजाए। इस तन की देखो वड्याई सहजे माते अंदिन जाई। एक बात अनूप सुनो नर पाई इस तन बिन कहो किने परमगत पाई। पंत नानक अकथ

सतगुर मिले ता यो तन पाए मारू मैला पहला सूर सर सोस ले सोम सर पोख ले जुगत कर मरत सो संबंध की जय मन की चपल स्यों जुगत मन राखी है उड़े ने हंस ने कंद चीज है मूड़े काए चे परम पुला ने चीनिया परमानंद बैरागी रहाओ अजर गहो जार ले अमर गहो मार ले प्राप तज छोड़ तो अप्यो पी जय मीन की चपल स्यों जुगत मन राखी है उड़े ने हंस ने कंद चीज है पणत नानक जनो रवे जे हर मनो मन पवन स्यों अमृत पी जय मीन की चपल स्यों जुगत मन राखी है उड़े ने हंस ने कंद चीज है मारू मैला पहला माया मोई ना मन मुआ सर लहरी मैं मत बोहित जल सिर तरट के साचा वखर जित मानक मन में मन मारसी सच ना लागे कत राजा तख्त टिके गुणी पै पंचायन रत बाबा साचा साहेब दूर ना देख सर्व जोत जग जीवना सिर सिर साचा लेख रहाओ ब्रह्मा विष्ण रिखी मुनि शंकर इंद तपे पे खारी माने हुक्म सोहे दर साचे आकी मरे अफारी जंगम जोत जति सन्यासी गुरपुरे विचारी बिन सेवा फल कभू न पावस सेवा करनी सारी नितनया तन निगुरिया गुर निमानिया तू मान अंदुले मानक गुर पकड़िया।

ज्ञान रतन मन मांझिए, बहुड़ना मैला होए, जब लग साहिब मन वसे तब लग बिघन न होए, नानक सिर दे छुटिए मन तन साचा सोए, मारू मैला पहला जोगी जुगत नाम निर्माइल, ताके मैल न राती, प्रीतम नाथ सदा सच संगे, जन्म मरण गत बीती।

ब्रह्मण ब्रह्म ज्ञान स्नानी हर गुण पूजे पाती एको नाम एक नारायण त्रिभुवन एका ज्योति जिहवा डंडी एव कट छाबा तोलो नाम अजाची एको हाथ साओ सबना सिर वनजारे एक पाती दोवें सिरे सतगुरु निबेड़े सो बूझे जिस एक लिव लागी जियो रह निबराती शब्द वसाए परम चुकाए सदा सेवक दिन राती ऊपर गगन गगन पर गोरख ताका अगम गुरु पुनवासी गुरु बचनी बाहर कर एको नानक पया उदासी राग मारू मैला पहला कर पंज

जमपुर बदे मारिए बहुती मिले सजाए। मेरा प्रभु वे प्रभाव है ना तिस तिल ना तमाए, नानक तिस शरण आई पज।

सतगुर प्रसाद जप्यो नाम सुख जनक गुर बचनी हर हर शरण परे दालद पंच सुदा में मिलियो भगति पाए तरे भगत वचल हर नाम कीर्तारथ गुरमुख कृपा करे मेरे मन नाम जपत उदे तू प्रहलाद बिदर दासी सुत गुरमुख नाम तरे रहाओ कल युग नाम प्रदान पदार्थ भगत जना उदरे नामा जय दियो कबीर त्रिलोचन सब दोख गए चमरे गुरमुख नाम लगे से उदरे सब किलबिक पाप तरे जो जो नाम जपे अपराधी सब तिनके दोख पर हरे बेसुआ रवत अजामल उदरियो मुख बोले नारायण नर हरे नाम जपत उग्रसेन गत पाई तोड़ बंधन मुक्त करे जन को आप अनुग्रह किया हर अंगीकार करे सेवक पैज रखे मेरा गोविंद शरण परे उदरे जन नानक हर कृपा धारी उदयो नाम हरे मारू महला चौथा सिद्ध समाध जप्यो लिव लाई साधक मुन जपिया जति सती संतोखी त्याया मुख इंद्रादिक रविया शरण परे जप्यो ते पाए गुरमुख पार पया मेरे मन नाम जप करया तन्ना जट बाल्मीक बटवारा गुरमुख पार पया रहाओ सुर नर गण गंधर्वे जप्यो रिख बपुरे हर गाया शंकर ब्रह्मे देवी जप्यो मुख हर हर नाम जप्या हर हर नाम जिना मन पीना ते गुरमुख पार पया कोट कोट ते तीस त्यायो हर जपत्या अंत न पाया वेद पुराण सिमरत हर जप्या मुख पंडित हर गाया नाम रसाल जिना मन वस्या ते गुरमुख पार पया अनत तरंगी नाम जिन जपया मैं गणत ना कर सकया गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर प्रभ मन पाया गुर तार कृपा हर नाम दृढ़ायो जन नानक नाम लया।

सतगुरु मेरा मित्र प्रभ हर मेलो सुगुण सुजानी जन नानक शरणागति कर कृपा नाम समाणी मारू महला चौथा हर पाओ लगा बैरागिया वडपागी हर मन राख मिल संगत सरदा उपजै गुर शब्दी हर रस

हर हर भगत परे पंडारा, गुरमुख राम करे निस्तारा। जिसनु कृपा करे मेरा स्वामी, सो हर के गुण गावे जियो। हर हर कृपा करे बनवाली, हर हृदय सदा सदा संभाली। हर हर नाम जपो मेरे जीड़े, जप हर हर नाम छड़ावे जियो रहाओ। सुख सागर अमृत हर नाओ, मंगत जन जाचे हर देव पसाओ। हर सत सत सदा हर सत मेरे मन पावे जियो। नवे छिद्र स्रवें अपवित्रा, बोल हर नाम पवित्र सब किता। जे हर सो प्रसन्न होवे मेरा स्वामी, हर सिमरत मन लह जावे जियो। माया मोह बिखम है पारी, क्यों तरिये दुत्तर संसारी। सतगुर बोहित दे प्रभ साचा, जप हर हर पार लंगावे जियो। तू सर्वत्र तेरा सब कोई, जो तू करे सोई प्रभ होई। जन नानक गुण गावे बेचारा, हर पावे हर थाए पावे जियो। मारू महला चौथा, हर हर नाम जपो मन मेरे। सब किल विकाटे हर तेरे, हर तन राखो हर तन संचो। हर चलदिया नाल सखाई जियो, जिसनो कृपा करे सो त्यावे। नित हर जप जापे, जप हर सुख पावे। गुर प्रसादी हर रस पावे, जप हर हर पार लंघाई जियो रहाओ। निर्भव निरंकार सतनाम, जग में श्रेष्ठ उत्तम काम। दुश्मन दूत जम काल ठे मारो, हर सेवक नेर ना जाई जियो। जिस ऊपर हर का मन मानिया, सो सेवक चहो जुग चहो कुंट जानिया। जे उसका बुरा कहे कोई पापी, तिस जम कंकर खाई जियो। सब में एक निरंजन करता, सब कर कर वेखे अपने चलता। जिस हर राखे तिस कौन मारे, जिस करता आप छड़ाई जियो। हों अंदिन नाम लई करतारे, जिन सेवक भगत सबे निस्तारे। दस अठ चार वेद सब पूछो, जन नानक नाम छड़ाई जियो। मारू मैला पंजवा, कर दूजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद, डर पे तरत आकाश नखत्रा।

सो सुखिया सो सदा सुहेला जो गुर मिल गाए गुनी रहाओ देह तार अर देवा डर पै सिद्ध साधक डर मोया लख चौरासी मर मर जन में फिर जोनी जोया राजस सातक तामस डर पै केते रूप उपाया छल बपरी एक औला डर पै अत डर पै धर्म राया सगल समग्री डरे व्यापी बिन डर करने हारा कहो नानक भगतन का संगी भगत सोहे दरबारा मारू महला पंजवा पांच बरख को अनाथ त्रुबारिक हर सिमरत अमर अटारे पुत्र हेत नारायण कहो जम कंकर मार बिदारे मेरे ठाकुर केते अगनत उधारे मोहे दीन अल्प मत निर्गुण परयो शरण द्वारे रहाओ बाल्मीक सुपचारो तरयो बद्धिक तरे बिचारे एक निमख मन माहे अराद्यो गजपत पार उतारे कीनी रखिया भगत प्रहलादे हर नाखस नखे बिदारे विदरदासी सुत पयो पुनीता सगले कुल उजारे कवन पराध बतावो अपने मिथ्या मोह मगनारे आयो साम नानक ओट हर की लीजे पूजा पसारे मारू महला पंजवा वित्न वित प्रम्यो बहु पांते अनक जतन करता।

आए, ए विद खोजी बहु प्रकारा, बिन संतन नहीं पाए। तुम दातार वडे प्रभ समरथ, मांगन को दान आए। त्याग्यो सगला मान मैता, दास रेण शरणाए। कहो नानक हर मिल पए कै, महा आनंद सुख पाए। मारू मैला पंजवा, कवन थान तीरो है नामा, कवन वस्त अंकारा। कवन चेहन सुन ऊपर छोयो, मुक्ते सुन कर

अहज आनंद रखियो गे पीतर उठ उआ हूँ कौ दौरे हो आज्ञा में पूख सोई कर सूखा सो घर नहीं जाने हो जो जो हुकुम पयो साहिब का सो माथे ले माने हो पयो किरपाल ठाकुर सेवक को सवरे हल्त पलाता तन सेवक सफल उह आया जिन नानक खसम पछाता मारू मैला पंजवा खुलिया कर्म कृपा पई ठाकुर कीर्तन हर हर गाई श्रम था का पाए विश्रामा मिट गई सगली ताई अब मोह जीवन पदवी पाई चीत आयो मन पुरख विधाता संतन की शरणाई राव काम क्रोध लोभ मोह निवारे निवरे सगल बैराई सद हजूर हाजर है नाजर कते न पयो दुराई सुख शीतल सरदा सब पूरी होए संत सहाई पावन पतत किए खिन पीतर मैं मा कथन न जाई निरपो पय सगल पै खोए गोविंद चरण ओटाई नानक जस गावे ठाकुर का रैन दिनस लिवलाई मारू मैला पंजवा जो समरथ सर्व गुण नायक तिसको कबू न गाव सिरे छोड़ जाए खिन पीतर ताको हुआ को फिर तावसरे अपने प्रभु को क्यों ना समार सने बैरी संग रंग रस रचिया।

दुला रहे हो, हस्त पाव चरे खिन पीतर, अग्न संग ले जा रहे हो, मुड़े ते मन ते राम बिसारे हो, लून खाए करे हराम खोरी, पेखत नैन बिदारे हो रहाओ, असाद रोग उपजो तन पीतर, तरत न काहू तारे हो, प्रभ विसरत महा दुख पायो, एहु नानक तत विचारे हो, मारू मैला पंजवा, चरण कमल प्रभ राखे चीत, हर गुण गावे नीता नीत, तिस बिन दूजा अवर न को, आद मद अंत है सो, संतन की ओट आपे आप रहाओ, जा के वस है सगल संसार, आपे आप आप निरंकार, नानक गयो

तज सारंग तर परम तू पूला मोहे लपट्यो दासी संग सानत रहाओ तरणी तर त्याग नीच कुल सेवे हौ हौ करत बिहावत फोकट कर्म करें अज्ञानी मनमुख अंध कहावत सत होता असत कर मान्या।

सूद वै सब एक है नाम तरानथ। गुरु नानक उपदेश कहत है जो सुने सो पार परानथ। मारू मैला पंजवा गुप्त करता संग सो प्रभ डहकावे मनुखाए। विसार हर जियो बिखे पोगे तपत थम गल लाए। रे नर काए परग्रह जाए कुचल कठोर काम गर्दब तुम। नहीं सुनियो तर्म राय रहाओ विकार पाथर गले बांधे। निंद पोट सिराए महासागर समुद्र लंगना पार न पर ना जाए। काम क्रोध लोभ मोह व्याप्यो नेत्र रखे फिराए। शीश उठावन न कबू मिले महादुत्र माए। सूर मुक्ता शशि मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अल्पाए। स्वभावत जैसे बैसंतर अल्पत सदा निर्मलाए। जिस कर्म खुलिया तिस लया पर्दा जिन गुर पे मनिया सुभाए। गुर मंत्र अवखद नाम दीना जन नानक संकट जोन न पाए। रे नर इन विद पार पराए त्याए हर जियो होए।

गया था। अनुपव अचरज रूप प्रभ देखिया, मेरा मन छोड़ न कतहु जाया था। मानक पायो रे पायो हर पूरा पाया था, मोल अमोल न पाया जाई। कर कृपा गुरु दिवाया था रहाओ, अदिष्ट अगोचर पार ब्रह्म मिल साधु अकथ कथाया था। अनहद शब्द दसम द्वार वज्यो, तै अमृत नाम चो आया था। तोट नाही मंत्रिष्णा बूजी, अखुट पंडार समाया था। चरण चरण चरण गुर सेवे, अकड़ कड़ो रस पाया था। सहजे आवा सहजे जावा, सहजे मन खेलाया था। कहो नानक परम गुर

ताऊ लागा गोविंद स्यों काल पाई खाए, खेत मेरे जमिया निखुट ना कब हो जाए, पाया अमोल पदार्थो छोड़ ना कतू जाए, कहो नानक सुख पाया तृप्त रहे आधाए, मारू मैला पंजवा फूटो आंडा परम का मने तयो पर।

सच बैठता सच स्वाव बनाया, सच पूंजी सच वखरो, नानक कर पाया मारू मैला पंजवा। वेद पुकारे मुख ते पंडित का मामन का माठा, मोनी होए बैठा एकांति हृदय कल्पन गाठा। होए उदासी गृह तज चलियो, छुटके नाही नाठा। जी की कहते हैं बात कहाँ, आप मुक्त मोको प्रभु।

रूप रंग खुशियां मन भोगण केते छिद्र विकारा हर का नाम निधान कल्याणा सुख सहज इहो सारा माया रंग बिरंग किने में जो बादल की छाया से लाल पे गूरे रंग राते जिन गुरु मिल हर हर गाया ऊंच मूच अपार स्वामी अगम दरबारा नामो वडियाई सोबा नानक खसम त्याय।

जिस होवे भाग मथाने सो मिलिया जे हर मन पाया सो पूला जे प्रभु पुलाया नह आपो मूर्ख ज्ञानी जे करावे सो नाम वखानी तेरा अंक न पारा वारा जन नानक सद बलिहारा।

मात गर्भ में जिन प्रतपारिया, जियो पिंड दे साज सवारिया। कोई विधाता खिन खिन जपिए, जिस सिमरत अवगुण सब टपिए। चरण कमल उर अंतर तारो, दिखिया बनते जियो उदारो। करण पला मिटे बिल्लाटा, जप गोविंद परम पौ फाटा। साध संग बिरला को पाए, नानक ताके बल बल जाए। राम नाम मन तन आधारा, जो सिमरे तिसका निस्तारा रहाओ। मिथ्या वस्त सत पर मानी, हित लायो सठ मूर अज्ञानी। काम क्रोध लोभ मद माता, कौडी बदले जन्म गवाता। अपना छोड़ पराया राता, माया मद मन तन संग जाता। कृष्ण ना बूझे करत कलोला, ऊनी आस मिथ्या सब बोला। आवत इकेला जात इकेला, हम तुम संग झूठे सब बोला। पाए ठगोरी आप बुलायो, नानक कीर्त ना जा।

का आज्ञाकारी सदा सदा सुखदाई अपने को कृपा करियो इक नाम त्याई नानक दीन नाम मांगे जितिया परम चुकाई मारू मैला पंजवा मेरा ठाकुर अप

अवर न कोई जीवन प्रतपाल समा है होसी आहे दया मोह की जय देवा नानक लागो सेवा मारू महला पंजवा पतत उदाहरण तारण बल बल बले बल जाय ऐसा कोई पेट है संत जित हर हरे हर त्याय मोको कोई न जानत कयत दास तुम्हारा यहा ओट आधारा।

अटल अथयो देवा मोहन अलख अपारा, दान पावो संता संग नानक रेन दसारा। मारू मेला पंजवा तृप्त अघाए संता, गुरजाने जिन मंता ताकि कुछ कह न जाए, जा को नाम बढ़ाए। लाल अमोला लालो अगह अतोला नामो राव, अवगत सो मानिया मानो गुरमुख तत् ज्ञानो, तिरखत सगल त्यानो तजियो मन ते अभिमानो, ने चल तिनका ठा।

व्यापै मिले सुख विश्राम, गुर प्रसाद नानक बखाने, हर भजन तत् ज्ञान मारू मैला पंजवा। जिन्नी नाम विसारिया से होत देखे के, पुत्र मित्र विलास बनता टूटते इहने, मेरे मन नाम नित नित लेहे, जलत नाही अगन सागर सुख मन तन देहे राव, देख छाया जैसे बिन सत पवन चूलत में, हर भगत दृढ़ मिल साध नानक, तेरे काम आवत एहे मारू मैला पंजवा। पुरख पूरन सुखे दाता संग बत्तो नीत, मरे ना आवे ना जाए बिन से व्यापत उसन न सीत, मेरे मन नाम स्यों कर प्रीत, चेत मन में हर हर निदाना ए निर्मल रीत, रहाओ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै तिसीद, नवल नव तन चतुर सुंदर मन नानक तिस संग बीद। मारू मैला पंजवा, चलत बैसत सोवत जागत, पुर मंत्र हृदय चितार, चरण शरण पद संग साधु, पव सागर उतरे पार, मेरे मन नाम हृदय तार, कर प्रीत मन तन लाए हर्षों, अवर सगल विसार रहाओ, जियो मन तन प्राण प्रभ के, तू आपन आप निवार, गोविंद पज सब स्वार्थ पूरे, नानक कबहु न हार। मारू मैला पंजवा, तज आप बिनसी ताप रेण साधु थियो, तिसें प्राप्त नाम ते।

नाम इक रस रंग नामा नाम लागी लियो मीत साजन सखा बंदप हर एक नानक कियो मारू मैला पंजवा प्रतपाल माता उदर राखे लगन देत न

सोड सगले पेख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक मारू मैला पंजवा पतित पावन नाम जाको अनाथ को है नाथ।

हुआ। पंच तात कर पुतला किया, साहे कै फुरमायड़े जी देही विच जियो आए पया। जिथे अगन पखे परहारे, उरद मुख महा गुबारे, सास सास समाले सोई, उठे खसम छड़ाए लया। विच्चों गर्भ निकल आया, खसम विसार दुनी चितलाया, आवे जाए पुवाये जोनी, रहन न कितनी थाए बया। मेरवा रख लेन आपे, जी जंत सब तिसके थापे, जन्म पदार्थ जिन चलिया, नानक आया सो परवान थिया।

प्रदान है। कटकटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जा का थान है। आवे न जावे संगे समावे पूरन जाता काम है। भगत जना का राखना आरा संत जीवे जब प्राण।

हर को नाम सदा सुखदाई, जहाँ को सिमर अजामल उद्रियो गणताहु गत पाई रहाओ। पंचाली को राजसभा में दाम नाम सुधि आई, ताको दुख हरे हो करुणा में अपनी पैज बढ़ाई। जे नर जस कृपा निध गायो ताको पयो सहाय, कहो नानक में यही परोस है गही आम शरणाई।

काल फास जब घर में मेली ते सुध सब बिसराई राम नाम बिन या संकट में को अब हो सहाय जो संपत अपनी कर मानी छिन में पई पराई कहो नानक यह सोच रही मन हर जग सब न गाई मारू मैला नामा माई में मन को मान न त्यागो माया के मद जन्म सिरायो राम भजन नहीं लाग्यो राव जम को दंड पड़ो सिर ऊपर तब सोवत कह जाग्यो कहाँ होत अब कह पछताए छूटत ना इन भाग्यो ए चिंता उपजी कट में जब गुर चरणन अनुरागियो सुफल जन्म नानक तब हुआ जो प्रभ जस में पाग्यो मारू अच्छा मैला पहला कर पहला ओंकार सतगुरु प्रसाद वेद पुराण कथे सुने हारे मुनि अनेका हर सची रख बहु कहा प्रम था के देखा साचो साहिब निर्मलो मन माने एका तू अजरावर अमर तू सब चालन हारी नाम रसायन पाए ले पर हर दुख पारी रहाओ हर पढ़िए हर बुझिए गुरमति नाम उधारा गुर पूरे पूरी मत है पूरे शब्द विचारा अठहठ तीर्थ हर नाम है किल विस्का तनहारा जल बिलोवे जल मत है तत लोड़े अंध ज्ञाना गुरमति जद मत्थी है अमृत पाये नाम निदाना मन मुख तत न जाननी पशु माए समाना हों मैं मेरा मरी मर मर जम मैं वारो वार गुर कह सब दे जे मरे फिर मरे ना दूजी वार गुरमति जग जीवन मन वसे सब कुल उदाहरण हार सच्चा वखर नाम है सच्चा वापारा लाहा नाम संसार है गुरमति विचारा दूजे पाए कार कमावनी नित तोता है सारा साची संगत थान सचे सच्चे करवारा सच्चा पोजन पाओ सच सच नाम अधारा सच्ची बाणी संतोखिया सच्चा शब्द विचारा रस भोगन पाप साइया दुख सुख संगारा मोटा नाव तराई है गल औगुण पारा मानस दात न हो वही तू दाता सारा अगम अगोचर तू तनी अवगत अपारा गुर शब्दी दर जोई है मुक्ते पंडारा नानक मेल न चूकई साके वापारा मारू मैला पहला बिख बोय था ला दिया दिया समुद्र मंझार कंदी दिस ना आवई ना उरवार ना पार वंजी हाथ ना केव तू जल सागर असराल बाबा जग पाथा मा जाल गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम समाल रहाओ सतगुरु है बोए था सबद लंगावन हार किथे पवन ना पाव को ना जल ना आकार किथे सच्चा सच नाए पव जल तारण हार गुरमुख लंगे से पार पए सच्चे सों लिवलाए आवा गौन निवारया ज्योति ज्योत मिलाए गुरमति सहज उपजे सच्चे रह समाए सब पिड़ाई पाई है दिख अंतर मन रोस पूरब लिखिया पाई है किसनो दी जय दोस गुरमुख गारण जे सुने मन्ने नाव संतोख मागर मच्छ पाई है कुंडी जाल बताए गुरमत फाथा पाई है फिर पछोताए जम्मन मरण न सुजई कीर्तना में क्या जाए हों मैं बिख पाए जगत उपाया शब्द वसे बिख जाए जरा जोई ना सकई सच रहे लिवलाए जीवन मुक्त सो आखिए जिस विचो हो मैं जाए तंदे तावत जग बांधिया ना बूझे विचार जम्मन मरण विसारिया मन मुख मुग्द गवार गुर राखे से उबरे सच्चा शब्द विचार सुहट पिंजर प्रेम कै बोले बोलन हार
सच चुगै अमृत पिए उड़े ताए का वार, गुर मिले खसम पछाणिए है कहो नानक मोख द्वार, मारू मैला पहला शब्द मरे ता मार मर पागो किस तै जाओ, जिस तै डर तै पागी है अमृत ता को नाओ, मारे राखे एक तू बीजो नाई खाओ, बाबा मैं कुचील काचो मत हीन नाम बिना को कछ नहीं, गुरपुर है पूरी मत कीन रहाओ, अवगण सुगर गुण नहीं बिन गुण क्यों कर जाओ, सहज शब्द सुख उपजे बिन पागा तन नाहे, जिनके नाम ना मनवस है से बांधे दुख सहाए, जिन्नी नाम विसारिया से कित आए संसार, आगे पाछे

फूले मार्ग जो दसे तिसके लागो पाए, गुरबिन दासा को नहीं कीमत कह न जाए। साजन देखा ता गल मिला साज पठायो लेख, मुख तिमाने तन खड़ी गुरमुख आखी देख। खुद पावे तू मन वसे नदरी कर्म विशेख, भूख प्यासे जे पवे क्या तिस मांगो दे। बीजे सूजे को नहीं मन तन पूरन दे, जिनकी आतिन देखिया आप वडाई दे। नगरी नायक नवतनो बालक लील अनूप, नार ना पुरख ना पंखनु साचो चतर स्वरूप। जो तिस पावे सोचिए तू दीपक तू तूप, गीत साध चार

नानक नाम ना विसरे जो तिस पावे सो होग मारू मैला पैला साची कार कमावनी होर लालच बाद एह मन साचे मोहया जेवा सत्साद बिन नामे को रस नहीं होर चले दिखलाद ऐसा लाला मेरे लाल को सुन खत्म हमारे ज्यों फुरमावे त्यों चला सच लाल प्यारे राव अंदिन लाले चाकरी गोले सिर मीरा गुरबचनी मन वेचिया शब्द मन तीरा गुरपूरे साबास है काटे मन पीरा लाला गोला तनी तो क्या कहो वड्याई है पाने बक्से पूरा तनी सत्कार कमाई है विछुड़िया को मेल ले गुर को बल जाई है लाले गोले मत खरी गुर की मतनी की साची सुरख सुहावनी मनमुख मत थी की मन तन तेरा तू प्रभु सच तीरक तुर की साचे बैसन उठना सच भोजन पाख्या चित सच्चे वित्तो सच्चा साचा रस चाख्या साचे कर साचे रखे गुर वचन सुवाख्या मन मुख को आलस करो साचे उजाड़ी साथा चुगे नित जोगड़ी।

लाले गारव छोड़िया गुर कै पै सहज तुभाई, लाले खसम पछाणिया वड्डी वड्याई, खसम मिले सुख पाया कीमत कह न जाई, लाला गोला खसम का खसम वड्याई, गुर प्रसादी उबरे हर की शरणाई रहाओ, लाले नो सिरकार है उर खत्म फुरमाई, लाले हुकम पछाणिया सदा रह रजाई, आपे मीरा बक्सले वड्डी वड्याई, आप सच्चा सब सच है गुर शब्द बुझाई, तेरी सेवा सो करे जिसनो लह तुलाई, बिन सेवा किने न पाया दूजे परम खुआई, सो क्यों मनो विसारी है नित देवे चले सलाया, जियो पिंड सब तिसदा साओ तिने विच पाया, जा कृपा करे ता सेवी है सेव सच समाया, लाला सो जीवत मरे मर विच्चों आप गवाए, बंधन टूटे मुक्त होए तृष्णा अग्न बुझाए, सब में नाम निदान है गुरमुख को पाए, लाले विच गुण किस नहीं लाला अवगणियार, तुद जेवर दाता को नहीं तू बख्शनहार, तेरा हुक्म लाला मन्ने ए करनी सार, गुर सागर अमृत सर जो इच्छे सो फल पाए, नाम पदार्थ अमर है हृदय मन वसाए, गुर सेवा सदा सुख है जिसनो हुक्म मनाए, सोना रूपा सब तात है माटी रल जाई, बिन नावे नाल न चलई सतगुर बूझ बुझाई, नानक नाम रते से निर्मले साचे रहे समाई, मारू मैला पैला हुक्म पया रहना नहीं तुर फाटे चीर है, तेहो मन अवगुण बांधया सहो दे शरीर है, पूरे गुर बख्शाई है सब गुने फकीर है, क्यों रही है उठ चलना बुद्ध शब्द बिचारा, जिस तू मेले सो मिले गुर हुक्मा पारा रहाओ, जो तू राखे त्यों रहा जो दे सो खाओ, जो तू चलावे त्यों चला मुख अमृत नाओ, मेरे ठाकुर हथ वड्याईया मेले मन चाओ, कीता क्या साल आई है कर देखे सोई, जिनकी आसो मन वसे मैं अवर न कोई, सो साचा साल आई है साची पत होई, पंडित पढ़ न पहुंचई बहु आल जंजाला, पाप पुन दे संग में खुदया।

मेरे प्रभु पावन से उजले सब मैल परी जय मैला उजर ताकी है पारस संग पी जय वन्नी साचे लाल की किन कीमत की जय पेठी हाथ न लबई तीरथ नहीं दाने पूछो वेद पढ़न से आमूठी बिन माने नानक कीमत तो करे पूरा गुर ज्ञाने मारू महला पहला मनमुख लहर कर तज विदूचै अवरा के कर हेर गृह धर्म गवाए सत गुरु ना पेटै दुर्मत तू मन के रह दिसंतर पवे पाठ पढ़ थाका तृष्णा होए वधेरे काकी पिंडी शब्द ना चीने उधर परे जैसे टोरे बाबा ऐसी रवत रवे सन्यासी गुर के शब्द एक लिव लागी तेरे नाम रते तृप्तासी राव कोली गेरू रंग चढ़ाया वस्त्र पेट पे खारी कापड़ तार बनाई खिंसा चोली माया तारी कर कर मांगे जग प्रबोधे मन अंधे पतहारी परम पुलाना शब्द ना चीने जुए बाजी हारी अंतर अग्न ना गुर बिन बूझे बाहर कुवर तापे गुर सेवा बिन भगत ना होवी क्यों कर चीनस आपे निंदा कर कर नरक निवासी अंतर आत्म जापे।

अथक तीरथ परम विगूचे क्यों मल तो कह पापे छाणी खाक विपूत चढ़ाई माया का मग जो है अंतर बाहर एक ना जाने साच कहे ते छो है पाठ पढ़े मुख झूठो बोले निगुरे की मत ओ है नाम न जपे क्यों सुख पावे।

आत्मज्ञाना अमृत छोड़ महा बिकती रहे माया का देवाना कृष्णा मिटे हुक्म न बूझे पतुआ माए समाना हाथ कमंडल कापड़िया मन कृष्णा उपजी पारी स्त्री तज कर काम व्याप्या चितलाया पर नारी सिख करे कर शब्द न चीने लंपट है बाजारी अंतर दिख बाहर निबराती ताजम करे खुआरी सो सन्यासी जो सतगुर सेवे विच्चों आप गवाए साधन पोजन की आस न करे अचिंत मिले सो पाए बके ना बोले खिमा तन संग्रह तामस नाम जलाए तन गिर ही सन्यासी जोगी जे हर चरणी चितलाए आप निराश रहे सन्यासी एक क्यों लिवलाए हर रस्ती वे ता सांत आवे निज कर ताड़ी लाए मनवाना डोले गुरमुख बूझे तावत वर्ज रहाए गृह शरीर गुरमति खोजे नाम पदार्थ पाए ब्रह्मा विष्णु महेश श्रेष्ठ नाम रते विचारी खानी बाणी गगन पताली जनता जो तुम्हारी सब सुख मुक्त नाम तुन बाणी

पहला मात पिता संयोग उपाय रखत बिंद मिल पिंड करे अंतर गर्भ उर्द निव लागी सो प्रभ सारे दात करे संसार पव जल क्यों तरे गुरुमुख नाम निरंजन पाले अफरियो पार अपार करे रहाओ ते गुण विसर गए अपराधी मैं बौरा क्या करो हरे तू दाता दयाल सदै सिर एनिस दास संवार करे चार पदार्थ ले जग जन्मिया शिव शक्ति कर वास करे लागी पूख माया मग जो है मुक्त पदार्थ मोहे खरे करन पलाव करे नहीं पावे किस उत टूंडत थाक परे काम क्रोध अंकार व्यापे कूड कुटुंब स्यों प्रीत करे खावे पोगे सुन तो देखे पहर दिखावे काल करे बिन गुर सब दिन आप पछाने बिन हर नाम ना काल करे जे कामो हो मैं कर पूले मेरी मेरी करते छीन खड़े तन तन बिन सह सह सह सहसा फिर पछतावे मुख तूर परे बिरद पया जोबन तन चुकिया कफ कंठ बिरु दो नैनो नीर तरे चरण रहे कर कंपन लागे साकत राम ना हृदय हरे सुरत गई काली हूँ तोले किसे न पावे रखियो करे विसरत नाम ऐसे दुख लागे जम मार समारे नरक खरे पूरब जन्म को लेख न मिटई जन्म मरे का को दोष तरे बिन गुर बाद जीवन होर मरना बिन गुर सबदे जन्म जरे खुशी खुआर पै रस पोगण फोकट कर्म विकार करे नाम विसार लोभ मूल खोयो फिर कर्म राय का दंड परे गुरमुख राम नाम गुण गावे जां को हर प्रभ नदर करे ते निर्मल पुरख अपरंपर पूरे ते जग में गुरु गोविंद हरे हर सिमरो गुरु बचन समारो संगत हर जन पाव करे हर जन गुर प्रदान द्वारे नानक तिन जन की रे।

दोहागनी सावरने क्यों जाओ, मैं गल औगन मुठड़ी बिन फिर चूर मराओ, तेरे फिर समला सावरने करवास, सुख संबंध सुहागनी फिर पाया गुण पास, लेख निहाली पटकी कापड़ अंग बनाए, फिर मुट्टी दोहागनी तिन दुखी रहन विहाए।

एक जोत दो नाओ, मूर्खा सिर मूर्ख है जे मन्ने नाही नाओ। गुरुद्वारे नाओ पाई है बिन सतगुरु पल्ले।

ताने जिसनो नदर तुम्हारी जियो रहाओ। दिव्य दृष्ट जागे परम सुखाए, गुरु प्रसाद परम पद पाए। सो जोगी ए जुगत पछाने, गुरु के शब्द विचारी जियो। संजोगी तन फिर मेला होवे, गुरमत विचों

एहो शब्द सार जिसनो लाए गुरमुख तृष्णा पुख गवाए अपन लिया किछु ना पाए कर कृपा कलकारी जियो अगम निगम सतगुरु दिखाया कर कृपा अपने कर आया अंजन माहि निरंजन जाता जिनको नजर तुम्हारी जियो गुरमुख होवे सो तत पाए अपना आप विचों गवाए सतगुर बाजो सब तंद कमावे देखो मन विचारी जियो एक परम पूले फिरे अंकारी इकना गुरमुख हो मैं मारी सच्चे शब्द रते बैरागी और परम पुले गावारी जियो गुरमुख जिन्नी नाम न पाया मनमुख बिरसा जन्म गवाया अगे बिन नामे को बेली नाही बूझे गुर विचारी जियो अमृत नाम।

या अष्टपदियां इकोंकार सतगुरु प्रसाद लख चौरासी परमते दुर्लभ जन्म अब पायो रे मूड़े तू हो छह रस लपटायो अमृत संग बस्त है तेरे बिख्या क्यों उर्जायो राव रतन जवे हर बंजन आयो कालर लाद चलायो जे कर मैं तुद रहना बसना सो कर चीतना आयो अटल अखंड प्राण सुखदाई एक निमख नहीं तुझ गायो जहां जाना सो थान विसार्यो एक निमख नहीं मन लायो पुत्र कलत्र ग्रह देख समग्री इस ही मैं उर्जायो जित को लायो तित ही लागा तैसे कर्म कमायो जो पयो किरपाल ता साध संग पाया जन नानक ब्रह्म ते आयो मारू महला पंजवा कर अनग्रो राख लीनो पयो साधु संग हर नाम रस रसना उचारे मिष्ट गूढ़ा रंग मेरे मान को स्थान मीत साजन

कही मोख मुक्त द्वार जा कै संत रिदा भंडार जी जुगत सुजान स्वामी सदा राखण हार दुख दर्द कलेश बिन सै जिस बसे मन माहे मृत नरक स्थान बिखड़े बिख न पोहे ताहे रिद्ध सिद्ध नवनिद जाके अमृता प्रवाह आद अंते मद पूरन ऊच अगम अगाह सिद्ध साधिक देव मुन जन वेद करें उचार सिमर स्वामी सुख सहज पुंचे नहीं अंत पारावार अनिक प्राचत मिटे खिन में हृदय जप भगवान पावना ते महापावन कोट दान स्नान बल बुद्ध शुद्ध प्राण सर्व सु संतना की रास बिसर नाही निमक मन ते

देव कृपाल गोविंद सुन संतना की रीत रहाओ। चरण तले उगाहे बैस्यो श्रम ना रहो शरीर, महासागर नह व्यापै खिने उतरयो तीर। चंदन अगर कपूर लेपन तिस संगे नहीं प्रीत, दिष्टा मूत्र खोद तिल तिल मन ना मनी विपरीत। ऊंच नीच विकार सुकृत संलगन सब सुख छत्र, मित्र सत्र ना कछु जाने सर्व जी समत। कर परगास प्रचंड प्रगट्यो अंधकार विनाश, पवित्र अपवित्र है किरण लागे मन न पयो बिखाद। शीत मंद सुगंध चल्यो सर्वथान समान, जहां सा किछ तहां लागयो तिल ना शंका मान। सुभाए अभाए जो निकट आवे शीत ता का जाए, आप पर का कछ न जाने सदा सहज सुभाए। चरण शरण सनाथ एहो मन रंग राते लाल, गोपाल गुण नित गाओ नानक पै प्रभ कृपाल। मारू महला पंजवा कर चौथा अष्टपदिया इको अंकार सतगुर प्रसाद। चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर।

काम क्रोध लोभ त्यागना, मांगना मांगननी का हर जस गुर से मांगना, जागना जागननी का हर कीर्तन में जागना, लागना लागननी का गुर चरणी मन लागना, ए विद तिसे प्राप्ते जा के मस्तक पागना, कहो नानक तिस सब किछ नीका जो प्रभ की शरणागना। मारू महला पंजवा, आओ जी तू आओ हमारे हर जस श्रवण सुनाम ना रहाओ, तुद आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संग गावना, संत कृपा ते हृदय वासे दूजा पाओ मिटावना, भगत दया ते बुद्ध परगासे दुर्मत दुख सजावना, दर्शन भेटत होत पुनीता पुनरप गर्भ न पावना, नौ निद रिद सिद्ध पाई जो तुमरे मन पावना, संत बिना मैं थाओ न कोई हवर न सूजे जावना, मोहे निर्गुण को कोई न राखे संता संग समावना, कहो नानक गुर चलत दिखाया मन मध्ये हर हर रामना। मारू महला पंजवा, जीवना सफल जीवन सुन हर जप जप सद जीवना रहाओ, पीवना जित मन आगावे नाम अमृत रस पीवना, खावना जित भूख ना लागे संतोख सदा तृप्तीवना, पहनना रख पत परमेश्वर फिर नांगे नहीं थीवना, पोगना मन मदे हर रस संत संगत में लीवना, बिन तागे बिन सुई आनी मन हर पगति संग सीवना, मात्या हर रस में राते तिस बहुड़ न कबहू औखीवना, मिलियो तिस सर्व निधाना प्रभ कृपाल जिस दीवना, सुख नानक संतन की सेवा चरण संत तोय पीवना। मारू महला पंजवा, कर अठवा अंजुलिया इको अंकार सतगुर प्रसाद, जिस ग्रह बहुत तिसे ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरे परमंता, दोहु व्यवस्था तेजो मुक्ता सोई सुहेला पालिए, ग्रह राज में नरक उदास करोदा, बहुविध वेद पाठ सब सोदा, देही में जो रह अलिप्ता तिस जन की पूरन कालिए, जागत सूता परम विगूता बिन गुरु मुक्त ना होइए मीता, साध संग टूटे हो बंधन एको एक निहालिए, कर्म करे ता बंदा ने करे ता निंदा, मोह मगन मन व्याप्या चिंदा, गुर प्रसाद सुख दुख सम जाने कट कट राम हियालिए, संसार में सहसा व्यापे अकत कथा अगोचर नहीं जापे, जिसे बुझाए सोई बूझे ओ बालक वांगी पालिए, छोड़ बह तो छूटे नाहीं जो संचे तो पौ मन माही, इस ही में जिसकी पत राखे तिस साधु चोर टालिए, जो सूरा तिस ही होय मरना जो पागे तिस जोनी फिरना, जो वरताए सोई पल माने बुझ हुक्मे दुर्मत जालिए, जित जित लावे तित तित लगना कर कर वेखे अपने जचना, नानक के पूरन सुख दाते तू देहता नाम समालिए। मारू महला पंजवा, बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे, अस्त उदोत पया उठ चले ज्यो ज्यो औद विहानिया, पाप करेंदर सर पर मुठे अजराइल फड़े फड़ कुठे, दो जग पाए सिरजन हारे लेखा मंगे बाणिया, संग न कोई पैया बेबा माल जोबन तन छोड़ वजे सा, करण करीम ना जातो करता तिल पीड़े ज्यो काणिया, खुश खुश लेंदा वस्त पराई वेखे सुने तेरे नाल खुदाई, दुनिया लब पया खात अंदर अगली गल ना जानिया, जम जम मरे मर

संता संगत नरक न पाई, अमृत नाम दान नानक को, गुण गीता नित वखाणिया। मारू सोलहे महला पहला इको अंकार सतगुर प्रसाद। साचा सच सोई अवर न कोई, जिन सिर जी तिन ही फुन गोई, ज्यों पावे त्यों राखो रहना, तुम स्यों क्या मुकराई है, आप उपाए आप खपाए, आपे सिर सिर तंदे लाए, आपे विचारी गुणकारी, आपे मार्ग लाई है, आपे दाना आपे बीना, आपे आप उपाए पतीना, आपे पौन पानी बैसंतर, आपे मेल मिलाई है, आपे सतसूरा पूरो पूरा, आपे ज्ञान त्यान गुरसूरा, काल जाल जम जोहे न साके, साचे स्यों लिवलाए।

आपे पावरफुल फल तरवर, आपे जल थल सागर सरवर, आपे मच कच करनी कर तेरा रूप ना लखना जाई है। आपे दिन आपे ही रहनी, आप पति जय गुर की बैनी, आद जुगाद अनाहद अंदिन कट कट शब्द रजाई है। आपे रतन अनूप अमोलो, आपे परखे पूरा तोलो, आपे किस ही कस बख्शे, आपे दे ले पाई है। आपे तनक आपे सरबाना, आपे सुगढ़ स्वरूप से आना, कहता बकता सुनता सोई, आपे बनत बनाई है। पौन गुरु पानी पित जाता, उधर संजोगी तरती माता, रैन दिनस दोयदाई दाया, जग खेले खेल आई है। आपे मछली आपे जाला, आपे गऊ आपे रखवाला, सर्व जिया जग जोत तुम्हारी, जैसी प्रभु फुरमाई है। आपे जोगी आपे भोगी, आपे रसिया परम।

रस अंतरमाने आपे मुक्त तृप्त वरदाता भगत पाए मन पाई है। आप निरालम गुरुगम ज्ञाना ज्योति सह तुझ माहे समाना नानक नीच पिखिया दर जाते है मैं दीजै नाम बढ़ाई है मारू महला पहला। आपे तरती तौल आकाशं आपे साचे गुण प्रगासं जति सती संतोखी आपे आपे कार कमाई है। जिस करना सो कर कर वेख है कोई न मेटे साचे लेख है आपे करे कराए आपे आपे देवड़ियाई है। पंच चोर चंचल चित चाले पर कर जो है कर नहीं पाले काया नगर टह टह तेरी बिन शब्द पत जाई है। गुरते बूजे त्रिभुवन सूजे मनसा मार मने क्यों लूजे जो तुझ सेवे से तुझ ही जे निरपव बाल सिखाई है। आपे सुर्ग मच पयाला आपे ज्योत स्वरूपी बाला जटा विकट विकराल स्वरूपी रूप न रेख्या काई है। वेद कटे भी पेद न जाता ना किस मात पिता सुत प्राता सगले सैल उपाय समाए अलखना लखना जाई है। कर कर था की मीत कनेरे कोई न काटे अवगुण मेरे सुर नर नाथ साहिब सबना सिर पाए मिले पहु जाई है। पूले चूके मार्ग पावे आप पुलाए तू है समझावे बिन नावे मैं अवर न दीस है। नामो गत मित पाई है गंगा जमुना केल किदारा काशी कांती पुरी द्वारा गंगा सागर बेणी संगम अठसठ अंक समाई है। आपे सिद्ध साधिक विचारी आपे राजन पंचाकारी तख्त बह अगली प्रभ आपे परम पेद पौ जाई है। आपे काजी आपे मुल्ला आप अपुल ना कबहू पुल्ला आपे मेहर दया पत दाता ना किसे को बैराई है। जिस बख्शे तिस देवड़ी आई सबसे दाता तिल ना कमाई पर पुरतार रहा ने केवल गुप्त प्रगट सब ठाई है। क्या साला ही अगम अपार साचे सिर जनहार मुरार जिसनो नदर करे तिस मेले मेल मिले मेल आई है। ब्रह्मा विष्ण महेश द्वार उबे सेवे अलख अपार होर केती दर्दी से बिललांदी मैं गणत ना वै काई है। साची कीरत साची बाणी होर नदी से वेद पुराणी पूंजी साच सच्चे गुण गावा मैं तर होर न काई है। जुग जुग साचा है भी होसी कौन न मुआ कौन न मरसी नानक नीच कहे बेनंती दर देखूं लिवलाई है। मारू महला पहला दूजी दुर्मत अन्नी बोली काम क्रोध की कच्ची चोली कारवार सहज न जाने छोहर दिन फिर नींद न पाई है। अंतर अगन जले पड़कारे मन मुख तक के कुंडाचारे बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाये साचे हाथ वडाई है। काम क्रोध अंकार निवारे सत्तर पंच शब्द संगारे ज्ञान खड़ग ले मन स्यों लूजे मन सामन है समाई है। माँ की रकत पिता बिंद तारा मूरत सूरत कर अपारा जोत दात जेती सब तेरी तू करता सब ठाई है। तुझ ही किया जमन मरना गुरते समझ पड़ी।

तावत राखे ठाक रहाया, कमल विगास हरे सर सुबर, आत्म राम सखाई है, मरण लिखाए मंडल में आए, क्यों रही है चलना पर थाए, सच्चा अमर सच्चे अमरापुर, सो सच मिले वडाई है, आप उपाया जगत सवाया, जिन सिरिया तिन तंदे लाया, सच्चे ऊपर

नाम सच्ची वड्याई साचे तखत वड़ाई है। सत युग सत संतोख शरीरा सत सत वरते गहर गंभीरा सच्चा साहिब सच परखे साचे हुक्म चलाई है। सत संतोखी सत गुर पूरा गुर का शब्द मने सो सूरा साची दरगे साच निवासा माने हुक्म रजाई है। सत युग साच कहे सब कोई सच वरते साचा सोई मन मुख साच परम पौ पंजन गुरमुख साच सखाई है। त्रेते धर्म कला इक चूकी तीन चरण इक दुबदा सूकी गुरमुख होवे सो साच वखाने मन मुख पचे अवाई है। मन मुख कदे न दरगे सीजे बिन शब्द क्यों अंतर रीजे बांदे आवे बांदे जावे सोजी।

कर्म कर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ शब्द सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त न होई, परपंच कर परमाई है। माया ममता चोदी न जाई, से छूटे सचकार कमाई, एनस भगत रते विचारी, ठाकुर स्यो बन आई है। एक जप तप कर कर तीर्थ नावे, जो तुद पावे तिवे चलावे, हठ निग्रह अब तीज ना पीजे, बिन हर गुर किन पत पाई है। कली काल में इक कल राखी, बिन गुर पूरे किन न पाखी, मन मुख कूड़ वरते वरतारा, बिन सतगुर परम न जाई है। सतगुर वे परवाव सिरंदा, ना जमकान ना छंदा बंदा, जो तिस सेवे सो अविनाशी, ना तिस काल संताई है। गुर में आप रखिया करता रे, गुरमुख कोट असंख उधारे, सर्व दिया जग जीवन दाता, निरपव मैल न काई है। सगले जाते गुर पंडारी, आप निरंजन अलखा पारी, नानक साच कह प्रभ जाते, मैं दीजे साच रजाई है। मारू महला पहला, साचे मेले शब्द मिलाए, जात पाना सहज समाए, त्रिभुवन ज्योत तरी पर।

जाती लिव गुरमत जाती मनमुख सोए रहे से लूटे गुरमुख साबत पाई है कूड़े आवे कूड़े जावे कूड़े राती कूड़ कमावे शब्द मिले से दरगे पैदे गुरमुख सुरत समाई है कूड़ मुठी ठगी ठगवाड़ी ज्यो वाड़ी ओजार उजाड़ी नाम बिना किस साधना लागे हर बिथरे दुख पाई है भोजन साच मिले।

परब न जाए। पच पच मुए अचेत न चेते, अजगर पार लदाई है, बिन बात विरोध है कोई नाही, मैं दिखा लियो तिस्ता लाही, मन तन अर्पुमी।

वड्डी वड्याई बेपरवाहे, आप उपाय दान समाहे, आप दयाल दूर नहीं दाता, मिलिया सहज रजाए है। एक सोगी एक रोग व्यापे, जो किछ करे सो आपे आपे, भगत पाओ गुर की मत पूरी, अनहद शब्द लखाई है। एक नांगे भूखे पवे पवाए, एक हट कर मरे ना कीमत पाए, गत अवगत की सार न जाने, बूझे शब्द कमाए है। एक तीरथ नावे अन न खावे, एक अगन जलावे देह खपावे, राम नाम बिन मुक्त न होई, किन विद पार लंगाई है। गुरमत छोड़े उजड़ जाई, मन मुख राम न जपे आवाई, पच पच बूढ़े कूड़ कमावे, कूड़ काल बैराई है। हुक्मे आवे हुक्मे जावे, बूझे हुक्म सोसाज कमावे, नानक साच मिले मन पावे, गुरमुख कार कमाई है। मारू मैला पहला, आपे करता पुरख विदाता, जिन आपे आप उपाय पछाता, आपे सतगुर आपे सेवक, आपे श्रेष्ठ उपाई है। आपे नेड़े नाही दूरे, बूझे गुरमुख से जन पूरे, तिनकी संगत एहन सलाहा, गुर संगत ये वडाई है। जुग जुग संत पले प्रव तेरे, हर गुण गावे रसन रसेरे, उस्तत करें पर हर दुख दालद, जिन नाही चिंत पराई है। ओए जागत रहे न सूते दिसे, संगत कुल तारे साच परिसे, कलमल मैल नाही ते निर्मल, ओए रहे भगत लिवलाई है। बूजो हर जन सतगुर बाणी, यह जो बन सात है देह पुराणी, आज काल मर जाइए प्राणी, हर जप जप हृदय ते आई है। छोड़ो प्राणी कूड़ कबाड़ा, कूड़ मारे काल उछाहारा, साकत कूड़ पचे मन हो मैं, दोहो मार्ग पचे पचाई है। छोड़ो निंदा तात पर आई, पर पर दज्जे सांत नाई, मिल सत्संगत नाम सलाहो, आत्म राम सखाई है। छोड़ो काम क्रोध बुरे आई, हों मैं तंद छोड़ो लंपटाई, सतगुर शरण परो ता उबरो, क्यों तरिये पवजल पाई है। आगे बिमल नदी अगन बिखतेला, तिथे अवर न कोई जियो इकेला, पर अगन सागर दे

साच पछाणो अंदर, दूर नाही देखो करन अंदर, विघन नाही गुरमुख तरकारी, क्यों पव जल पार लंगाई है, देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी, ना जियो मरे न मारिया जाई, कर देखे शब्द रजाई है, ओ निर्मल है नाही अंधियारा, ओ आपे तख्त बह सचियारा, साकत कूड़े बंद पवाई है, मर जन में आई जाई है, गुर के सेवक सतगुर प्यारे, कोई बैसे तक सो शब्द विचारे, तत् लहे अंतर्गत जाने, सत्संगत साथ वडाई है, आप तरे जन पितरा तारे, संगत मुक्त सो पार उतारे, नानक तिस का लाला गोला, जिन गुरमुख हर लिवलाई है, मारू मैला पहला, केते जुग वरते गुबारे, ताड़ी लाई अपर अपारे, तुंदू कार निरालम बैठा, ना तद तंद पसारा है, जुग छत्ती तिने वरताए, ज्यों तिस पाना तिवे चलाए, तिसे सरीक ना दीसे कोई, आपे अपर अपारा है, गुप्ते बूजो जुग तत्वारे, कट कट वरते उदर मजारे, जुग जुग एका एकी वरते, कोई बूजे गुर विचारा है, बिंद रक्त मिल पिंड सरिया, कौन पानी अग्नि मिल गिया, आपे चोज करे रंग महली, होर माया मोह पसारा है, गर्भ कुंडल में उर्द त्यानी, आपे जाने अंतर जामी, सास सास सच नाम समाले, अंतर उदर मजारा है, चार पदार्थ ले जग आया, शिव शक्ति करवासा पाया, एक विसारे ता पिढ़हारे, अंदले नाम विसारा है, बालक मरे

काली हुफुन तौले आए विणनावे घत गया गवाए दुर्मत अंधला बिनस बिनासे मूठे रोए पुकारा है आप विचार न रोवे कोई सतगुर मिले ता सोजी होई बिन गुर बजर कपाट न कूले शब्द मिले निस्तारा है बिरद पया तन खीजे देही राम न जपई अंत स्नेही नाम विसार चले मुँह काले दरगे झूठ खुआरा है नाम विसार चले कूड़ियारो आवत जात पड़े सिर छारो सौरड़े कर वास न पाए पेयड़े सिर मारा है खाजे पैजे रली करीजे।

पछाने गुर के संग शब्द कर जाने किसी मंदा आँख न चले सच थरा सच आरा है साच बिना दर्श जय न कोई आज शब्द कह जय पत होई आपे बख्श ले तिस पावे हों मैं गर्भ निवारा है गुर कृपा ते हुकम पछाने जुगे जुगंतर की विद जाने नानक नाम जपो तर तारी सच तारे तारण हारा है मारू मैला पहला हरसा मीत नाही मैं कोई जिन तन मन दिया सुरत समोई सर्व जिया प्रतपाल संभाले सो अंतर दाना बीना है गुर सरवर हम हंस प्यारे सागर में रतन लाल बहु सारे मोती मानक हीरा हर जक दावत मन तन पीना है हर अगम अगाओ अगाद निराला हर अंत न पाये गुर गोपाला सतगुर मत तारे तारण हारा मेल ले रंग लीना है सतगुर बाजो मुक्त किने ही ओ आद जुगादि राम स्नेही दरगे मुक्त करे कर कृपा बक्से अवगुण की नाहे सतगुरु दाता मुक्त कराए सब रोग गवाए अमृत रख पाए जम जागात नाही कर लागे।

श्रेष्ठ उपाय रह प्रभ छाजे, पौन पानी बैसंतर गाजे, मनुआ डोले दूत संगत मिल, सो पाए जो किछ की नाहे, नाम विसार दोख दुख सही है, हुकुम पया चलना क्यों रही है, नरक कूप में गोते खावे, जो जलते बाहर मीना है, 84 नरक साकत पोगाये, जैसा की तै तैसो पाये, सतगुर बाजो मुक्त न होई, केत बांदा ग्रफ दीना है, खंडे तार गली अत पीड़ी, लेखा ली जै तिल जो पीड़ी, मात पिता कलत्र फुत बेली नाही, बिन हर रस मुक्त न कीना है, मीत सके केते जग माही, बिन गुर परमेश्वर कोई नाही, गुर की सेवा मुक्त

हर हर नाम वखर ले चलो, दर्शन पावो सहज महलो। गुरमुख खोज लहे जन पूरे, क्यों समदर्शी की नाहे। प्रभ बेअंत गुरमुख को पावे, गुर कै शब्द मन को समझावे। सतगुर की बाणी सत सत कर मानो।

असुर संहारण राम हमारा, कट कट रमैया राम प्यारा, नाले अलख ना लखिए मूले, गुरुमुख लिख विचारा है। गुरुमुख साधु शरण तुम्हारी, कर कृपा सब पार उतारी, अगन पानी सागर अत गहरा, गुरु सतगुरु पार उतारा है। मन मुख अंगले सो जी नाही, आवे जाहे मरे मर जाही, पूरब लिखिया लेख ना मिटे, जमदर अंध खुआ।

भूख कनेरे नरक पचे अज्ञान अंधेरे कर्म राय की बाकी लीजे जिन हर का नाम विसारा है सूरज तपे अगन बिख चाला अपत पशु मन मुख बेताला आशा मनसा कूर कमावे रोग बुरा बुरे आ रहा है मस्तक पार कलर सिर पारा क्यों कर पव जल लंगस पारा सतगुरु बोहित आप जुगादी राम नाम निस्तारा है पुत्र कलत्र जग हेत प्यारा माया मोह पसरिया पासारा जम के फाहे सतगुर तोड़े गुरमुख तत् विचारा है कूड़ मुठी चाले बहुराही मन मुखदा जय पर पाही अमृत नाम गुरु वरदाना नाम जपो सुख सारा है सत गुर तुठा थच दृढ़ाए सब दुख मेटे मार्ग पाए कंडा पाए ना गडई मूले जिस सतगुर राखन हारा है खेहू खेर ले तन छीजे मन मुख पाखर सैल न पीजे करण पलाव करे बहु तेरे नरक सुर्ग अवतार।

कूकर सूकर कहिए कूड़ियारा, पौ के मरे पौ पौ पौ हारा, मन तन चूठे कूड़ कमावे, दुर्मत दरगे हारा है, सतगुर मिले तमनुआ टेके, राम नाम दे शरण परे के, हर तन नाम अमोलक देवे, हर जप दरगे प्यारा है।

नानक हर जप हर मन मेरे, हर मेले मिलन हारा है, मारू मैला पैला कर रहो रे मन मुग्ध याने, राम जपो अंतरगत प्याने, लालच छोड़ रचो अपरंपर, क्यों पावो मुक्त द्वारा है, जिस बिसरे जम जोहन लागे, सब सुख जाहे दुखा फुन आगे, राम नाम जप गुरमुख जीड़े, एहो परम तत्व विचारा है, हर हर नाम जपो रस मीठा, गुरमुख हर रस अंतर डीठा, ऐनत राम रहो रंग राते, यो जप तप संजम सारा है, राम नाम गुरु बचनी बोलो, संत सभा में ए रस टोलो, गुरमत खोज लहो कर अपना, बौड़ना गर्भ मजारा है, सच तीरथ नावो हर गुण गावो, तत विचारो हर लिवलावो, अंत काल जम जोहे न साके, हर बोलो राम प्यारा है, सत गुर पुरख दाता वरदाना, जिस अंतर साच सो शब्द समाना, जिसको सतगुर मेल मिलाए, तिस चूका जम पै पारा है, पंच तत् मिल काया कीनी, तिस में राम रतन ले चीनी, आत्म राम राम है आत्म, हर पाये शब्द विचारा है, सत संतोख रहो जन पाई, खिमा गहो सतगुर शरणाई, आत्म चीन पर आत्म चीनो, गुर संगत क्यों निस्तारा है, साकत पूर कपट महते का, हैनत निंदा करे अनेका, बिन सिमरन आवे फुन जावे, गर्भ जोनी नरक मजारा है, साकत जम की कान न चूके, जम का दंड न कबहू मुके, बाकी तर्म राय की लीजे, सिर अफरियो पार अफारा है, बिन गुर साकत कहो को तरिया, हो मैं करता पव जल परिया, बिन गुर पार न पावे कोई, हर जपिये पार उतारा है, गुर की दात न मेटे कोई, जिस बख्शे तिस तारे सोई, जन्म मरण दुख नेड़ न आवे, मन सो प्रभ अपर अपारा है, गुर ते पूले आवो जावो, जन्म मरो फुन पाप कमावो, साकत मूर अचेत न चेते, दुख लागे ता राम पुकारा है, सुख दुख पूर्व जन्म के किए, सो जाने जिन दाते दिए, किसको दोष दे तू प्राणी, सो अपना किया करारा है, हो मैं ममता करदा आया, आसा मनसा बंद चलाया, मेरी मेरी कर्त क्या ले चाले, बिखला दे चार बिकारा है, हर की पगत करो जन पाई, अकथ कथो मन मने समाई, उठ चलता ठाक रखो कर अपने, दुख काटे काटन हारा है, हर गुर पूरे की ओट पराती, गुरमुख हर लिव गुरमुख जाती, नानक राम नाम।

तू समरथ दयाल मुरारी, तेरे चोज न जाने कोई, तू पूरा पुरख विदाता है, तू आद जुगाद करें प्रतपाला, कट कट रूप अनूप दयाला, ज्यों तुद पावे तिवे चलावे, सब तेरो किया कमाता है, अंतर ज्योत पली जग जीवन, सब कट पो गए हर रस पीवन, आपे ले वे आपे दे वे, तिहो लोई जगत पित दाता है, जगत उपाय खेल।

आज काल पच जाता है। सतगुरु बाजना बेली कोई एथे उथे राखा प्रभु सोई, राम नाम देवे कर कृपा क्यों सलले सलल मिलाता है। फूले सिख गुरु समझाए उजड़ जांदे मार्ग पाए, जिस गुरु सेव सदा दिन राती दुख पंजन संग सखाता है। गुर की पगत करे क्या प्राणी, ब्रह्म इंद्र महेश न जाने। सतगुर अलख कहो क्यों लखिए, जिस बख्शे तिसे पछाता है। अंतर प्रेम परापत दर्शन, गुरबाणी स्यों प्रीत सो प्रसन। एनत निर्मल जोत सबाई, काट दीपक गुरमुख जाता है।

तिन कट कट अंतर ब्रह्म पहचाना। नानक हर जस हर जन की संगत दी जय। जिन सतगुरु हर प्रभ जाता है। मारू महला पहला साचे साहिब सिरजन हारे। जिन कर चतर करे विचारे आपे करता कर कर वे।

गुर पूरे विण मुक्त न होई, सच नाम जप लाहा है, पढ़े मन मुख पर विद नहीं जाना, नाम न बूझे परम पुलाना।

जिन गुरु पूरे तत न पाए सच सूचे सच रहा है। सब का लाहे सुन सुन आखे आपे दाना सच पराख है। जिनको नदर करे प्रभ अपनी गुरमुख सब चलाहा है। सुन सुन आखे कीर्ती बाणी सुन कहिए को अंत न जानी। जा को अलख लखाए आपे अकथ कथा बुधता है। जन्मे को वाजे वादाए सोह लड़े अज्ञानी गाए। जो जन्मे ते सर पर मरना तिरत पया सिर सहा है। संजोग विजोग मेरे प्रभ किए सृष्ट उपाय दुखा सुख दिए।

सच्चा वखर जिस तन पल्ले शब्द सच्चे ओ महा है। काती सौदी तोता आवे गुरमुख वणज करे प्रभ पावे पूंजी साबत रात सलामत यूका जम का फाहा है। सब को बोले आपन पाने मनमुख दूजे बोल न जाने अंधले की मत अंधली बोली आए गया दुख ताहा है। दुख में जन्मे दुख में मरना।

सारा डाल छोड़ तत्मूल पराता मन साचा ओ महा है। हर के लोग नहीं जम मारे ना दुख देखे पंथ करारे, राम नाम कथ अंतर पूजा और न दूजा कहा है, कोड़ न कथने सिफ सजा।

पीतर कोट गुफा कर जाए, नौ कर खापे हुक्म रजाए, दसवें पुरख अलेख अपारी, आपे अलख लखाएं दा, पौन पानी।

अर्थ उपाय तरी तरमशाला उत्पत परलो आप निराला पवने खेल किया सब थाई कला किंच टहाएदा तार अठारे मालन तेरी चौर तुले पवने ले फेरी चंद सूरज दो दीपक राखे सत कर सूर समाएदा पंखी पंच उडर नहीं तावे सफलियो बिरख अमृत फल पावे गुरमुख सहज रवे गुण गावे हर रस चोग चुगाएदा तिल मिल चिल के चंद न तारा सूरज किरण न बिजल गैनारा अकत्थी कथो चेन नहीं कोई पूर रहा मन पाएदा पसरी किरण जोत उजियाला कर कर देखे आप दयाला अनहद ऋण चुनकार सदा तुन निरपो के करवाएदा अनहद वाजे परम पौ पाजे सगल व्याप रहा प्रभ साजे सब तेरी तू गुरमुख जाता दरसो है गुण गाएदा आप निरंजन निर्मल सोई अवर न जाना दूजा कोई एक अंकार वसे मन पावे।

कर्म तर्म सच हाथ तुम्हारे, रे प्रवाह अखुट पंडारे, तू दयाल कृपाल सदा प्रभ, आपे मेल मिलाएंदा, आपे देख दिखावे आपे, आपे थाप उठापे आपे, आपे जोर विछोड़े करता, आपे मार जीवाएंदा, जेती है तेती तुद अंदर, देखें आप बैठ बिजमंदर, नानक साच कह।

जो किछ करे सो आपन पाणे, लख चौरासी जी उपाय पाणे सह लवाएंदा, जो तिस पावे सो नेचो होवे, मन मुख आप गनाए रोवे, नामो पुल्ला ठौर न पाए, आए जाए दुख पाएंदा, निर्मल काया उजल हंसा, तिस विच नाम निरंजन अंसा, सगले दुख अमृत कर पीवे, बहुर दुख न पाएंदा, बहु साधो दुख प्राप्त होवे, ओगो रोग सो अंत विगोवे, हरखो सोग न मिटई कभू, बिन पाणे परमाएंदा, ज्ञान विहूनी पवे सभाई, साचा रव रहा लिव लाई, निरपौ शब्द गुरु सच जाता, ज्योति ज्योत मिलाएंदा, अटल अडोल अतोल मुरारे, खिन में चाहे फिर उसारे, रूप न रेख्या मित नहीं कीमत, शब्द पेद पति आएंदा, हम दासन के दास प्यारे, साधक साच पले विचारे, मन्ने नाओ सोई जिन जासी, आपके साथ गिड़ाएंदा, पल्ले साच सचे सचियारा, साचे पावे शब्द प्यारा, त्रिभवन साच कला तर थापी, साचे ही पति आएंदा, वड्डा वड्डा आखे सब कोई, गुरु बिन सो जी किरे न होई, साच मिले सो साचे पाए, ना विछड़ दुख पाएंदा, कुरु विचुन्ने ताही रुन्ने, मर मर जन में मोहलत पुन्ने, जिस बख्शे तिस दे वड्याई, मेल न पछोताएंदा, आपे करता आपे पुगता, आपे तृप्ता आपे मुक्ता, आपे मुक्त दान मुक्ति सर।

तुझसे उपजे तुझ माए समावे नानक साच कह बेनंती मिल साचे सुख पाएंदा मारू महला पहला अरबद नरबद तुंदू कारा तरन ना गगना हुक्म अपारा ना दिन रैन ना चंद ना सूरज सुन समाद लगाएंदा खानी ना बाणी पौन ना पानी ओ पत खपत ना आवन जानी खंड पताल सपत नहीं सागर नदी ना नीर वहाएंदा ना तद सुरग मच पयाला दोजक पेत नहीं।

नहीं जात ना जन्मा ना सो दुख सुख पाएगा ना तद जति सती बनवासी ना तद सिद्ध साधक सुखवासी योगी जंगम पेख ना कोई ना को नाश कहाएगा जप तप संयम ना व्रत पूजा ना को आख वखाने दूजा आपे आप उपाय विगसे आपे कीमत पाएगा ना सुच संजम तुलसी माला गोपी कान न गौ गुआला संत मंत पखंड न कोई ना को वंश बजाएदा कर्म तर्म नहीं माया माखी जात जन्म नहीं दिसे आखी ममता जाल काल नहीं माथे ना को किसे त्याएदा निंद बिंद नहीं जियो न जिंदो ना तद गोरख ना माचिंदो ना तद ज्ञान ध्यान कुल ओपत ना को गणत गणाएदा वर्ण पेख नहीं ब्राह्मण खत्री देव ना देहोरा।

ना को शेख मसाए कहा जी रैयत राव ना हो मैं दुनिया ना को कहन कहाएंदा पाओ ना पगती ना शिव शक्ति साजन मीत बिंद नहीं रखती आपे साओ आपे वनजारा साचे एवो पाएंदा वेद कतेब ना सिमरत शास्त्र पाठ पुराण उदय नहीं आस्त कहता बक्ता आप अगोचर आपे अलख लखाएंदा जात पाना ता जगत उपाया बाज कला आदान रहाया ब्रह्मा विष्णु महेश उपाए माया मोह वधाएंदा विरले को गुर शब्द सुनाया कर कर देखे हुक्म सवाया खंड ब्रह्मंड पता

नानक साच रते बिस्मादी। बिस्म पए गुण गाएंदा मारू मैला पहला, आपे आप उपाय निराला, साचा थान कियो दयाला। कौन पानी अग्नि का बंधन काया, कोट रचाएंदा नौ कर खापे खापन हार है। दसवें वासा अलख अपार है, सायर सप्त परे जल निर्मल, गुरमुख मैल न लाएंदा। रब सच दीपक जोत सबाई, आपे कर वेखे वडियाई। जोत स्वरूप सदा सुखदाता, सच्चे शोभा पाएंदा। गर मह हाट पटन वापा।

पूरे पंडार है, सर्व कला ले आपे रहया गुरमुख किसे बुझाएंदा। नदर करे पूरा गुर पेटे, जम जम धार न मारे फेटे, जो जल अंतर कमल बिगासी आपे बिरसते आएंदा। आपे वर्ख अमृत तारा, रतन जवेहर लाल अपारा, सतगुर मिले ता पूरा।

पूरा सतगुरु हृदय मिलाए। गुरमुख होए सो हुकम पछाणे, माने हुकम समाए दा। हुक्मे आया हुक्म समाया, हुक्मे दीसे जगत उपाया। हुक्मे सुर्ग मच्छ पयाला, हुक्मे कला रहाए दा। हुक्मे तरती तौल सिर पारंग, हुक्मे पौन पानी गैणारंग। हुक्मे शिव शक्ति करवासा, हुक्मे खेल खिलाए दा। हुक्मे आडाने आगासी, हुक्मे जल फल त्रिभुवन वासी। हुक्मे सास गिरा सदा फुन, हुक्मे देख दिखाए दा। हुक्म उपाए दस अवतारा, देव दानव अगणत अपारा। माने हुक्म सो दरगह पै जाए, साथ मिलाए समाए दा। हुक्मे जुग शक्ति गुदारे, हुक्मे सिद्ध साधक विचारे। आप नाथ नथी सब जाकी, बख्शे मुक्त कराए दा। काया कोट करे मैं राजा, नेब खवास पला दरवाजा। मिथ्या लोभ नाही करवासा, लब पाप पछताए दा। सत संतोख नगर में कारी, जत सत संयम शरण मुरारी। नानक सहज मिले जग जीवन, गुर शब्दी पत पाए दा। मारू महला पहला, सुन कला अपरंपर तारी। आप निरालम अपर अपारी, आपे कुदरत कर कर देखे। सुनो सुन उपाए दा, कौन पानी सुने के साजे। सृष्ट उपाय काया गढ़ राजे, अगन पानी जियो जोत कुमारी। सुनने कला रहाए दा, सुनो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय। सुनने वर्ते जुग सवाए, इस पद विचारे सो जन पूरा। इस मिलिए परम चुकाए दा, सुनो सपत सरोवर खापे। जिन साजे विचारे आपे, तित सत्सर मनुआ गुरमुख नावे। फिर बहुत जोन ना पाए दा, सुनो चंद सूरज गैनारे। किसकी ज्योत त्रिभुवन सारे, सुनने अलख अपार निरालम। सुनने ताड़ी लाएंदा, सुनो तरत आकाश उपाए। जिन थम्मा राखे सच काल पाए, त्रिभुवन साज में खुली माया। आप उपाय खपाएंदा, सुनो खाणी सुनो बाणी। सुनो उपजी सुन समाणी, कुछ कुछ चलत किया सिर करते। विस्माद शब्द देखाएंदा, सुनो रात दिन सदोए किए। ओ पत खपत सुखा दुख दिए, सुख दुख ही ते अमर अतीता। गुरमुख निज कर पाएंदा, साम वेद ऋग जुजर असर बन। ब्रह्मे मुख माया है त्रै गुण, ताकी कीमत कह न सके को। त्यों बोले ज्यों बोलाएंदा, सुनो सपत पताल उपाय। सुनो पवन रखे लिवलाए, आपे कारण किया परंपर। सब तेरो किया कमाएंदा, राज तम सत कल तेरी छाया। जन्म मरण हो मैं दुख पाया, जिसनो कृपा करे हर गुरमुख। गुण

गुरमुख समझे रोग न होई, हे गुर की पौड़ी जाने जन कोई, जुगे जुगंतर मुक्त परायण, सो मुक्त पया पत पाएंदा, पंच तत् सुनो परिघासा, दे संजोगी कर्म अभ्यासा, बुरा पला दोई मस्तक लीखे, पाप पुन भी जाएंदा, उत्तम सतगुरु पुरख निराले, शब्द रते हर रसमत वाले, रिद्ध बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाये, पूरे पाग मिलाएंदा, इस मन माया को निहो

अंदर जुगत समाई रहो निरालम राया। जग तिस की छाया जिस बाप न माया, ना तिस पैन ना प्राओ कमाया। ना तिस ओपत खपत पुल जाती, ओ अजरावर मन पाया। तू अकाल पुरख नाही सिर काला, तू पुरख अलेख अगम निराला। सत संतोख शब्द अतीतल सहज पाए निवलाया। त्रैवरताए चौथे करवासा, काल विकाल किए इक द्रासा। निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन, गुर अनहद शब्द दिखाया। उत्तम जन संत पले हर प्यारे, हर रस माते पार उतारे। नानक रेण संत जन संगत।

आत्म राम पाए सुखतिया, कर्म करतूत अमृत फल लागा, हर नाम रतन मन पाया, ना किस भूख प्यास मन मान्या, सर्व निरंजन कट कट जान्या, अमृत रस राता केवल बैरागी, गुरमत पाए सुवाया, अध्यात्म कर्म करे दिन राती, निर्मल ज्योत निरंतर जाती, सब दिर साल रसन रस रसना, बेन रसाल बजाया, बेन रसाल बजावे सोई, जाकी त्रिभुवन सोजी होई, नानक बूजो ए विद गुरमत, हर राम नाम लिवलाया, ऐसे जन विरले संसारे, गुर शब्द विचारे रहे निरारे, आप तरह संगत कुल तारे, तिन सफल जन्म जग आया।

सच्चे महल निवास निरंतर हावण जान चुकाया। नामन चले न पौन उड़ावे जोगी शब्द अनाहद वावे पंच शब्द चुनकार निरालम।

दुख पै पंजन प्रभ अविनाशी, रोग कटे साथी जम फासी, नानक हर प्रभ सो पो पंजन, गुर मिले हर प्रभ पाया, काले कवल निरंजन जाने, बूझे कर्म सो शब्द पछाने, आपे जाने आप पछाने, सब किसका चोज सवाया, आपे साव आपे वनजारा, आपे परखे परखनहारा, आपे कस कस वट्टी लाए, आपे कीमत पाया, आप दयाल दया प्रवतारी, कट कट रव रहा बनवारी, पुरख अतीत वसैने केवल, गुरु पुरख है पुरख मिलाया, प्रभ दाना बीना गर्भ गवाए, दूजा मेटे एक दिखाए, आशा माए निरालम जोनी, अकुल निरंजन गाया, हों में मेट शब्द सुख होई, आप विचारे ज्ञानी सोई, नानक हर जस हर गुण लाहा, सत्संगत सच फल पाया, मारू मैला पहला, सच कहो सच कर रहना, जीवत मरो पव जल जग तरना, गुर बोहित गुर बेड़ी तुल्हा, मन हर जप पार लंगाया, हों मैं ममता लोभ विनाशन, नौ दर मुक्ते दसवें आसन, ऊपर परे परे अपरंपर, जिन आपे आप उपाया, गुरमत ले वो हर लिव तरिये, अकल गाए जमते क्या डरिये, जत जत देखो तत तत तुम ही, और ना दुतिया गाया, सच हर नाम सच है सरना, सच गुर शब्द जिते लग तरना, अकत कठ है देख है अपरंपर, उन गर्व ना जो नी जाया, सच बिन सत संतोख ना पावे, बिन गुरु मुक्त ना आवे जावे, मूल मंत्र हर नाम रसायन, कहो नानक पूरा पाया, सच बिन पाव जल जाए न तरिया, एहो समुंद अथा मां बिक परिया, रह अतीत गुरमतले ऊपर, हर निरपो कै कर पाया, झूठी जग हित की चतराई, बिलम न लागे आवे जाई, नाम विसार चले अभिमानी, उपजे बिन खपाया, उपजे बिन से बंधन बंदे, हों मैं माया के गल फंदे, जिस राम नाम नाही मत गुरमत, सो जमपुर बंद चलाया, गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाये, बिन गुर राम नाम क्यों त्याये, गुरमत लेहो तरो पवज उतर, मुक्त पहे सुख पाया, गुरमत कृष्ण गोवर्धन तारे, गुरमत सायर पाहन तारे, गुरमत लेहो परम पद पाये, नानक गुर परम चुकाया, गुरमत लेहो तरो सच तारी, आत्म चीनो हृदय मुरारी, जम के साहे काटे हर जप अकल निरंजन पाया, गुरमत पंच सखे गुर पाई, गुरमत अगन निवार समाई, मनमुख नाम जपो जग जीवन, हृदय अंतर अलख लखाया, गुरमुख बूझे शब्द पति जय, उस्तत निंदा किसकी की जय, चीनो आप जपो जगदीशर, हर जगन्नाथ मन पाया, जो ब्रह्मंड खंड सो जानो, गुरमुख बूझो शब्द पछाणो, कट कट पोगे पोगन हारा, रह अतीत सवाया, गुरमत बोलो हर जस सूचा, गुरमत आखी देखो ऊचा, श्रवणी नाम सुने हर बाणी, नानक हर रंग रंगाया, मारू मेला पहला, काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ सज हो निचिंदा, क्रम का संगल तोड़ निराला, हर अंतर हर रस पाया, नित दामन जो चमक चंदायन देखे, एनस ज्योत निरंतर देखे, आनंद रूप अनूप स्वरूपा, गुरपूरे देखाया, सतगुर मिलो आपे प्रवतारे, सत्कर सूर दीपक गैनारे, देख अदिष्ट रहो लिव लागी, सब त्रिभवन ब्रह्म सवाया, अमृत रस पाए तृष्णा पाओ जाए, अनपौ पद पावे आप गवाए, ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा, निर्मल शब्द कमाया, अदृष्ट अगोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक को जुग जुग हर जस दीजे, हर जपिए अंत न पाया, अंतर नाम प्राप्त हीरा, हर जपते मन मन से तीरा, दुकट कट पौ पंजन पाई है, बाहर जन्म न जाया, भगत हेत गुर सब तरंगा, हर जस नाम पदार्थ मंगा,
हर पावे गुर मेल मिलाए हर तारे जगत सवाया जिन जप जपियो सतगुर मतवा के जम कंकर काल सेवक पगता के उत्तम संगत गत मित उत्तम जग पौजल पार कराया ए पौजल जगत शब्द गुर तरिये अंतर की दुबदा अंतर जरिये पंच बाण ले जम को मारे गगन अंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाये शब्द सुरत बिन आये जाये नानक गुरमुख मुक्त परायण हर पूरे पाग मिलाया निरपौ सतगुर है रखवाला भगत परापत गुरु गोपाला सुन आनंद अनाहद वाजे गुरु शब्द निरंजन पाया निरपौ सो सिर नाही लेखा आप अलेख कुदरत है देखा आप अतीत अजोनी संभो नानक गुरमत सो पाया अंतर की जब सतगुर जाने सो निरपौ गुर शब्द पछाने अंतर देख निरंतर बूझे अंत न मन डोलाया निरपौ सो अब अंतर वसया एनस नाम निरंजन रसिया नानक हर जब संगत पाये हर सहजे सहज मिलाया अंतर बाहर सो प्रभु जाने रह अलिप्त चलते कर आने ऊपर आद सर्ब तिह लोई सच नानक अमृत रस पाया मारू मैला पहला कुदरत करने हार अपारा जीते का नाही क्यों चारा जी उपाय रिजक दे आपे सिर सिर हुक्म चलाए रहा पर पूरे किस नेड़े किस आखां दूरे गुप्त प्रगट हर कट कट देखो वर्ते काक सबाया जिसको मेले सुर समाए गुर शब्दी हर नाम से आए अनद रूप अनूप अगोचर गुर मिले परम जाया मन तन तन से नाम प्यारा संत सखाई चलन वारा मोह पसार नहीं संग बेली बिन हर गुर किन सुख पाया जिसको नदर करे गुर पूरा शब्द मिलाए गुरमत सूरा नानक गुर के चरण सरेवो जिन पूला मार्ग पाया संत जना हर तन जस प्यारा गुरमत पाया नाम तुम्हारा जाचक सेव करे दर हर के हर दर गै जस गाया सतगुर मिले ता महल बुलाए साची दर गै गत पत पाए साकत ठोर नाई हर मंदर जन्म मरे दुख पाया सेवो सतगुर समुंद अथाहा पावो नाम रतन तन लाहा विख्या मल जाए अमृत सरनावो गुर सर संतोख पाया सतगुर से वो संत न की जय आशा माहे निराश रही जय संसा दुख बिना सन से वो फिर बहुर रोग न लाया साचे पावे तिस वडी आए कौन सो दूजा तिस समझाए हर गुर मूरत एकावर्त है नानक हर गुर पाया वाचे पुस्तक वेद पुराना इक बह सुने सुनावे काना अजदर कपट कहो क्यों खुले बिन सतगुर तत न पाया करे विपूत लगावे पस में अंतर क्रोध चंडाल सोहो में पखंड की ने जोग न पाये बिन सतगुर अलख न पाया तीरथ वर्त नेम करे उद्याना जत सत संजम कथे ज्ञाना राम नाम बिन क्यों सुख पाये बिन सतगुरु परम न जाया न्योली करम प्रियंगम पाठी रेचक कुंभक पूरक मनहाठी पाखंड तरम प्रीत

गुर सतगुर अलख लखाया मारू सोले मैला तीजा इको ओंकार सतगुर प्रसाद। हुकमी सहजे त्रिस्त उपाय कर कर वेखे अपनी वड्याई आपे करे कराए आपे हुक्मे रहा समाई है माया मोह जगत गुबारा गुरमुख बूझे को विचारा आपे नजर करे सो पाए आपे मेल मिलाई है आपे मेले देवड्याई गुर प्रसादी कीमत पाई मनमुख बहुत फिर दिलला दी दूजे पाए खुआई है हौ मैं माया विचे पाई मनमुख पूले पत गवाई गुरमुख होवे सो नाए राचे साचे रहा समाई है गुर ते ज्ञान नाम रतन पाया मन सामार मन माहे समाया आपे खेल करे सब करता आपे दे बुझाई है सतगुर सेवे आप गवाए मिल प्रीतम शब्द सुख पाए अंतर प्यार पगती राता सहज मते बन आई है दुख निवारण गुर से जाता आप मिलिया जग जीवन दाता जिसनो लाए सोई बूझे पौ परम शरीरों जाई है आपसे गुरुमुख।

चले संसारा, जल जल खपे बहुत विकारा, मन मुख थोर न पाए कबहू, सतगुर बूझ बुझाई है, सतगुर सेवन सेवन पागी, साचे नाम सदा लिव लागी, अंतर नाम रव्याने केवल, कृष्णा शब्द बुझाई है, सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख विरले किने पछानी, सच्चे शब्द रते बैरागी, आवन जान रहाई है, शब्द बुझे सो मैल चुकाए, निर्मल नाम वसे मन आए, सतगुर अपना सभी सेवे, हों मैं विच्चों जाई है, गुर ते बुझे तांदर सूझे, नाम विहूणा कत्कत लूझे, सतगुर सेवे की वडियाई, कृष्णा फूक गवाई है, आपे आप मिले ता बुझे, ज्ञान विहूणा किछु न सूझे, गुर की दात सदा मन अंतर, वाणी शब्द बजाई है, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया, कोई न मेटे तुर फुरमाया, सत्संगत में तिन ही वासा, जिनको तुर लिख पाई है, अपनी नजर करे

नानक दास कहे बेनंती, पीठिया नाम दर पाई है मारू महला तीजा, एको एक वरतै सब सोई, गुरमुख किरला बूझै कोई, एको रव रहा सब अंतर, तिस दिन अवर न कोई है, लख चौरासी जी उपाय, ज्ञानी चानी आज सुनाए, सबना रिजक समाए आपे, कीमत होर न होई है, माया मोह अंध अंधारा, हौं मैं मेरा पसरिया पासारा, अंधिन जलत रहे दिन राती, गुरबिन शांत न होई है, आपे जोड़ विछोड़े आपे, आपे थाप उठापे आपे, सच्चा हुक्म सच्चा पासारा, होरन हुक्म ना होई है, आपे लाए ले सो लागे, गुर प्रसादी जम का पौ पागे, अंतर सबद सदा सुखदाता, गुरमुख बूझे कोई है, आपे मेले मेल मिलाए, पूर्व लिखिया को मेटना ना जाए, आम दिन भगत करे दिन राती, गुरमुख सेवा होई है, सतगुर सेव सदा सुख जाता, आपे आए मिलिया सबना।

जय अंग दिन नाम रवे दिन राती मिल प्रीतम सुख होई है मन मुक्तात दूजे है लागा जन्मत की नाम वो अपागा आवत जात बिरसा जन्म गवाया बिन गुरु मुक्त ना होई है काया कुसुद हो में मल लाई जे सोत होवे ता मैल ना जाई सब तोपे ता हच्छी होवे फिर मैली मूल ना होई है पंच दूत काया संगार है मर मर जम में शब्द ना विचार है अंतर माया मोह गुबारा जो सुपने शुद्ध ना होई है एक पंचा मार शब्द है लागे सतगुर आए मिलियावट पागे अंतर साथ रहे रंग राते सहज समावे सोई है गुर की चाल गुरु ते जापे पूरा सेवक शब्द जापे सदा शब्द रवे कट अंतर रसना रस चाखे सच सोई है हम मैं मारे शब्द निवारे हर का नाम रखे उधारे एक बिन हों होर ना जाना सहजे होए सो होई है बिन सतगुरु सहज किने नहीं पाया गुरमुख बूझे सत समाया सच्चा सेव शब्द सच राते हों मैं शब्दे खोई है आपे गुण

है। साची ती पत होई है मारू महला तीजा, जग जीवन साचा एको दाता। गुर सेवा से शब्द पछाता, एको अमर एका पत साही। जुग जुग सिरकार बनाई है सोजन निर्मल जिन आप पछाता। आपे आए मिलिया सुखदाता, रसना शब्द रसी गुण गावे। दर्शा चै पत पाई है गुरमुख नाम मिले वड्याई। मन मुख निंदक।

वह पाए सुभाए है। पर पंडित अवरा समझाए, पर जलते की खबर न पाए, बिन सतगुरु से वे नाम न पाई है, परखा के सांत न आई है। एक पसम लगाए फिर है पेक तारी, बिन शब्द हूँ मैं किन मारी, हम दिन जलत रहे दिन राती, परम पेक परमाई है। एक गृह कुटुम्ब में सदा उदासी, शब्द मोए हर नाम निवासी, हम दिन सदा रहे रंग राते, तह पाए भगत चित लाई है। मन मुख निंदा कर कर विगुता, अंतर लोग पहुंचे जिस कुत्ता, जम काल तिस कदे न छोड़े, अंत गया पछताई है। सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नाम मुक्त न पावे कोई, बिन सतगुरु को नाम न पाए, प्रभ ऐसी बंत बनाई है। एक सिद्ध साधिक बहुत विचारी, एक एनस नाम रते निरंकारी, जिसनो आप मिलाए सो बूझे, भगत पाए पहु जाई है। स्नान दान करे नहीं बूझे, एक मनुआ मार मने सो लूझे, साचे शब्द रते।

आपे सिरजे दे वड्याई, आपे पाणे दे मिलाई, आपे नदर करे मन वस्या, मेरे प्रभ क्यों फुरमाई है। सतगुर सेवे से जन साचे, मन मुख सेव न जानन काचे, आपे करता कर कर वेखे, ज्यों पावे त्यों लाई है। जुग जुग साचा एको दाता, पूरे पाग गुर शब्द पछाता, शब्द मिले से विछड़े नाही, नदरी सहज मिलाई है। हूँ मैं माया मैल कमाया, मर मर जम मैं दूजा पाया, बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई, मन देखो लिव लाई है।

दरसा तै पत पाई है मारू महला तीजा जो आया सो सबको जासी दूजे पाए बांदा जम फासी सतगुरु राखे से जन उभरे साचे साथ समाई है आपे करता कर कर वेख जिसनो नदर करे सोई जन लेख है गुरमुख ज्ञान से सब कि सूझे अज्ञानी अंध कमाई है मन मुख सहसा बूझ न पाई मर मर जम में जन्म गवाई गुरमुख नाम रते सुख पाया सहजे साज समाई है संदे तावत मन पया मनूरा सिर होवे कंचन पेटे गुरपूरा आपे बख्श ले सुख पाए पूरे शब्द मिलाई है दुर्मत झूठी बुरी बुरियार अवगणियारी अवगणियार कच्ची मत फीका मुख बोले दुर्मत नाम न पाई है अवगणियारी कंस न पावे मन की झूठी झूठ कमावे फिर का साओ न जाने मूरख बिन गुर बूझ न पाई है दुर्मत खोटी खोट कमावे सिगार करे फिर खत्म न पावे गुणवंती सदा पिर रावे सदगुरु मेल मिलाई है आपे हुक्म करे सब वेख है इकना बख्श ले तुर लेख है हम दिन नाम रते सच पाया आपे मेल मिलाई है हूँ मैं तात मुह रस लाई गुरमुख लिव साची सहज समाई आपे मेल है आपे कर वेख है बिन सतगुरु बूझ न पाई है एक शब्द विचार सदा जन जागे एक माया मोह सोए रहे अपागे आपे करे कराए आपे होर करना किछु न जाई है काल मार गुर शब्द निवारे हर का नाम रखे और धारे सतगुर सेवा ते सुख पाया हर के नाम समाई है दूजे पाए फिरे देवानी माया मोह दुख माए समानी बहुते पेक करे न पाए बिन सतगुर सुख न पाई है किसनो कहिए जा आप कराए जित पावे तित राह चलाए आपे मेहरवान सुखदाता ज्यो पावे तिह चलाई है आपे करता आपे पुगता आपे संजम आपे जुगता आपे निर्मल मेहरवान मधुसूदन जिसदा हुक्म ना मेटिया जाई है सेवड पागी जिन्नी एको जाता कट कट वस रहा जग जीवन दाता एक है गुप्त प्रगट है आपे गुरमुख परम पहु जाई है गुरमुख हर जियो एको जाता अंतर नाम शब्द पछाता जिस तू दे सोई जन पाए नानक नाम वडाई है मारू महला तीजा सत्साला ही गहर गंभीर है सब जग है तिस ही कहती रह सब कट भोग में सदा दिन राती आपे सुख निवासी है सच्चा साहिब सच्ची नाई गुरु प्रसादी मन वसाई आपे आए वस्या कट अंतर टूटी जम की फांसी है किस सेवी तै किस सलाही सतगुरु सेवी शब्द सलाही सच्चे शब्द सदा मत उत्तम अंतर कमल प्रगासी है देही काची कागद मिकदारा बूंद पवे बिन सह कहत ना लागे बारा कंचन काया गुरमुख बूझे जिस अंतर नाम निवासी है सच्चा चौका सुरत की कारा हर नाम पोजन सच आधारा सदा तृप्त पवित्र है पावन जित कट हर नाम निवासी है हों तिन बलिहारी जो साचे लागे हर गुण गावे अंदिन जागे साचा सुख सदा तिन अंतर रसना हर रस राशी है हर नाम चेता अवरना पूजा एको सेवी अवरना दूजा पूरे गुर सब सच दिखाया सच्चे नाम निवासी है परम परम जोनी फिर आया आप पूला जा खत्म पुलाया हर जियो मिले ता गुरमुख बूझे चीने शब्द अवनासी है काम क्रोध परे हम अपराधी क्या मुँह ले बोले ना हम गुण ना सेवा सादी डुबदे पाथर मेल ले हो तुम आपे साथ नाम अवनासी है ना कोई करे न करने जोगा आपे करे करावे तो होएगा आपे बख्श लें सुख पाए सभी नाम निवासी है
ਤੇ ਤਨ ਧਰਤੀ ਸਬਦ ਬੀਜ ਅਪਾਰਾ ਹਰ ਸਾਚੇ ਸੇਤੀ ਵਣਜ ਵਪਾਰਾ ਸਚ ਤਨ ਜਮਿਆ ਕੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਹਰ ਜਿਉ ਅਵਗਣਿਆਰੇ ਨੋ ਗੁਣ ਕੀ ਜੈ ਆਪੇ ਬਖਸ ਲੈ ਨਾਮ ਦੀ ਜੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪਟ ਪਾਏ ਇਕਤ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਅੰਤਰ ਹਰ ਤਨ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਤਨ ਪਾਏ ਸਦ ਹੀ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਅਨਲਵਾਓ ਪਰਮ ਪੁਲਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸੁਧ ਨਾ ਕਾਈ ਮਨਮੁਖ ਅੰਦੇ ਕਿਛੁ ਨਾ ਸੂਜੈ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸੀ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਸੂਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾ ਸੰਭਾਲੈ ਅੰਤ ਵਿਗੂਤੇ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਬਹੁ ਚਿੰਤਾ ਜਾ ਲੈ ਦੁਖੇ ਦੁਖ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਆਪੇ ਕਰਤੈ ਕਾਰ ਕਰਾਈ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਬੁਝਾਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ।

माया लहर शब्द निवारी, त्यो मन निर्मल हो मैं मारी, सहजे गुण गावे रंग राता, रसना राम रवि जय हे। मेरी मेरी करत विहानी, मन मुख ना बूझे फिर आनी, जम काल कड़ी मोत निहाले, अंदिन आर जा छी जय हे। अंतर लोभ करे नहीं बूझे, सिर ऊपर जम काल ना सूझे, ऐठे कमाना सो अग्गे आया, अंत काल क्या की जय हे। जो सच लागे

माया मोह मैल पतंग ना लागे, गुरमती हर नाम पी जाए, सब नाम विच वरतै इक सोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, हौं मैं मार सदा सुख पाया, नाए साचै अमृत पी जाए, किल विख दुख निवारण हारा, गुरमुख सेविया शब्द विचारा, सब किश आपे आप वरतै, गुरमुख तन मन पी जाए, माया अगन जले संसारे, गुरमुख निवारे शब्द विचारे, अंतर सांत सदा सुख पाया, गुरमति नाम ली जाए, इंद्र इंद्रासन बैठे जम का पौ पावे, जमना छोड़े बहु कर्म कमावे, सतगुरु पेटे ता मुक्त पाये, हर हर रसना पी जाए, मनमुख अंतर पगत न होई, गुरमुख पगत सांत सुख होई, पवित्र पावन सदा है बाणी, गुरमत अंतर पी जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश विचारी।

वेद पढ़े हर नाम न बूझे, माया कारण पर पढ़ लूजे, अंतर मैल अज्ञानी अंधा, क्यों कर दुत्तर तरी जय हे, वेद बाद सब आंख बखाने, ना अंतर पीजे ना शब्द पछाने, पुन पाप सब वेद दृढ़ाया, गुरुमुख अमृत पीजे हे, आपे साचा एको सोई, तिस बिन दूजा

सच्चे सच्चा सत रचाया, निज कर वस्या तिथे मोह न माया, सद ही सात वस्या कट अंतर, गुरमुख करनी सारी है। सच्चा सौदा सचवा पारा, ना तिथे परम न दूजा पसारा, सच्चा तन खटिया कदे तोत न आवे, बूझे को विचारी है। सच्चे लाए से जन लागे, अंतर शब्द मस्तक वड़ा।

पौड़ी ज्ञान रतन हूँ मैं मारी है माया मोह शब्द जलाया सच मन वस्या जा सुध पाया सच्चे की सब सच्ची करनी हूँ मैं सिखाने वारी है माया मोह सब आपे कीना गुरमुख विरले किन ही चीना गुरमुख वो वैसो सच कमावे साची करनी सारी है कार कमाई जो मेरे प्रभु पाई हूँ मैं तृष्णा शब्द बुझाई गुरमत सद ही अंतर शीतल हूँ मैं मार निवारी है सच लगे तिन सब किस पावे सच्चे शब्दे सच सुहावे ऐसे साचे से दर साचे नगरी नदर सवारी है बिन साचे जो दूजे लाया माया मोह दुख सवाया बिन गुर दुख सुख जाते नाही माया मोह दुख पारी है साचा शब्द जिना मन पाया पूरब लिखिया तिनी कमाया सच्चो सेवे सच त्यावे सच रते विचारी है गुर की सेवा मीठी लागी अंग दिन सुख सहज समाधि हर हर करत्या मन निर्मल होवा गुर की सेव प्यारी है से जन सुखिए सतगुर सच्चे लाए आपे पाने आप मिलाए सतगुर राखे से जन उभरे होर माया मोह खुआरी है गुरमुख साचा शब्द पछाता ना तिस कुटुंब ना तिस माता एको एक रविया सब अंतर सब ना जिया का आधारी है हूँ मैं मेरा दूजा पाया किछ ना चले तुर खत्म लिख पाया गुर साचे ते साच कमावे साचे दुख निवारी है जा तू देह सदा सुख पाए साचे सब दे साच कमाए अंदर साचा मन तन साचा।

तीजा आपे आप उपाय उपन्ना सब में वर्तै एक प्रसन्ना सबना सार करे जग जीवन जिन अपना आप पछाता है जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय फिर सिर संदे आपे लाए जिस पावे तिस आपे मेले जिन गुरुमुख एको जाता है आवा गौण है संसारा माया मोह बहुत चित विकारा फिर साचा साला ही सदही जिन गुर का शब्द पछाता है एक मूल लगे ओनी सुख पाया डाली लागे तिन्नी जन्म गवाया अमृत फल तिन जन को लागे जो बोले अमृत बाता है।

जा तुद पाना ता सच्ची कारे लाए अवगुण छोड़ गुण माए समाए गुण में एको निर्मल साचा गुर कह शब्द पछाता है जह देखा तह एको सोई दूजी दुर्मत सब देखोई एक स्ने प्रभ एक समाना अपने रंग सदराता है काया।

जो इच्छे सोई फल पाए, जो रंग मजी ठहराता है, मनमुख ज्ञान कते न होई, फिर आवे ठौर न कोई, गुरमुख ज्ञान सदा साला है, जुग जुग एक हो जाता है, मनमुख कार करे सब दुख सवाए, अंतर शब्द नाही क्यों डर जाए, गुरमुख शब्द वसे मन साचा, सद से वे सुख दाता है। जह देखा तू सबनी खाई, पूरे गुर सब को जी पाई, नामो नाम से आई है सदा सद, ये मन ना मेरा ता है, ना मेरा ता पवित्र शरीरा, बिन नामे डूब मोए बिन नीरा, आवे जावे नाम नहीं बूझे।

इतना गुरुमुख शब्द पछाता है, पूरे सतगुरु बूझ बुझाई, बिन नामे मुक्त किने ना पाई, नामे नाम मिले वड्याई, सहज रहे रंग राता है, काया नगर टह

दर साचे साच पछाता है मारु सो ले तीजा। आपे करता सब जिस करना जी जंक सब तेरी सरना। आपे गुप्त वर्त सब अंतर गुर कै शब्द पछाता है। हर के भगत परे पंडारा आपे।

माया मोह सब जगत उपाया, ब्रह्मा विष्णु देव सवाया, जो तुद पाने से नाम लागे, ज्ञान मती पछाता है, पाप पुनवर्ते संसारा, हर्ष शोक सब दुख है पारा, गुरुमुख हो वह सो सुख पाए, जिन गुरुमुख नाम पछाता है, कीर्तना कोई मेटन हारा, गुर कै शब्दे मोक्ष द्वारा, पूरब लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पछाता है, माया मोह हर क्यों चित न लागे, दूजे पाए कणा दुख आगे, मनमुख परम पुले पेख सारी, अंतकाल पछताता है, हर कै पाणे हर गुण गाए, सब किल विख काटे दुख सवाए, हर निर्मल निर्मल है बाणी, हर तेती मन गाता है, जिसनो नजर करे सो गुण निद गाए, हों मैं मेरा ठाक रहाए, गुण अवगुण काहे को दाता, गुरुमुख विरली जाता है, मेरा प्रभु निर्मल अत अपारा, आपे मेले गुर शब्द विचारा, आपे बक्से सच दृढ़ाए, मन तन साचे राता है, मन तन मेला विच जोत अपारा, गुरमत बूझे कर विचारा, हों मैं मार सदा मन निर्मल, रसना सेव सुख दाता है, गर काया अंदर बहु हट बजारा, तिस विच नाम है अत अपारा, गुर कै शब्द सदा दर्शो है, हों मैं मार पछाता है, रतन अमोलक अगम अपारा, कीमत कवन करे बेचारा, गुर कै शब्दे तोल तोलाए, अंतर शब्द पछाता है, सिमरत शास्त्र बहुत विस्तारा, माया मोह पसरिया पासारा, मूर्ख पढ़े शब्द ना बूझे, गुरमुख विरले जाता है, आपे करता करे कराए, सच्ची बाणी सच दृढ़ाए, नानक नाम मिले वड्याई, जुग जुग एको जाता है, मारू महला तीजा, को सच सेव्यो सृजन हारा, सबदे दुख निवारण हारा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, आपे अगम अथाहा है, आपे सच्चा सत वर्ताए, एक जन सच है आपे लाए, साचो सेवै साच कमावे, नामे सच समाहा है, तुर पगता मेले आप मिलाए, सच्ची पगती आपे लाए, साची बाणी सदा गुण गावे, इस जन्मे का लाहा है, गुरमुख वणज करें पर आप पछाणे, एक बिन को अवर न जाने, सच्चा साव सच्चे वन जारे, पूंजी नाम विसाहा है, आपे साजे सृष्ट उपाए, विरले को गुर शब्द बुझाए, सतगुर सेवे से जन साचे, काटे जम का फाहा है, पन्ने करे सवारे साजे, माया मोह दूजे जंत पाजे, मन मुख फिरे सदा अंध कमावे, जम का जेवड़ा गल फाहा है, आपे बख्शे गुर सेवा लाए, गुरमती नाम मन वसाए, अंदर नाम त्याए साचा, इस जग में नामो लाहा है, आपे सच्चा सच्ची नाई, गुरमुख देवे मन वसाए, जिन मन वस्या से जन सो है, तिन सिर चूका कहा है, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, गुर प्रसादी मन वसाए, सदा शब्द सलाही गुण दाता, लेखा कोई न मंगे ताहा है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र तिसकी सेवा, अंत न पावे अलख वेवा।

खबर चला है से जन निर्मल निज करवा सा ताहा है। सदा भगत तेरी शरण आई अगम अगोचर कीमत नहीं पाई ज्यों तुद पावे त्यों तू राखे गुरु।

सच देवो सच समाहा है मारू मैला तीजा। सतगुर सेवन सेवड पागी अंदिन साच नाम लिव लागी। सदा सुख दाता रव्या कट अंतर शब्द सच्चा ओ माहा है। नदर करे ता गुरु मिलाए हर का नाम मन वसाए। हर मन वस्या सदा सुख दाता सबदे मन ओ माहा है। कृपा करे ता मेल मिलाए हो मैं ममता शब्द जलाए। सदा मुक्त रहे इक रंगी नाही किसे नाल कहा है। बिन सतगुरु सेवे कोर अंधारा बिन शब्द कोई न पावे पारा। जो शब्द राते महा बैरागी सो सच शब्द लाहा है। दुख सुख करते तुर लिख पाया दूजा पाओ आप वर्ताया। गुरमुख होवे सो अलिप्तो वर्ते मन मुख का क्या बेसाहा है। से मन मुख जो शब्द ना पछाने गुर के तय की सार न जाने। तै बिन क्यों निरपो सच पाये जम काड लेगा सहा है। अफरियो जम मारिया ना जाई गुर के शब्दे नेड़ ना आई। शब्द सुने ता दूरों पागे मत मारे हर जियो वे परवाह है। हर जियो की है सब फिरकारा एहो जम क्या करे विचारा। हुक्मी बंदा हुक्म कमावे हुक्मे कटदा सहा है। गुरमुख साचे किया आकारा गुरमुख पसरिया सब पासारा। गुरमुख होवे सो सच बूझे शब्द सच्चे सुख ताहा है। गुरमुख जाता कर्म विधाता जुगचारे गुर शब्द पछाता। गुरमुख मरे ना जन्मे गुरमुख गुरमुख शब्द समाहा है। गुरमुख नाम शब्द साला है अगम अगोचर वे

है, गुरुमुख हो वह सो नाम बूझे, काटे दुर्मत साहा है, गुरुमुख उपजे साज समावे, ना मर जमे ना जूनी पावे, गुरुमुख सदा रहे रंग राते, अंदिन लें दे लाहा है, गुरुमुख भगत सोहे दरबारे, सच्ची बाणी सब सवारे, अंदिन गुण गावे दिन राती, सहज चेती कर जाहा है, सतगुरु।

लाबू जै कोई नानक जन नाम सलाहे, बिगसै सो नाम बेपरवाह है। मारू महला तीजा हर जियो सेवियो अगम अपारा, किसदा अंत न पाये पारा वारा। गुर प्रसाद रविया कट अंतर, तित कट मत अगाहा है। सब मैं वरतै एको सोई, गुर प्रसादी प्रगट होई। सबना प्रतपाल करे जग जीवन, दीनदार रिजक संभाहा है। पूरे सतगुर बूझ बुझाया, हुक्मे ही सब जगत उपाया। हुक्म मन्ने सोई सुख पाए, हुक्म सिर साहा पास साहा है। सच्चा सतगुर शब्द अपारा, तिस दे शब्द निस्तर है संसारा। आपे करता कर कर वेखे, देंदा फास गिराहा है। कोट मदे किसे बुझाए, गुर कै शब्द रते रंग लाए। हर साला है सदा सुखदाता, हर

पूरा साथ दृढ़ाए, सच्चे शब्द सदा गुण गाए, गुणदाता वर्ते सब अंतर, सिर सिर लिखदा साहा है, सदा हदूर गुरुमुख जाते, सब देशे वै सो जंत्रा पै, अन दिन सेवे सच्ची बाणी, शब्द सच्चे ओ महा है, अज्ञानी अंधा बहु कर्म दृढ़ाए, मन हठ कर्म फिर जो नी पाए, विख्या कारण लभ लोभ कमावे, दुर्मत का दो रहा है, पूरा सतगुर भगत दृढ़ाए, गुर के शब्द हर नाम चित लाए, मन तन हर रविया तट अंतर, मन पीने भगत सलाह।

मेरा प्रभु साचा असुर संगारण, गुर कै शब्द भगत निस्तारण। मेरा प्रभु साचा सद ही साचा, सिर साहा पाप साहा है। से भगत सच्चे तेरे मन पाए, दर कीर्तन करें गुर शब्द सुहाए। साची बाणी अम दिन गावे, निरसन का नाम विसाहा है। जिन आपे मेल बिछोड़े नाही, गुर कै शब्द सदा साला ही। सबना सिर तू एको साहिब, सबदे नाम सलाहा है। बिन शब्द तुदनो कोई न जानी, तुद आपे कथी अकथ कहानी। आपे शब्द सदा गुरदाता, हर नाम जप संभा है। तू आपे करता सृजनहारा, तेरा लिखिया कोई न मेटनहारा। गुरमुख नाम देवे तू आपे, सहसा गणत ना ताहा है। भगत सच्चे तेरे दरबारे, सबदे सेवन।

वर्त अवर न बिया गुरु प्रसादी आप पछाणे कमल बिकसे बुध कहा है अपनी गहन गत आपे जाने और लोग सुन सुन आख वखाने ज्ञानी होवे सो गुरमुख बूझे साची सिर्फ सलाह है देही अंदर वस्त अपारा आपे कपट खुलावन हारा।

गुर कै शब्द अमृती आया, अमृती अमरा पद होए, गुर कै शब्द रस पाहा है, आप पछाने सो सब गुण जाने, गुर कै शब्द हर नाम वखाने, हम दिन नाम रता दिन राती, माया मोह चुका है, गुर सेवा ते सब किछ पाए, हौ मैं मेरा आप गवाए, आपे कृपा करे सुखदाता, गुर कै शब्द दे सोहा है, गुर का शब्द अमृत है बाणी, हम दिन हर का नाम वखाणी, हर हर सच्चा वसै कट अंतर, सो कट निर्मलता है, सेवक सेवे शब्द सराहे, सदा रंग राते हर गुण गावे, आपे बसे शब्द मिलाए, परमल वास।

पूरे गुर ते सोजी होई, हर रस पीने सदा त्यायन, गुरमत शील सनाहा है, अंदर रंग सदा प्यारा, गुर कै सबद हर नाम प्यारा, नौ निद नाम वस्या सठ अंतर, छोड़िया माया काला है, रैयत राजे दुर्मत दोई, बिन सतगुर सेवे एक न होई, एक त्यायन सदा सुख पायन, नेचल राज तिनाहा है, आमन जाना रखे न कोई, जम्मन मरण तिसहते होई, गुरमुख साचा सदा त्यावो, गत मुक्त तिसहते पाहा है, सच संजम

उपजय संसारा, सब जग बिन से नाम विसारा, बिन सतगुरु सेवे नाम न पाये, नाम सच्चा जग लाहा है, सच्चा अमर शब्द तुहाया, पंच शब्द मिलवा जावाया।

न होवे संयोग वियोग करते लिख पाए कीर्त न चले चलाहा है जीवन मुक्त गुर शब्द कमाए हास्यो सद ही रह समाए गुर कृपा से मिले वड्याई हों मैं रोग ना ताहा है रस रस खाए पिंड वधाए एक करे गुर शब्द ना कमाए अंतर रोग महा दुख पारी विष्टा माए समाहा है वेद पढ़े पद बाद वखाने कट में ब्रह्म तिस शब्द ना पछाने गुरमुख होवे सो तत बिलोवे रसना हर रस्ता है सारवस छोड़े बाहर तावे मनमुख अंधे साध न पावे अन रस राती रसना फीकी बोले हर रस मूल न ताहा है मनमुख देही परम पतारो दुर्मत मरे नित होए खुआरो काम क्रोध मन दूजे लाया सुपने सुख न ताहा है कंचन देही शब्द पतारो आम दिन पोग पोगे हर्ष्यों प्यारो महला अंदर गैर महल पाए पाना बुझ समाहा है आपे देवे देवन हारा किस आगे नहीं किसे का चारा आपे बक्के शब्द में

सत्येन सत्यो सच्चा। गुरुमुख सबक सुनाए दा, गुरुमुख हो वह सो जी पाए, हो मैं माया परम गवाए। गुर की पौड़ी उत्तम ऊंची, दर सच्चे हर गुण गाए दा। गुरुमुख सच संजम करनी सार, गुरुमुख पाए मोख द्वार। पाए भगत सदा रंग राता, आप गवाए समाए दा। गुरमुख हो वह मन खोज सुनाए, सच्चे नाम सदा लिवलाए। जो तिस पावे सोई करसी, जो सच्चे मन पाए दा। जां तिस पावे सतगुरु मिलाए, जां तिस पावे ता मन वसाए। अपने पाने सदा

गुरमुख निर्मल मैल न लावे, नानक नाम रते विचारी, नामे नाम समाएदा मारू महला तीजा, आपके श्रेष्ठ हुकम सब साजी, आपके खाप उठाप निवाजी, आपे न्याय करे सब साचा, साचे साथ मिलाएदा, काया कोट है आकाश।

जिस अंतर पवे अंतर नहीं पाले, माया मोह बद्दा जम काले, जम की फांसी कब होना टूटे, दूजे पाए परमाएदा, जब तब संयम होर कोई नाही, जब लग गुर का शब्द ना कमाही, गुर के शब्द मिलिया सच पाया, सच्चे सच समाएदा, काम क्रोध सबल संसारा, बहु कर्म कमावे सब दुख का पसारा, सतगुर सेवे से सुख पावे, सच्चे शब्द मिलाएदा, पौन पानी है बेसंतर, माया मोह वर्ते सब अंतर, जिनकी ते जात से पछाने, माया मोह चुकाएदा, एक माया मोह गर्भ

अचनाम शीतलाएंदा मारू महला तीजा आद जुगाद दया पत दाता पूरे गुर कै शब्द पचाता सुगनो सेवै से तुझै समावै तू आपे मेल मिलाएंदा अगम अगोचर कीमत नहीं पाई जी जंत तेरी शरणाई ज्यों तुद पावे तिवे चलावे तू आपे मार्ग पाएंदा है भी साचा होसी सोई आपे साजे अवर न कोई सबना सार करे सुखदाता आपे रिजक पहुंचाएंदा अगम अगोचर अलख अपारा कोई न जाने तेरा परवारा।

ही सुख पाएगा। लख चौरासी आप उपाए, मानस जन्म गुरु भगत दृढ़ाए, बिन भगती बिस्तार वासा, बिस्तार फिर पाएगा। कर्म हो वह गुरु भगत दृढ़ाए, बिन कर्मा क्यों पाया जाए, आपे करे कराए करता, ज्यों पावे तिवें चलाएगा। सिमरत सासत अंत न जाने, मूरख अंधा तत न पछाने, आपे करे कराए करता, आपे परम पुलाएगा। सब किस आपे आप कराए, आपे सिर सिर संदे लाए, आपे थाप उठा पे वेख है, गुरमुख आप बुझाएगा। सच्चा साहिब गहर गंभीरा, सदा सलाही तामन कीरा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, गुरमुख मन वसाएगा। आप निराल मोहर तंदे।

जुग छत्ती कियो गुबारा, तू आपे जाने सिरजनहारा, होर क्या को कह के आख वखाने, तू आपे कीमत पाएंदा, ओंकार सब सृष्ट उपाय, सब खेल तमाशा तेरी वड्याई, आपे वेद करे सब साचा, आपे पन कराएंदा, बाजीगर इक बाजी पाई, पूरे गुर ते नदरी आई, सदा अलिप्त रह गुर सबदी, साचे स्यों चितलाएंदा, बाजे बाजे तुन आकारा, आप वजाए वजावन हारा,

सहसा मूल न चुके विकारा, गुरमुख हो वैसो गणत चुकाए, सच्चे सच समाएदा, जे सच दे ता पाए कोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, सच नाम सलाहे रंग राता, गुर कृपा ते सुख पाएदा, जप तप संजम नाम प्यारा, किलविख काटे काटनहारा, हर कै नाम तन मन शीतल होआ, सहजे सहज समाएदा, अंतर लोभ मन मैले मल लाए, मैले कर्म करे दुख पाए, कूड़ो कूड़ करे वापारा, कूर बोल दुख पाएदा, निर्मल बाणी को मन वसाए, गुर प्रसादी सहसा जाए, गुर के पाने चले दिन राती, नाम चेत सुख पाएदा, आप सिरंदा सच्चा सोई, आप उपाय खपाए सोई, गुरमुख हो वैसो सदा सलाहे, मिल साचे सुख पाएदा, अनेक जतन करे इंद्री वसना होई, काम क्रोध जले सब कोई, सतगुरु

को पाएगा। सतगुर सेवे सहज आनंदा, हृदय आए उठा गोविंदा, सहजे भगत करे दिन राती, आपे भगत कराएगा। सतगुर के बिछड़े तिन्नी दुख पाया, हम दिन मारिये दुख सबाया, मथे काले महल न पावे, दुखी वित दुख पाएगा। सतगुर सेवे सेवड़ पागी।

अंतर साज परम सुखाए सत सच्चे का आपे दाता जिस देवे सो सच पाएगा आपे करता सबना का सोई जिसनो आप बुझाए बुझे कोई आपे बख्शे दे वड्याई आपे मेल मिलाएगा हो मैं कर दिया जन्म गवाया आगे मोह न चूके माया अगे जम काल लेखा ले रहे जो तिल कानी पीड़ाएगा पूरे पाक गुर सेवा होई नजर करे ता सेवे कोई जम काल तिस नेड़ ना आवे महल सच्चे सुख पाएगा तिन सुख पाया जो तुद पाए पूरे पाक गुर सेवा लाए तेरे हाथ है सब वड्याई जिस देवे सो पाएगा अंदर प्रदास गुरु ते पाए नाम पदार्थ मन वसाए।

अपना पाना आप मनाएगा, तेरा पाना मन्ने सो मिले तुदाए, जिस पाना पावे सो तुझे समाए, पाने विच वड्डी वड्याई, पाना किसे कराएगा, जात इस पावे ता गुरु मिलाए, गुरमुख नाम पदार्थ पाए, खुद अपने पाने सब श्रेष्ठ उपाई, जितनो पाना दे तिस पाएगा, मनमुख अंध करे चतुराई, पाना ना मन्ने बहुत दुख पाई, पर में पूला आवे जाए, कर महल ना कभू पाएगा, सतगुर मेले दे वड्याई, सतगुर की सेवा तुर फुरमाई, सतगुर

रसना नाम से आए रस पी जाए, रस ही से रस पाएगा, महल अंदर महल को पाए, गुर कह सब सच चितलाए, जिसनो सच दे सोई सच पाए, सच्चे सच मिलाएगा, नाम विसार मन तन दुख पाया, माया मोह सब रोग कमाया, बिन नामे मन तन है कुश्ती, नरके वासा पाएगा, नाम रते तिन निर्मल देहा, निर्मल हंसा।

गुर कै शब्द हर मन वसाए, गुर कृपा ते नाम वसिया कट अंतर, नामो नाम ते आइंदा नावे नो लोचे जेती सब आई, नाव तिना मिले तुर पुरब कमाई, जिन्नी नाव पाया सेवड पागी, गुर कै शब्द मिलाएंदा काया कोट अत अपारा, तिस विच बह प्रब करे विचारा, सच्चा न्याय सचो वापारा, निचलवा सा पाएंदा अंतर कर बंके खान सुहाया, गुरमुख विरले किने थान पाया, इस साथ निभ है साला है सच्चे, हर सच्चा

सत्संगत बह गुण गाएदा हर के गुण गावा जे हर प्रभ पावा अंतर हर नाम शब्द सुहावा गुरबाणी चौ कुंडी सुनिए साचे नाम समाएदा सो जन साचा जे अंतर पाले गुर कै शब्द हर नदर निहाले ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी नदरी नदर मिलाएदा वड्डे पाग एवो शरीर पाया मानस जन्म शब्द चित लाया दिन शब्द है सब अंधेरा गुरमुख किसे बुझाएदा एक चित आए जन्म गवाए मन मुख लागे दूजे पाए ए वेला फिर हाथ न आवे पद किसे पछताएदा गुर के शब्द पवित्र शरीरा किस विच वसै सच गुणी गहीरा सचो सच वेखे सब थाई सच सुन मन वसाएदा होमे गणत गुर शब्द निवारे हर जियो हृदय रखो उड़धारे गुर के शब्द सदा साला है मिल साचे सुख पाएगा सोचे ते जिस आप चिताए गुर के शब्द वसै मन आए आपे वेखे आपे बूझे आपे आप समाएदा जिन मन विच वत पाई सोई जाने गुर के शब्दे आ

शरीर सब मूल है माया, दूजे पाए परम कुलाया, हर ना चेते सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएगा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर्श कह जान, हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गाएगा, बिन पादा गुर सेविया ना जाए, मन मुख फूले मोए बिल लाए।

अंतर इस बाणी ते हर नाम पाएगा। वेद पढ़े अन दिन वाद संभाले, नाम न चेते बद्दा जमकाले। दूजे पाए सदा दुख पाए, त्रै गुण परम पुलाएगा। गुरमुख एक स्यों लिवलाए, त्रिविद मनसा मने समाए। साचे शब्द सदा है मुक्ता, माया मोह चुकाएगा। जो तुर राते से हुन राते, गुर प्रसादी सहजे माते। सतगुरु सेव सदा प्रभ पाया, आपे आप मिलाएगा। माया मोह परम न पाए, दूजे पाए लगा दुख पाए। सूहा रंग दिन थोड़े होवे, इस जान दे बिलम न लाएगा। इहो मन पै पाए रंगाए, इत रंग साचे माहे समाए। पूरे पाग को इहो रंग पाए, गुरमती रंग चढ़ाएगा। मनमुख बहुत करे अभिमान।

गुर प्रसादी हर मिले मिलाया, सच्चा प्रभ सच्चा वापारा, नाम अमोलक पाएदा, इस काया की कीमत किने न पाई, मेरा ठाकुर ए बणत बनाई, गुरमुख हो वै सो काया सो दे, आपे आप मिलाएदा, काया विच तोटा काया विच लाहा, गुरमुख खोजे वे परवाहा, गुरमुख वणज सदा सुख पाए, सहजे सहज मिलाएदा, सच्चा महल सच्चे पंडारा, आपे देवे देवनहारा, गुरमुख साला है सुखदाते, मन मेले कीमत पाएदा, काया विच वस्त कीमत नहीं पाई, गुरमुख आपे दे वड्याई, जिसदा हट सोई वत जाने, गुरमुख दे ना पछोताएदा, हर जियो सब में रहा समाई, गुर प्रसादी पाया जाई, आपे मेल मिलाए आपे, सब दे सहज समाएदा, आपे सच्चा शब्द मिलाए, शब्दे विच्चों परम चुकाए, नानक नाम मिले वड्याई, नामे ही सुख पाएंदा, मारू महला तीजा, अगम अगोचर वे परवाहे, आपे मेहरवान अगम अथाहे, अपड़ कोई न सके तिसनो, गुर शब्दी मेलाया, तुदनो सेवे जो तुद पावे, गुर कै शब्दे सच समावे, अन दिन गुण रवे दिन राती, रसना हर रस पाया, शब्द मरे से मरण सवारे, हर के गुण हृदय उतारे, जन्म सफल हर चरणी लागे, दूजा पाव चुकाया, हर जियो मेले आप मिलाए।

मनमुख अज्ञानी अंध अंधारा, तंदे तावत जन्म गवाया, बिन नावे दुख पाया, कर्म होवे ता सतगुरु पाए, हौ मैं मैल शब्द जलाए, मन निर्मल ज्ञान रतन चानन, अज्ञान अंधेर गवाया, तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई, सच नाम हर हृदय वसाई, कीमत कौन करे प्रभ तेरी, तू आपे सहज समाया, नाम अमोलक अगम अपारा, ना को हुआ तो लनहारा, आपे तोले तोल तोलाए, गुरु शब्दी मेल तो

मिलाया पूरे शब्द भगत सुहाई अंतर सुख तेरे मन पाई मन तन सच्ची भगती राता सच्चे सो चितलाया हौं मैं विच सब जले शरीरा कर्म होवे पेटे गुरपूरा अंतर अज्ञान शब्द बुझाए सतगुर ते सुख पाया मन मुख अंधा अंध कमाए बहु संकट जो नी पर

पंच दूत वस आया, बाज गुरु है मो गुबारा, फिर डुबे वारो वारा, सतगुर पेटे सच दृढ़ाए, सच नाम मन पाया, साचा दर साचा दरबारा, सच्चे सेवे शब्द प्यारा, सच्ची तुन सच्चे गुण गावा, सच्चे माए समाया, करे अंदर को कर पाए, गुर कै शब्दे सह सुवाए, उथे सोग विजोग ना व्यापे।

दुखो दुख कमाया, सतगुर बाजो संगत न होई, बिन शब्दे पार न पाए कोई, सहजे गुण रवे दिन राती, ज्योति ज्योत मिलाया, काया बिरख पंखी विचवासा, अमृत चुगे गुर सब

सच्चा आप सवारण हारा अवर न सूझ बीजी कारा गुरुमुख सच वसै कट अंतर सहजे सच समाई है सबना सच वसै मन माही गुर प्रसादी सहज समाई गुर गुर करत सदा सुख पाया गुर चरणी चितलाई है सतगुर है ज्ञान सतगुर है पूजा सतगुर सेवी अवर न दूजा सतगुर ते नाम रतन तन पाया सतगुर की सेवा पाई है बिन सतगुर जो दूजे लागे आवे जाए परम मरे अपागे नानक तिन की फिर गत होवे जे गुरमुख रहे शरणाई है गुरमुख प्रीत सदा है साची सतगुर ते मांगो नाम अजाची ओ दयाल कृपा कर हर जियो रख ले वो गुर शरणाई है अमृत रस सतगुरु चुआया दसवें द्वार प्रगट होए आया तह अनहद शब्द वजे तुन बाणी सहजे सहज समाई है जिनको करते तुर लिख पाई अंगदिन गुर गुर करत विहाई बिन सतगुर को सीजे नाही गुर चरणी चित लाई है जिस पावे तिस आपे दे गुरमुख नाम पदार्थ ले आपे कृपा करे नाम देवे नानक नाम समाई है ज्ञान रतन मन प्रगट पया नाम पदार्थ सहजे लया ए वड्याई गुर ते पाई सतगुर को सद बल जाई है प्रगटिया सूर निस्मिटिया अंधियारा अज्ञान मिटिया गुर रतन अपारा सतगुर ज्ञान रतन अत पारी कर्म मिले सुख पाई है गुरुमुख नाम प्रगटी है सोए चहु जुग निर्मल हच्छा लोए नाम में नाम रते सुख पाया नाम रहा लिव लाई है गुरुमुख नाम प्राप्त होवे सहजे जागे सहजे सोवे गुरुमुख नाम समाय समावे नानक नाम त्याई है पगता मुख अमृत है बाणी गुरुमुख हर नाम आख वखाणी हर हर करत सदा मन बिगसे हर चरणी मन लाई है हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किछ नाही सतगुर ते समझ पड़ी मन माही हो दयाल कृपा कर हर जियो सतगुर की सेवा लाई है जिन सतगुर जाता तिन एक पछाता सर्वे रव रहा सुखदाता आत्म चीन परम पद पाया सेवा सुरत समाई है जिनको आद मिली वड्याई सतगुर मन वसिया लिव लाई आप मिलिया जग जीवन दाता नानक अंक समाई है मारू महला चौथा हर अगम अगोचर सदा अविनाशी सर्वे रव रहा कटवासी तिस बिन अवर न कोई दाता हर तिसे श्रे वो प्राणी है जाको राखे

गुर प्रसाद परम पद पाया, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, बिन सेवा पछोतानी है। तू सब में वर्ते हर जगन्नाथ, सो हर जपै जिस गुरमस्तक हाथ, हर की शरण पया हर जापी, जन नानक।

में चरणा अगन उपाय ईदन में बांधी सो प्रभ राखै पाई हे। जी जंत को रिजक संभाहे करण कारण समरथ अपाहे। खिन में थाप उथापन हारा सोई तेरा सहाय है। मात गर्भ में जिन प्रत पालिया सास गिरास होए संग समालिया। सदा सदा जपिय सो प्रीतम

क्या जा तृप्त रहे आगाई है, मीत हमारा सोई स्वामी। थानंतर अंतर जामी सिमर सिमर पूरन परमेश्वर, चिंता गणत मिटाई है। हर का नाम कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन संग तन ताहा, ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना, दूत मारे करताई है। हर का जाप जपो जप जपने, जीत आवो वसो कर अपने, लख चौरासी नरक न देखो, रसक रसक गुण गाई है। खंड ब्रह्मंड उदाहरण हारा, ऊंच अथा अगम अपारा, जिसनो कृपा करे प्रभ अपनी, सो जनत सहते आई है। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, कर कृपा की ने कर गोले, अनहद ऋण चुनकार सहज तुन, साची कार कमाई है। मन प्रतीत बनी प्रभ तेरी, बिनस गई हो मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने, जग में

उर्ज रही रंग रसमाणी किरत संजोगी पय इकतरा करते भोग विलासा है जो पिर करे सो तन तत माने फिर तने सिगार रखे संगाने मिल एकत्र वसे दिन रात।

जित उतरै पूख प्यासा है सगले कर्म धर्म जुग सादा बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा पई कृपा नानक सत्संगे तो तन फिर आनंद उलासा है तन अंधी फिर चपल सियाना।

तन कछु ना समझै चंचल काचे, बहुर बहुर फिर ही संग मांगे, ओ बात जाने कर हासाए। आई आ गया फिरों बुलाया, ना तन पुछी ना मता पकाया।

मनमुख आवे मनमुख जावे, मनमुख फिर चोटा खावे, जितने नरक से मनमुख पोगे, गुरमुख लेप ना मासा है, गुरमुख सोए जे हर जियो पाया।

करहे भगत अर रंग अपारा खिन मैं था पुथा पनहारा पारो तोल बेअंत स्वामी हुकुम मन भगती जाहे जिस देहे दर्श सो

सुरत शब्द रिद अंतर जागी अम्यो चोल चोल पी जाहे मरे नाही सद सद ही जीवे अमर पया अविनाशी थी वे ना को आवे ना को जावे।

संत संग महा सुख पाया, देख दर्शन इह मन पी जाहे, मारू महला पंजवा सोलहे। इको अंकार सतगुर प्रसाद। गुरु गोपाल गुरु गोविंदा, गुरु दयाल सदा बख्शिंदा, गुरु शास्त्र सिमरत खट कर्मा, गुरु पवित्र स्थाना है।

सतगुर पेट हर जस मुख पणी है, कल कलेश मिटाए सतगुर हर दरगे देवे माना है। अगम अगोचर गुरु दिखाया, पूला मार्ग सतगुर पाया, गुर सेवक को बिघन न पगति, हर पूर दृढ़ाया ज्ञाना है। गुर दृष्टाया सबनी ठाई, जल थल पूर रहा गोसाई, ऊंच ऊन सब एक समाना, मन लागा सहत्याना है। गुर मिलिए सब तृष्ण बुझाई, गुर मिलिए ने जो है माई, सत संतोख दिया गुरपुर है, नाम अमृत पी पाना है। गुर की बाणी सब माए समाणी, आप सुनी तै आप वखाणी, जिन जिन जपी तेई सब निस्तरे, तिन पाया ने चल थाना है। सतगुर की महिमा सतगुर जाने, जो किछ

कल युग में कीर्तन परदाना, गुरुमुख जपिए लाए त्याना। आप तरह सगले कुलतारे, हर दरगे पत से जाएदा, खंड पताल दीप सब लोआ, सब काले वस आप प्रभ किया, नेचल एक आप अविनाश।

तिथे हर त्याये सारंग पानी, जिथे पुत्र कलत्र न बेली कोई, तिथे हर आप छड़ाएंदा वड्डा साहिब अगमा था, क्यों मिलिए प्रभ वे परवाह, काट सिलक जिस मार्ग पाए, सो विच संगत वासा।

वासी बाल सुभाए अतीत उदासी अनेक रंग करें बहु पांति जो पिता पूत लड़ाएदा अगम अगोचर कीमत नहीं पाई तामिली है जान ले मिलाई गुरुमुख प्रगट पया तिन जन को जिन तुर मस्तक लेख लिखाएदा तू आपे करता कारण करना सृष्ट उपाय।

श्रवण सुनिए। दूजी अवर न जाप सकाई सगल तुम्हारी तारण, आप चितारे अपना किया आपे आप प्रवथिया, आप उपाय रचुन पसारा आपे कट कट सारणा।

मोह सोग सब परम मिटाए, एको मंत्र दृढ़ाए औखद सच नाम रिद गायना। जिस नामे को तरसें बो देवा,

गुर की सेव न जाने कोई, गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई, जिसनो लाए ले सो सेवक, जिस वड पाग मथाएना, गुर की महिमा वेद न जाने, तुच्छ मात सुन सुन वखाने, पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर, जिस सिमरत मन शीतलायना, जा की सोए सुनी मन जीवे, हृदय वसे ता ठंडा थीवे, गुरमुखों अलाए ता सोबा पाए, तिस जम के पंथ न पाएना, संतन की शरणाई पड़िया, जियो प्राण तन आगे तरिया, सेवा सुरत न जाना काई, तुम करो दया किरमाएना, निर्गुण को संग लिहो रलाए, कर कृपा मोह टहले लाए, पखा फेरों पीसों संत आ गए, चरण तोए सुख पाएना, बहुत दुआरे परम परम आया, तुमरी कृपा ते तुम शरण आया, सदा सदा संत संग राखो, इहो नाम दान देवाएना, पए कृपाल गुसाई मेरे, दर्शन पाया।

सिमरै सगले हर जना, सिमरै ब्रह्मे बिशन महेशा, सिमरै देवते कोड़ते तीसा, सिमरै जक्ष दैत सब सिमरै, अगनत ना जाई जस गना, सिमरै पश पंखी सब पूता, सिमरै वन पर्वत अवधूता, लता बलि साख सब सिमरै, रव रहया स्वामी सब मना, सिमरै थूल सूखम सब जनता, सिमरै सिद्ध साधिक हरमंता, गुप्त प्रगट सिमरै प्रभ मेरे, सगल पवन

परम रुणा गुरु का शब्द वसै मन जाके दुख दर्द प्रमता का भागे सुख सहज आनंद नाम रस अनहद बाणी सहज तुना सो तनवंता जिन प्रवत्याया सो पतवंता जिन सार

प्रभ समरथ सर्व सुख दाना, सिमरो नाम हो मेहरवाना। हर दाता जी जंत पेखारी, जन बांचे जा चंगना। मांगो जन तूर परम गत पावो, जन्म जन्म की मैल मिटावो। दीर्घ रोग मिटे हर औखा।

पंगना मन तन अर्प तरी हर आगे जन्म जन्म का सोया जागे जिसका सा सोई प्रतपालक हत त्यागी हो मैं हंतना जल तल पूरन अंतर जामी कट कट रव्या अचल स्वामी परम पीत खोई गुरपूरे एक रव्या सरबंगना जत कत पेखो प्रभ सुख सागर हर तोट भंडार नाही रतना।

आदमद अंत प्रवरवया त्रिष्ण बुझी परमंगना गुरु परमेश्वर गुरु गोविंद गुरु कर्ता गुरु सदबक्षंद गुरु जप जाप जपत फल पा।

सर्व सुख गुण निद आन मंगन नेह किंचना काया पात्र प्रभ करने हारा लगी लाग संत संगारा निर्मल सोए बनी हर बाणी मन नाम मजी ठहरंगना सोले कला संपूर्ण फलिया अनत कला होए ठाकुर चढ़िया अनद विनोद हर नाम सुख नानक अमृत रस हर पुंचना मारू सोले मैला पंजवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद तू साहेब हो सेवक कीता जियो पिंड सब तेरा दीता करन करावन सब तू है ना ही किछ असाड़ा तुम्हें पठाए ता जग में आए जो तुद पाना से कर्म कमाए तुझ ते बाहर किछु ना हुआ ता भी ना ही किछ काड़ा उहा

अत तुम पारा एक खड़े रसातल कर मन मुग्गा वारा एक ना पार लंगावे आपे सतगुरु जिनका सच बेड़ा कौतक काल एहो हुकम।

आई अगम अगोचर बेअंत अतोला है ना ही किछ आहारा कीमत कोई न जाने दूजा आपे आप निरंजन पूजा आप सुज्ञानी आप त्यानी आप सतवंता अतगाड़ा केतड़िया दिन गुप्त कहाया।

आपे सूरा अमर चलाया, आपे शिव वरतायन अंतर, आपे शीतल ठार गड़ा, जिसे निवाजे गुरुमुख साजे, नाम वसे तिस अनहद वाजे, तिस ही सुख तिस ही ठकुराई, तिसे न आवे जम नेड़ा, कीमत कागज कही न जाई, कहो नानक बेअंत गुसाई, आद मद अंत प्रभ सोई।

मोहन माधव कृष्ण मुरारे जगदीशर हर जियो असर संगारे जग जीवन अविनाशी ठाकुर कट कट वासी है संगा तरणी तर ईश नरसिंह नारायण

अविनाशी अवगत अगोचर सब किछ तुझ ही है लगा। श्री रंग बैकुंठ के वासी मछ कछ कूरम आ गया औतरासी। केशव चलत करें निराले कीता लोड़ें सो होएगा। निराहारी निर्वैर समाया तार खेल चतुर्भुज कहाया। सावल सुंदर रूप बनावे बेण सुनत सब मोहेगा। बनमाला विपुखम कमल नैन सुंदर कुंडल मुकुट बैन। शंख चक्र गदा है तारी महासारथी सत्संगा। पीत पीतंबर त्रिभुवन धनी जगन्नाथ गोपाल मुखपणी। सारंग तार भगवान बीठला मैं गणत ना आवे सरबंगा। नेह कंटक नेह केवल कही है तनंजय जल थल है महिये। मृत लोक पयाल समीपत अस्थिर थान जिस है अपग्गा। पतित पावन दुख पै पंजन अहंकार निवारण है पवखंडन। पगती तोखत दीन कृपाला गुणे ना कित ही है पिगा। निरंकार अचल अडोलो।

तुद लेप नहीं एक तिल रंगा, एक जी गुण कमन बखाने, सहस फनी सेख अंत ना जाने, नवतन नाम जपे दिन राती, एक गुण नाही प्रभ कह संगा, ओट गही जगत पित सरनाया।

दस औरात रखो बदराही, पंच मर्द सिदक ले बांधो, खैर सबूरी कबूल परा, मक्का मेहर रोजा पैखा का, पिस्त पीर लफज कमाए अंदाजा, हूर नूर मुस्क खुदाया, बंदगी अल्लाह आला हुजरा, सच कमावे सोई काजी, जो दिल सोदे होई हाजी, सो मौला मलऊन निवारे, सो दरवेश जिस सिफत तरा, सबे वक्त सबे कर वेला, खालिक याद दिले मह मौला, तस्बी याद करो दस मर्दन, सुन्नत सील बंधान बरा, दिल में जानो सब फिलहाला, खिलखाना बिरादर हमू जंजाला, मीर मलक उमरे फा

इनकी तोड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरै नाही काहू बेरा, इनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अंकार सजाए, इस जन को उपदेश निर्माल का, तुद विण नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभ के पैरा, हों बलिहारी सतगुरु पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रभ विसरै नाही, आठ पैर हर हर को त्याई, नानक संत ते

चरण कमल हृदय नितारी, गुरपुरा खिन खिन नमस्कारी, तन मन अर्प तरी सब आगे, जग में नाम सुहावना, सो ठाकुर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड दे साज सवारे, सास दरास समाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पहर हर रख मन माही, साध संग पज अचुत स्वामी, दरगह शोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निध, सर्व कल्याण जे मन में चाहे, मिल साधु स्वामी रावणा, सासत सिमरत वेद

राती पूरन पूर रहा दिन राती जो जो जपै सोई वडपागी बौड़ न जोनी पावना जिसनो बिसरे पुरख विधाता जलता फिरे रहे नितताता अकिरत कने को रखे न कोई नरक कोर में पावना जियो प्राण तन तन जिन साजिया मात गर्भ में राख निवाजिया तिस्यो प्रीत छाड़ अनराता काहू सिरे ना लावना तार अनग्रो स्वामी मेरे कट कट वसे सबन कहने रे हाथ हमारे कछुए नाही जिस जाना है तिसे जनावना जाके मस्तक तुर लिख पाया तिस ही पुरुख ना व्यापे माया।

खेल नहीं बदे कटे ना कटाए सोई होए जे करते भावे कह कह आप वजावना अंधकूप ते से ही काडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कृपा तार रखे कर अपने।

ला विण गाहक गुण वेचिए तो गुण सहगो जाए, गुण का गाहक जे मिले तो गुण लाख विकाए। गुण ते गुण मिल पाई है जे सतगुरु माहे समाए, मोल अमोल ना पाई है वणज ना ली जय हाथ। नानक पूरा तोल है कबो न होवे काट, महला चौथा। नाम विहूणे परम सह आवे जावे नीत, एक बांदे एक टीलिया एक सुखिए हर प्रीत। नानक सच्चा मन ले सच करनी सच रीत पौड़ी, गुर ते ज्ञान पाया अत खड़क करारा। दूजा प्रम गढ़ कटिया मोह लोभ अंकारा, हर का नाम मन वस्या गुर शब्द विचारा। सच संजम मत ऊतमा हर लगा प्यारा, सब सच्चो सच वर्तदा सच सृजनहारा। श्लोक महला तीजा, केदारा रागा विच जानिए पाई शब्दे करे प्यार। सत्संगत च्यों मिल दो रहे सच्चे तरे प्यार, विचो मल कटे अपनी कुला का करे उधार। गुणा की रास संग्रह अवगुण कढे विडार, नानक मिलिया सो जानिए गुरु ना छोड़े अपना। दूजे ना तरे प्यार, मैला चौथा। सागर देखो डर मरो पै तेरे डर ना है, गुर के शब्द संतोखिया नानक बिकसा नाए। महला चौथा। चढ़ बोए थे चाल सौ सागर लहरी दे, थाक न सच्चे बोए थे जे गुर तीरक दे। तित दर जाए उतारिया गुर दिसे सावधान, नानक नदरी पाई है दरगे चले मान। पौड़ी। ने कंटक राज पुंच तू गुरमुख सच कमाई, सच्चे तख्त बैठा न्याओ कर सत्संगत मेल मिलाई। सच्चा उपदेश हर जापना हर स्यो बने आई, एथे सुखदाता मन वसे अंत होए सिखाई। हर स्यो प्रीत उपजी गुरसो जी पाई। श्लोक महला पहला। पूली पूली मैं फिरी पादर कह ना कोए, पूछो जाए सियाणिया दुख काटे मेरा कोए। सतगुर साचा मन वसे साजन उतही ठाए, नानक मन तृप्तासी है सिफती साचे नाए। महला तीजा। आपे करनी कार आपे करे रजाए, आपे किसी बख्श ले आपे कार कमाए। नानक चानन गुर मिले दुख बिख जाली नाए। पौड़ी। माया वेख ना पुल तू मन मुख मूर्खा, चल दिया नाल ना चले सब झूठ दर्ब लखा। अज्ञानी अंध न बूझे सिर ऊपर जम खड़ग कलखा, गुर प्रसादी उबरे जिन हर रस चक

नानक जे इव मारिये गुरसबदी विचार इव मन मारिया ना मरे जे लोचे सब कोए नानक मन ही को मन मारसी जे सतगुर पेटे सोए पौड़ी दो वे तरफा उपाय उन विच सकत शिव वासा शक्ति किने न पायो फिर जन्म विनाशा गुर सेवे सांत पाये जब सांत गिरासा सिमरत सासत सोध देख उत्तम हरदासा नानक नाम बिना को थिर नहीं नामे बल जासा। श्लोक महला तीजा। होवा पंडित ज्योत की वेद पढ़ा मुखचार नवखंड मध्य पूजिया अपने चज विचार मत सच्चा अखर पुल जाए चौके पिटे ना कोए झूठे चौके नानका सच्चा एको सोए। महला तीजा। आप उपाय करे आप आपे नजर करे आपे दे वडिआइया कहो नानक सच्चा सोए पौड़ी। कंटक काल एक है होर कंटक ना सूजे अफरियो जग में वर्तदा पापी स्यों लूजे गुर शब्दी हर पेदी है हर जप हर बूजे सो हर सरनाई छुट्टी है जो मन स्यों जूजे मन विचार हर जप करे हर दरगे सीजे। श्लोक महला पहला।

इश्क मोहब्बत नानका लेखा करते पास महला पहला अलगो जोए मधुकड़ो सारंग पान सबाए हीरे हीरा बेदिया नानक कंठ सुबाए पौड़ी मनमुख काल व्यापदा मोय माया लागे।

नाम पौड़ी आपे पिंड सवार्योन विच नवनिद नाम इक आपे परम पुलायन तिन ने फल काम इकनी गुरमुख बुझिया हर आत्म राम इकनी सुन के मन्या हर उत्तम काम अंतर हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम श्लोक महला पहला पोल तन पै मन वसे है कै पादर हीड अत डापन दुख कणो तीने खा परीड महला पहला मांदल बेद से बाजनो कणो तड़िए जोए नानक नाम संभाल तू बीजो अवर न कोय महला पहला सागर गुणी अथा किन हाथा ला देखिए वड्डा वे परवाव सतगुर मिले ता पार पवा मज पर दुख बदुख नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथी पुख पौड़ी जिन्नी अंदर पालिया गुर शब्द सुहावे जो इच्छन सो पाएंदे हर नाम ते आवे जिसनो कृपा करे तिस गुर मिले सो हर गुण गावे तरम राय तिन का मित है जम मग ना पावे हर नाम ते आवे दिन सरात हर नाम समावे श्लोक महला पहला सुनिए एक वखाणी है सुरग मृत पयाल।

हुकम मने दुख जाए, आपे दाता सुखैदा आपे दे सजाए, नानक ए वह जानिए सब किछ तिसैर जाए पौड़ी। हर नाम बिना जगत है निर्धन, बिन नामे तृप्त नाही, दूजे परम पुलाया हो मैं दुख पाही। बिन कर्मा किछु न पाये जे बहुत लो चाही, आवे जाए जम मैं मरे गुर सब छुटाही। आप करे किस आखिए दूजा को नाही, श्लोक में ला तीजा। इस जग में संति तन खटिया, जिना सतगुर मिलिया प्रभ आए। सतगुर सच दृढ़ाया इस तन की कीमत कही न जाए, इत तन पाए पुख लथी सुख वस्या मन आए। जिना को तुर लिखिया तिनी पाया आए, मन मुख जगत निरतन है माया नो बिलाए। अंदिन फिरदा सदा रहे पुख ना कदे जाए, सांत ना कदे आवई ने सुख वसे मन आए। सदा चिंत चित वदा रहे सहसा कदे न जाए, नानक विण सतगुर मत पवी, सतगुर नो मिले ता शब्द कमाए। सदा सदा सुख में रहे सच्चे माए समाए, मैला तीजा। जिन उपाय मेदनी सोई सार करे, एको सिमरो पाए रहो तिस बिन अवर न कोए। खाना शब्द चंगियाईया जित खादे सदा तृप्त होए, पैनन सिफत सनाए है सदा सदा ओ उजला, मैला कदे न होए। सहजे सचतन खटिया थोड़ा कदे न होए, देही नो शब्द सिगार है जित सदा सदा सुख होए। नानक गुरमुख बुझी है जिसनो आप विखा ले सोए पौड़ी। अंतर जब तब संजमो गुर सब दी जापे, हर हर नाम ते आये हो मैं अज्ञान गवापे। अंदर अमृत भरपूर है चाखिया साध जापे, जिन चाखिया से निरपो पे से हर रस त्रापे। हर कृपा तार पियाया फिर काल न व्यापे, श्लोक मैला तीजा। लोक अवगणा की बन्ने गंठड़ी, गुण ना विहाजे कोए। गुण का गाहक नानका विरला कोई होए, गुर प्रसादी गुण पायन जिसनो नदर करे महला तीजा। गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार, नानक हुकम मन्ने सुख पाई है गुर सब जीवी चार पौड़ी। अंदर राजा

सब कोए पौड़ी सबे थोक विसार इको मित कर मन तन होए निहाल पापा दह हर आवन जाना चुके जन्म ना जाए मर सच नाम आधार सोग ना मोए जर नानक नाम निदान मन में संजतार।

पाने जेवड होर दात नाही सच आख सुनाया जिनको पूरब लिखिया तिन सच कमाया नानक ते शरणागति जिन जगत उपाया श्लोक महला तीजा जिनको अंदर ज्ञान नहीं तै की नाही बिंद नानक मोया का क्या मारना जे आप मारे गोविंद महला तीजा मन की पतरी वाचनी सुखी हूँ सुखसार सो ब्राह्मण पला आखी है जे बूझे ब्रह्म विचार हर साल

अंदर सुख ना होवई मन मुख जन्म खुआर। नानक नाम रते से उबरे गुर कै हेत अपार पौड़ी। आपे कर कर वेखदा आपे सब सच्चा, जो हुक्म ना बूझे खसम का सोई नर कच्चा। जित पावे तित लाएंदा गुरमुख हर सच्चा, सबना का साहिब एक है गुर सब दी रचा। गुरमुख सदा सलाही है सब तिस दे जचा, जो नानक आप नचाएंदा तिभी को नचा सुध।

देख कपड़ भोग डरावने जे चरपरी न देख महला पंजवा उठी जालू कंतड़े हो पसी तो दीदार काजल हार तमोल रस बिन पसे हबरस छार पौड़ी तू सच्चा साहिब सच सच सब धारिया गुरमुख की तो था।

दुर्जन तू जल पहाड़ी वे छोड़े मर जाए, कंता तू सौ से जुड़ी मैंडा हबो दुख लाए। महला पंजवा। दुर्जन दूजा भाव है वे छोड़ा हो मैं रोग, सज्जन सच्चा पातशाह हो जिस मिल की चै भोग। पौड़ी तू अगम दयाल बेअंत तेरी कीमत कह कौन, तुद सिरजा सब संसार तू नायक सगल पौन। तेरी कुदरत कोई न जाने मेरे ठाकुर सगल रौन, तुद अपड़ कोई न सके तू अब नासी जग उधरण।

आपे सतवंता, जति सती प्रभ निर्मला मेरे हर भगवंता। सब ब्रह्म पसार पसारयो आपे खेलंता, यो आवागमन रचायो कर चोज देखंता। तिस बौड़ गर्भ ना पावै जिस देवै गुरमंता, जो आप चलावै त्यों चल दे किछ वस ना जनता। दखने महला पंजवा, कुरिये कुरिये वैद्या तलगाड़ा महरेर, वेखे छिटड़ थीम दो जाम खिसन दो पेर। महला पंजवा, सच जाने कच वैद्यो तू आगू आगे सलवे, नानक आतसड़ी मंज नैनू बिया ढल पबन ज्यो।

जिस मेलै सतगुर आप तिसके सब कुल तरा। सेवक सब कर दे सेव दर नानक जन तेरा। दखने महला पंजवा गैड डड़ा त्रिन छाया।

इन माया मोहनी मोइया नित फिरे परमाइया हाठा दो मैं कीतियों शिव सकत वरताइया शिव अगे शक्ति हारिया एवं हर पाइया एक विचों ही तुझ रखिया जो सतसंग मिलाइया जल विचों बिंब उठा लियो जल माए समाइया दखने

जित भुख ले जावे प्रभ जीओ देवो दर्शन आपना, जित ढाडी तृप्तावे अरदास सुनी दातार, प्रभ ढाडी को महल बुलावे, प्रभ देख दया दुख भुख गई ढाडी।

मुखो अलाए हब मरण पछाणंदो कोए, नानक तिन्ना खाक जिना यकीना हिक सो। महला पंजवां, जान वसंदो मंज पछाणू को।

सुखदायक ज्ञान रास नाम धन सौ प्यों इस सौदे लायक सांझी गुरु नाल बहालिया सर्व सुख पायक मैं नालों कदे न विछड़े हर पिता सबना गल्ला लायक श्लोक दखने महला पंजवा नानक कचड़िया सो तोड़ ढूंढ सजन संत पक्या ओए जीवन दे विछड़े ओए मोया न जाही छोड़ महला पंजवा नानक बिजलिया चमकन गुरन घटा अत कालिया बरसन मेघ अपार नानक संगम तेरी सुहंदिया महला पंजवा जल थल नीर परे शीतल पवन झुलार दे सेजड़िया सोयन हीरे लाल जड़न दिया सुबर कपड़ भोग नानक तेरी विहूणी तत्तिया पौड़ी कारण करता जो किया सोई है करना जे सौ ताम है प्राणिया पावे धुर लेना बिन कर्मा किसू न लभई जे फिरे सब धरना गुर मिल पो गोविंद का भय डर दूर करना बहते बैराग उपजे हर खोजत फिरना खोजत खोजत सहज उपजया फिर जन्म न मरना ज्याय कमाए ज्याया पाया साध सरना बोहित नानक देव गुर जिस हर चढ़ाए तिस

कीमत कहन न जाइए सच सा अडोलै सिद्ध साधक ज्ञानी जानिया कौन तुद नो तोलै बन्नन गड़न समरथ है ओपत सब परलै करण कारण समरथ है घट घट सब बोलै रुगत समाहे सब सह।

रहा हूँ। वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस पारा, राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस पारा। जी बधो सो धर्म कर थापो, अधर्म कहो कत पाई, आपस को मुनवर कर थापो, काको कहो कसाई। मन के अंधे आप न बूझो, काहे बुझावो भाई, माया कारण विद्या बेचो, जन्म अभिर था जाई। नारद बचन व्यास कहत है, सुख को पूछो जाई, कह कबीर राम रम छूटो, नाहे तबूढ़े पाई। बने बसे क्यों पाई है, जो लो मनो न तजे विकार, जे घर बन संसार किया ते पूरे संसार। सार सुख पाई है रामा, रंग रवो आत्मा राम रहो, जटा भस्म लेपन किया कहा गुफा में बास। मन जीते जग जीतया, जाते बिछया ते होए उदास। अंजन दे सब कोई सुख चान, माहे बिडान, ज्ञान अंजन जे पाया ते लोयन परवान। कह कबीर अब जानया।

राम उदग दे जन पिया तुम बहुर न पई प्यास। गोर प्रसाद जे बूझया आसा ते भया निराश। सब सच नजरी आया जो आत्म भया उदास। राम नाम रस चा

पियड़े ममता जालिया पिंड वना हम बै चिंता जाल तन जालिया बैरागी अड़े जे मन मृतक होए वना हम बै सतगुर बिन बैराग न होवे।

अवैराव हस्ती देख परंते गुला सिर भगवान ना जानिया तुमरो दूध बिदर को पानो अमृत कर मैं मान्या खीर समान साग

रामदेव जी की एक ओंकार सदगुर प्रसाद। चार मुकत चार सिद्ध मिलके दूले प्रभु की शरण पर्यो, मुकत भयो चौहू जुग जान्यो, जस कीरत माथे छत्र धर्यो। राजा राम जपत को न करयो, गुरु उपदेश साध की संगत, भगत भगत ताको नाम पर्यो रहाओ। शंख चक्र माला तिलक विराजत, देख प्रताप जम डर्यो। निर्भव भय राम बल गर्जत, जन्म मरण संताप हिर्यो। अम्बरीक को दियो अभय पद, राज भवीकन अधिक करयो। नव निधि ठाकुर दई सुदा मैं, धुरु अटल अज हूँ न टर्यो। भगत हेत मार्यो हर नाखस, नरसिंह रूप होय देत हर्यो। नामा कै भगत बस के सब।

पेट भरो पसवा जो सोयो, मनुख जन्म है हारे रहाओ। साध संगत कब हो नहीं कीनी, रचियो धंधे झूठ। स्वान सूकर बायस जिमे, भटकत चाल्यो ऊठ।

राम निंदा करते जन्म सिरानो कभू न सिमरो राम। कह कबीर चेत नहीं मूर्ख मुगत गवार राम नाम जा।

चंद सत भेदिया नाद सत पूरिया सूर सत थोड़ सादत किया अबल बल तोड़िया अचल चल थपया अघड़ घड़िया तहां अप्यो पिया मन आद गुण आद वखाणिया तेरी दुबदा दृष्ट सम्मानिया रहा अर्ध को अर्दया सर्द को सर्दया सलल को सल सम्मान आया बदत जय देव।

जा रहा हो। लालच लागे जन्म गवाया, माया परम भुलाएगा। धन जो बन का गर्व न की गय, कागज जो गल जाएगा। जो जम आए केस गय पटके, ता दिन कृष्ण बसा।

चार पदार्थ अष्टमा सिद्ध नवनिध कर तलता कै हर हर हर न जपस रसना खबर सब छाड़ बचन रचना रहाओ नाना ख्यान पुराण वेद विद चौतीस अक्षर माहे व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सरना है। सहज समाज उपाद रहत होए बड़े भाग लिव लागी कह रविदास उदास दास मत जन्म।

कोई न बेली गुरमुख अमृत पीवा। रचना राच रहे निरंकारी सब मन कर्म सुकर्मा। नानक पंथ निहाले साधन तू सुन आत्म रामा। बाबिया प्रयो बोले को कल बानिया साधन सबरस चोले अंक समानिया। हर अंक समानी जा प्रभानी सासो हागन नारे। नव घर थाप मैल घर ऊंचो निज घर वास मुरारे। सब तेरी तू मेरा प्रीतम निस्बास रंग रावे। नाने प्रियो प्रियो चवे बबीहा को कल सबद सुहावे। तू सुन हर रस भिन्ने प्रीतम आपने मन तन रवत रवन।

हर बिन रहन न जाए। ओट गई हर चरण निवासे भय पवित्र शरीरा, नानक दृष्ट दीरग सो पावे गुर सब दी मन तीरा। बरसे अमृत धार बूंद सुहावनी, साजन मिले सहज सुपाए हर स्यो प्रीत बनी। हर मंदिर आवे जा प्रभु पावे धन उबी गुण सारी, घर घर कंत रवे सोहागण हो क्यों कंत विसारी। उन्नव घन छाए बरस सुभाए, मंतन प्रेम सुखावे, नानक बरसे अमृत बानी कर कृपा घर आवे। केत

नानक चेत सहज सुख पावे जे हर वर घर धन पाए। वह साध बला साखा वेश करे धन देख हर द्वार आवो दया करे। घर आओ प्यारे दुतर तारे तुझ बिन अड न मोलो। कीमत कौन करे तुझ पावा देख दिखावे टोलो। दूर न जाना अंतर माना हरता मैल पछाना। नानक वह साखी प्रभु पावे सुरत शब्द मन माना। माओ जेठ भला प्रीतम क्यों विसरे। खलता पैसर भार साधन बिनो करे।

सुख मैले नानक देख जाने तिस जैसे कर्म मिले गुण गहली। आषाढ़ भला सूरज गगन तप है धरती दुख सह सोख है अगन पक्ष है अगन रस सुख है मरिय चोख है भी सो किरत नहारे रस फिर छाया धन ताक है टीन लवे मंज पारे अवगुण बाद चले दुख आ गए सुख तिस साथ संभाले नानक जिसनो यो मन दिया मरण जीवन सब नाले। सावन सरस मना घन वर्ष ऋतु आए मैं मन तन सौ पावे फिर पर देश सिधाए फिर धरनी आवे मरिए हावे दामन चमक डराए सेज इकेली खरी दुहेली मरण पया दुखमाए हर दिन नींद भूख को कैसी कापड़ तन न सुखावे नानक सा सोहा।

संगम सात समुंद समावा। पुण्य दान पूजा परमेश्वर जुग जुग एको जाता, नानक माघ महारस हर जप असर तीरथ नाता। फल गुण मन रहसी प्रेम सुभाया, अनदिन रस भया आप गवाया। मन मोह चुकाया जा तुझ पाया, कर कृपा घर आओ। बहुते वेच करे फिर बाजो, मैली दान खाओ। हार डोर रस पाट पटंबर तिर लोड़ी सिंगारी, नानक मेर लई गुरु अपने घर वर पाया नारी। बेदस मारुति छिती वार भले, घड़ी मुरत पर

राखो खेती हर गुर हेती, जागर शोर न लागे। जम मगन जाओ ना दुख पाओ, जम का डर बहु भागे। रब सस दीपक गुरमत द्वारा, मन साचा मुख त्यावे। नानक मूर्ख

सच संभालिया ऐन सदेश बिचारिया दावत पंच रहे कर जानिया काम क्रोध बिख मारिया अंतर जोत भई गुरु साखी चीने राम करमा नानक हो मैं मार पति ने तारा चढ़े आलमा गुरमुख जाग रहे चूकी अवमानी राम अनगिन पोर पया साच समानी राम साच समानी गुरमुख मन पानी गुरमुख साबत जागे साच नाम अमृत गुरुजिया हर चरणी लिव लागे प्रगटी जोत जोत मैं जाता मन मुख परम भुलानी नानक पोर पया मन मान्या जागत रहन विहानी अवगुण विसरिया गुणी घर किया राम एको रव रया अवर न दिया राम रव रया सोई अवर न कोई मन ही ते मन मान्या जिन जल सा त्रिभुवन घट घट थापया सो प्रभु गुरुमुख जानिया।

करण कारण समरथ अपारा त्रिपद मेट समाई नानक अवगुण गुण समाने ऐसी गुरमत पाई। आवन जान रहे चूका भोला राम हो मैं मार मिले साचा चोला राम हो मैं गुर खोई प्रगट होई चूके सोग संताप है ज्योति अंदर ज्योत समानी आप पछाता आप है। तेई अड़ घर सबद पति नी सावरड़ा तिर पानी नानक सदगुर मेल मिलाई चूकी कान लोकानी। तुखारी महला पहला भोलावड़ा भुली भुल भुल पछो तानी फिर छोड़ी सुती तिर की सार न जानी फिर छोड़ी सुती अवगन मुती किस दन विदन राते काम क्रोध अहंकार विगुति हो मैं लगी ताते उडर हंस चरिया फुरमाया बस।

वैच वह सवाया अपरम्पर आपे था पो थापे तिस भाव सो हो वै नानक ही राही रह बेदया गुण कह हार करो वै गुण गुण समाने मस्तक नाम निशानो सच साच समाया चूका आवन जानो सच साच पछाता साच राता साच मिल मन पावे साचे ऊपर अवर्ण दिस साचे साथ समावे मोहन मोलिया मन मेरा बंधन खोल निरारे नानक ज्योति ज्योत समानी जा मिलिया अत प्यारे सच दर खोज ले साचा गुर खानो मनमुख न पाई है गुरमुख ज्ञानो देव सजदानो सो परवानो सजदाता वडदाना अमर अजूनी अस्थिर जापै साचा महल सिराना दो तू चापक लेख न लिखिया प्रगति ज्योत मुरारी नानक साचा साचा राचा गुरमुख तरी है तारी सुखारी महला पहला ए मन मेरिया तू समझ अतीत आने आराम ए मन मेरिया छड़ अवगुण गुणी समाने आराम बहु साध लुबाने किरत कमाने विसरिया नहीं मेला क्यों दुत्तर करिए जम डर मरिए जम का पंथ दुहेला मन राम नहीं जाता साज प्रभाता अवगत रुद्र।

ए मन मेरिया गुण गावे सहज समा वही राम, गुण गाए राम रसाए रसिया गुर ज्ञान अंजन सारहे, त्रै लोक दीपक शब्द चानन पंच दोष संगारहे। वह काज निर्भव तरह दुतर गुर मिले कारज सारे, रूप रंग प्यार हर स्यों हर आप कृपा तारे। ए मन मेरिया तू क्या ले आया क्या ले जाय श्री राम, ए मन मेरिया ता चुकती जा परम चुकाए श्री राम। धन संच हर हर नाम वखर गुर शब्द भाव पछाण है, महल पर हर शब्द निर्मल महल घर सच जान है। पत नाम पावे घर से दावे झोल अमृत पी रसो, हर नाम दियाई है शब्द रस पाई है वड भाग जती है हर जसो। ए मन मेरिया बिन कौड़िया मंदिर क्यों चढ़े राम, ए मन मेरिया बिन बेड़ी पार न अंबड़े राम। पार साजन अपार प्रीतम गुर शब्द सुरत लंघावे, फिर साध संगत करे रलिया फिर न पछोतावे। कर दया दान दयाल साचा हर नाम संगत पावो, नानक पयम पै सुनो प्रीतम गुर शब्द मन समझावो।

जग लग दर्श न होए क्यों अमृत पीवी है राम, क्यों अमृत पीवी है हर दिन जीवी है, तिस दिन रह न जाए हम दिन प्रो प्रो करे दिन राती, फिर दिन प्यास न जाए अपनी कृपा करो हर प्यारे, हर हर नाम सब सारिया गुर के शब्द मिलिया मैं प्रीतम, हाँ सतगुर वित्तो वारिया जब देखा फिर प्यारा हर गुण रस रवा राम। मेरे अंतर हुए विगास प्रो प्रो सत नित चवा राम, प्रो चवा प्यारे शब्द निस्तारे बिन देखे तृप्त न आवे, शब्द सिगार होवे नित कामन हर हर नाम पे आवे। दया दान मंगत जन दी जय मैं प्रीतम देहो मिलाए, अन दिन गुरु गोपाल ते आई हम सतगुरु विट्टो कुमाए, हम पात्र गुरु नाव बिख पव जल कारिय राम, गुरुदेवो शब्द सुभाए मैं मूड निस्तारिय राम, हम मूड मुग्ध किछ मिट नहीं पाई तू अगम वड जानिया, तू आप दयाल दया कर मेले हम निर्गुणी निमानिया, अनेक जन्म पाप कर परमे हुन तो शरणागत आए, दया करो रख ले वो हर जियो हम लागे सतगुर पाए, गुर पारस हम लो मिल कंचन होया राम, ज्योति ज्योत मिलाए काया गढ़ सोया राम, काया गढ़ सोया मेरे प्रभ मोया क्यों साथ गिरास विसारी है, अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर सबदी हो सतगुर के बलिहारी है, सतगुर आगे शीस टेक दियो जे सतगुर साचे भावे, आपे दया करो प्रभ दाते नानक अंक समावे, तुखारी महला चौथा हर हर अगम अगाद अपरंपर अपरपरा, जो तुम त्याए जगदीश ते जन पाओ बिखम तरा, बिखम पाओ तिन तरिया सुहेला जिन हर हर नाम ते आया, गुरवाक सतगुर जो पाए चले तिन हर हर आप मिलाया, ज्योति ज्योत मिल ज्योत समाणी हर कृपा कर तरणी तरा, हर हर अगम अगाद अपरंपर अपरपरा, तुम स्वामी अगम अथा तू कट कट पूर रहा, तू अलख अपेयो अगम गुर सतगुर बचन लया, तन तन ते जन पुरख पूरे जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे, विवेक बुद्ध विचार गुरमुख गुर शब्द खिन खिन हर नित चवे, जा बह गुरमुख हर नाम बोले जा खड़े गुरमुख हर हर कया, तुम स्वामी अगम अथा तू कट कट पूर रहा, सेवक जन सेवे ते परवान जिन सेव्या गुरमत हरे, तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे, तिनके पाप दोख सब बिन से जिन मन चित इक अरा दिया, तिनका जन्म सफल हो सब किया करते जिन गुरबचनी सच पाखिया, ते तन जन वड पुरख पूरे जो गुरमत हर जप पाओ बिखम तरे, सेवक जन सेवे ते परवान जिन सेविया गुरमत हरे, तू अंतर जामी हर आप ज्यो तू चलावे प्यारे हो तिवे चला, हमरे हाथ किस नाहे जा तू मेले ता हो आए मिला, जिन को तू हर मेले स्वामी सब तिन का लेखा छुटक गया, तिन की गणत ना करो को भाई जो गुरबचनी हर मेल लया, नानक दयाल हुआ तिन ऊपर जिन गुर का पाना मनिया पला, तू अंतर जामी हर आप ज्यो तू चलावे प्यारे हो तिवे चला, तुखारी महला चौथा तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ, तिन तू त्याया मेरा राम जिन कह तुर लेख मात, जिन को तुर हर लिखिया स्वामी तिन हर हर नाम आराध्या, तिन के पाप इक निमक सब लाथे जिन गुरु बचनी हर जापिया,
तन तन ते जन जिन हर नाम जपिया तिन देखे हो पया सनाथ तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ तू जल थल मई अल भरपूर सब ऊपर साच धनी जिन जपिया हर मन चीत हर जप जप मुक्त कणी जिन जपिया हर ते मुक्त प्राणी तिनके उजल मुख हर द्वार ओए हलत पलत जन पै सुहेले हर राख लिए रखन हार हर संत संगत जन सुनो पाई गुरुमुख हर सेवा सफल बनी तू जल सल मैयल परपूर सब ऊपर साच धनी तू थान सनंतर हर एको एक रव्या वन त्रिन त्रिभवन सब श्रेष्ठ मुख हर हर नाम चवया सब चवे हर हर नाम करते असंख अगणत हर त्यावे सो तन तन हर संत साधु जो हर प्रभ करते भावे सो सफल दर्शन देहो करते जिस हर हृदय नाम सब चवया तू थान सनंतर हर एको एक रव्या तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले जिस कै मस्तक गुर हाथ तिस हृदय हर गुण टिके हर गुण हृदय टिके तिसके जिस अंतर पाओ पावनी होई बिन पै किने ना प्रेम पाया बिन पै पार ना उतरिया कोई पाओ पाओ प्रीत नानक तिसे लागे जिस तू अपनी कृपा करे तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले सुखारी महला चौथा नावन पूर्व अभीच गुर सतगुर दर्श पया दुर्मत मैल हरी अज्ञान अंधेर गया गुर दर्श पाया अज्ञान गवाया अंतर ज्योत परगासी जन्म मरण दुख खिन में बिनसे हर पाया प्रभ अविनाशी हर आप करते पूर्व किया सतगुरु कुल खेत नावन गया नावन पूर्व अभीच गुर सतगुर दर्श भया मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा अन दिन भगत बनी खिन खिन निमख विखा हर हर भगत बनी प्रभ केरी सब लोक वेखने आया जिन दर्श सतगुरु गुरु किया तिन आप हर मेला आया तीरथ उद्दम सतगुरु किया सब लोक उदरण अर्थ

मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा। प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व हुआ। खबर पई संसार आए त्रै लोआ। देखने आए तीन लोक सुर नर मुन जन सब आया। जिन पर सिया गुर सतगुरु पूरा तिनके किल विख नाथ गवाया। जोगी दिगंबर सन्यासी खर दर्शन कर गए गोष्ट टोआ। प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व होआ। द्वितीया जमुन गए गुर हर हर जपन किया। जागाती मिले दे पेट गुर पिछे लंघाए दिया। सब छुट्टी सतगुरु पिछे जिन हर हर नाम से आया। गुरु बचन मार्ग जो पंथ चाले तिन जम जागा की नेड़ न आया। सब गुरु गुरु जगत बोले गुर के नाए ले सब छुटक गया। द्वितीया जमुन गए गुर हर हर जपन किया। तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलक भया। सब मोही देख दर्शन गुर संत किने आड़ ना दाम लिया। आड़ दाम किच पया ना बोलक जागातिया। मोहन मुंडन पई पाई हम करें क्या किस पास मांगे सब पाग सतगुर पिछे पई। जागातिया उपाव स्यान कर विचार डिठा। पन बोल का सब उठ गया। तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया। मिल आए नगर मां जना गुर सतगुर ओट गही। गुर सतगुर गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही। सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता। सुख प्रहलाद श्री राम कर गुर गोविंद ते आया। देही नगर कोट पंच चोर बटवारे तिनका छाओ थे ओ गवाया। कीर्तन पुराण नित पुन होवे गुर बचन नानक हर भगत लही। मिल आए नगर महाजना गुर सतगुर ओट गही। सुखारी संत मैला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद। कोल कुमाई लालना गुर मन दीना। सुन बचन तुम्हारा मेरा मन पीना। एहो मन पीना ज्यो जल मीना। लागा रंग मुरारा कीमत कही न जाई ठाकुर। तेरा महल अपारा सगल गुणा के दाते स्वामी। बिनो सुनो एक दीना। देहो दर्श नानक बलिहारी जीड़ा बल बल कीना। एहो तन मन तेरा सब गुण तेरे। खनिए वंजा दर्शन तेरे। दर्शन तेरे सुन प्रभ मेरे। निमख दृष्ट पेख जीवा अमृत नाम सुनी जय तेरा। कृपा करे ता पीवा आस प्यासी पिरके ताई। ज्यो चात्रिक बूंदे रे कहो नानक जीड़ा बलिहारी। देहो दर्श प्रभ मेरे। तू साचा साहिब साओ अमिता। तू प्रीतम प्यारा प्राण हित किता। प्राण सुख दाता गुरमुख जाता। सगल रंग बन आए सोई कर्म कमावे प्राणी। जेहा तू फुरमाए जाको कृपा करी जगदीशर। तिन साध संग मन जिता कहो नानक जीड़ा बलिहारी। जियो पिंड तौ दिता निर्गुण राख लिया संतन का सदका। सतगुरु ताक लिया मोह पापी पर्दा। ठाक नहारे प्रभु हमारे जी प्राण सुख दाते। अविनाशी अवगत स्वामी पूरन पुरख विदाते। पुस्तक कहन न जाए तुम्हारी कौन कहे तू कद का। नानक दास ता कह

मेरे मन राम नाम नित गाविए रे। अगम अगोचर न जाई हर लख्या गुरपूरा मिले लखाविए रे। रहाओ जिस आपे कृपा करे मेरा स्वामी, तिस जन को हर लिवलाविए रे। सबको भगत करे हर केरी, हर पावे सो थाए पाविए रे। हर हर नाम अमोलक हर पै, हर देवे ता नाम त्याविए रे। जिसनो नाम दे मेरा स्वामी, तिस लेखा सब छडाविए रे।

इन विद मेरा हर प्रभ लहोरे रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह अभिमान विषय रस इन संगत ते तू रहो रे। मिल सत संगत की जय हर गोष्ट साधु स्यो गोष्ट हर प्रेम रसायन राम नाम रसायन हर राम नाम राम रमो रे। अंतर का अभिमान जोर तू किछ किछ किछ जानता इहो दूर करो आपन गौरे। जन नानक को हर दयाल हो स्वामी हर संतन की कूर कर हरे। किदारा मेला पंजवा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। माई संत संग जागी प्रे रंग देखे जपती नाम निधानी रहाओ। दर्शन प्यास लोचन तार लागी बितरी प्यास बिडानी। अब गुर पायो है सहज सुखदायक दर्शन पेखत मन लपटानी। देख समोदर रहस मन उपजो नानक प्रिय अमृत बानी। किदारा महला पंजवा कर की जा इको अंकार सतगुर प्रसाद। दीन बिनो सुन दयाल पंच दास तीन दोखी एक मन अनाथ नाथ। राख हो कृपाल रहाओ अनिक जतन गवन करो। खट कर्म जुगत ध्यान करो उपाव सगल कर हारे हो। नह नह हुते विकराल शरण बंदन करुणा पते पाव हरण हर हर हर हरे। एक तू ही दीन दयाल प्रभ चरण नानक आसरो। उदरे प्रम मोह सागर लग संतना पग पाल। किदारा महला पंजवा कर चौथा इको अंकार सतगुर प्रसाद। सरनी आयो नाथ निधान नाम प्रीत लागी मन प्रीतर मांगन को हरदान रहाओ। सुखदाई पूरन परमेश्वर कर कृपा राखो मान। देहो प्रीत साधु संग स्वामी हर गुण रसन बखान। गोपाल दयाल गोविंद दमोदर निर्मल कथा ज्ञान। नानक को हर कै रंग रागो चरण कमल संग ध्यान। केदारा महला पंजवा हर के दर्शन को मन चाहो। कर कृपा सत्संग मिलाओ तुम देवो अपनो नाओ रहाओ। करो सेवा सतपुरुष प्यारे जत सुनिए तत मन रहसाओ। वारी फेरी सदा कुमाई कवन अनूप तेरो ठाओ। सर्व प्रत पाले सगल संभाले सगलिया तेरी छाओ। नानक के प्रभ पुरख विधाते कट कट तुझे दिखाओ। किदारा महला पंजवा

फूले कपट तपट बुझ तृष्णा जीवों पेख दरसारी कौन सो जतन उपाव कनेहा सेवा कौन बिचारी मान अभिमान मोह तज नानक संते संग उधारी किरारा महला पंजवा हर हर हर गुण गावो करो कृपा गोपाल गोविंदे अपना नाम जपावो रहाओ काड लिए प्रभ आन बिखेते साध संग मन लावो तंपो मोह कट्यो गुरु वचनी अपना दर्श दिखावो सबकी रेन होए मन मेरा अहं बुद्ध तजावो अपनी भगत देह दयाला वड़ पागी नानक हर पावो किदारा महला पंजवा हर बिन जन्म अकारत जात तज गोपाल आन रंग राचत मिथ्या पहरत खात रहाओ

मन मोह महा मद मोहत काम क्रोध कै खात कर गए लिहो दास नानक को प्रभु जियो होए सात। केदारा महला पंजवा हर बिन कोई न चालस साथ।

दीनानाथ करुणापत स्वामी अनाथा के नाथ राव सुत संपत बिखिया रस ओगवत नह निभत जम कै पात नाम निधान गाओ गुण गोविंद उदर सागर के खात करण समरथ अटक अगोचर हर सिमरत दुख लात नानक दीन तूर जन बाचत मिले लिखत तुरमात किदारा मेला पंजवा कर पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद बिसरत नाहे मनते हरी अब एह प्रीत मां परबल कही आन बिखै जरी रहाओ बूंद कहा त्याग चात्रिक मीन रहत न करी गुण गोपाल उचार रसना देव ए परी महानाद कुरंक मोयो वेद तीखन सरी प्रभ चरण कमल रसाल नानक गांठ बांध तरी किदारा महला पंजवा प्रीतम बस रिद में खोर परम पीत निवार ठाकुर गह लियो अपनी ओर रहाओ अधिक गर्त संसार सागर कर दया चारो तोर संत संग हर चरण बोहत उदरते ले मोर गर्भ कुंट में जिने तारियो नहीं बिखे बन में होर हर सकत सरन समरथ नानक हान नहीं निहोर किदारा महला पंजवा रसना राम राम बखान गुण गोपाल उचार दिन रैन पे कलमलहान रहाओ त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान मिथन मोह दुरंत आशा झूठ सर परमान सत पुरख अकाल मूर्त हृदय तारो त्यान नाम निधान लाभ नानक बस ए परवान किदारा महला पंजवा हर के नाम को आधार कल कलेश ना कछ व्यापे संत संग व्यवहार रहाओ कर अनग्रो आप राख्यो न उपजतो बेकार जिस परापत होए सिमरे तिस दहत नह संसार सुख मंगल आनंद हर हर प्रभ चरण अमृत सार नानक दास शरणागति तेरे संतना की चार किदारा महला पंजवा हर के नाम बिन त्रिग स्रोत जीवन रूप विसार जीवे ते कत जीवन होत रहाओ खात पीत अनेक बिंजन जैसे पार बाहक खोत आठ पैर महाश्रम पाया जैसे बिरख जंती जोत तज गोपाल जे आन लागे ते बहु परकारी रोत कर जोर नानक दान मांगे हर रखो कंठ परोत किदारा महला पंजवा संते तूर ले मुखमली गुणा अचुत सदा पूरन नह दोख व्यापे कली राव गुरु बचन कार्य सर्व पूरन ईत ऊत ना हली प्रभ एक अनक सर्वत पूरन दिखे अग्न ना जली जय पूजा लीनो दास अपनो ज्योति ज्योत रली प्रभ चरण शरण अनाथ आयो नानक हर संग चली किदारा महला पंजवा हर के नाम की मन रुचे कोट शांत आनंद पूरन जलत छाती बुझे रहाओ संत मार्ग चलत प्राणी पतत उदरे मुचे रेन जन की लगी मस्तक अनक तीरथ सुचे चरण कमल ध्यान पीतर कट कटे स्वामी सुजय शरण देव अपार नानक बहुर जम नहीं लुज

मार्ग प्रभु का हर किया संतन संग जाता, संतन संग जाता पुरुष विदाता, कट कट नजर निहालिया, जो सरनी आवे सर्व सुख पावे, तिल नहीं पन्ने कालिया, हर गुण निद गाए सहज सुभाए, प्रेम महारस माता, नानक दास के

तू पूरन पुरख विदाता, हर प्रेम भगत जन बेदिया, से आन कत जाही, मीन बिछोहा ना सहे, जल बिन मर पाही, हर बिन क्यों रही है, दुख किन सही है, चात्रिक बूंद प्यासिया, कब रैन बिहावे, चकवी सुख पावे, सूरज किरण परगासिया, हर दर्श मन लागा, दिन सवागा, अन दिन हर गुण गाही, नानक दास कहे बेनंती, कत हर बिन प्राण टिकाही, सास बिना ज्यो देहुरी, कत तोबा पावे, दर्श बिहूना साध जन खिन टिकना आवे, हर बिन जो रहना, नरक सो कहना, चरण कमल मन बेदिया, हर रसक बैरागी, नाम लिव लागी, कतो न जाए निखेदिया, हर क्यों जाए मिलना, साध संग रहना, सो सुख अंक नाम आवे, हो कृपाल नानक के स्वामी, हर चरणे संग समावे, खोजत खोजत प्रभ मिले, हर करुणा तारे, निर्गुण नीच अनाथ में नहीं दोख विचारे, नहीं दोख विचारे, पूरन सुख सारे, पावन बिरद बखानिया, भगत वचल सुन अंचलो गया, कट कट पूर समानिया, सुख सागरो पाया, सहज सुभाया, जन्म मरण दुख हारे, कर गए लीने नानक दास अपने, राम नाम उरहारे, राग के दारा, बाणी कबीर जियो की।

निंदा दौ विवर्जत तजो मान अभिमाना। लोहा कंचन सम कर जाने ते मूरत पगवाना। तेरा जन एक आद कोई काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित हर पद चीने सोई रहाओ। रज गुण तम गुण सत गुण कहिए ए तेरी सब माया। चौथे पद को जो नर चीने तिन्ही परम पद पाया। तीर्थ व्रत नेम सुच संजम सदा रहने कामा। कृष्णा अर माया परम चूका चितवत आत्म रामा। जे मंदर दीपक परगासिया अंधकार कहनासा। निरपौ पूर रहे परम पादा कह कबीर जनदासा। किन्ही बन जिया कांसी तांबा किन्ही लौंग सुपारी। संतो बन जिया नाम गोविंद का ऐसी खेप हमारी। हर के नाम के व्यापारी हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक छूट गई संसारी राव। साचे लाए तो सच लागे साचे के व्यवहारी। साची बस के पार चलाए पहुँचे जाए पंडारी। आपे रतन जवाहर मानक आपे है पासारी। आपे देह दिस आप चलावे नेचल है व्यापारी। मन कर बैल सुरत कर पेंडा ज्ञान गोन पर डारी। कहत कबीर सुनो रे संतो निधि खेप हमारी। रीकलवार गवार मूड मत उल्टो पवन फिरावो। मन मतवार मेर सर पाठी अमृत तार चुआवो। बोलो भैया राम की दुहाई पीवो संत सदा मत दुर्लभ है जे प्यास बुझाई रहाओ। पै बिच पाओ पाए को बूझे हर रस पावे भाई। जेते कट अमृत सभी में पावे तिसे पियाई। नगरी एक नौ दरवाजे तावत बर्ज रहाई। त्रिपुटी छूटे दसवां दर फूले ता मन खीवा पाई। अबे पद पूर ताप तहना से कह कबीर बिचारी। उबट चलनते ए मद पाया जैसे खोंद फुमारी। काम क्रोध तृष्णा के लीने गत नहीं एक कह जानी। फूटी आँखें कछु न सूजे बूढ़ मुए बिन पानी।

अवस्था पूरे आपन किया कछु न होवे क्या तो करे परानी जात पावे सतगुरु पेटे एको नाम बखानी बलुआ के करुआ में बसते।

राव लालच झूठ विकार महामद के विद औद बिहान कह कबीर अंक की देर आए लागो काल निदान। चार दिन अपनी नौबत चले बजाए इतनक खटिया गठिया मटिया संग ना कछ ले जाए। रहाओ देरी बैठी मेरी रोवे द्वारे लो संग माए मरहट लग सब लोग कुटम मिल हंस इकेला जाए। वै सुत वै बित वै पुर पाटन बौर न देखे आए कहत कबीर राम की न सिमरो जन्म अकारस जाए। राकेदारा बाणी रविदास जीओ की इको अंकार सतगुर प्रसाद। खत कर्म कुल संयुक्त है हर भगत हृदय नाहे चरनार बिंद ना कथा पावे सुपत तुल समान। रेचित चेत चेत अचेत काहे ना बालमी कै देख किस जात ते के पदे अमरियो राम भगत विशेख रहाओ। स्वान सत्र अजात सब ते कृष्ण लावे हेत लोग बपुरा क्या सारा है तीन लोक प्रवेश। अजामल पिंगला लुबत कुंचर गए हर के पास ऐसे दुर्मत निस्तरे तू क्यों ना तरे रविदास। राग पैरों मैला पहला कर पहला चौक दे

समाई मन जोगी मन बिनस देओगी मन समझे गुण गाई गुर ते मन मारिया शब्द विचारिया ते विरले संसारा नानक साहिब पर पुरलीना सात शब्द निस्तारा पैरों महला पहला नैनी दृष्ट नहीं तन ही ना जर जीत्या सिर कालो रूप रंग रहस नहीं साचा क्यों छोड़े जम जालो प्राणी हर जप जन्म गयो सात शब्द बिन कब होना छूटत बिरसा जन्म भयो रहाओ तन में काम क्रोध हो ममता कथन पीर अत भारी गुरमुख राम जपो रस रसना किन बिद तरकू तारी बैरे करन अकल भई होची शब्द सहज नहीं बूझिया जन्म पदार्थ मन मुख हारिया बिन गुर अंग न सूझिया रह उदास आस निराशा सहज ध्यान बैरागी प्रणवत नानक गुरमुख छूटस राम नाम लिवलागी पैरों महला पहला पूंडी चाल चरण कर खिसरे तुचा देह कुमलानी नेत्री तुंद करन पै बहरे मन मुख नाम न जानी अंगुले क्या पाया जग आए राम हृदय नहीं गुर की सेवा चाले मूल गवाए रहाओ जेहवा रंग नहीं हर राती जब बोले तब फीके संत जना की निंदा व्यापस पशु पे कदे होए नानी के अमृत का रस विरली पाया सतगुर मेल मिलाए जब लग शब्द पेड़ नहीं आया तब लग काल संताए अन को दर कर कब होना जानस एक को दर्श प्यारा गुर प्रसाद परम पद पाया नानक कह विचारा पैरों महला पहला सगली रैन सोवत गलफाही दिनस जंजाल गवाया किन पल कड़ी नहीं प्रभ जानिया जिन एहो जगत उपाया मन रे क्यों छूटस दुख पारी क्या ले आवस क्या ले जावस राम जपो गुणकारी रहाओ पूंदो कवल मन मुख मत होची मन अंधे सिर तंदा काल विकाल सदा सिर तेरे बिन नावे गल फंदा डगरी चाल नेत्र फुन अंधले शब्द सुरत नहीं पाई शास्त्र वेद त्रै गुण है माया अंधलो तंद कमाई खोयो मूल लाभ कह पावस दुर्मत ज्ञान विहूने शब्द विचार राम रस चाख्या नानक साच पति ने पैरों महला पहला गुर के संग रह दिन राती राम रसन रंग राता अवर न जानस शब्द पछाणस अंतर जान पछाता सोजन ऐसा मैं मन पावे आप मार अपरंपर राता गुर की कार कमावे रहाओ अंतर बाहर पुरख निरंजन आद पुरख आदेशो कट कट अंतर सर्व निरंतर रव रहा सच वेशो साच रते सच अमृत जेवा मिथ्या मैल नाराई निर्मल नाम अमृत रस चाख्या शब्द रते पत पाई गुणी गुणी मिल लाहा पावस गुरमुख नाम वडाई सगले दुख मिटे गुर सेवा नानक नाम सखाई पैरो महला पहला हृदय नाम सर्व तन तारण गुर प्रसादी पाई है अमर पदार्थ से किरतार्थ सहज ध्यान लिवलाई है मन रे राम भगत चितलाई है गुरमुख राम नाम जप हृदय सहज खेती कर जाइए रहाओ परम पेद पाओ कभो न छूटत आवत जात न जानी बिन हर नाम को मुक्त न पावस डूब मुए बिन पानी तंदा करत सगली पत खोवस परम न मिटत गवारा बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कभी अंधले तंद पसारा अकुल निरंजन स्यों मन मानिया मन ही ते मन मुआ अंतर बाहर एक को जानिया नानक अवर न दुआ पैरों महला पहला जगन होम पुन तप पूजा दे दुखी नित दुख सह राम नाम बिन मुक्त न पावस मुक्त नाम गुरमुख लह राम नाम बिन बिसे जग जन्मा
बिक खावे बिक बोली बोले बिन नावे ने फल मर प्रवना राव पुस्तक पाठ व्याकरण वखाने संध्या कर्म तिकाल करे बिन गुर शब्द मुक्त कहा प्राणी राम नाम बिन उर्ज मरे दंड कमंडल सिखा सूत तोती तीरथ गवन अप प्रमन करे राम नाम बिन सांत ना आवे जप हर हर नाम सोपार परे जटा मुकुट तन पसम लगाई बस्तर छोड़ तन नगन भया राम नाम बिन तृप्त ना आवे किरत के बांधे पेख पाया जेते जी जंत जल फल महियल जत्र कत्र तू सर्व जिया गुर प्रसाद राख ले जन को हर रस नानक चोल पिया।

ब्रह्म बिन देसो ब्राह्मण होई, जात का गर्भ न कर मूर्ख गावारा। इस गर्भ से चले बहुत विकार आ रहा हो, चारे वर्ण आखे सब कोई, ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई, माटी एक सगल संसारा, बोविद पांडे करे कुमारा, पंच तत् मिल देही काकारा, काटवद को करे बिचारा, कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई।

छिन में बिन से करत न लागे बारा, कर प्रसाद एक खेल दिखाया, गुरु कृपा ते परम पद पाया। कहत नानक मार जी वाले सोए, ऐसा बूझो परम ना फूलो कोए। पैरों महला तीजा, मैं कामन मेरा कंठ करतार, गिहा कराए तेहा करी सिगार।

की दयाल पंच शब्द बजाई, भरत नानक करे क्या कोए, जिसनो आप मिला वै सोए, पैरों महला की जा। सो मुन जे मन की दुविधा मारे, दुविधा मार ब्रह्म विचारे, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई रहाओ, मूल मोह कर करते जगत उपाया, ममता लाए परम पुलाया, इस मन ते सब पिंड पराना, मन के विचार हुक्म बुझ समाना, कर्म होवे गुर कृपा करे, इह मन जागे इस मन की दुविधा मरे, मन का स्वभाव सदा बैरागी, सब में वसे अतीत अनुरागी, कहत नानक जो जाने पेओ, आद पुरख निरंजन देओ, पैरों महला तीजा, राम नाम जगत निस्तारा, पव जल पार उतारण हारा, गुर प्रसादी हर नाम समाल, सद ही निभ है तेरे नाल, रहाओ नाम ना चेत

गुरुमुख मन वसाए, आप तरे सगले कुल तारे, जिनी राम नाम लिवलाए। मेरा प्रभ है गुण का दाता,

गुर प्रसाद परम पद पाया, सब उच्च पुजावन हार राव, सब मैं एको रब रहा, गुर बिन बूझ न पाए, गुरमुख प्रगट होआ मेरा, हर प्रभ अंग दिन हर गुण गाए, सुखदाता हर एक है, होर थे सुख न पाए, सतगुर जिनी न सेविया दाता, से अंत गए पछताए, सतगुर सेव सदा सुख पाया, फिर दुख न लागे ताए, नानक हर भगत प्राप्त होए, ज्योति जोत समाए, पैरों महला तीजा, बाज गुरु जगत बौराना, फूला चोटा खाए, मर मर जमे सदा दुख पाए, डर की खबर न पाए, मेरे मन सदा रहो सतगुर की शरणा, हृदय हर नाम मीठा सद लागा, गुर शब्दे पव जल करना रहाओ, देख करे बहुत चित डोले, अंतर काम क्रोध अहंकार, अंतर तिसा भूख अत बहुती, पौकत फिरे दरबार, गुर के शब्द मरे फिर जीवे, तिनको मुक्त द्वार, अंतर शांत सदा सुख होवे, हर राख्या उदार, जो तिस भावे तिवे चलावे, करना तिसु न जाई, नानक गुरमुख शब्द संभाले, राम नाम वड्याई, पैरों महला तीजा, हो मैं माया मोह खुआया, दुख खट्टे दुख खाए, अंतर लोभ हलक दुख पारी, बिन विवेक परमाए, मन मुख त्रिग जीवन सहसार, राम नाम सुपने नहीं चेतिया, हर सो कदे न लागे प्यार रहाओ, पशुआ कर्म करे नहीं बूझे, कूड़ कमावे कूड़ो होए, सतगुरु मिले ता उल्टी होवे, खोज लह जन कोए, हर हर नाम हृदय

के मार्ग पाए। आपके गुरुमुख देव आए, नानक नाम समाए, पैरों महला पीजा। मेरी पटिया लिखो हर गोविंद गोपाला, दूजे पाए फाके जमजाला। सतगुर करे मेरी प्रतपाला, हर सुखदाता मेरे नाला। गुरु उपदेश प्रहलाद हर उचरे, सासना के बालक गम न करे। रहाओ माता उपदेश है प्रहलाद प्यारे, पुत्र राम नाम छोड़।

प्रहलाद आप बिगड़िया सब चाकड़े बिगाड़े, दुष्ट सभा में मंत्र पकाया, प्रहलाद का राखा होए रघुराया, हाथ खड़ग कर ताया अत अहंकार, हर तेरा कहां तुझले उबार, किन मैं प्यान रूप लिख्या थम उपार, हरनाकस नखी विदारिया प्रहलाद लिया उबार, संत जना के हर जियो कार सवारे, प्रहलाद जन के इतनी कुले उड़ारे, गुर के शब्द हो मैं बिख मारे, नानक राम नाम संत निस्तारे, पैरों महला की जा, आपे दैंत लाए दिते संत जना को, आपे राखा सोई, जो तेरी सदा सरनाई, तिन मन दुख न होई, जुग जुग पगता की रखदा आया, दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण किछु न जाने, शब्द मेल मिलाया रहाओ, अन दिन पगत करें दिन राती दुबदा सब देखोई, सदा निर्मल है जो सच राते सच वस्या मन सोई, मूरख दुबदा पने

कृपा मेलो सब संगत टूट गई माया जमजाली रहाओ। गुरुमुख सेवा काल जिन काली तिस करिये सब सची टकसाली। हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली विच काया नगर लद्दा हर पाली। हम बारिक हर पिता तत्पाली जन नानक तारो नगर निहाली। पैरों महला चौथा सब कट तेरे तू सबना माहे तुझ के बाहर कोई नाहे। हर सुखदाता मेरे मन जाप।

जिसको तुम हर राख्या भावे तुझसे नेड़े कोई न जावे। तू जल थल मैयल सब तै भरपूर जन नानक हर जप हाजरा हजूर।

हर बाहर जो कुछ करे सोई पल होसी, हर क्या वो अंग दिन नाम मुरार, हर जो कुछ करे सो आते आते वो पूछ ना किसे करे विचार, नानक सो प्रभु सदा त्याय है जिन मेलिया सतगुरु कृपा तार, पैरों मेला चौथा ए साधु हर मेलो स्वामी, जिन जपिया गत हुए हमारी तिनका दर्श देख मन बिगसे, किन किन किन कहो हो बलिहारी, हर हृदय जप नाम मुरारी, कृपा कृपा कर जगत पित स्वामी, हम दासन दास की जय पनिहारी रहो, तिन मत उत्तम तिन पत उत्तम, जिन हृदय वस्या बनवारी, तिन की सेवा लाए हर स्वामी, तिन सिमरत गत हुए हमारी, जिन ऐसा सतगुरु साधना पाया ते हर दरगे का दे मारी, ते नर निंदक सोग न पावे, तिन नक काटे सुजनहारी, हर आप बुलावे आप बोले।

सुकाया खट शास्त्र मूर्खे सुनाया जैसे दहदिस पवन चुलाया दिन कण खलहान जैसे दान पाया क्यों साकत ते को ना।

नानक बोले अमृत बाणी, एक बिना दूजा नहीं जानी। पैरो महला पंजवा, आगे देह पाछे नारायण, मद भाग हर प्रेम रसायन। प्रभु हमारे शास्त्र सौन, सुख सहज आनंद गृह पौन। रहाओ रसना नाम करण सुन जीवे, प्रभ सिमर सिमर अमृत पीवे। जन्म जन्म के दुख निवारे, अनहद शब्द बजे दरबारे। कर कृपा प्रभ लिए मिलाए, नानक प्रभ शरणागत आए। भैरो महला पंजवा, कोट मनोरथ आवे हाथ। जम मार के संगी पांथ, गंगा जल गुरु गोविंद नाम। जो सिमरै तिसकी जत होवे, पीवत बहुड़ न जोन परमाम। रहाओ पूजा जाप ताप स्नान, सिमरत नाम पहने काम। राजमाल साधन दरबार, सिमरत नाम पूरन आचार। नानक दास को किया विचार, बिन हर नाम मिथ्या सब चार। पैरो महला पंजवा, लेप न लागो तिलका मूल। दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कैसूल, हर जन राखे पार ब्रह्म आप। पापी मुआ गुर प्रताप। रहाओ अपना

कहो खुद खसम मेहरवान, अलो ना विसरे दिल जी प्राण। पैरों महला पंजवा साच पदार्थ गुरमुख लहो, प्रभ का पाना सत कर सहो। जीवत जीवत जीवत रहो, राम रसायन नित उठ पीवो। हर हर हर हर रसना कहो रहाओ, कल युग में इत नाम उदार। नानक बोले ब्रह्म विचार, पैरों मैला पंजवा सतगुर सेव सर।

हर जप जप उदरिया सगल जहान पैरों मैला पंजवा अपने दास को कंठ लगावे निंदक को अग्न में पावे पापी के राखी नारायण पापी की गत कत हूँ नाही पापी पचिया आप कमाइन रहाओ दास राम जियो लागी प्रीत निंदक की होई विपरीत पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगताया दुखी अपना कीता पाया आए न जाई रहा समाई नानक दास हर की शरणा।

श्री तर मोहन सगल उपावन निरंकार सुखदाता, ऐसा प्रभ छोड़ करें अन सेवा कवन बिछया रसमाता। रे मन मेरे तू गोविंद पाज, अवर उपाव सगल मैं देखे, जो चित भी है तित बिगरस ताज रहाओ। ठाकुर छोड़ दासी को सिमरे, मन मुख अंध अज्ञाना, हर की पगत करे तिन निंदे, निगुरे पशु समाना। जियो पिंड तन तन सब प्रभु का, सात कहते मेरा, अहंग बुद्ध दुर्मत है मैली, बिन गुर पव जल फेरा। होम जग जप तप सब संयम, तट तीरथ नहीं पाया, मिटिया आप पे शरणाई, गुरमुख नानक जगत कराया। पैरो महला पंजवा, बन में पेख्यो तृण में पेख्यो, गृह पेख्यो उदासाए।

पहला पंजवा निकट बुझे सो बुरा क्यों करे बिसन के नित डरता फिरे है निकट अर्थ एक न पाया बिन सतगुरु सब

पंजवा जिस तू राखे कुछ कौन मारे है, सब तुझ ही अंतर सगल संसार है। कोट उपाव चितवत है प्राणी, सोहो वै जे करे चोज विदानी। राखो राखो कृपा तार, तेरी शरण तेरे दरबार राव। जिनसे व्या निरपौ सुख दाता।

बिन अमरे कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहां मन ठहराना, नाम बिना सब जग बोराना, बिन बैराग कहां बैरागी, बिन हो त्याग कहां को त्यागी, बिन बस पंच कहां मन चूरे, नाम बिना सब सज ही चूरे।

त्रिविध रोग में बदे विकारा, रोगे मरता रोगे जन्मे, रोगे फिर जोनी पर में, रोग बंद रहन गति न पावे, बिन सतगुरु रोग कटे न जावे, पार ब्रह्म जिसकी दया, वहाँ पकड़ रोगों कद लया, टूटे बंधन साध संग पाया, कहो नानक गुरु रोग मिटाया, पैरों महला पंजवा, चीत आवे ता महा आनंद, चीत आवे ता सब दुख पंजे, चीत आवे ता सरदा पूरी, चीत आवे ता कभे न चूरी,

नानक उदरे नाम पुनः चार, हवर कर्म लोके पतियार, पैरो महला पंजवा, नमस्कार ता को लख बार, रुमन दी जैता को वार, सिमरन ता कै मिटे संताप, होय आनंद।

जा को सतगुरु जी ओ नाम, जा को पेट्यो ठाकुर अपना, मन तन शीतल हर हर जपना। कहो नानक जो जन प्रभु पाए, ताकी रेन बिरला को पाए, पैरो महला पंजवा। चितवत पाप ना आलक आवे, बेसुआ भजत किसने शरमावे। सारो दिन मजूरी करे, हर सिमरन की वेला बज्जर सिर पर। माया लग पूलो संसार, आप पुलाया पुला।

पूरन होत न कार्य माया, काम क्रोध लोभ मन लीना, तरफ मुआ ज्यो जल बिन मीना, जिसके राखे हुए हर आप, हर हर नाम सदा जप जाप, साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुरु पूरा पाया, पैरो मैला पंजवा, अपनी दया करे सो पाए, हर का नाम मन वसाए, साच शब्द हृदय मन माहे, जन्म जन्म के किल विच जाए, राम नाम जी को आधार, गुरु प्रसाद जपो नित पाए, तार ले सागर संसार राव, जिनको लिखिया हर एहो निधान।

जिस लड़ लाए ले सो लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, तेरे भगत भक्तन का आप, अपनी महिमा आपे जाप, जी जंत सब तेरे हाथ, नानक के प्रभु सभी साथ, पैरों महला पंजवा, नाम हमारे अंतर जामी, नाम हमारे आवे कामी, रोम रोम रविया हर नाम, सतगुरु पूरे तीनों दान, नाम रतन मेरे पंडार, अगम अमूला अपर अप

काश्वाओ नाम न विसरै संत प्रसाद, नाम लेत अनहद पूरे नाद। प्रभ कृपा ते नाम नौ निज पाई, गुर कृपा ते नाम स्यों बने आई। तनवंते से प्रदान है।

रंग रसमाने कट कट अंतर तुम्हें समाने तुमरी कृपा ते जपिए नाओ साध संग तुमरे गुण गाओ तुमरी दया ते होए दर्द विनाश तुमरी माया ते कमल विलास हौ बलिहार जाऊं गुरुदेव सफल दर्शन जाकी निर्मल सेव दया करो ठाकुर प्रभु मेरे गुण गावे नानक।

नाम तिसर नाही सदा सुख होए कर कृपा जा को मिले सोए रहाओ जा के कर्तव्य लते न जाए जा का परवासा सब कट माए

सिर पाप सा साचा सोए, जिसकी ओट तिसे की आशा, दुख सुख हमरा किसी पासा, राख लीनो सब जन का पर्दा, नानक किसकी उस्तत करदा, पैरों महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन को संबंध चिताया, बूझ बैराग करे जे कोए, जन्म मरण फिर सोग न होए, विख्या का सब

अनित पाप जाए निर्मल मना, सगल मनोरथ पूरन काम, भगत अपने को देवो नाम, सफल सेवा गोपाल राय, करन कराम नहार स्वामी।

मान मूर मुग्ध होए चतुर सुज्ञान सगल पयान का पौ नसे जन अपने के हर मन वसे पार ब्रह्म प्रभ सुख निदान तत् ज्ञान हर अमृत नाम कर कृपा संत टहले लाए नानक साधु संग समाए कहरू महला पंजवा संत मंडल में हर मन वसे संत मंडल में दुर्त सब नसे संत मंडल में निर्मल रीत संत संग होए एक प्रीत संत मंडल कहाँ का नाओ पार ब्रह्म केवल गुण गाओ रहाओ संत मंडल में जन्म मरण रहे संत मंडल में जम किछु ना कहे संत संग होए निर्मल बाणी संत मंडल में नाम वखाणी संत मंडल का नेचर आसन संत मंडल में पाप विनाशन संत मंडल में निर्मल कथा संत संग हो मैं दुख नसा संत मंडल का नहीं विनाश संत मंडल में हर गुण पास संत मंडल ठाकुर विश्राम नानक ओत पोत भगवान पैरों मैला पंजवा रोग कवन जा राखे आप जिस जन होए न दुख संताप जिस ऊपर प्रभु कृपा करे जिस ऊपर के काल पर हरे सदा सखाई हर हर नाम जिस चीत आवे तो सदा सुख होवे नित ना आवे ता कह जाम रहाओ जब ए नासो तब किने उपाया कवन मूल के क्या प्रगटाया आपे मार आप जीवाले अपने भगत को सदा प्रतपा

बिरला कोए, हर हर नाम जपै जन सोए। रहाओ अहंग बुद्ध का छोड़िया संग, काम क्रोध का उतरिया रंग। नाम तिराए हर हर, हर

सहो नानक प्रभु कृपा करी, सास गिरास जपो हर हरी, पैरों महला पंजवा, सबसे ऊंचा जाका नाओ, सदा सदा ताके गुण गाओ, जिस सिमरत सगला दुख जाए, सर्व सुख वसे मन आए, सिमर मना

नानक को गुर पै दयाल पैरों मैला पंजवा जिस सिमरत मन होए प्रगास मिटे कलेश सुख सहज निवास तिसे प्राप्त जिस

अगल कटा के अंतर जामे, कर कृपा अपनी सेवा लाए, नानक दास तेरी शरणाए। पैरों महला पंजवा, लाज मरे जो नाम ना लेवे, नाम विहून सुखी क्यों सोवे। हर सिमरन छाड़ परम गत चाहे, मूल बिना शाखा कत आहे। गुरु गोविंद मेरे मन त्याए, जन्म जन्म की मैल उतारे, बंधन काट हर संग मिलाए रहो।

तन तन साज तन हर नाओ, आठ पैर कीर्तन गुण गाओ, तन हर भगत तन करने हार, शरण नानक प्रभु पुरख अपार, पैरों महला पंजवा, गुर सो प्रसन्न होए पाओ गए, नाम निरंजन मन में ले, दीन दयाल सदा कृपाल, बिनस गए सगले जंजाल, सुख सहज आनंद कने, साध संग मिटे पै परमा, अमृत हर हर रसन पने, रहाओ चरण कमल स्यो लागो हेत, खिन मैं बिनस्यो महाप्रेत, आठ पैर हर हर जप जाप, राखन हार गोविंद गुर आप, अपने से

नानक सब किस प्रगते होए। पैरों मैला पंजवा मन तन राता राम रंग चरणे। सर्व मनोरथ पूरन करने आठ पैर गावत पक...

सो तनवंता जिस बुद्ध विवेक, सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी, सो पतवंता जे आप पछानी, गुर प्रसाद परम पद पाया, गुण गोपाल दिन रैन त्याया, टूटे बंधन पूरन आसा, हर के चरण रिद माय निवासा, कहो नानक जाके पूरन कर्मा, सो जन आया प्रभु की शरणा, आप प्रेत पावन सब कीने, राम रसायन रसना चीने, पैरों महला पंजवा, नाम लैत किछ बिघन न लागे, नाम सुनत जम दूरों पागे, नाम लैत सब दुख है नास, नाम जपत हर चरण निवास, निर्विघ्न भगत पज हर हर नाओ, रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ, हर सिमरत किछ चाख न जो है, हर सिमरत दैत देओ न पो है, हर सिमरत मोह मान न बद्दे, हर सिमरत गर्भ जोन न रुद्दे, हर सिमरन की सगली बेला, हर सिमरन बहु माए अकेला, जात अजात जपे जन कोए, जो जापे तिसकी गत होए, हर का नाम जपिए साध संग, हर के नाम का पूरन रंग, नानक को प्रभु कृपा तार, सास सास हर दियो चितार, पैरों महला पंजवा, आपे सासत आपे बेद, आपे कट कट जाने पेद, ज्योत स्वरूप जाकी सब वत, करण कारण पूरन समरथ, प्रभ की ओट गहो मन मेरे, चरण कमल गुरमुख आरादो, दुश्मन दुख ना आवे नेरे, रहाओ आपे वन त्रिन त्रिभुवन सार, जा कै सूत परोया पार, आपे शिव शक्ति संजोगी, आपे निर्वाणी आपे पोगी, जत कत देखो तत तत सोए, तिस बिन दूजा नाही कोए, सागर तरिय नाम कै रंग, गुण गावे नानक साथ संग, मुक्त पुगत जुगत वस जाके, ऊना नाही किस जनता के, कर कृपा जिस होए सो प्रसन्न, नानक दास से जनतन, पैरों मेला पंजवा, भगता मन आनंद गोबिंद, अस्थित पए बिनसी सब चिंद, पै प्रम बिनस गए खिन माहे, पार ब्रह्म वसिया मनिया।

सुत बंद नारायण आदि जुगाद भगत गुण गायन तिसकी तर प्रभ का मन जोर एक बिना दूजा नहीं और नानक कह मन इहो पुरखारथ प्रभु हमारा सारे स्वारथ पैरो महला पंजवा पै कौ पौ पड़िया सिमरत हर नाम सगल ब्याद मिटी त्रिहो गुण की दास के होए पूरन काम रहाओ हर के लोग सदा गुण गावे तिनको मिलिया पूरन धाम जन का दर्श बांचे दिन राती होए पुनीत धर्म राय जाम काम क्रोध लोभ मद निंदा साध संग मिटिया अभिमान ऐसे संत पेटे वड पागी।

मुख ते बोलिया ता कड़िया विचार, अंतर जामी करता सोए, हर जन करे सुने चल होए, हर का दास साचा दरबार, जन नानक कहया तत विचार। पैरों महला पंजवा

प्रतपाल प्रभ कृपाल कवन गुण गनी अनेक रंग बहुत रंग सर्व को तनी रहाओ अनेक ज्ञान अनेक ध्यान अनेक जाप जाप ताप अनेक गुणत तुनत ललित अनेक ताप।

नी नानक सेव अपार देव तटें खटें बर्त पूजा गवन पवन जात्र करन सगल फल पुनी पैरों अष्टपदिया महला पहला कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। आत्म मह राम, राम मह आत्म चीनस गुर बिचारा अमृत बाण।

चलत उपाया, अनहद बाणी शब्द सुनाया, मन मुख पूले गुरमुख बुझाया, कारण करता करदा आया, गुर का शब्द मेरे अंतर ध्यान, हों कब होना छोड़ो हर का नाम रहाओ, पिता प्रहलाद पढ़न पठाया, ले पाटी पांदे कह आया, नाम बिना नहीं

करते अपना रूप दिखाया, पैरों महला तीजा, गुर सेवा ते अमृत फल पाया, हों मैं तृष्ण बुझाई, हर का नाम हृदय मन वस्या, मनसा मन है समाई, हर जियो कृपा करू मेरे प्यारे, अन दिन हर गुण दीन जन मांगे गुरु।

साचे हर प्रभ आप मिलाए। गुर की वाणी शब्द पछाती साच रहे लिव लाए। तू आप निर्मल तेरे जन है निर्मल गुर के शब्द विचारे नानक।

कहो नानक तत्तै तत मिलाया पैरों महला पंजवा कोट बिशन कीने अवतार कोट ब्रह्मंड जाके तर्मसाल कोट महेश उपाय समाए।

தர்த்தியான कोट तपीसर तप ही करते कोट मुनीसर मौन में रहते अवगत नाथ अगो

राम राजा नौनिद मेरे संपहेत कलत तन तेरे रहाओ आवत संग ना जात संग।

सोतर वर चंदन होय निबरियो पारस के संग तांबा बिगरियो सोतांबा कंचन होय निबरियो संतन संग कबीरा बिगरियो सो कबीर रामे होय निबरियो माथे तिलक हाथ

पहचाना, उलट जात कुल दो विसारी, सुन सहज मैं बुनत हमारी, हमरा चगरा रहा न को। पंडित मुला छाड़े दो रहाओ, बुन बुन

बिरख मूल माया में परा, माया अंतर पीने देव, सागर इंद्रा अर्तर देव, कह कबीर जिस उदर तिस माया, तब छूटे जब साधु पाया, जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरे।

सब कोई चलन कहत है उहां, ना जानो बैकुंठ है कहां रहाओ, आप का मर्म न जाना, बातन ही बैकुंठ बखाना, जब लग मन बैकुंठ की आस, तब लग ना ही चरण निवास, खाई कोट ना

क्यों लीजै गड बंका पाई, दोवर कोट अर तेवर खाई। रहाओ पांच पच्चीस मोह मद मत्सर, आडी परबल माया, जन गरीब को जोर न पहुंचे।

बहुत मंत्र मन अस्थिर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे, कोट सूरज जाके प्रगास, कोट महादेव अर कबिलास, दुर्गा कोट जाके मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचरे, जो जाचो तो केवल राम, आन देव स्यो नाही काम रहाओ।

बासक कोट सेज बिस्थरे, समुंद कोट जाके पानी हार, रुमावल कोट अठारे पार, कोट कमेर परे पंडार, कोटक लक्ष्मी करे सिगार, कोटक पाप

रहाओ। जैसी पर पुरखा रत नारी, लोभी नर तन का हितकारी। कामी पुरख कामनी प्यारी, ऐसी नामे प्रीत मुरारी। साई प्रीत जे आपे लाए, गुर प्रसादी दुबदा जाए। कबहू न टूटस रहा समाए, नामे चित लाया सचनाए।

ताना। पापी का कर अग्ने माहे, जलत रहे मिट वे कब नाहे। राव हर की भगत ना देखे जाए, मार्ग छोड़ अमार्ग पाए। मूलो पूला आवे जाए, अमृत डार लाद बिख खाए। ज्यों बेसवा के परे अखारा, कापर पहर करे सिंगारा। पूरे ताल निहाले सास, वहां के गले जम का है फांस। जाके मस्तक लिखियो कर्मा, सो पज पर है गुर की सरना। कहत नाम दियो।

पुकार, संडा मर कह जाए पुकारे, पड़े नहीं हम ही पछारे। राम कहे कर ताल बजावे, चटिया सब बिगारे। राम नामा जप वो करे,

पर फड़ चित समाल सोए सदा सदा गोविंद। पोलिया हूँ मैं सुरत विसार, हूँ मैं मार विचार मन, गुण विच गुण ले सार रहाओ, कर्म पेड़ साखा हरी, धर्म फुल फल ज्ञान।

फैला। सगल पवन तेरी माया मोह, मैं अवर नदी सह सर्व तो हो। तू सुरनाथा देवा देव, हर नाम मिले गुरु चरण सेव। मेरे सुंदर गहर गंभीर लाल, गुरुमुख राम नाम गुण गाए। तू अपरंपर सर्व पाल रहाओ, बिन साध ना पाये हर का संग। बिन गुरु मैल मलीन अंग, बिन हर नाम ना सुध।

गुर संग दिखायो राम राय। मिल सकी सहेली हर गुण बने, हर प्रभ संग खेले वर कामन। गुरमुख खोजत मन मने रहाओ, मनमुखी दुहागण नाहे पेओ। ओ कट कट रावे सर्व प्रेओ, गुरमुख तिरची ने संग देओ। गुर नाम दृढ़ाया जप जपेओ, बिन गुर भगत न पाओ होए। बिन गुर संत ना संग दे, बिन गुर अंधले तंद रोए। मन गुरमुख निर्मल मल शब्द खोए।

तैसे संत जन राम नाम रवत रहे। मैं मूरख मुग्ध ऊपर करो दया, तौ शरणागत रहूं पया। कहत नानक संसार के ने फल कामा।

सालग्राम विप पूज मनावो, सुकृत तुलसी माला राम नाम जप बेड़ा बांधो, दया करो दयाला।

भोग करें ताके लखन जानिए खिमा तन संगरे कया सुने न छाया माने तिना ही सेती वासा प्रणवत नानक दासन दासा खिन सो लाखिन मासा बसंत हिंडोल मैला पहला साचा साहो गुरु सुखदाता हर मेले सुख गवाए कर कृपा हर भगत दृढ़ाए हम दिन हर गुण गाए मत पूले रे मन चेत हरी बिन गुरुमुखत नाही त्रैलोई गुरुमुख पाये नाम हरी रहाओ बिन भक्ति नहीं सतगुरु पाये बिन पागा नहीं भगत हरी बिन पागा सत्संग न पाये कर्म मिले हर नाम हरी कट कट गुप्त उपाय वेखे प्रगट गुरुमुख संत जना हर हर करे सो हर रंग पीने हर जल अमृत नाम मना जिन को तख्त

जा। राते साथ हर नाम निहाला, दया करो प्रभु दीन दयाला। तिस बिन अवर नहीं मैं कोए, ज्यों पावे त्यों राखे सोए। गुरु गोपाल मेरे मन पाए, रह ना सकूं दर्शन देखे।

अहंकारे गुर राखे वड पागी तारे जन नानक उर हर अमृत तारे बसंत महला तीजा हर सेवे सो हर का लोग साच सहज कदे न हो वै सोग मन मुख मोए नाही हर मन माहे मर मर जमे पी मर जाहे से जन जीवे जिन हर मन माहे साच समाले साच समाए राव हर ना सेवे ते हर ते दूर दिसंतर पवे सिर पावे तूर हर आपे जन लिए लाए तिल सदा सुख है तिल ना तमाए।

सब संभाल दरसा चै पक्षों कर जाए नानक नाम बड़ाई पाए बसंत महला तीजा अंतर पूजा मनते होए एको वेखे और न कोए दूजे लोकी बहुत दुख पाया सतगुर मैनु एक दिखाया मेरा प्रभु मौलिया सद बसंत ए मन मौलिया गाए गुण गोविंद राव गुर पूछो तुम करो विचार ता प्रभु साचे लगे प्यार आप छोड़ होए दासत पाए तो जग जीवन वसै।

आपे सतगुर मेल मिलाए, जग जीवन स्यों आप चित लाए, मन तन हरिया सह सुभाए, नानक नाम रहे लिव लाए, बसंत महला तीजा। भगत वचल हर वसै मन आए, गुर कृपा ते सह सुभाए, भगत करे विचों आप होए, तब ही सास मिलावा होए, भगत सोए सदा हर प्रभु द्वार, गुर कहे साचे प्रेम प्यार रहाओ। भगत करे सो जन निर्मल होए, गुर सबदी विचो हो मैं खोए, हर जियो आप वसै मन आए, सदा शांत सुख सह समाए, साच रते तिर

चित लावे, अपना प्रभ सेवे सहज सुभाए, नानक नाम वसै मन आए, बसंत महला तीजा, माया मोह शब्द जलाए, मन तन हरिया सतगुरु भाए, सफल्यो बिरख हर कै द्वार, साची बाणी नाम प्यार, ए मन हरिया सहज सुभाए, सच पल लागे सतगुरु भाए रहाओ, आपे नेड़े आपे दूर, गुर कै शब्द वेखे सद हजूर, छावकणी फूली बन राय, गुरमुख बिगते सहज सुभाए, अनदिन कीर्तन करे दिन रात, सतगुर गवाई विच्चों झूठ परात, परपंच वेख रहा विस्माद, गुरमुख पाये नाम प्रसाद, आपे करता सब रख भोग, जो किछ करे सोई पर होग, वड्डा दाता तिल ना तमाए, नानक मिलिए शब्द कमाए, बसंत महला तीजा, पूरे पाग सचकार कमावे, एक पोचे तै फिर जोन नावे, सफल जन्म इस जग में आया, सच नाम सहज समाया, गुरमुख कार करो लिव लाए, हर नाम सेवो विच्चों आप गवाए रहाओ, तिस जन की है साची बाणी, गुर कै शब्द जग माए समाणी, चहु जुग पसरी साची सोए, नाम रता जन प्रगट होए, इक साचे शब्द रहे लिव लाए, से जन

जिन सच सेविया तिन रस पाया, नानक सहजे नाम समाया, बसंत महला तीजा, भगत करें जन देख हजूर, संत जना की पग पंकज धूर, हर सेती सद रहे लिवलाए, पूरे सतगुरु दिया बुझाए, दासा का दास बिरला कोई होए, उत्तम पदवी पावे सोए रहाओ, एको सेवो अवर न कोए, जित सेवे सदा सुख होए, ना ओ मरे न आवे जाए, जिस बिन अवर सेवी क्यों आए, से जन साचे जिनी साच पछाणिया, आप मार सहजे नाम समाणिया, गुरमुख नाम प्राप्त होए, मन निर्मल निर्मल सच होए, जिन ज्ञान किया तिस हर तू जान, साच शब्द प्रभ एक सियान, हर रस चाखे ता सुध होए, नानक नाम रते सच

ले पाए सो बुझे जिस आग बुझाए सतगुरु सेवा नाम दृढ़ाए जिन एक जाता के जन प्रवान नानक नाम रते दा निशान बसंत मैला तीजा कृपा करे सतगुरु मिलाए आपे आप बसे।

शांत ना होए, बहु अभिमान अपनी पख होए, सेवड़ पागी जिन शब्द पछाणिया, बार जांदा कर में आणिया, कर में वक्त अगम अपारा, गुरमत खोजे शब्द विचारा, नाम नाम निद

सब संत हे मन मौलिया सतगुरु संग तुम साथ से आवो मुग्ध मना ता सुख पावो मेरे मना रहाओ इत मन मौलिया पया आनंद अमृत फल पाया।

पूरे पाग हर पगत कराए, इस मन को बसंत की लगे न सोए, ए मन चलिया दूजे दोए रहाओ, यो मन तंदे बांधा कर्म कमाए, माया मूठा सदा बिन लाए, ए मन छूटे जा सतगुरु पेटे, जम काल की फिर आवे ना फेटे, ए मन छूटा गुरु लिया छाए, नानक माया मोह शब्द जलाए, बसंत महला तीजा बसंत चढ़िया फूली बन राए, ए जी जंत फूले हर चितलाए, इन विद के मन हरिया होए, हर हर नाम जपे दिन राती, गुरमुख हो मैं कद्दे तोए रहाओ, सतगुर पाणी शब्द सुनाए, ए जग हरिया सतगुर पाए, फल फूल लागे जा आपे लाए, मूल लगे ता सतगुर पाए, आप बसंत जगत सब वाड़ी, नानक पूरे पाग।

तूर्तिना की अकुली है पाए, सत्संगत मेल मिलाए, आप कराए करे आप भाई, जिन हरिया की आ सब कोए, नानक मन तन सुख।

रहाओ। काट काट अंतर एको हर सोए, गुर मिलिया एक प्रगट होए। एको एक रहा परपूर, साकत नर लोभी जाने दूर। एको एक वर्ते हर लोए, नानक हर एको करे सो होए। बसंत महला चौथा, रैन दिनस दोए सदे पए। मन हर सिमरो अंत सदा रख ले, हर हर चेत सदा मन मेरे। सब आलस दुख पंज प्रभ पाया, गुरमत गावो गुण प्रभ के रे रहाओ। मन मुख फिर हो मैं मोए, काल दैत संगारे जमपुर गए। गुरमुख हर हर हर निम लागे, जन्म मरण दो दुख पागे। भगत जना को हर कृपा धारी, गुरु नानक तुखा मिले।

राम नाम रतन कोठड़ी घर मंदिर एक लुकानी, सतगुर मिले तां खोजिए मिल ज्योति ज्योत समानी। माधो साधु जन देव मिलाए, देखत दर्श पाप सब नासे, पवित्र परम पद पाए राव। पंच चोर मिल लागे नगरिया, राम नाम तन हिरिया, गुरमत खोज परे तब पकरे, तन साबत रास उभरिया। पाखंड परम उपाव कर थाके, रिद अंतर माया माया, साधु पुरख पुरख पत पाया, अज्ञान अंधेर गवाया। जगन्नाथ जगदीश गुसाई, कर कृपा साध मिलावे, नानक शांत होवे मन अंतर, नित हृदय हर गुण गावे। बसंत महला चौथा हिंडोल, तुम वड पुरख वड अगम गुसाई, हम कीरे किरम तुम नछे, हर दीन दयाल करो प्रभ कृपा, गुर सत गुर चरण हम बन छे। गोविंद जी ओ सत संगत मेल कर कृप छे, जन्म जन्म के किल विख मल परया।

हम किए पतत पवीछे बसंत ही डोल मैला चौथा। मेरा एक छिन मनुआ रह न सके नित हर हर नाम रस की दे जो बारिक रसक पर्यो थन माता थन का दे बिलल बिली दे गोविंद जी ओ मेरे मन तन नाम हर जी दे।

जन जप्यो नाम निरंजन नरहर, उपदेश गुरु हर प्रीदे, जन्म जन्म की हौ मैं मल निकसी, हर अमृत हर जल नीदे। हमरे कर्म ना बिचरो ठाकुर, तुम पैज रखो अपनी दे, हर पावे सुन बिनो बिनंती, जन नानक शरण पवी दे। बसंत हिंडोल मेला चौथा, मन खिन खिन परम परम बहुत आवे, दिल कर नहीं वाता पाई है, गुर अंकत शब्द दारू सिर तारियो, कर मंदर आन वसाई है। गोविंद जी ओ सत्संगत मेल हर त्याई है, हूँ मैं रोग गया सुख पाया, हर सहज समाग लगाई है रहाओ। कर रतन लाल बहु मानक ला दे, मन प्रम्या लह ना सकाई है, जो ओडा कूप गोज खिन काड़े, जो सतगुर वस्त लहाई है। जिन ऐसा सतगुर साधना पाया, ते त्रिग त्रिग नर जीव आई है, जन्म पदार्थ पुन फल पाया, कौडी बदले जाई है। मधुसूदन हर तार प्रभ कृपा, कर कृपा गुरु मिलाई है, जन नानक निर्वाण पद पाया, मेरे साधु हर गुण गाई है। बसंत हिंडोल मेला चौथा, आवन जान पया दुख बिख्या, दे मन मुख सुन्जी सुन्य, राम नाम खिन पल नहीं चेत्या, जम पकड़े काल सलुंज। गोविंद जी ओ बिखो मैं ममता मुंज, सत संगत गुर की हर प्यारी, मिल संगत हर रस कुंज। राव सत्संगत साध दया कर मेलो, शरणागत साधु पंज। हम डूबदे पाथर काट ले हो प्रभ, तुम दीन दयाल दुख पंज, हर उस्तत तार और

फूल लगे फल रतन पांत, त्रिपद अगा में हर गुणे गाए, जन नानक हर हर हर त्याए, बसंत महला पंजवा हटवाणी।

पंजवा इस बसंत जिस प्रभ कृपाल, इस बसंत जिस गुरु दयाल, मंगल तिस कह जिस एक काम, इस सद बसंत जिस

मन आधा ना हर रसें स्वाद, सेवक लागो चरण सेव, आद पुरख अपरंपर देव, सगल उदाहरण तेरो नाम, नानक पायो इहो निधान, बसंत महला।

मोहि निर्गुण इक गुण ना जान। हौ कछु न जानो तेरी सार, तू करगत मेरी प्रभ दयार रहाओ।

तरों टेक, सर्व कला प्रभ तुम पर बीन, अंत न पावे जलह मीन, अगम अगम ऊंचे ते ऊंच, हम थोरे तुम बहुत मूच, जिन तू त्याया से गनी, जिन तू पाया से पनी, जिन तू सेव्या सुखी से, संत शरण नानक।

लागे। एवड पाग हो है जिस प्राणी सो पाए ए पद निर्वाणी रहाओ। दूजी सेवा जीवन बिरखा कछु न होई है पूरन

सुना बसंत महला पंजवा जिस बोलत मुख पवित होए जिस सिमरत निर्मल है सोए जिस आरादे जम किछ ना कहे जिसकी सेवा सब किछ लहे राम राम।

नानक जन हर हर त्याए। बसंत महला पंजवा, मन तन पीतर लागी प्यास, गुरदयाल पूरी मेरी आस, किलविख काटे साध संग, नाम जप्यो हर नाम रंग, गुर प्रसाद बसंत बना, चरण कमल हृदय उधारे, सदा सदा हर जस सुना रहाओ। समरथ स्वामी कारण करण, मोहे अनाथ प्रभ तेरी शरण, जी जंत तेरे आधार, कर कृपा प्रभ लेहि।

राम रंग सब गए पाप, राम जपत तक नहीं संताप, गोविंद जपत सब मिटे अंधेर, हर सिमरत कछना है फेर, बसंत हमारे राम रंग, संत जना स्यों सदा संग रहाओ, संत जनी किया उपदेश, जय गोविंद भगत सो तन देश, हर भगत हीन उद्यान थान, गुर प्रसाद कट कट पछान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग, निकट पेख

जत नानक स्वामी सद हजूर बसंत महला पंजवा सच परमेश्वर नित नवा गुर कृपा ते नित चवा प्रभ रख वाले माई बाप जा कै सिमरन नहीं संताप खसम त्याई इक मन इक भाए गुर पूरे की सदा शरणाई साचे साहिब रखिया कंठ लाए रहाओ अपने जन प्रभ आप रखे दुष्ट दूत सब प्रम थके बिन गुर साचे नहीं जाए दुख देश दुसंतर रहे ताए किरत ओना का मिटस नाहे ओए अपना बीजिया आप खाए जन का रखवाला आप सोए जन को पहुँच ना सकस कोए प्रभ दास रखे कर जतन आप अखंड पूरन जाको प्रताप गुण गोविंद नित रसन गाए नानक जी वह हर चरण ध्याए बसंत महला पंजवा गुर चरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रभ करी मया सर्व मनोरथ पूरन काम जप जी वह नानक राम नाम सारुत सुहावी जित हर्षित आवे बिन सत गुरु दी सह बिल लांती साकत फिर आवे जावे रहाओ।

पद पाया, गुर मिल नानक खसम ते आया, साध संगत प्रभ की ओ निवास, हर जप जप होई पूरन आस, जल थल मई अल रव रया, गुर मिल नानक हर हर कया, अष्ट सिद्ध नव निद एहे, करम प्राप्त जिस नाम देहे, प्रभ जप जप जीवे तेरे दास, गुर मिल नानक कमल परगास, बसंत महला पंजवा कर पहला, इक तुके इको अंकार, सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जप पुनिया, प्रभ मेले चिरी विछुनिया, तुम रवो गोविंद रवन जोग, जित रवे सुख सहज भोग रहाओ, कर कृपा नदर निहालिया, अपना दास आप संभालिया।

सुना मन मौल्यो हर चरण संग कर कृपा साधु जन बेटे नितरा तो हर नाम रंग रहाओ कर कृपा।

नानक प्रभ कृपा भई। बसंत महला पंजवा, रोग मिटाए प्रभु आप, बालक राखे अपने कर थाप। सांत सहज गृह सद बसंत, गुरपुरे की सरणी आए। कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाओ। सोग संताप कटे प्रभु आप, गुर अपने को नित नित जाप। जो जन तेरा जपे नाओ, सब फल पाए निचल गुण गाओ। नानक भगता पली रीत, सुखदाता जप दे नीत नीत। बसंत महला पंजवा, हुकम कर कीने निहाल, अपने सेवक को पया दया।

देख फूल फूल फूले अहं त्याग त्यागे चरण कमल पागे तुम मिलो प्रभ सभागे हर चेत मन मेरे रहाओ सगन बास कूले इत रहे सूख।

उठ स्नान करो प्रभाते, सोए हर आराधे बिखड़े दाव लंघावे मेरा सतगुर, सुख सहज से ती कर जाते। हर आपे खेले आपे देखे, हर आपे रचन रचाया, जन नानक गुरमुख जो नर खेले, सो जिन बाजी कर आया। बसंत महला पंजवा हिंडोल, तेरी कुदरत तू है जाने और न दूजा जाने, जिसनो कृपा।

है भाणा कहो नानक टह पया द्वारे रख ले वो मुग्ध अजाना बसंत हिंडोल मेला पन्नवा मूल न बूझे आप न सूझे परम व्यापी अहं मनी पिता पार ब्रह्म प्रभु।

जानो या पीतर जो राम बसत है साचो तहे पछानो रहाओ। यो जग है संपत सुपने की देख कहाँ ऐडानो। संग तिहार है कछु न चाले ताहे कहाँ लपटानो। उस्तक निंदा दो पर हर हर कीरत उर्यानो। जन नानक सब ही मैं पूरन एक पुरख भगवानो। बसंत महलानो।

बसंत महला नावा मन कहां बिसार्यो राम नाम तन बिन सह जम स्यो परे काम रहाओ एहो जग तुए का पहार तै साचा मानिया के विचार तन दारा संपत ग्रहे कछ संग ना चाले समझ ले एक पवित्र नारायण।

के गाए, बसंत महला पहला, अष्टपदियां कर पहला, दो तुकियां एक ओंकार, सतगुरु प्रसाद।

नानक ठाडे चाहे प्रभु द्वार, तेरे नाम संतोखे कृपा धार। बसंत महला पहला मन फूलो परमस आए जाए, अत लुभद लुभानो विकम माए, नह अस्थिर दिसे।

सतगुर मिले मत उत्तम होए, मन निर्मल हो मैं कदे धोए, सदा मुक्त बंध ना सके कोए, सदा नाम बखाने और ना कोए, मन हर कै पा

दुख से न भावो, नानक हूँ मैं शब्द जलाया, सतगुरु साचा दर्श दिखाया, बसंत महला पहला, चंचल चीत न पावे पारा, आवत जात न लागे बारा, दुख कणो मरिए कर तारा, बिन प्रीतम को करे न सारा, सब उत्तम किस आखो ही ना, हर पगती सचना।

योग व्यापे कट कट रव रहा प्रव जापे सुख दुख ही ते गुर शब्द अतीता नानक राम रवे हित चीता बसंत महला पहला एक तुकिया मत पसम अंधूले।

है गुण नानक बोले पली बाण तुम हो सुजा खेल हो पछाण बसंत महला पहला दुबदा दुर्मत अगली कार मन मुख पर मैं मजगुबार मन अंधला अंधली मत लागे गुर करनी बिन परम ना पागे रहाओ मन मुख अंधले गुरमत ना भाई पशु भय अभिमान ना जाए लख चौरासी जंत उपाए मेरे ठाकुर भाणे सिर समाए सगली पूले नहीं शब्द अचार सो समझे जिस गुर करतार गुर के चाकर ठाकुर भाणे बख्श लिए नाही जमकाने जिनके हृदय एको भाया आपे मेले परम चुकाया बे मोहताज बे अंक अपारा सच पति जय करने हारा नानक पूले गुर समझावे एक दिखावे साच टिकावे बसंत महला पहला आपे पौरा फूल बेल आपे संगत नीत मेल ऐसी

वे चौहत दिए एका एका वारी मेहरवान मधुसूदन माधो ऐसी सकत तुम्हारी रहाओ कर कर लश्कर पावक तेरा धर्म करे सिकदारी करती देग मिले इकवेरा पाव तेरा भंडारी ना साबूर होवे फिर मंगे नारद करे खुआ।

कर कर सिफत तुम्हारी, तीरथ सिमरत पुन दान किचला मिले दिहाड़ी, नानक नाम मिले वड़ियाई मेका कड़ी समाली, बसंत हिडोल कर दूजा महला चौथा इको अंकार सतगुर प्रसाद। पाया नगर एक बालक वसिया खिन पल थिर ना रहाई, अनेक उपाव जतन कर खाके बारंबार परमाई, मेरे ठाकुर बालक इकत कर आन सतगुर मिले ता पूरा पाई।

आपे जल अपवंतर करता आपे मेल मिलावे नानक गुरमुख सहज मिलाए जो जल जल है समावे। बसंत महला पंजवा कर पहला दो तुकिया इको अंकार सतगुर प्रसाद सो साखी।

ले मस्तक लावो कर कृपा देन रहाओ। गनका उदरी हर कह तोत, गज इंद्र त्यायो हर कियो मोक। विप्र सुदा में दाल दुपंज, रे मन तू भी पज गोविंद। बदक उदार्यो खम प्रहार, कुबजा उदरी अंगुष्ट धार। बिदर उदार्यो दासत भाए, रे मन तू भी हर ध्याए। प्रहलाद रखी

भगत बिहुना खंड खंड बिन बूझे जम देत दंड गोविंद पजो मेरे सदा मीत साथ शब्द कर सदा प्रीत रहाओ।

आ जा कब मंगन हार, दुख सुख बाधो संसार, मन उदरण का साजना है, पाप बंधन नित पौत जाहे, ईट मीत को सखाना है।

अपार कर कृपा लड़ने हो लाए, नानक दास प्रभु की शरणाए। बसंत की वार महला पंजवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। हर का नाम ते आए कै हो वरिया भाई, कर्म लिखन तय पाई है ए रुत सुहाई। वन त्रिन त्रिभुवन मौलिया अमृत फल पाई, मिल साधु सुख उपजे लखी सब छाई। नानक सिमर एक नाम फिर बहुर न पाई, पंजे बदे महाबली कर सच्चा ढोआ। अपने चरण जपायन विच दया खड़ोआ, रोग सोग सब मिट गए नित नवा निरोआ। दिन रह नाम से आयदा फिर पाए न मोआ, जिस ते उपजिया नाम का सोई फिर होआ।

अगम अगोचर साहेबो दूसर लवेन लावे सच पूरे गुर उपदेशिया नानक सुनावे बसंत माणी भगतां की कबीर जी कर पहला इकोंकार सतगुर प्रसाद मौली तरती मौलिया आकाश कट कट मौलिया आत्म प्रगास राजा राम मौलिया।

ओए परम पुरुष देव आदि देव भगत हेत नरसिंह देव सह कबीर को लख न पार प्रहलाद उधारे अनेक बार इस तन मन मदे मदन चोर जिन ज्ञान रतन हिरलीन मोर मैं अनाथ प्रभु कहो काहे को ना बिगू तो मैं को आहे माँ दो दारन दुख सहो न जाए मेरो चपल बुद्ध स्यों कहा बसाए रहाओ सनक सनंदन शिव सुकाद नाभि कमल जाने ब्रह्माद कब जन जोगी जटा तार सब आपन अवसर चले सार तू अथाओ मोय था नाहे प्रभु दीना नाथ दुख कहो।

चलो बनजारा हाथ चार पूंजी हिरानी बनज टूट जैस तांडो गयो फूट कह कबीर मन सरसी काज सहज समानो ता परम पाज बसंत हिंडोल कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। माता जूठी पिता भी जूठा जूठे ही फल लागे आवे जूठे जाए भी जूठे जूठे मरे अभागे

बैठ खाया, गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा, कह कबीर तेई नर सूचे, साची परी बिचारा।

गुरु का शब्द काटे कोट कर्म, बसंत बाणी नाम देव जी की इको ओंकार। सतगुरु प्रसाद साहिब संकट वे सेवक पजे, चिरंकाल न जीवे दो कुल लजे। तेरी भगत न छोड़ो पावे लोग हसे, चरण कमल मेरे हीरे बसे। रहाओ जैसे अपने तने प्राणी मरण मांडे, तैसे संत जना राम नाम ना छाडे। गंगा गया गोदावरी

कते त्रुट चुहाकती सर सोवन चाली लाडली रहाओ तोबी तोवे बिरह बिराता हर चरण मेरा मन राता पणत नाम दियो रम रहा अपने भगत पर कर दया बसंत बाणी रविदास जी की इको ओंकार सतगुरु प्रसाद तुझे सुजनता कछु नाहे पहरावा देखे उब जाहे गर्भवती का नाही ठाओ तेरी गर्दन ऊपर लवे काओ तू काए गर्भे बावली जैसे पादो खूब राज तू

रविदास जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जोन काम बसंत कबीर जियो इको ओंकार सतगुर प्रसाद सुर है की जैसी तेरी चाल तेरी पूंछ ऊपर चमक बाल इस पर में है सो

मन मानिया हर पाए प्राण आधारा रहाओ। इन विद हर मिलिए वर कामन तन सुहाग प्यारी जात बरन कुल सहसा चूका गुरमत शब्द बिचारी। जिस मन माने अभिमान ना

अंतर रतन पदार्थ हित को दुरै ना लाल प्यारी। नानक गुरमुख नाम अमोलक जुग जुग अंतर धारी। सारंग महला चौथा कर पहला इको अंकार। सतगुर प्रसाद हर के संत जना की हम धूर। मिल सत्संगत परम पद पाया आत्म राम रहा भरपूर। रहाओ सतगुर संत मिले सांत पाये। दिल विच दुख काटे सब दूर। आत्म ज्योत पई पर

साथ वसै मन आए, गुरु कृपाल पै तब पाया, हर चरणी चित लाए, मत पर दास पई हर प्याया, ज्ञान तत् लिव लाए, अंतर ज्योत प्रगति मन मानिया, हर सहज समाध लगाए, हृदय कप

मेरा मन राम नाम मन माने, मेरे ही रह सतगुरु प्रीत लगाए, मन हर हर कथा सुखानी रहाओ। दीन दयाल हो वो जन ऊपर, जन देवो अकथ कहानी, संत जना मिल हर रस पाया, हर मन तन मीठ लगानी, हर कै रंग रते बैरागी, जिन गुरमत नाम पछानी, पुरख है पुरख मिलिया सुख पाया, सब चूकी आवन जानी,

तिल तिल पल पल औध फुल घाटे, बूझ न सके गवार सो किस करे जे साथ न चाले, त्यो साकत का आचार संत जना कैसा।

जप मन जगन्नाथ जगदीशरो जग जीवनो मन मोहन स्यों प्रीत लागी। मैं हर हर हर टेक सब दिन से सब रात रहाओ। हर की उपमा अनेक अनेक अनेक गुण।

हर कै निकट निकट हर निकट ही बसते ते हर के जन साधु हर पगात ते हर के जन

वाजे पंच शब्द वद पाग मथोरा। तिन जन के सब पाप गए, सब दोख गए, सब रोग गए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए। तिन जन के हर मार कदे पंच चोरा। हर राम बोलो हर साधु, हर के जन साधु जगदीश जपो। मन बचन कर्म हर

जगदीश्वरा मन इच्छे फल पावो सबे फल पावो धर्म अर्थ काम मोख जन नानक हर सो मिले हर भगत तोरा सारंग मेला चौथा जप मन मादो मधुसूदन।

जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निधान, सब सृष्टता प्रभो मेरे मन हर बोल हर पुरुष अविनाशी रहाओ। हर का नाम अमृत हर हर हरे सो पिए जिस राम प्यासी, हर आप दयाल दया कर मिले जिस सतगुरु सो जन हर हर।

अंतर प्यास चात्रिक ज्यो जल की सफल दर्शन कद पाओ रहाओ अनाथा को नाथ सर्व प्रतपालक भगत वत्सल हर नाओ जाको कोई

निष्बासुर नक्षत्र विनाशी रवसस्यर बेनादा गिर बसदा जल पवन जायगो एक साध बचन अटलादा अंध विनाशी जेर विनाशी उत्पुज सेत बिनादा चार विनाशी खटे विनाशी एक साध बचन नहीं चलादा राज विनाशी ताम विनाशी सातक पी बेनादा दृष्टमान है सगल विनाशी एक साध बचन आगादा आपके आप ही आपे सब आपन खेल दिखादा पायो न जाई।

अब मोहे राम परोसो पाए, जो जो शरण पर्यो करुणानिद ते पाए कराए रहाओ। सुख सोयो अर सहज समायो, सहसा गुरहे गवाए। जो चाहत सोई हर कियो, मन बांचत फल पाए। हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो, श्रवणी कथा सुनाए।

गोविंद ना पजय अहं बुध माता, जन्म जूए ज्यों हारे रहाओ। नाम अमोला प्रीत ना तिस्यो, पर निंदा हितकार है। छापर बांध सवार त्रिण को, द्वार पावक जा रे। कालर पोट उठा।

अवर सब फूले प्रमत ना जानिया, एक सुदाखर जा कह हृदय वस्या, इन वेदें तत पछानिया रहाओ, परविरत मार्ग जेता किस हो।

जगदीश हैं। खोजत खोजत ए बिचारियो सर्व सुखा हर नामा, कहो नानक किस पयो प्राप्त जां कै लेख मथामा। सारंग महला पंजवा, अन दिन राम के गुण कही है, सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध मन बांचत फल लइए रहाओ। आवो संत प्राण सुख दाते सिमरन प्रभ अविनाशी, अनाथे नाथ दीन दुख पंजन पूर रहो खटवासी। गावत सुनत सुनावत सरदा हर रस पी वड पागे, कल कलेश मिटे सब तंते राम नाम लिव जागे।

आइए उपदेश हमारी गत करन रहाओ। दुख रोग तय सगल बिना से जो आवे हर संत शरण। आप जपे अवरे नाम।

कैसे कहूँ मोहे जी वेदनाई, दर्शन प्यास प्रिय प्रीत मनोहर, मन ना रहे बहुविद उमकाई रहाओ। चितवन चितवो प्रिय प्रीत बैराग।

आयो मानस जन्म गुलवाई गर्भ जून छोड़ जो निकसो तौ लागो अनठाही करें बुराई ठगाई दिन रहन नेफल कर्म कमाही कान नाही तो गाहन लागे ताए ताए दुख पाही।

सो मिलिया जो प्रभु मिलाया, जिस मस्तक लेख लिखाही, कहो नानक किन जन बलिहारी, जो अल्प रहे मन माही। सारंग महला पंजवा, क्यों जीवन प्रीतम बिन माई, जाके बिछड़त होत मृतका, गृह में रहन न पाई। रहाओ जी ही प्राण को दाता, जाके संग सुहाई, करो कृपा।

मन कहाँ लुभाये आन कहो, ईत ऊत प्रवसदा सहाय, जी संग तेरे काम को रहाओ, अमृत नाम प्रिय प्रीत मनोहर, यह अगावन पान को, अकाल मूर्त है साध संतन की, ठहरनी की ध्यान को, बाणी मंत्र महापुरुषन की, मने उतारन मान को, खोज लहो नानक सुख थाना, हर नामा विश्राम को, सार मेला पंजवा, मन सदा मंगल गोविंद गाए, रोग सोग तेरे मिटे सगल।

आए मात पिता पाई नानक को सुखदाता हर प्राण साए। सारंग महला पंजवा हर जन सगल उधारे संके पहे पुनीत पवित्र मन जन्म जन्म के दुखारे। रहाओ मार्ग चले तिनी सुख पाया जिनसो गोष्ट से तरे बूढ़त कोर अंधकूप में ते साधु संग पार परे। जिनके पाग बड़े हैं पाई तिन साधु संग मुख जुरे तिनकी

मोहन काया वो करो जो दरिया, मान करो अभिमान बोलो फूल चूक तेरी प्रचरिया रहाओ, निकट सुनो अर देखो नाही परम परम दुख परिया, हुए कृपाल गुर लाहे पार दो मिलो लाल मन हरिया, एक निमक जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिन सलक बनिया, साध संगत की पीर जो पाई तो नानक हर संग मिलिया, सारंग महला पन्नवा अब क्या सोचो।

प्रम तो हार जो पड़े हो तो गुर मिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया हे सुख बिहानी राते सार महला पंजवा अब मोहे लब दियो है हर टेका गुर दयाल पै सुखदाई अंधुले मानक देखा रहा।

जो अल कमला लो भांगे गुण निधान मनमोहन लाल ने सुखदाई सर्वांगे गुरु नानक प्रभु पाहे पठायो मिलो सखा गल लागे सार महला पंजवा अब मोरो ठाकुर स्यो मन माना साध कृपाल दे।

बिसरियो तंद बंद माया को रजन सबाई जंगा रहाओ हर सेवो हर हृदय बसावो हर पाया सत्संगा ऐसो मिलियो मनोहर प्रीतम सुख पाए मुख मंगा प्रयो अपना गुर बसर दीना पोगो पोग निसंगा निरपो पै नानक पौ मिटिया हर पायो पाठंगा सारंग महला पंजवा हर जियो के दर्शन को कुर्बानी बचन नाद मेरे श्रवनो पूरे देहा प्रय अंक समानी रहाओ सूतर ते गुर की सुहागन हर पायो सुग

पाया। हर भगत पंडार खजीना सार महला पंजवा मोहन सब जी तेरे तू तारे छुटे संगार निमक कृपा ते कोट ब्रह्मंड उदारे रहाओ करें अरदास बहुत बेनंती निमक निमक समारे हो कृपाल दीन दुख पंजन हाथ दे निस्तारे क्या ए पूपत बपरे सही है कहो ए किसनो मारे राख राख राख सुख दाते सब नानक जगत तुम्हारे सारंग महला पंजवा अब मुए तन पायो हर नामा पहे अचिंत कृष्ण सब बुझी है यो लिखियो लेख मथामा रहाओ खोजत खोजत पयो बैरागी फिर आयो दुहे गिरामा गुर कृपाल सौदा ए जोरियो हप करियो लाल अगामा आन बपार बनज जो करिये ते दुख सहामा गोविंद भजन के निरपै व्यापारी हर रास नानक राम नामा सार महला पंजवा मेरे मन मिष्ट लगे प्रे बोला गुरबां पकड़ प्रभ सेवा लाए सब दयाल हर टोला रहाओ।

चिलवित गए मन निर्मल होई है। गुर का दे माया द्रोहं कहो नानक मैं सो प्रभ पाया। करण कारण समर्थो हं सारं महला पंजवा नैनो देखो चलत तमासा। सबहु दूर सबहु ते नेरे अगम अगम कटवासा। रहाओ अपूल ना पूले लिखो ना चलावे मता ना करे पचासा। किन में साज संवार बिना है भगत वचल गुण तासा। अंधकूप में दीपक बलियो गुर हृदय कियो परगासा। कहो नानक दर्श पेश।

गुर मिल ऐसे प्रभु के आया, कयो कृपाल दयाल दुख पंजन, लगे न ताकी बाया रहाओ, जेते सास सास हम लेते, तेते ही गुण गाया, निमक न बिसरे करी न बिसरे, सद संगे जत जाया, हों बल बल बल बल चरण कमल को, बल बल गुर दर्शाया, कहो नानक काहू परवाह, जो सुख सागर में पाया, सारंग महला पंजवा, मेरे मन शब्द लगो गुर मीठा, खुलियो कर्म पयो।

में और द्वितीय आकाश बिराते नैन तृप्ता से देख दर्शावा गुरकर तहारे में रह माते सहु नानक मैं अतुल सुख पा।

लाड लड़ावे सदा सदा अनदाई प्रतपाले बार की न्याई जैसे मात पिताई तिस बिन निमख नहीं रह सकिए बिसरना कब हूँ जाई। कहो नानक मिल

की जय। सुखदाता प्रभु ध्यान यह रहाओ, सुख मंगल कल्याण जिसे घर तिस ही शरणी पाये, तिसे त्याग मानुष जे सेवो तो लाज लोन हो जाये। एक ओट पकड़ी ठाकुर की गुर मिल मत बुध पाये, गुण निधान नानक प्रभ मिलिया सगल चुकी मोहताये। सारंग महला पंजवा, ओट सतानी प्रभ जियो मेरे दृष्ट ना लिया वो अवर।

जीवन पाया बिनती नानक हिसार है सारंग महला पंजवा मन के पै पौ दूर पर आयो लाल दयाल गुलाल लाडले सहज सहज गुण गायो रहाओ गुर बचनात समात कृपा से बहुर न कथु धायो रहत उपाद समाद सुख आसन भगत वछल गृह पायो नाद विनोद कोड आनंदा सहजे सहज समायो करना आप करावन आपे।

वड समरथ सदा सत्संगे गुण रसना कवन भाना खान पवित्रा मान पवित्रा पवित्र सुनन कहन हारे कहु नानक तिल पवन।

अपने पैमान अपने पैताना अपने ही पै अर्था किन्ही राज जोबन तन मिलखा किन्ही बाप महतारी सर्व थोक नानक गुरु।

अनेक काज अनेक तावरता पुरजियो आन जंजारी रहाओ ज्यो सुचार के दिशे संगी उहा नाही जह भारी तिन्स्यों राच मात हित लायो।

जिन संतन जानिया तू ठाकुर ते आए परवान, जन का संग पाये वडभागी, नानक संतन कै कुर्बान। सारंग महला पंजवा, करो गत दयाल संतो मोरी, तुम समरथ कारण करना, टूटी तुम ही जोरी रहाओ। जन्म जन्म के बिकी तुम तारे, सुमत संग तुम्हारे पाए, अनेक जोन प्रमते।

कहो नानक जिन जगत ठगाना सो माया हर जन ठागी। सारंग महला पंजवा अब जन ऊपर को ना पुकारे पुकारन को जो उदम।

गुर कै बचन जप्यो नाउ नानक प्रगट पयो संसार है सारंग महला पंजवा हर जन छोड़िया सगला आप ज्यो जानो त्यों रखो गुसाई पेख जीवा प्रताप रहाओ गुर उपदेश साध की संगत बिनस्यो सगल संताप मित्र सत्र पेख समत विचार्यो सगल संबाखन जाप तपत बुझी शीतल आघाने सुन अनहद विषम पै विषमाद अनद भया नानक।

तिस गुर कह जाइए बलिहारी, सदा सदा हो वारिया रहाओ। गुर का नाम जपियो दिन राती, गुर के चरण मन धारिया।

सब नासै साध संग हित लावे रहाओ। हर हर हर हर मन आराधे रसना हर जस गावे सज अभिमान काम क्रोध निंदा वासुदेव रंग लावे दामोदर दयाल आराधो गोविंद।

आन उपाव त्याग जन सगले चरण कमल रिद धारे प्राण आधार मीत साजन प्रभ एक है एकंकार सबते ऊंचे ठाकुर नानक का बार बार नमस्कार है सारंग महला पंजवा।

बाशत फल पावो सहु नानक लाभ लहा ले चालो सुख सेती कर जावो सारंग महला पंजवा ठाकुर तुम शरण आई आया उतर।

समाये अनद अनद गुण गाया। बाँ पकड़ कदली ने अपने ग्रह अंधकूप से माया। कहो नानक गुर बंधन काटे बिछरत आन मिलाया। सारंग महला पंजवा। हर के नाम की गत ठांडी वेद पुराण सिमरत साधु जन। खोजत खोजत काढ़ी रहाओ शिव ग्रंथ अर इंद्र।

एक सस्यो लिवलाओ कहो नानक ताकी शरणाई देश सगल अपियाओ सारंग महला पंजवा होती नहीं कवन कछ करनी यह ओट पाई मिल संते गोपाल एक की सरणी रहाओ पंच दोष छिदर या तन में दिखे ब्याद की करनी।

पै हरणी मन बांछत चितवत नानक दास देख जीवा प्रभ चरणी सारंग महला पंजवा सीते हर के नाम बिन साध अमृत रस कीर्तन हर गाय।

जियो प्राण आधार तेरा, तून थावे थाओ सास सास संभाल हर हर, नानक सद बल जाओ सारंग महला पंजवा, बैकुंठ गोविंद चरण नित त्याओ, मुक्त पदार्थ साधु संगत अमृत हर का नाओ रहाओ, उत्तम कथा सुनी जय श्रवणी, मया करो भगवान आवत जात दो पख पूरन, पाये सुख विश्राम सोदत सोदत सत विचार्यो, भगत श्रेष्ठ पूरी कहो नानक इक राम नाम बिन, अवर सगल विद उरी सारंग महला पंजवा, साचे सतगुरु दा तारा दर्शन देख सगल दुख नाते, चरण कमल बलिहारा रहाओ, सत परमेश्वर सत साध जन नेचल हर का नाओ, भगत पावनी पार ब्रह्म की अविनाशी गुण गाओ, अगम अगोचर मित नहीं पाये सगल कटा आधार, नानक वाहो वाहो कहो ताको जाका अंत न पार, सारंग महला पंजवा गुर के चरण बसे मन मेरे, पूर रहो ठाकुर सब थाई निकट बसे सब नेरे रहाओ, बंधन तोर राम लिवलाई संत संग बन आई।

कहत सुनत किछ शांत ना उपजत बिन विश्वास क्या देखा प्रभु त्याग आन जो चाहत ता कह मुख लागे का लेखा जा कह रास सर्व सुख स्वामी आन न मानत देखा नानक दर्श मगन मन मोहयो पूरन अर्थ विशेखा सारंग महला पंजवा सिमरन राम को

जन्म मरण संकट ते छूटे, जगदीश भजन सुख ध्यान, तेरी शरण पूरन सुख सागर, कर कृपा देवो दान। सिमर सिमर नानक प्रभु जीवे, बिरस जाए अभिमान। सारंग महला पंजवा, तुरत सोई जे तुर को लागे, सोई तुरंतर सोई बसंदर।

एहो साध को आचार चरण कमल अस्थित रिद अंतर पूजा प्राण को आधार प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती कृपा अपनी धार नाम निधान उचरो नित रसना नानक सद बलिहार सारंग महला पंजमा हर के नाम हीन मत थोरी सिमरत नाहीं श्री कर ठाकुर मिलत अंध दुख कोरी।

ना है जप तप संयम कर्म सुख साधन तुलना कछु वैला है चरण कमल नानक मन भेद्यो चरण संग समाए सारंग महला पंजवा मेरा प्रभ संगे अंतर जामी आगे कुशल पाछे खेम सूखा।

पंजवा जीवत राम के गुण गाए करो कृपा गोपाल बीठले बिसरना कभी जाए रहाओ मन तन तन सब तुमरा स्वामी आनना दूजी जाए जो तू राखे तिव ही रहना तुमरा पेने खाए साध संगत के बल बल

आप भुलाया बिखे ठगौरी पियो रहाओ। कोट जन्म प्रम तो बहु भांति थित नहीं कठू पाई पूरा सतगुरु सहज।

पीवत अम्यो मनोहर हर रस जप नानक हर बिस्माद। सारंग महला पंजवा कीने पाप के बहु कोट दिन सरे।

पूरन होत न कथो बातें अंत पर तिहार रहाओ। शांत सुख ना सहज उपजे यह इस व्यवहार, आप पर का कछ न जाने काम करो दे जार। संसार सागर दुख व्यापियो दास ले वो तार। चरण कमल

नानक जोन प्रवीण गोविंद बिसरे कवन दुख गनिया सुख नानक हर पद चीन सारंग महला पंजवा मायरी चरने ओट गही दर्शन पेख मेरा मन मोहयो।

ना प्रभ त्याए रतन जन्म अपार जीतियो बौड़ जोन ना पाए पय कृपाल दयाल गोविंद पया साधु संग हर चरण रास नानक पाए।

मानो द्वितीया पाओ सब लुहराओ त्याग गोपाल अवर जो करना ते बिखिया के खूह दर्श प्यास मेरा मन मोयो काडी नरक ते तू संत प्रसाद मिलियो सुखदाता बिनसी हो मैं हूँ राम रंग राते दास नानक मौलियो मन तन जूह सारंग महला पंजवा।

गोविंद गुप्त होए रहो न्यारो, मत अंग मत अहंकार, कर कृपा प्रभ संत राखे, चरण कमल आधार, कर जोर नानक शरण।

कहो नानक हर त्याए अब रहे जमे मेल सारंग महला पंजवा कंचना बहु दत करा पूम दान अर्प करा मन अनिक सोच पवित्र करत नाही रे नाम तुल मन

सेवक पै दूर करन कलमल दोख जारे, कहत मुक्त सुनत मुक्त रहत जन्म रहते, राम राम सार भूत नानक तत बिचारे, सारंग महला पंजवा नाम भगत मांग संत त्याग सगल कामी, रहाओ प्रीत लाए हर त्याए गुण।

का स्योन्यो लगाई, जो दिसे सो सगल विनाशे, जो बादर की चाही, तज अभिमान शरण संतन गो, मुक्त हो है छिन माही, जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने भी नाही, सारंग महला नावा, कहा नर अपनो जन्म गवा।

सहज समाध सदा लिव हर्ष्यों जीवा हर गुण गाई गुर कै शब्द रता बैरागी निज कर ताड़ी लाई सुदरस नाम।

कोट कल्प के दुख विनाशन साथ दृढ़ाए निवेरा रहाओ। क्रोध निवार जले हो ममता प्रेम सदा नौ रंगी, अनपौ बिसर गए प्रवजाच्या हर निर्माइल संगी। चंचल मत त्याग पौ पंजन पाया एक शब्द लिव लागी, हर रस चाख त्रिखा निवारी हर मेल ले बढ़ पागी। अमृत सिंच भय सुबर सर गुरमत साच ने आला, मन रत नाम रते में केवल आज जुगा दयाला। मोहन मोय लिया मन मोरा बदे पाग लिव लागी, साच विचार किल विक दुख काटे मन निर्मल अनरागी।

हर रस रते अधिकाई, एक तस्बिन मैं अवर न जाना, सतगुर बूझ बुझाई, अगम अगोचर अनाथ अजोनी, गुरमत एको जानिया, सुबर भरे नाही चित डोले।

मनुआ डोले अकथ ना कथे कहानी गुरमत ने चल हर मन वस्या अमृत साची बानी मन के तरंग शब्द निवारे रसना सह सुवाई सतगुर मिल रही है।

जन्म जन्म के किलविक पौ पंजन गुरुमुख एको डीठा रहाओ कोट कोट अंतर के पाप विनाशन हर साचा मन भाया हर बिन अव

हर नदर करे सोई जन पाए, गुरमुख विर लै जानी रहाओ। हर गहर गंभीर गुणी गहीर, गुर कह शब्द पछानिया, बहुविध कर्म करे पाए दूजे, बिन शब्द बहु रानिया। हर नाम नाम है सोई जन निर्मल, फिर मैला मूल ना होई, नाम बिना सब

सच संजम करनी किरत कमावे, आवन जान रहाई से दर साचे साच कमावे, जिन गुरुमुख साच आधारा।

दाता कट कट पूरन है अलपाता कट कट पूरन कर विस्थीरन जल तरंग ज्यों रचन किया हब रस माने भोग कटाने।

ऐसा अंग अंग सुखदाई पूर्ण ब्रह्माई थान थन अंतर देसा बंधन ते मुक्ता कट कट जुगता कह न सको हर जैसा देख चरित नानक मन मोयो पूछे दीन मेरो ठाकुर कैसा कर कृपा अपने पह आया तन सोरिदा जी चरण बसाया संत संगाया अज्ञान अंधेर गवाया पया प्रगास हृदय उलास प्रभ लोड़ींदा पाया दुख ना था सुख कर मैं बूठा महा आनंद सह जाया कहो नानक मैं पूरा।

ब्रह्मे अंत न जानिया गुरमुख नानक नाम पछाणिया पौड़ी आपे आप निरंजना जिन आप उपाया आपे खेल रचायन सब जगत सवाया त्रै गुण आप सिरजियन।

आए मूर्ख अंधिया अंधी सात कह को कहन कहाएन आप महला पहला आखन औखा सुनन औखा आख ना जाती आख एक आख आखे शब्द पाखे अर्ध उर्द दिन रात जे क्यों होए ता क्यों दिसे जाते रूत ना जात सब कारण करता करे कट औकट कट थाप आखन औखा नानका आख ना जापे आख पौड़ी नाई सुनिए मन रहसिए नामी शांति आई नाई सुनिए मन तृप्तिए सब दुख गवाई नाई सुनिए ना उपजे नामी वड्याई नामे ही सब जात पत नामे गत पाई गुरुमुख नाम से आई है नानक लिवलाई श्लोक महला पहला झूठ न रागी झूठ न वेदी झूठ न चंद सूरज की पेदी झूठ न अन्नी झूठ न नाई झूठ न मियो वरे है सब थाई झूठ न तरती झूठ न पानी झूठ न पौने माई समानी नानक निगुरिया।

पौड़ी नाय मन दुर्मत गई मत प्रगति आया नाव मन हो मैं गई सब रोग गवाया नाय मन नाम उपजे सहजे सुख पाया नाय मन सांप उपजे हर मन वसाया नानक नाम रतन है गुरमुख हर त्याया श्लोक महला पहला और शरीक होवे कोई तेरा तिस अग्गे तुद आखा तुद अग्गे तुदे सलाही मैं अंधे नाउ सुजाता जेता आखन साही सबदी पाख्या पाए सुवाई नानक बहुता एहो आखन सब तेरी वड्याई महला।

जो उस इच्छे सो फल पाए, ता नानक कहिए मूरत पौड़ी। सतगुर अमृत बिरख है अमृत रस फलिया, जिस प्राप्त सोल है गुर शब्दी मिलिया। सतगुर के पाने जो चले हर से तीर लिया, जमकाल जो न सकई कर चानन बलिया। नानक बख्श मिलायन फिर गर्व न गलिया, श्लोक महला पहला सच वर्क संतोष।

नानक जमपुर बदे मारिये ज्यों सन्नी उपर चोर महला पंजवा करत सुहावड़ी आकाश सुहंदा जपंदियां हर नाओ नानक नाम भी हो।

प्राप्त होए। नानक हो बलिहारी तिन को जिन हर मन वस्या सो पौड़ी। आस करें सब लोक बहु जीवन जानिया, नित जीवन को चित गढ़ मंडप संवारिया। बलवंश कर उपा

वस्त्र पराए आप गर्व करे मूर्ख आन गणाए नानक बिन बूझे किन न पायो फिर आवे जाए महला तीजा मन आनंद भया।

न होवई। नाम वसै मन आए, बिन नामे जे होर खाना, चित रोग लगे तन खाए। नानक रक्त सब सलाहना, आपे ले मिलाए महला तीजा, जिया अंदर जियो सब।

लोभ लहर सुध मत गई, सच न लगे प्यार। गुरुमुख जिना शब्द मन वसे, दर गए मुख द्वार। नानक आपे मेल ले, आपे बख्शन हार। महला चौथा नानक जिस

सिमा हर गुरमुख नाम दियाए दुख पुख काना सब चुकाए सी मिहु उठा छे बरलाए सब तरत पाई हरियावली अन जमिया बोल लाए हर अचिंत बुलावे कृपा कर हर आपे पावे थाए हर किसे त्यावो संत जनों जो अंते ले चलाए हर कीत पगत आनंद है सदा सुख वसे मन आए जिना गुरमुख नाम आराध्या तिना दुख दुख ले जाए जन नानक तृप्ते गाए गुण हर दर्शन देहो सुभाए पौड़ी गुरपूरे की दात नित देवे चढ़े सवाइया तुस देवे आप दया।

आप छोड़ शरणाए पवे मन ले रजाए। गुरमुख जम डंड ना लगे हमे विचों जाए, नानक सेवक सोई आखिए जे सत रहे लिवलाए। महला तीजा दात जोत

करो बिनो गुर अपने प्रीतम। हर बर आन मिलावे सुन कन कोर शीतल मन मोरा। लाल वती गुण गावे बरसतना में।

हर का नाम न भाया, रतन पदार्थ पर हर क्या गया, जग को तप ही आया, दिष्टा की तो पे उतही ते, उतही मन समाया, अधिक स्वाद रोग अधिकाए।

गुरमत नाम आधारो मुक्त पाई बंधन गुर खोले शब्द सुरत पट पाई नानक राम नाम हृद अंतर गुरमुख मेल मिलाई महला पहला मल्हार पर दारा पर तन पर लोबा हमने बिछय बिकार दुष्ट पाओ तज निंद पर आई काम क्रोध चंगार महल में बैठे अगम अपार पीतर अमृत सोई जन पावे जिस गुरु का शब्द रतन आचार रहाओ दुख सुख दो शंकर जाने बुरा पला संसार शुद्ध बुद्ध सुरत नाम हर पाये सत्संगत गुर प्यार एन सलाहा हर नाम प्राप्त गुरदाता देवनहार गुरमुख सुख सोई जन पाए जिसनो नगर करे करतार काया महल मंदिर कर हरता किसने राखी जोत अपार नानक गुरमुख महल बुलाये।

सुरता पंडित कांसा नाओ। गुण गोविंद ना जानिए माए, अंडीठा कुछ कह न जाए, क्या कर आँख बखानिए माए रहाओ। ऊपर बर समान पैल क्यों कर कहिए दो विचार, बिन जेवा जो जपह आए कोई जाने कैसा नाओ। कथनी बदनी रह निवरात, सो बूझे हो जिस बात, अंतर है निवरात।

गर्दन फूल दारू लाए चंदन का फल चंदन वास मानस का फल तप में सास सास दे काया तल पाए ताके पाछे कोई न खाए कंचन काया निर्मल हंस जिसमें नाम निरंजन अंश दुख रोग सब गया गवाए नानक छूट से साचे नाए मलार महला पहला दुख महुरा मारन हरना।

तीन बुदबुदा कैसा यो संसारा जिस ते हो आतिशन समाना चूक गया पासारा मलार महला तीजा जिन्नी हुकम पछाणिया से मेले हो मैं शब्द जलाए सच्ची भगत करे दिन राती सच रहे लिवलाए सदा सच हर वेख दे गुर कै शब्द सुभाए मन रे हुकम मन सुख होए प्रभ पाना अपना भावदा जिस बच्चे तिस बिघन न कोय रहाओ त्रै गुण सबा तात है ना हर भगत न भाए गत मुक्त कदे न हो वही हो मैं कर्म कमाए साहिब पावे सोथी है कहे किरत फिराए सतगुरु तोते मन मर रहे हर नाम वसे मन

मेरा हर पद अगम अगोचर है, कीमत कह न जाए गुरु प्रसादी बुझिए, सब जयकार कमाए, नानक नाम से

गुरमत सत्संगत ना बिछड़े अंधन नाम समाले सबना करता एक तू नित कर देखे विचार एक गुरमुख आप मिलाया बख्शे पगत पंडार तू आपे सब किस जानदा किस आगे करी पुकार हर हर नाम अमृत है नगरी पाया जाए हम दे हर हर उचरे गुर के सह सुवाए नानक नाम निधान है नामे ही चितलाए मल्हार महला की जाए गुर सावाही सदा सुख दाता।

एक बसे मन स्वामी दूजा और न कोई, एको नाम अमृत है मीठा जग निर्मल सब सोई। नानक नाम प्रभु ते पाया जिनको तुर लिखिया होई। मलार महला तीजा गण गंधर्व नामी सब उदरे गुर का शब्द विचार। हौ मैं मार सब मन वसाया हर राख्या उधार। जिसे बुझाए सोई बूझे।

शब्द सुख अंतर सदा निभे तेरे आल राव। मन मुक्ता खंड कदे ना चूके दूजे पाए दुख पाए नाम विसार दिखिया मन राते बिरथा जन्म गवाए ते वेला सुर हथ नावे अंदिन सदा पछताए मर मर जन्मे कदे ना बूझे विस्ता मय समाए गुरमुख नाम रते सेव दुरे गुर का शब्द विचार जीवन मुक्त हर नाम त्याया।

एक बिन मैं और ना जाना, सतगुरु दिया बुझाई, मन मेरे नाम रहो लिवलाई, अदिष्ट अगोचर अपरंपर करता, गुर के शब्द हर

इहो हुकुम कर श्रेष्ठ उपाय। गुर प्रसादी बूजो भाई, सदा रहो हर की शरणाई। सो पंडित जो तिहा गुणा की पंड उतारे, अन दिन एको नाम।

हो जीवा सदा हर के गुण गाई। गुर का शब्द महारस मीठा, हर के नाम मुक्त गत पाई रहाओ। माया मोह अज्ञान दुवार, मनमुख मोहे मुक्त गवार। हम दिन तंबा तर्क निहाए, मरमर जम में मिले सजाए। गुरमुख राम नाम लिव लाई, पूरे लालच ना लपताई। जो कुछ हो वह सहि सुवाए, हर रस पीवे रसन रसाए। कोट मदे किसे बुझाए।

रसना नाम सब कोई कहे, सतगुर सेवे का नाम लहे, बंधन तोड़े मुक्त कर वह, गुर शब्दी अस्थिर कर वह, मेरे मन काहे रोष करी जय, लाहा चल गुराम नाम है गुरमत।

अंदिन हर हर त्यायो हृदय मत गुरमत दुख विसारी। सब आशा मनसा बंधन टूटे हर हर प्रभु कृपा धारी। नैनी हर हर लागी तारी सतगुरु देख मेरा मन बिगस्यो। जन हर पेट्यो बनवारी रहाओ जिन ऐसा नाम विसारिया मेरा हर हर तिसके कुल लागी गारी। हर तिसके कुल प्रसूत ना करियो तिस विधवा कर महकारी। हर हर आन मिलावो गुर साधु जिस एमस हर उधारी। गुर दीखे गुर का

मिले बनवारी मल्हार महला चौथा गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती ते करें उद्दम तूर साधु की ताई किलविक मैल परे परे हमरे विच हमरी मैल साधु की तूर गवाई तीरथ असठ मज्जन नाई सत संगत की तूर परी उड़ नेत्री सब दुर्मत मैल गवाई रहाओ जहर नवी तपे पागी रथयानी केदार था प्यो महसारी काशी कृष्ण चरावत गाऊ मिल हरजन शोभा पाई जितने तीरथ देवी थापे सब कितने लोचे तूर साधु की ताई हर का संत मिले गुरु।

साधु तूर दे हर पार लंगाई मल्हार महला चौथा किस जन को हर मीठ लगाना जिस हर हर कृपा करे किसकी भूख दुख सब उतरे जो हर गुण हर उचरे जप मन हर हर हर निस्तरे गुर के बचन करण सुन ध्यावे अब सागर पार करे रहाओ किस जन के हम हाथ बिहाजे जिस हर हर कृपा करे हर जन को मिलिया सुख पाए सब दुर्मत मेल हरे हर जन को हर भूख लगानी जन तित जा हर गुण बिचरे हर का जन हर जल का मीना हर बिसरत फूट मरे जिन ए प्रीत लाई सो जाने तो जाने जिस मन धरे जन नानक हर देख सुख पावे सब तन की भूख करे

देखे मेरा मन बिकसै हौकिन कै सद बल जात ज्ञानी हर बोलो दिन रात तिनकी तृष्णा पूछ सब उतरी जो गुरमत राम रसथांत रहाओ हर के दास साग सखा जन जिन मिलिया लह जाए प्रांत जो जल दूध पिन पिन का दे चुन हंसना क्यों देही ते चुन का दे साधु हूं मैं तात जिनके प्रीत नाही हर हृदय ते कपटी नरनित कपट तमात तिनको क्या कोई देख वाले वो आप बीज आते ही खाते हर का चिन्ह सोई हर जन का हर आते जन में आप रखाते तन तन गुरु नानक समदर्शी जिन निंदा उस्तत करी त्रांत मलार महला चौथा अगम अगोचर नाम हर उत्तम हर कृपा ते जप लया सत संगत साध पाई वड पागी संग साधु पार पया मेरे मन अन दिन अंध भया।

उनका दर्श देख सुख पाया, दुखों में रोग गया। जो अंधिन हृदय नाम दियावे सब जन पिना का सफल भया। वे आप करे सुष्ट सरकारी सब कुल भी पार पया, तुद आपे आप उपाया सब जग।

गुर प्रसादी अमृत नहीं पिया, तृष्णा भूख न जाए, मन मुख मूड जलत अहंकारी, हों मैं विच दुख पाई, आवत जात बिरथा जन्म गवाया, दुख लागे पछताई, जिसते उपजे तिसे न चेतें, त्रिग जीवन त्रिग खाई, प्राणी गुरमुख नाम दे आई, हर हर कृपा करे गुर मेले, हर हर नाम समाई रहाओ, मन मुख जन्म भया है बिरथा, आवत जात लजाई, काम क्रोध डूबे अभिमानी, हों मैं विच जल जाई, तिन सिद्ध न बुद्ध भई मत मद्दन, लोभ लह दुख पाई, गुर बिहून महा दुख पाया, जम तकरे दिल लाई, हर का नाम अगोचर पाया, गुरमुख सह सुभाई, नाम निधान वस्या घट अंतर।

मिल साध संगत हर तोर रहाओ। हर तन बनजो हर तन संचो, जिस लागत है नहीं चोर। पात्रक मोर बोलत दिन राती, सुन कन हर की कोर। जो बोलत है मृग मीन पंखेरु, सो बिन हर जापत है नहीं होर। नानक जन हर कीरत गाई, छूट गयो जम का सब सोर। मलार महला चौथा, राम राम बोल बोल खोजते बड़ भागी। हर का पंथ को बतावे, हौंपा कह पाई लागी रहाओ। हर हमारो मीत सफाई, हम हर स्यों प्रीत लागी। हर हम गावे हर हम बोले, और दुतिया प्रीत हम त्यागी। मनमोहन मोरो प्रीतम राम, हर परमानंद बैरागी। हर देखे जीवत है नानक, एक निमक पलो मुख लागी। राग मल्हार महला पंजवा, चौक दे कर पहला एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद, क्या तू सोचे क्या तू चितवे, क्या तू करे उपाय। ताको कहो पर

ए मंदर कर अपनाए। जो गृह लाल रंगी ओ आया तो मैं सब सुख पाए। संत सवा ओट गुर पूरे पुर मस्तक लेख लिखाए। जन नानक संत रंगीला पाया फिर दुख ना लागे आए। मनहार महला पंजवा खीर आधार बारक जब होता बिन खीरे रह न जाए। सार समाल माता मुख नीरे तब हो तृप्त अघाई। हम बारक पिता प्रभदाता फूले बारक अनक लख बरिया अनठौर नाही जय जाता रहाओ। चंचल मत बारक बपरे की सर्प अग्न कर मेले। माता पिता कंठ लाए राखे अनद सहज तब खेले। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी इस बारिक भूख कैसी। नवनिध नाम निधान गृह तेरे मन बांचे सो लैसी। पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी बारिक मुख मांगे सो देना। नानक बारिक दर्श प्रभ चाहे मोहि हृदय बसे नित चरना। मल्हार महला पंजवा सगल विधि जुर आहर करया। सजियो सगल अंदेशा कार्य सगल अरंभियो करका। ठाकुर का भरोसा सुनिए बाजे बाज सुहावी। और पया मैं प्रेम मुख पेखे गृह मंगल सुहलावी रहाओ। मनुआ लाए सवारे थाना पूछो संता जाए। खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो भगत करो निर पाए। जब प्रेय आए बसे गृह आसन तब हम मंगल गाया। मीत साजन मेरे पै सुहेले प्रभु पूरा गुरु मिलाया। सखी सहेली पै आनंदा गुर कार्य हमरे पूरे। कहो नानक वर मिलिया सुखदाता छोड़ न जाई दूरे। मल्हार महला पंजवा राज ते कीट कीट ते सुरपत कर दोख जठर को परते। कृपा निध छोड़ आम को पूजे आत्म का ती हरते। हर बिसरत ते दुख दुख मरते अनेक बार प्रमे बहुजोनी एक न काहू तरते।

मैं जरते नानक शरण चरण कमलन की, तुम ना डारो प्रभ करते राग मलार महला पंजवा, दुख दे कर पहला इको ओंकार सतगुर प्रसाद। प्रभ मेरे ओए बैरागी त्यागी, हों एक खिन तिस बिन रह ना सको, प्रीत हमारी लागी रहाओ, उनके संग मोहे।

सीता कृपाल पै बड़ पागी मां सुख पाया बर न साको रेन नानक जन पागी मल्हार महला पंजवा माई मोहे प्रीतम देहो मिलाई सगल सहेली सुख पर सूती जी कर लाल बसाई रहा।

त्रिपुरुष सुखदाई एक निमस में मेरा सब दुख काटिया नानक सुख रहन बिहाई मलार महला पंजवा बरस मेघ जी तिल बिल न लाओ बरस प्यारे मने सदारे होए आनंद सदा मन चाओ रहाओ।

तत शोभा तले अचारे मल्हार महला पंजवा प्रीतम साचा नाम ध्याए दुख दर्द बिन सह पव सागर गुर की मूरत हृदय बसाए रहाओ दुश्मन हते दोखी सब व्यापे हर शरणाई आया राख नहारे हाथ दे राख्यो नाम पदार्थ पाया कर कृपा किलवित सब काटे नाम निर्मल मन दिया गुण निधान नानक मन वस्या बहुर दुख ना थिया मल्हार महला पंजवा प्रभ मेरे प्रीतम प्राण प्यारे प्रेम भगत अपनो नाम दीजै दयाल अनुग्रह तारे रहाओ सिमरो चरण तुहारे प्रीतम हृदय तुहारी आशा संत जना तह करो बेनंती मन दर्शन की प्यासा बिछड़त मरण जीवन हर मिलते जन को दर्शन दीजै नाम आधार जीवन तन नानक प्रभ मेरे कृपा की जय मल्हार महला पंजवा अब अपने प्रीतम स्यो बने आई राजा राम रमत सुख पायो बरस मेघ सुखदाई रहाओ एक पल बिसरत नहीं सुख सागर नाम नवे निद पाई उदोत पयो पूरन पावी को पेटे संत सहाई सुख उपजे दुख सगल विनाशे पार ब्रह्म लिवलाई करो संसार कठिन पै सागर हर नानक चरण ध्याई मल्हार महला पंजवा तन हर बरस सगल जग छाया तय कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे आनंद मंगल सुख पाया रहाओ।

मन तन नाम निरंजन रातो चरण कमल लिवलाया अंगीकार कियो प्रभ अपने नानक दास शरणाया मलार महला पंजवा विचरत क्यों जीवे ओए जीवन चित है उलास आस मिलवे की चरण कमल रस पीवन रहाओ जिनको प्यास तुम्हारी प्रीतम तिनको अंतर नाही जिनको बिसरे मेरो राम प्यारा से मुए मर जाही मन तन रव रहा जगदीशर देखत सदा हजूरे नानक रवयो सब अंतर सब रहा पर पूरे मल्हार महला पंजवा हर के भजन कौन कौन न तारे खग तन मीन तन मृग तन ब्राहा तन साधु संग उदारे रहाओ देव कुल दैत कुल जक किन्नर नर सागर उतरे पारे जो जो भजन करे

दीन दुख पंजन आप लिए लड़ लाई, हर की ओट जीवे दास तेरे नानक प्रभु शरणाई। मलार महला पंजवा, मन मेरे हर के चरण रवीजै, दर्श प्यास मेरो मन मोयो, हर पंख लगाए मिली जय रहाओ। खोजत खोजत मार्ग पायो, साधु सेव करी जय, तार अनग्रो स्वामी मेरे नाम महारस पी जय। त्राहे त्राहे कर सरनी आए, जल को कृपा की जय, कर गह लिहो दास अपने को, नानक अपनों की जय। मलार महला पंजवा, प्रभ को भगत बछल बिरदायो, निंदक मार चरण तल दीने, अपनो जस वरतायो रहा।

कार्कियो मेरे स्वामी, प्रंको मेट सुखायो महा आनंद करो दास हर के, नानक विश्वास मन आयो राग मल्हार महला पंजवा, चौक दे कर दूजा इको अंकार। सतगुरु प्रसाद गुरुमुख दीसे ब्रह्म प्रसार, गुरुमुख त्रै गुणिया विस्तार, गुरुमुख नाद वेद विचार, बिन गुर पूरे कोर अंधार। मेरे मन गुर गुर कर सदा सुख पाये, गुर उपदेश हर हृदय वस्यो, सास गिरास अपना खसम त्याय।

न जाए, कर कृपा पूरन सुखदाते, तुमरी कृपा से तू चित आवे, आठ पैर तेरे रंग राते रहाओ, गावन सुनन सब तेरा भाना, हुकुम बूझे सो

भगत जोत दुपाने नानक तिनके सब कुर्बाने मलार महला पंजवां परमेश्वर होआ दयाल मेघ वर्षे अमृत धार सगले जी जंत तृप्ता से।

सदा सदा जाइए कुर्बान, काल गवाया करते आप, सदा सदा मन किसनो जाप, दृष्ट तार राखे सब जंत, गुण गावो नित नित भगवंत, एको करता आपे आप, हर के भगत जाने प्रताप, नावे की पैज रखदा आया, नानक बोले तिसका बोलाया, मलार महला पंजवा, गुर शरणाई सगल निधान, साची दरगे पाये मान, ब्रह्म को दुख दर्द सब जाए, साध संग सब हर गुण गाए, मन मेरे गुर पूरा सालाए, नाम निदान जपो दिन राती, मन चिंदे फल पाए रहाओ, सत गुर जेवड़।

सो मन निर्मल जो गुर संगराची गुर पूरा पाये वडवाग काम क्रोध लोभ मनते त्याग कर कृपा गुर चरण निवास नानक की प्रभु सत अरदास राग मलार मैला।

को प्रीतम थिया मल्हार महला पंजवा मन कने प्रमे बने उमक तरस चाले प्रभ मिलबे की चाह रहाओ त्रै गुण माई मोह आई कहो बेदन काहे आन उपाव सगर किए नह दुख सा कहलाहे हज शरण साधु नानका मिल गुण गोविंद गाहे मल्हार महला पंजवा त्रै की शोभ सुहावनी नीकी हा हा हु हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी रहाओ तुनत ललित गुणग अनक भांत बहुविद रूप दिखावनी नीकी गिरतर थल जल पवन परपुर कट कट लालन छावनी नीकी साध संग रमैया रस पायो नानक जा कै पावनी नीकी मल्हार महला पंजवा गुरप्रीत प्यारे चरण कमल रिद अंतर धारे रहाओ दर्श सफलियो दर्श पेखियो गए किल बिख गए मन निर्मल उजियारे विषम विषम विषम भई अब कोट हरते नाम लई गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही।

संत संगे मन परफड़े मिल मेघ तर सुहाग कन तोर प्रीत मोर चित चात्रिक बूंद ओर ऐसो हर संगे मन मोहो त्याग माया तो हो मिल संत नानक जागया मल्हार महला पंजवा गुण गोपाल गाओ नीत राम नाम तार चीत रहाओ छोड़ मान तज गुमान मिल साधुआ कै संग हर सिमर एक रंग मिट जाहे दोख मीत पार ब्रह्म पै दयाल बिनस गए बिखे जंजाल सात जना कै चरण लाग नानक गावे गोविंद नीत मल्हार महला तन्यवा कन गर्जत गोविंद रूप गुण गावत सुख चैन रहाओ हर चरण शरण तरण सागर तुन अनहता रस बैन पथिक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन हर दर्श प्रेम जन नानक कर कृपा प्रभ दैन।

आई। शास्त्रिक जल बिन प्रयो प्रयो टेरे, बिल करे बिल लाई। कान हर कोर दसो दिस बरसे, बिन जल प्यास न जाई। मीन निवास उपजे जल ही ते, सुख दुख पूर्व कमाई। खिन तिल रह ना सके पल जल बिन, मरण जीवन तिस ताई। तन वाडी तिर देश निवासी, सच्चे गुर पै शब्द पठाई।

अपना का सवारो आपे सुखदाते गोसाई गुर प्रसाद कर ही फिर पाया कौ नानक तपत बुझाई मलार महला पहला जागत जाग रह गुर सेवा बिन हर मैं को नाही अनेक जतन कर रह न पावे आच पाच टर पाही इस तन तन का कहो गर्भ कैसा बिन सत बार न लागे बवरे हो मैं गर्भ खपे जग ऐसा रहा।

अमर अनाथ सर्व सिरमोरा काल विकाल परम पै खंजन कागद कोट इहो जग है बपरो रंगन चेहन चतुराई नानी सी बूंद पवन पत खोवे जन्म मरे खिन ताई नदी उपकंठ जैसे कर तरवर सरपन कर कर माही उल्टी नदी कहाँ कर तरवर सरपन डसे दूजा मन माही गरुड़ गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी बिख्या गुरमत जारी मंथन हेम पै सच पाया हर की भगत निरा

शरण परे पतरा को साच मिले गोपाला, बादी तंग अंग नहीं सूजे, बदिक कर्म कमावे, सतगुर मिले ता सूजस बूजस।

चात्रिक मीन जल ही ते सुख पावे, सारिंग शब्द सुहाई, रैन बबीहा बोलियो मेरी माई, रमाओ त्रै स्यों प्रीत न उल्टे कबहू, जो तै पावे साई, नींद गई हो मैं तन थाकी, सच मत हृदय समाई।

दुर्गै शब्द नाम आधार, ना जल डूंगर ना ऊंची धार, निज कर वासा ते मगना चालनहार, जित कर वसे तू है बिद जाने बीजो महल न जाते, सतगुर बाजो समझ न होवी, सब जग दबिया छापे, करण तलाव करे बिलला तो बिन गुरु नाम न जापे, पल पंकज में नाम छड़ाए जे गुर सबक सिंजापे, एक मूरख अंधे मुग्ध गवार, एक सतगुर के पै नाम आधार, साची बाणी मीठी अमृत धार, जिन पीती तिस मोख द्वार, नाम पै पाए हृदय वसाही, गुर करनी सच बाणी, इंद वरसे तरत सुहावी, कट कट जोत समाणी, कालर बीजस दुर्मत ऐसी, निगुरे की निशानी, सतगुर बाजों को

समाए, एक शब्द राचे सत समाए, चौदिस हुकम वर्ते प्रभु तेरा, चौदिस नाम पतालंग, सब में शब्द वर्ते प्रभु साचा, कर्म मिले बयालंग, जामन मरणा दिसे सिर उबो, खुदया निद्रा कालंग, नानक नाम मिले मन भावे, साची नदर रसालंग, मलार महला पहला, मरण मुक्त गत सार न जाने, कंठे बैठी गुर शब्द पछाने, तू कैसे आ

मन मेरे हर हर नाम चित लाए, सतगुरु ते हर पाए साचा, हर स्यों रह समाए रहाओ। सतगुरु ते ज्ञान उपजै ता ए संसा जाए, सतगुरु ते हर बुझिए गर्भ जोनी न पाए।

गुर प्रसादी शिव कर जमे विचो सकत गवाए अचर चरै विवेक बुद्ध पाए पुरख है पुरख मिलाए तातुर बाजी संसार अचेत है चले मूल गवाए लाहा हर सत्

केवट अवर न कोई आपे बक्षे मेल लए करम प्राप्त होए साचा साहिब महारो सतगुरु दिया दिखाए अमृत वर्षे मन संतोखिए सच रहे निवलाए।

पाए, हर कृपा ते सतगुर पाई है, ते तैसे सुवाए, मन मुख परम पुलाया, बिन पागा हर तन ना पाए, त्रै गुण सबा तात है, पर करे विचार, मुक्त कदे ना हो वही, नौ पायन मोख द्वार, बिन सतगुर बंधन ना तुत ही, नाम ना लगे प्यार, पढ़ पढ़ पंडित मो

हर सिंह रहा समाए, मल्हार महल आती जा, अष्टपदी कर दूजा एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद हर हर कृपा करे गुरु की कारे लाए, दुख पल्लर हर नाम बसाए, साची गत साचे चित लाए, गुरु की बाणी शब्द सुनाए, मन मेरे हर हर सेव निधान, गुरु कृपा ते हर तन पाई है।

नानक साचे साच समाए राग मल्हार छंत मैला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद। प्रीतम प्रेम भगत के दाते अपने जन संग राते, जन संग राते दिन सराते एक निमख मनो ना विसरै। गोपाल गुण निध सदा संगे सर्व गुण जगदीसरै। मन मोहलीना चरण संगे नाम रस जन माते। नानक प्रीतम कृपाल सदहू किने कोट मदे जाते। प्रीतम तेरी गत अगम अपारे महापतित तुम पारे। पतित पावन भगत वचल कृपा सिंध स्वामिया। संत संगे भजन संगे रहो सदा अंतर जामिया। कोट जन्म परमंत जोनी ते नाम सिमरत तारे। नानक दर्श प्यास हर जियो आप लिहो समारे। हर चरण कमल मन लीना प्रभ जल जन तेरे मीना। जल मीन प्रभ जियो एक तू है पिन आन ना जानिए। गह पूजा लेवो नाम देवो तो प्रसादी मान।

बिनवंत नानक शरण तिनकी, जिन्नी हर हर ध्याया वार मलार की महला पहला, राणे कैलाश तथा माल दे की तुन एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला तीजा, गुर मिले मन रहसिय ज्यों उठे तरण सिगार, शब्द से हरियावली सर परे सदर ताल, अंदर रचे सच रंग ज्यों मंजीठे लाल, कमल विगसे सच मन।

काल खुदया तृष्णा निंदा बुरी काम क्रोध विकराल एनी अखी नदर न आवई जिचर शब्द।

ठाकुर नानका सब सुख साचो नाम पौड़ी आपी ने आप साज आप पछाणिया अंबर तरत विछोड़ चंगोआ ताणिया विण थम्मा गगन रहाए सब निशाणिया सूरज चंद उपाए जोत समाणिया किए रात दिनंत चोज विलाणिया तीरथ तरम विचार नावन पुरबाणिया तुद सर अवर न कोए के आख वखाणिया सच्चे तख्त निवास होर आवन जाणिया। श्लोक महला पहला नानक सावन जे वसै चहो उमाहा होए नागा मिर्गा मच्छियां रसियां कर तन होए। महला पहला नानक सावन जे वसै चहो विछोड़ा होए गाई पुत्ता निर्धना पंथी चाकर होए। पौड़ी तू सच्चा सच्यार जिन सच वरताया बैठा ताड़ी लाए कवल छपाया ब्रह्मे बड़ा कहाए अंत न पाया ना तिस बाप न माए किंतु जाया ना तिस रूप न रेख वरन सबाया ना तिस पुख प्यास रज्जा ताया गुर में आप समोए शब्द वरताया सच्चे ही पते आए सच समाया। श्लोक महला पहला वैद बुलाया वैदगी पकड़ टंडोले बाहा होला वैद न जाने।

लोड लहो जित वन्ये रोगा कान जित दारू रोग उठिए तन सुख वसे आए रोग गवाए आपना का नानक वैद सदाए पौड़ी ब्रह्मा विष्णु महेश देव उपाया ब्रह्मे दित्ते वेद पूजा लाया दस अवतारी राम राजा आया दैता मारे ताए हुक्म सवाया ईस महेश्वर सेव तिन्नी अंतना पाया सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया दुनिया तंग दे लाए आप छपाया।

जा सावन आया है सखी कंते चित करे हो नानक चूर मरे दोहागणी चिन अवरी लागाने हो महला दूजा सावन आया है सखी जल हर बरसनहार नानक सुख सौन सुहागणी जिन सहनाल प्यार पौड़ी आपे छिंज पवाए मलाखाड़ा रचिया लखे परथु पाए गुरमुख मचिया मनमुख मारे पछाड़ मूरख कचिया आप पेड़ मारे आप कारज रचिया सबना खसम एक है गुरमुख जानिए हुक्मी लिखे सिरलेख विन कलम मसवाणिए सत संगत में लाप जिथे हर गुण स्वभाव खानिए नानक सच्चा शब्द साला है सच पछाणिए श्लोक महला तीजा ऊनव ऊनव आया अवर करेंदा वन क्या जाना तिस सास्यों केव रहसी रंग रंग रहा तिन कामणी जिन मन पाओ पाओ होए नानक तै पाए बाहरी तिन तम सुख न होए महला तीजा ऊनव ऊनव आया वरसे नीर निपंग नानक दुख लागा तिन कामणी जिन कंते स्यों मन पंग पौड़ी दोवे तरफा उपाए इक वर्त्या वेद बाणी वर्ताए अंदर वाद कत्या परविरत निर्विरत हाठा दोवे विच तरम फिरे रह बारिया मन मुख कच्चे कूड़ियार तिन्नी ने चौदर गै हारिया गुरमति शब्द सूर है काम क्रोध जिन्नी मारिया सच्चे अंदर महल सब सवारिया।

करे नानक नगरी बाहरी सब करण पलाह करे पौड़ी सो हर सदा सरेवी है जिस तर्क न लागे वार आडाने आकार।

गुरमुख पक्षों लेखा निबड़े बक्षे सिर पंडार ओथे हाथ ना पड़े फूक ना सुनिए पुकार ओथे सतगुरु बेली हो।

लाए, जो जल में कमल अलिपत है ऐसी बंत बनाए, से सुखिए सदा सोने जिन विच्चों आप गवाए, तिन सोग विजोग कदे नहीं जो हर के अंक समाए।

प्राण हो, तिस बिन अवर न कोए। गुरुमुख हर प्रभु मन वसे, ता सदा सदा सुख होए। सहसा मूल न हो वही, सब चिंता विचों जाए। जो किछ होए सो सहजे होए, कहना किछु न जाए। सच्चा साहिब मन वसे, ता मन चिंदिया फल पाए। नानक तिनका आखिया आप सुने, जे लयन पन्ने पाए। महला तीजा अमृत सदा वरसदा, बूजन बूजन हार। गुरमुख जिन्नी बुझिया, हर अमृत रखिया उधार। हर अमृत पीवे सवा रंग राते, हो मैं तृष्णा मार। अमृत हर का नाम है, वरसे कृपा धार। नानक गुरमुख नगरी आया, हर आत्म राम मुरार।

कार्य गुण मेरे समाए, अपना आप आप तोलसी आपे मिले मिलाए, किसकी कीमत ना पवे कहना किछु न जाए। हों बलिहारी गुरे अपने जिन सच्ची बूझ दिती बुझाए, जगत मुसे अमृत लुटी है मनमुख बूझ न पाए। विण नामे नाल न चलसी जासी जन्म गवाए, गुरमति जागे तिन्नी कर रखिया दूता का किछ न वसाए। श्लोक महला तीजा, बाबीहा ना बिललाए ना तरसाए, इहो मन खसम का हुक्म मन, नानक हुक्म मनिए तिख उतरै चढ़ै चवगल वन। महला तीजा।

यह जल में तेरा वास है, जल ही मैं फिरा है, जल की सार न जान ही का तू कूकन पाहे। जल फल चहु दिस वर्षदा खाली को ठाव ना है, एते जल वर्ष दे तिख मरे पाग तिना के ना है। नानक गुरमुख तिन सोजी पई जिन वस्या मन माहे पौड़ी। नाथ जति सिद्ध पीर किने अंत न पाया गुरमुख नाम पे आए।

सो जन मुक्त सदा होए पौड़ी। सच्चा वे परवाहो इको तू धनी, तू सब किस आपे आप दूजे किस गणी। मानस कूड़ा गर्भ सच्ची तुदमणी, आवा गौण रचाए उपाई मेदनी। सतगुर सेवे अपना आया किस गणी, जे हो मैं विच्चों जाए ताके ही गणत गणी। मनमुख मोह गुबार ज्यो पुल्ला मंजवाणी, कट्टे पाप असंख नामे इक कणी। श्लोक महला तीजा, बाबी हा खसमे का महल न जाने। महल देख अरदास पाए, अपने पाने बहुता बोले, बोलिया थाए न पाए। खसम वड्डा दातार है, जो इच्छे सो फल पाए। बाबी हा क्या बपुड़ा, जग तै की तिख जाए। महला तीजा, बाबी हा किन्नी रैन बोलिया, सहजे सच सुभाए। यो जल मेरा जियो है, जल बिन रह न जाए। गुर शब्दी जल पाई है, विच्चों आप गवाए। नानक जिस बिन चसा न जीवई, सो सतगुरु दिया मिलाए पौड़ी। खंड पताल असं

होई। इक राजे खान मलूक कहे कहावे कोई, इक सवा सदावे संत धन दूजे पट खोई। इक दाते इक मंगते सगना सिर सोई, विणना में बाजारिया पीहावल होई। पूर्ण खुट्टे नानका सच करे सो होई। श्लोक महला तीजा, बाबी हा गुणवंती महल पाया औ गुणवंती दूर। अंतर तेरे हर वसे गुरुमुख सदा हजूर। कूक पुकार ना हो गई नदरी नदर निहाल, नानक नाम रते सहजे मिले शब्द गुरु कै काल। महला तीजा, बाबी हा बेनती करे कर कृपा देहो जी दान। जल बिन प्यास न उतरे छुटक जाहे मेरे प्राण। तू सुखदाता बेअंत है गुणदाता निधान। नानक गुरमुख बस ले अंत बेली होए भगवान पौड़ी।

सच्चा अलख अपार तू गुणदाता निदान है असी अवगण यार जिस बच्चे सो पाए सी गुर शब्दी विचार। श्लोक महला पंजवा रात न विहावी सापता जिना विसरै नाओ राती दिन सुहेलिया नानक हर गुण गाओ। महला पंजवा रतन जवे हर मान का हब्बे मणि मखन नानक जो प्रभु पाणिया सच्चे दर सोहन पौड़ी सच्चा सतगुर शेर सच समा लिया अंत खलोआ आए जे सतगुर अगे कालिया कोई न सके जमकाल सच्चा रखवा लिया गुरसा की जोत जगाए दीवा बालिया मनमुख बिन नावे।

निहालिया नानक नाम निधान है पूरे गुर देखा लिया। श्लोक महला तीजा बाबी है हुक्म पछाणिया गुर कै सह सुवाए मेघ वर्षा दया कर गुड़ी छह बदलाए। बाबी है कूक पुकार रह गई सुख वस्या मन आए नानक सो साल आई है ये दिन दा सबना जिया रिजक समाए। महला तीजा चात्रिक तू ना जानही क्या तुद विच तिखा है कित पीते तिख जाए। दूजे पारे परम्या अमृत जल पल न पाए नदर करे जे अपनी ता सतगुरु मिले सुवाए। नानक सतगुरु ते अमृत जल पाया सहजे रहा समाए। पौड़ी एक वन खंड बैसे जाए सदना दे रही एक पाला चक्कर पान शीतल जल हे वही एक पसम चढ़ा में अंग मैलना तो वही एक जटा बिकट बिकराल कुल कर खो वही एक मगन फिरे दिन रात नींद ना सो वही एक अग्नि जला में अंग आप विगो वही गिनना में तन छार क्या कह रो वही सोहन खसम द्वार जे सतगुरु से वही। श्लोक महला तीजा बाबी हा अमृत वेले बोलिया तांदर सुनी पुकार मेघ नो फुरमान होआ वर्षो कृपा कार। हौ तिन कै बलिहार ने जिन्नी सच रखिया उधार नानक नामे सब हरियावली गुर कै शब्द विचार। महला तीजा बाबी हा इव तेरी तिखन न उतरे जेसो करें पुकार नदरी सतगुरु पाईए नदरी उपजे प्यार नानक साहिब मन वसे विच्चों जाए विकार। पौड़ी एक जैनी उजड़ पाए तुरों खुआया तिन मुख ना ही नाम ना तीर्थ नाया हथी सिर खुहाए ना पद कराया कुचल रहे दिन रात शब्द ना पाया तिन जात ना पक्ष ना कर्म जन्म गवाया मन जूठे वे जात जूठा खाया बिन शब्द आचार।

विचार नानक सदा सुहागणी गुर कहे अपार महला तीजा सावन दज्जै गुण बाहरी जिस दूजै पाए प्यार नानक तिरकी सार न जाने सब सिगार खुआर पौड़ी सच्चा अलख अपेयो हाथ न पती जई एक गाने राग परिया राग न पी जई एक नच नच पूरे ताल भगत न की जई एक अन्ना खाहे मूरख तिना क्या की जई तृष्णा होई बहुत किवे न पी जई कर्म वदै कह लो खप मरी जई लाहा नाम संसार अमृत पी जई हर भक्ति स्नेह गुरमुख की जई श्लोक महला तीजा गुरमुख मलार राग जो करे तिन मंतन शीतल होए गुर शब्दी एक पछाणिया एको सच्चा सोए मंतन सच्चा सच मन सच्चे सच्ची सोए अंदर सच्ची भगत है सहजे ही पत होए कल युग में कोर अंधार है मन मुखरा न कोए सेवड पागी नानका जिन गुरमुख प्रगट होए महला तीजा इंद्र वर्ष कर दया लोका मन उपजै चाओ

गुरमुख शब्द समा लिए सच्चे के गुण गाओ नानक नाम रते जन निर्मले सहजे सच समाओ पौड़ी पूरा सतगुर सेव पूरा पाया पूरे कर्म त्याए पूरा शब्द मन वसाया पूरे ज्ञान ध्यान मैल चुकाया हर हर तीर्थ जान मनुआ नाया शब्द मरे मन मार तन जने दी माया दर सच्चे सच्चे आर सच्चा आया पूछ ना सके कोई जा खसने भाया नानक सच सलाहे लिखिया पाया श्लोक महला पहला कुल्हा देंदे बावले लेंदे वड़े निलज चूहा थड न मावई तिकल बन्ने छज देन दो आई से मरे जिनको देन से जाहे नानक हुक्म न जा कई किथे जाए समाहे फसल आहारी एक नाम सामने सच नाम मैं महदूद लिखाया खसने के दर जाए दुनिया के दर के तेरे केते आवे जाहे केते मंगे मंगते केते मंग मंग जाहे महला पहला सौ मन हस्ती क्यों गुड़ खावे पंच सौ दाना खाए डके फूके खीरे उड़ावे सहे गया पछताए अंधी फूक मोई देवानी खसम मिटी फिर भानी अब गुल्ला चिड़ी का चुगन गैन चढ़ी बिल लाए खसने पावे ओहा चंगी जे करे खुदाए खुदाए सत्ता शिव मारे सह मिर्या सब पिछे पे खाए होए सताना पुरे न मावे साए गया पछताए अंधा किसनो बुक सुनावे खसमे मूल न भावे अक्षो प्रीत करे अक्सिद्धा अकबाली बैठाए खसमे पावे ओहो चंगा जे करे खुदाए खुदाए नानक दुनिया चार दिहारे सुख की तै दुख होए गल्ला वाले हैं कनेरे छद न सकते कोई मक्खी मिठे मरना जिन तू रखे तिन नेड़ ना आवे तिन पौ सागर करना पौड़ी अगम अगोचर तू तनी सच्चा अलख अपार तू दाता सब मंगते इको देवन हार जिन्नी सेव्या तिन्नी सुख पाया गुरमति विचार इक नानो तुद एवे पाऊंगा माया नाल प्यार गुर के शब्द सलाही है अंतर प्रेम प्यार विन प्रीति पगत न हो विन सतगुर ना लगे प्यार तू प्रभ सब तुद सेव दे इक ताड़ी करे पुकार देह दान संतोखिया।

चुक पाया अंधा अंध कमाई बिख्या कदे ही रजे नाही मूरख पुख न जाई दूजे सबको लग विगुता बिन सतगुर बूझ न पाई सतगुर सेवे सो सुख पाए जिसनो कृपा करे रजाई। श्लोक महला पहला शरण करम दो नानका जे तन पल्ले पाए सो तन मित्र न कांडी है जित सिर चोटा खाए जिनके पल्ले तन वसे तिनका नाव फकीर जिनके हृदय तू वसे ते नर गुणी गहीर। महला पहला दुखी दुनी सहेड़ी है जाए तन लगे।

दया जानिए, कौजल तारण हार शब्द पछानिए, चोर जार जुआर पीड़े खानिए, निंदक लाए तबार मिले हरवानिए, गुरमुख सत समाए सो दरगे जानिए। श्लोक महला दूजा, नाव फकीर है पातशाह मूर्ख पंडित नाओ, अंधे का नाव पारखू एवे करे गुआओ, इल्लत का नाव चौधरी पूरी पूरे थाओ, नानक गुरमुख जानिए कल का एहो न्याओ। महला पहला, हरना बाजा कै सिकदारा एना परिया ना।

पौड़ी आप उपाय मेदनी आप देकर बासार कै दिन परम ना कटी है नाम ना लगे प्यार सतगुरु ते पौ उपजे।

पहला पहला अजर जरे तानो कुल बंद पूजे प्राण होवे फिर कंद कहां से आया कहां ओ जान जीवत मर्त रह परवान हुक्मे बूझे तत पछाने तिहु प्रसाद गुरु ते जाने होंदा सरी नानक जान ना हो ना मैं जूनी पान पौड़ी पढ़िए नाम सलाहा होर बुद्धि मिथ्या बिन सके व्यापार जन्म बिरथिया अंत न पारा वार।

तो आँखें हो बहु विध अच्छा तो है बहुत विकारा ये तेरा सुई छोड़ हो ऐ सन्यासी नानक है विचारा पौड़ी हो क्या आखा एक जीव तेरा अंत नाक नहीं पाया सच्चा शब्द विचार से तुझ ही माय समाया एक पगवा वेश कर परम दे बिन सतगुरु किन न पाया देश विसंतर पल थके तुद अंदर आप लुकाया गुर का शब्द रतन है कर चानन आप दिखाया अपना आप पछाणिया गुरमती सच समाया आवागौन बजारिया बाजार जिनी रचाया एक फिर सच्चा सलाहना जिन मन सच्चा भाया स्वरूप महला पहला नानक मा

तू है मन भाया पाल चलाए बन, कोई ना रखसी जर जरवाना कन, चलिया नचसी सतगुर बोत बेड़ सच्चा रखसी, अगन पखे पलहाड़ अंदिन पक्षी, फाथा चुग गए चोग हुक्मी छुटसी, करता करे सोहोग कूड़ निखुटसी। श्लोक महला पहला कर्म

मंडल लिवलाए अकथ कथा विचारिये मनसा मने समाये उलित कमल अमृत भरिया यो मन कथो न जाए अजप्पा जाप ना विसरे आज जुगाद समाये सब सखियां पंचे मिले गुरमुख निज करवास शब्द खोज एवं कर लह नानकता का दास महला पहला चिल मिल विशियार दुनिया फानी कलूब अकल मन गोर न मानी मन कमीन कम करीन तू दरियाओ खुदा।

ਰਵਿਆ ਸਭ ਠਾਈ ਜਿਤ ਤੂੰ ਲਾਹੇ ਸੱਚਿਆ ਤਿਤ ਕੋ ਲਗੈ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸੁਧ।

कारकुलाल ब्रह्मा चतुर्मुख दावणा जिन विश्व संसार राचीले जा कह कर ईश्वर बावला जगत गुरु तत्सारखा ज्ञान पाखीले पाप पुण्य जांचे दांगिया।

त्रिलोक प्रसिद्ध कबीरा जाके कुटुंब के तेज सब टोटो अंत फिरे अजो बनारसी आस पासा आचार सहत विपर

गई हा पियो कहो रविदास पयो जब लेखो जोई जोई कीनो सोई सोई देखियो राग का नड़ा चौक दे महला।

वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। मेरा मन सात जना मिल हरिया, हों बल बल बल बल सात जना को मिल संगत पार उतरिया रहा। हर हर कृपा करो प्रभ अपनी, हम सात जना पद परिया, तन तन साध जिन हर प्रभ जानिया, मिल साधु पतित उधरिया। मनुआ चले चले बहु बहु विद, मिल साधु वसगत करिया, ज्यों जल तंत पसारे बगत।

हम हर हृदय जप्यो नाम नरहर, प्रभु कृपा करी कृपास, अन दिन अंध पया मन बिदसिया, उदम पय मिलन की आस।

किल बिख देन पए खिन अंतर, टूट गए माया के फास। क्या हम किर्म क्या कर्म कमावे, मूर्ख मुग्ध रख

हर राख ले हो आपन अपनाक, जन नानक के सखा हर भाई, मात पिता बंद पहर साक, कानड़ा महला चौथा। मेरे मन हर हर राम नाम जप चीत, हर हर वक्त माया गड़वेड़ी, गुर कै शब्द लियो गढ़ जीत, रहाओ मिथ्या परम परम।

परचय राम रविया कट अंतर। अब फिर राम रविया रंग प्रीत, हर के संत संत जननी के, जिन मिलिया मन रंग रंगीत। हर रंग लहे ना उतरे कबहू, हर हर जाए मिले हर प्रीत। हम बहु पाप किए अपराधी, गुर काटे कटत कटीत। हर हर नाम दियो मुख औखद, जन नानक पतित पुनीत। कानड़ा महला चौथा, जप मन राम नाम जगन्नाथ। कूमन केर परे बिख बिखिया, सतगुर काढ़ लिए दे हाथ। रहाओ स्वामी अभय निरंजन नरहर, तुम राख ले हो हम पापी पाथ। काम क्रोध बिखिया लोभ लुभते, काष्ट लो तरे संग साथ। तुम वड पुरख बड अगम अगोचर, हम टूट रहे पाई नहीं हाथ। तू परे परे अपरंपर स्वामी, तू आपन जाने आप जगन्नाथ। अदृष्ट अगोचर नाम ते आए, सत्संगत मिल साधु पाथ। हर हर कथा सुनी मिल संगत, हर हर जप्यो अकथ कथकाथ। हमरे प्रभ जगदीश गुसाई, हम राख ले हो जगन्नाथ। जन नानक दास दास दासन को, प्रभ करो कृपा राखो जन साथ। कानड़ा महला चौथा, पड़ताल कर पंजवा इको अंकार। सतगुरु प्रसाद मन जापो राम गोपाल, हर रतन जवे हर लाल। हर गुरुमुख काटक साल।

गुण गावे गुरमत हो बल बले हो बल बले जन नानक हर जप पई निहाल निहाल निहाल कानड़ा महला चौथा हर गुण गावो जगदीश एका जी की चै लखबीस जप हर हर शब्द जपीस हर हो किरपीस राव हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा हर जप जपे हर जप जपे जप जापो जगदीश तुमरे जन राम जपे ते उत्तम तिन को हो कुमकुमे कुमकुम जीस हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे सो करे जे तुद पावीस जन नानक अमृत पिया गुरमती तन तन तन तन तन गुरु साबीस कानड़ा महला चौथा पज रामो मन राम जिस रूप नारेख वडाम सब संगत मिल पज राम बड हो पाग मताम रहाओ जित गृह मंदर हर होत जास तित तर अनदो अनद पज राम राम राम राम नाम गुण गावो हर प्रीतम उपदेश गुरु गुर सतगुरा सुख होत हर हरे हर हरे हरे तज राम राम राम सब शिष्ट तार हर तुम के

पहला चौथा सतगुर चाटो पग चाट जित मिल हर पादर बाट पग हर रस रस हर गाट हर हो लिखे लिलाट रहाओ खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्तार सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट कर पेख न पाइए हर ब्रह्म जोग हर पाइए सत संगति उपदेश गुरु गुरु संत जना खोल खोल।

काट कटे काट हर काट कानड़ा मेला चौथा जप मन गोविंद माधो हर हर अगम अगा दो मत गुरमत हर प्रभ ला दो सुर हो लिखे लीला दो रहाओ बिख माया संत बहुचित है विकार सुख पाइए हर पज संत संत संगति मिल सतगुरु गुर साधो ज्यो छोए पारस मनहूर भय कंचन त्यो पतित जन मिल संगति सुध होवत गुरमति सुधा दो ज्यो काष्ट संग लोहा बहुतरता त्यो पापी संग तरे साध साध संगति गुर सतगुरु गुर साधो चार बरन चार

सुख पावे जप हर हर नाम निधान। उस्तत करे प्रभ तेरिया मिल साधु साध जना गुरु सतगुरु भगवान। जिनके हृदय तू स्वामी ते सुख फल पावे ते तरे पव सिंध ते भगत हर जान। तिन सेवा हम लाए हरे जन नानक के हर तू तू तू तू तू भगवान। कानड़ा महला पंजवा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद। गाये गुण गोपाल कृपा निद दुख विदारण सुख दाते सतगुर जा को पेटत होए।

आको सतगुर अपना राखे, सो जन हर रस रसना चाखे, कहो नानक गुर कीनी माया, हालत पलत मुख उजल भया, कानड़ा महला पन्नवा, आराधो तुझे स्वामी अपने, उठत बैठत सोवत जागत, सास सास सास हर जपने।

कहो नानक ता कह बल जाओ, कल युग में पाया जिन नाओ, कानड़ा महला पंजवा, कीरत प्रभ की गाओ मेरी रसना, अनेक बार कर बंदन संतन, हुआ चरण गोविंद जी के बसना, रहाओ अनेक पाप कर द्वार न पावो, होए कृपाल ता हर हर द्यावो, कोट कर्म कर दे न सोदा, साध संगत में मन पर बोदा, कृष्ण ना बूझी बहु रंग माया, नाम लेत सर्व सुख पाया, पार ब्रह्म जब पै दयाल, कहो नानक कहो छूटे जंजाल, कानड़ा महला पंजवा, ऐसी मांग गोविंद ते, पहल संतन की संग साधु का, हर नामा जप परम गते रहाओ, पूजा चरना था।

अज्ञान परम बिन से दुख डेरा, जा के हृदय बसे गुर पैरा, साध संग रंग प्रभ त्याया, कहु नानक तिन पूरा पाया, कानड़ा महला पंजवा, भगत भगतन हूँ बने।

अनेक स्वांग काछे पेख तारी, जैसो साते सो दृष्टारी, कहन कहावन सगल जंजार, नानक दास सच करनी सार, कानड़ा महला पंजवा, तेरो जन हर जत सुनत उमायो।

ओत पोत मिलियो भगतन को जन स्यों परदा लायो गुरु प्रसाद गावे गुण नानक सहज समाध समायो कानड़ा महला पंजवा संतन पह आप उदाहरण आयो रहाओ दर्शन पेटक होत पुनीता हर हर मंत्र दृढ़ायो कांटे रोग पै मन निर्मल।

नानक लिख नामायो कानड़ा महला पंजवा बिसर गई सब तात पर आई जब ते साथ संगत मोय पाई रहाओ ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बने आई जो प्रभु की नो सो पल मान्यो।

तुमरी ओट तुम्हारी सरना रहाओ, तुमरी आस परोसा तुमरा, तुमरा नाम हृदय ले धरना, तुमरो बल तुम संग सुहेले, जो जो कहो सोई सोई करना, तुमरी दया मया सुख पावो, हो कृपाल सा पौ जल तरना, अबे दान नाम हर पायो, सिर डारियो नानक संत चरना। कानड़ा महला पन्यवा, साध सरन चरण चित लाया।

सुख पाया तृष्णा सब बुझी है, सांस पाई गुण गाया बिन बूझे पशु की न्याई, प्रम मोहे व्याप्यो माया साध संग जम जेवरी काटी, नानक सहज समाया कानड़ा महला पंजवा, हर के चरण हृदय गाए शीतला सुख शांत मूरत, सिमर सिमर नित त्याय रहाओ सगल आप होत पूरन।

महा पवित्र संत आसन मिल संग गोविंद ध्याए सगल त्याग तरन आयो नानक लेहो मिलाए कानड़ा महला पंजवा पेख पेख बिगसाओ साजन प्रभ अपना एकांत रहाओ आनंदा सुख सहज मूरत।

उदरे हर सिमरत नागर शीतला हर नाम तेरा पूर्णो ठाकुर प्रभ मेरा दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निज पतित उदारन कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुरु नाम दृढ़ायो। कानड़ा महला पंजवा तन ओ प्रीत चरण संग लागी कोट जाप ताप सुख पाए आए मिले पूरन बड़ पागी रहाओ। मोहे अनाथ दास जन तेरा अवर ओट सगली मोहे त्यागी कोर परम काटे प्रभ सिमरत ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी तू अथाओ अत बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूरन रतनागी नानक जाचक हर हर नाम मांगे मस्तक आन तरयो प्रभ पागी। कानड़ा महला पंजवा कुचल कठोर

रे विषम विषम विषम ही भई है लाल गुलाल रंगा रे सौ नानक संतन रस आई है।

ऊंच नीच सब एक समानो मुख बकनो मन मान रहाओ। कट कट पूर रहे सुख सागर पै पंजन मेरे प्राण। मने प्रगास पयो प्रमनास्यो मंत्र दियो गुरकान। करत रहे कर्तज्ञ करुणा में अंतर जामी ज्ञान। आठ पहर नानक जस गावे मांगन को हरदान। कानड़ा महला पंजवा कहन कहावन को कई केत ऐसो जन बिरलो है।

कहु नानक जन हर हर हर है, कत आवे कत रमतै, कानड़ा महला पंजवा, हिये को प्रीतम बिसर न जाए, तन मन गलत भय ते संगे, मोनी मोहे रही मोरी माए रहाओ, जय जय पै कहो बिरसा हो अपनी, तेऊ तेऊ गहे रहे अटकाए, अनिक पाप की एक है जाली, ताकि गंठ नहीं छोराए, फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही सरनाए, काटे अज्ञान परम मोह माया, लियो कंठ लगाए, कानड़ा महला पंजवा, आनंद रंग विनोद हमारे, नामो गावन नाम त्यावन, नाम हमारे प्राण आधार है रहाओ, नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवारे, हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पौजल विषम नाम हर तारे, अगम पदार्थ लाल अमोला, पयो प्राप्त गुर चरनारे, कहो नानक प्रभ पय कृपाला, मगन पय ही रे दरसारे, कानड़ा महला पंजवा, साजन मीत स्वामी नेरो, देखत सुनत सबन कै संगे, पूरे काज बुरु कै फेरो रहाओ, नाम बिना जे तो लपतायो, कछु नहीं नाही कचेरो, आगे दृष्ट आवत सब प्रगट, इहा मोयो परम अंधेरो, अटक्यो सुत बनता संग माया, देवन हार दतार बिसेरो।

विखे दल संतन तुमरे गायो, तुमरी टेक परोसा ठाकुर शरण तुम्हारी आयो रहाओ। जन्म जन्म के महापराचत दर्शन पेट मिटायो, पयो परगास अनद उजियारा सह समाज समायो। कौन कहे तुम ते कछ नाही तुम समरथ अथायो, कृपा निधान रंग रूप रस नाम नानक ले लायो। कानड़ा महला पंजवा बूढ़त प्राणी हर जपती।

संत प्रसाद हर के गुण गाया, गुर पेटत नानक सुख पाया, कानड़ा महला पंजवा, सिमरत नाम मने सुख पाये, साध जना मिल हर जस गाये।

अंध कोर सागर नहीं मरसन, कानड़ा महला पंजवा, पोकत कपट खपट खल गरजत, मरजत मीच अनक बरिया रहाओ, अहंग मत अनरत पुमित हित प्रीतम, देखत परमत लाख गरिया, अनित व्यवहार अचार विधहीनत, मम मद मात कोप जरिया, करुण कृपाल गोपाल दीन बंद, नानक उदर शरण परिया, कानड़ा महला पंजवा, जी प्राण मान दाता, हर बिसरते ही आन रहाओ, गोविंद।

अविलोको राम को मुखार बिंद, खोजत खोजत रतन पायो, बिसरी सब चिंद रहाओ, चरण कमल हृदय तार, उतरिया दुख मंद, राज तन परवार मेरे, सर्व सो गोविंद, साध संगम लाभ पायो, नानक फिर ना मरंद, कानड़ा मेला पंजवा, कर पंजवा, इको अंकार।

जगत उदाहरण नाम तह तेरे, नवनिद नाम निदान हर केरे, हर रंग रंग रंग अनुपेरे, काहे रे मन मोहे मगनेरे, नैनो देख साध दर तेरे, सो पावे जिस लिखत लिले रे, रहाओ सेवो साध संत चरने रे, बाँचो तूर पवित्र करे रे, अरसत मज्जन मैल कटे रे, साफ साफ त्यावो मुख नहीं मोरे, किछ संग न चाले।

बरना साकू एक तुले रे, दर्शन प्यास बहुत मन मेरे, मिल नानक देव जगत गुर के रे। कानड़ा महला पंजवा, ऐसी कौन विदे दर्शन पर।

मान मोह त्याग छोड़ो तौ नानक हर जियो पेटना। कानड़ा महला पंजवा रंगा रंग रंगन के रंगा कीट हस्त पूरन सब संगा। रहाओ बरत नेम तीरथ सैत गंगा जल हेवत पूख अर नंगा पूजा चार करत मेलंगा चकर कर्म तिलक खाटंगा दर्शन पेटे बिन सतसंगा हठ निग्रह अत रहत बिटंगा हौ रोग ब्यापे चुके न पंगा काम क्रोध अत कृष्ण जरंगा सो मुक्त नानक।

सुख प्रिय सुहाग पलक रात रहाओ। कनिक मंदर पाठ सेज सकी मोहे नाहे इन स्यों तात। मुक्त लाल अनिक भोग बिन नाम नानक हात। रूखो भोजन पूम सै।

जो संत वेद कहत पंथ गाखरो मोह मगन अहंकार राव। जो राते माते संग बपरी माया मोह संताप। नाम जपत सो जन उदरे जिसे उदारो आप। बिनस जाए

ओही पंच दोही उर्ज निकट बत्यो ताकि शरण साधुआ दूत संग निवार रहाओ। कोट जन्म जोन प्रम्यो हार पर्यो द्वार कृपा गोविंद।

निधान प्रगट्यो ए चोले चरण लुभाए आन सजाए थान सनाए सर्व समाए रसक रसक नानक गुण बोले कानड़ा महला पंजवा गोविंद ठाकुर मिलन।

अनेक उकत चतुराई जतन जतन अनेक उपावरे तो मिलियो जो कृपाई प्रभु दयार कृपार कृपा निध जन नानक संत रे नाई कानड़ा महला पंजवा माई सिमरत राम राम राम।

मृत मृत निकट निकट सदा है। हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड, बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई। कानड़ा अष्टपदिया।

मन गुरमत नाम समावे गो, नाम सुने नामो मन भावे, नामे ही तृप्तावे गो। कनक कनक पहरे बहु कंगना, कापर पात बनावे गो। नाम बिना सब फीक फिकाने, जन्म मरे फिर आवे गो। माया पटल पटल है भारी, कर कूमन केर कुलावे गो। पाप विकार मनूर सब भारे, बिख दुत्तर करे।

अज्ञान लाए सवालिया, गुर ज्ञान लाए जगावे गो। नानक पाणे अपने ज्यों पावे तिवें चलावे गो। कानड़ा महला चौथा, जप मन हर हर नाम तरावे गो। जो जो जपे

मिल सतगुरु नाम से आवै गो। जन्म जन्म की हो मैं मल लागी, मिल संगत मल लह जावै गो। ज्यो लोहा तरयो संग कास्ट लग, शब्द गुरु हर पावै गो। संगत संत मिलो सत्संगत, मिल संगत हर रस आवै गो। बिन संगत कर्म करे अभिमानी, कड पानी चीकड़ पावै गो। भगत जना के हर रखवारे, जन हर रस मीट लगावै गो। खिन खिन नाम दे वडियाई, सतगुरु उपदेश समावै गो। भगत जना को सदा निव रही है।

ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावे गो जो जो भगत होए सो पूजो परमन परम चुकावे गो जात न जात देख मत परमो सुख जनक पगी।

ना गए, हर जपत्या अंत ना पावे गो। तू अथाओ अत अगम अगम है, मत गुरमत मन ठहरावे गो। जिन तू जप्यो तेई जननी के, हर जप्यो कौ सुख पावे गो। बिदरदासी सुत छोक छोरा, कृष्ण अंक गल लावे गो। जल ते ओ

सतगुर बचन बचन है सतगुर पादर मुक्त जनावे गो शासन सास सास बल पाई है ने शासन नाम से आवे गो गुर प्रसादी हो मैं बूझे तो गुरमत नाम समावे गो सतगुर दाता।

मन गुरमत चाल चलावे गो ज्यो मैं गल मस्त दी जय तल कुंडे गुर अंकस शब्द दृढ़ावे गो रहाओ चल तो चले चले दह दह दिस गुर राखे हर लिवे।

ज्यों गुर उपदेश तरे प्रहलादा, गुर सेवक पैज रखावे गो। सतगुर बचन बचन है नीको, गुर बचनी अमृत पावे गो। ज्यो अमरीत अमरा पद पाए, सतगुर मुख बचन त्यावे गो। सतगुर सरन सरन मन पाई, सुदा सुदा कर त्यावे गो। दयाल दीन पए है सतगुर, हर मार्ग पंथ दिखावे गो। सतगुर सरन

हर हर हर हर हर सर सेवे तीन दरगे मान दिवावे गो गुरमत गुरमत गुरमत त्यावे हर गल मिल मेल मिलावे गो गुरमुख नाद वेद है गुरमुख गुर परचे नाम दियावे गो हर हर रूप हर रूपो होवे हर जन को पूज करावे गो साकत नर सत

मिल साधु नित पजय नारायण, रसक रसक स्वामी गुण गायन, गुण गाए जीवे हर अम्यो पीवे, जन्म मरना पा गए सतसंग पाये हर से आये, बहुर दुख ना ला गए, कर दया दाते पुरख विदाते, संत सेव कमायन, बिनवंत नानक जन पूर बांचे, हर दर्श सहज समायन, सगले जंत पजो गोपाल, जप तप संजम पूरन घाले, नित पजो स्वामी अंतर जामी, सफल जन्म सवाया, गोविंद गाये नित ध्याये, परवान सोई आया, जप ताप संजम हर हर निरंजन, गोविंद तन संग चाले, बिनवंत नानक कर दया दीजे, हर रतन बांधो पाले, मंगल चार चोज आनंदा, कर कृपा मिले परम।

गोविंद गोविंद गुरमत ध्याये सादर गए पाये मान। गोविंद गोविंद गोविंद जप मुख उजला प्रधान। नानक गुरु गोविंद हर जित मिल हर पाया ना।

सतसंगत सतगुर तन तनो तन तन तनो जित मिल हर गुण बुलोगिया सब कहो मुखो हर हर हरे हर हर हरे हर बोलत सब पाप लोगिया। श्लोक महला चौथा। हर हर हर हर नाम है गुरमुख पावे कोय हौ मैं ममता नाप होए दुर्मत कड्डे धोए नानक अंदिन गुण उचरे जिनको तुर लिखिया होए। महला चौथा। हर आपे आप दयाल हर आपे करे सो होए हर आपे आप वरतदा हर जेवड अवरना कोए जो हर प्रभ पावे सो थिए जो हर प्रभ करे सो होए कीमत किने न पाया बेअंत प्रभु हर सोए नानक गुरमुख हर सा लाहिया तन मन शीतल होए पौड़ी। सब जोत तेरी जग जीवना तू कट कट हर रंग रंगना सब त्यावे तुद मेरे प्रीतमा तू सत सत पुरख निरंजना एक दाता सब जगत पिखारिया हर जाते सब मंग मंगना सेवक ठाकर सब तू है तू है गुरमति हर चंग चंगना सब कहो मुखो रिखी केस हरे जित पावे सब फल फलना। श्लोक महला चौथा। हर हर नाम से आए मन हर दरगे पावे मान जो इच्छे सो फल पाए सी गुर सब दी लगे ध्यान किल विख पाप सब कटी है चुके गुमान गुरमुख कमल विगसिया सब आत्म ब्रह्म पछान हर हर कृपा तार प्रभ जन नानक जप हर नाम। महला चौथा। हर हर नाम पवित्र है नाम जपत दुख जाए जिनको पूरब लिखिया तिन मन वसियाए सतगुर के पा

रंग परंग सिस्त सब साजी, बहु बहुविध पांच उपावनी, सब तेरी जोत जोति विच वरते, गुरमति सुदै लावणी, जिन हो है दयाल तिन सतगुर मेले, मुख गुरमुख हर समझावणी, सब बोलो राम रमो श्री राम रमो, जित दालद दुख भुख सब लै जावणी। श्लोक महला चौथा, हर हर अमृत नाम रस, हर अमृत हर उर्धार, विच संगत हर प्रभु वर्तदा, बुज्जो शब्द विचार, मन हर हर नाम से आया, दिखाऊ मैं कड्डी मार, जिन हर हर नाम न चेतियो, तिन जुए जन्म सब हार, गुर तुखे हर चेताया,

पहला चौथा हर कीरत उत्तम नाम है विच कल जुग करनी सार मत गुरमत कीरत पाई है हर नामा हर उरहार वड पागी जिन हर त्याया तिन सौंपया हर पंडार बिन नावे जे कर्म कमावणे नित हो मैं होए खुआर जल हस्ती मलना वाली है फिर भी फिर पावे चार हर मेलो सतगुरु दया कर मन वसै एक अंकार जिन गुरमुख सुन हर

पंचे शब्द वजे मत गुरमत बडभागी अनहद वजिया अनद मूल राम सब देखिया गुर सबदी गोविंद गजिया आद जुगाद वे सहर एको मत गुरमत हर प्रभ पजिया हर देवो दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लज्जिया सब तन कहो गुर सतगुरु गुर सतगुरु जित मिल हर पड़दा कज्जिया। श्लोक महला चौथा भगत सरोवर उछले सुबर भरे वहन जिना सतगुर मन्या जन नानक वड पाग लहन। महला चौथा हर हर नाम असंख हर हर के गुण कथन न जाहे हर हर अगम अगाध हर जन कित विद मिले मिलाहे हर हर जस जपत जपंत जन एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लहो लड़ लाए। पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर होए सो वर्णिय किस रूप ना रिखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा। सत संगत सत गुर चटसाल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पांदा सतगुरु जित मिल हर लेखा लिखा। श्लोक मैला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिए सतगुरु भाए हर हर नाम पवित्र है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिन्नी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगे जन पैनायन जिन हर मन वस्याए जन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन भाए। महला चौथा हर हर नाम निदान है गुरमुख पाया जाए जिन तुर मस्तक लिखिया तिन सतगुरु मिलिया आए। तन मन शीतल होया सांत वसी मन आए नानक हर हर चौंदिया सब दालद दुख ले जाए। पौड़ी हों वारिया तिनको सदा सदा जिना सतगुरु मेरा प्यारा देखिया तिनको मिलिया मेरा सतगुरु जिनको तुर मस्तक लेखिया। हर अगम दियाया गुरमती तिस रूप नहीं प्रभ रेखिया गुरु बचन से आया जिना अगम हर ते ठाकुर सेवक रल एकिया। सब कहो मुखो नर नर हरे नर नर हरे नर नर हरे हर लाहा हर भगत विशेखिया। श्लोक महला चौथा राम नाम रम रव रहे रम रामो राम रमीत कट कट आत्म राम।

हर स्वामी हर प्रभु चिन्ह मिले, जिन लिखिया तुर हर प्रीत, जन नानक नाम ते आया, गुर बचन जपियो मन चीत। महला चौथा, हर प्रभु सज्जन लोड़ लो, पाग वसै वड पाग, गुर पूरे देखा लिया, नानक हर लिवलाग पौड़ी, तन तन सुहावी सफल करी, जित हर सेवा।

मेरा हर प्रभ सुगड़ सुजाने हर मेल दिखाए आप हर गुरबचनी नाम समाने तिन विट्टो नानक वारिया जो जप दे हर निर्वाणी श्लोक महला चौथा हर प्रभ रत्ते लोयना ज्ञान अंजन गुरुदे मैं प्रभ सज्जन पाया जन नानक सहज मिले।

पौड़ी। तुद आपे जगत उपाय कै तुद आपे वसगत कीता, एक मनमुख कर हारायन एक नामेल गुरु तिना जीता। हर उत्तम हर

जग मोहनो जिन जगत उपाए सब वस कीता। श्लोक महला चौथा। मन अंतर हो मैं रोग है परम फूले मन मुख दुर्जना। नानक रोग बजाए।

बिन नहीं कोई, कट कट अंतर रव रहा, जप्यो जन कोई, सगल जपो गोपाल गुण, प्रगट सब लोई। श्लोक महला चौथा, गुरुमुख मिले से सज्जना, हर प्रभ पाया रंग, जन नानक नाम सलाए तू, लुड लुड दर गए।

सतगुरु प्रसाद। ऐसो राम राय अंतर जामी, जैसे दर्पण माहे बदन परवानी रहाओ। बसे कटाकट लीप न छीपे, बंधन मुक्ता जात न दीसे। पानी माहे देख मुख जैसा, नामे को स्वामी बीठल ऐसा।

रामा राम राम मैं अंक न पाया, हम बार कृत पारे तुमरे, तू बड़ पुरुष पिता मेरा माया रहाओ। हर के नाम असंख अगम है, अगम अगम हर राया।

जन को कृपा करो मधुसूदन। हर देवो नाम जपाया मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है। जन नानक गुरुमुख पाया कल्याण महला चौथा। हर जन गुण गावत हसिया हर हर भगत बनी मत गुरमत। तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहा गुर के पग सिमरो दिन राती। मन हर हर हर बसिया हर हर हर कीरत जग सारी। सस चंदन जस तसिया हर जन हर हर हर लिव लाई। सब साकत खोज पया ज्यो किरत संजोग चलियो। नर निंदक पग नागन छो जलिया। जन के तुम हर राखे स्वामी तुम जुग जुग जन रखिया। कहां भया दैत करी बकीली सब कर कर चर परिया। जे तेजी जंत प्रभ किए सब काले मुख ग्रसिया। हर जन हर हर हर प्रभ राखे जन नानक शरण पया। कल्याण महला चौथा। मेरे मन जप जप जगन्नाथे गुरु उपदेश हर नाम ते आयो। सब किल बिख दुख लाथे रहाओ। रसना एक जस दाए न साके बहु की जय बहु रसनते। बार बार खिन पल सब गावे गुण कह ना सके प्रभु।

कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभु का, कहो तिन को क्या दिन से, सब तन मन अर्पो अर्प आरापो, कोई मिले प्रभु मिलते, हर के गुण बहुत बहुत बहुत शोभा, हम कुछ कर कर बरनते, हमरी मत वसगत प्रभु सुमरे, जन नानक के प्रभु समरथे, कल्याण महला चौथा, मेरे मन जप हर गुण अतत सुन थई, धर्म अर्थ सब काम मोख है, जन पीछे लग फिर थई रहाओ, सो हर हर नाम से आवे हर जन, जिस बद भाग मथई, जह दरगे प्रभु लेखा मांगे, तह छुटे नाम से आए थई, हमरे दोख बहुत जन्म जन्म के, दुखों में मैल लग थई, गुरतार कृपा हर जल नावाए, सब किल बिख पाप गथई, जन के रिद अंतर प्रभु स्वामी, जन हर हर नाम पजतई, जह अंति अवसर आए बनत है, तह राखे नाम साथई, जन तेरा जप गावे हर हर, प्रभ हर जपियो जगन्नथई, जन नानक के प्रभ राखे स्वामी, हम पात्र रख बुढ़थई, कल्याण महला चौथा, हमरी चितवनी हर प्रभ जाने, और कोई निंद करे हर जन की।

ताको कोई अपरना साचे, जाकी भगत मेरा प्रभु माने। हर के चोज विडान देख जन, जो खोटा खरा इक निमक पछाने। ताते जन को अनंद भया है, रिद सुध मिले खोटे पछताने। तुम हर दासे समरथ स्वामी, इक मांगो तुझ पासो हर दाने। जन नानक को हर कृपा कर दीजे, सद बसें हृदय मोहे हर चराने।

सफल सफल सफल दर्शने परस परस गुण गाये नानक तत् तत् सो मिलिए हीरे हीर विदाई।

सिद्ध मुन इंदिरा भगत दान जस मंगी जोग ज्ञान ध्यान सेख ना गए सगल जपे तरंगी कहो नानक संतन बलिहार है जो प्रभु के सत्संगी कल्याण महला।

मन रसक रसन नाम जपत तें पाप खंडली जोग जुगत ज्ञान पुगत सुरत शब्द तत बेते जप तप अखंडली ओत पोत मिल जोत नानक कछु दुख ना डंडली कल्याण महला पंजवा कौन विद ताकी कहा करो तर्क ज्ञान शस्त्र गया अजर पद कैसे।

सुरत मत चतुराई शोभा रूप रंग तन मान सर्व सुख आनंद नानक जप राम नाम कल्याण कल्याण महला पंजवा हर चरण सरन।

जय हर हर हर हर हर जन उत्तम क्या उपमा तिल दी जय। राम नाम तुल

हम निर्गुणी मनूर अत सीखे मेरे सतगुरु पारस की जय रहाओ। सुरग मुक्त बैकुंठ सब बांछे नित आशा आस करी जय। हर दर्शन के जन मुक्त ना मांगे मिल दर्शन तृप्त मन दी जय। माया मोह सबल है भारी मोह कालिक दाग लगी जय। मेरे ठाकुर के

कांड खड़ग गुर ज्ञान करारा दिख छेद छेद रखती जय आन आन समदा बहु कीनी पल बैसंतर पसम करी जय मां उगर पाप

जन हर भगवान दिखी जय। साकत सूत बहु गुरु जी भरिया क्यों कर तान तनी जय। संत सूत किस मिकते नाही साकत संग न की जय। सतगुरु साध संगत है नीकी मिल संगत राम रवि जय। अंतर रतन जवे हर मानक गुर कृपा ते ली जय। मेरा ठाकुर वड़ा वड़ा है।

साधु साध साध मन प्रीतम बिन देखे रह ना सकी जय। यो जल मीन जलन जल प्रीत है खिन जल बिन फूट मरी जय। माँ अपाग अपाग है जिनके तिन साधु तूर ना पी जय। तिना तिसना जलत जलत नहीं बूझे दंड धर्म राय का दी जय। सब तीर्थ बरत जग पुन किए हिवे गाल गाल तन छीजे। अकुल्ला तोल राम नाम है गुरमत को पूजे ना तोल तुली जय। तब गुण ब्रह्म ब्रह्म

मन तन अर्थ करो सब आ गए, रस गुरमत ज्ञान दृढ़ी जय रहा। ब्रह्म नाम गुण साफ तरोवर, नित चुन चुन पूज करी जय। आत्म देव देव है आत्म, रस लागे पूज करी जय।

जो पीप पलाश खाए ली जाए, सब नर में प्राणी उत्तम होवे, राम नाम में बास बसी जाए, निर्मल निर्मल कर्म बहु कीने, नित साखा हरी जड़ी जाए, परम फुल फल गुर ज्ञान दृढ़ाया, बेकार बास जगदी।

नाम बिना नचते नर देखो तिन पस पस नाक वडी जाए साकत नर अंकारी कही है बिन नावे त्रिग जीवी जाए जब लग सांस सांस मन अंतर तत बेगल शरण परी जाए नानक कृपा कृपा कर धारो मैं साधु चरण पखी जाए कल्याण महला चौथा रामा मैं साधु चरण धुवी जाए किल विखो दहन होए खिन अंतर मेरे ठाकुर कृपा की जय रहाओ मंगत जन दीन करे दर ठाडे अत परसन को दान दी जय त्राहे त्राहे शरण प्रव्याए मोको गुरमत नाम दृढ़ी जय काम क्रोध नगर में सबला नित उठ उठ जूझ करी जय अंगीकार करो रख ले वो गुर पूरा कार्ड कटी जय अंतर अगन सबल अत बिख्या।

ज्यो सूरज किरण गव्या सर्व ठाई, सब कट कट राम रवि जय। साधु साध मिले रस पावे, तप निज पर बैठिया पी जय। जन को प्रीत लगी गुर सेती, ज्यो चकवी देख सूरी जय। निरखत निरखत रैन सब निरखी, मुख काढ़े अमृत पी जय। साकत स्वान कहिए बहु लोभी, बहु दुर्मत मैल भरी जय। आपन स्वाय करें बहु बाता, तिना का विसाह क्या की जय। साधु साध शरण मिल संगत, जित हर अस काढ़ कभी जय। पर उपकार बोले बहु गुनिया, मुख संत भगत हर दी जय। तू अगम दयाल दया पत दाता, सब दया तार रख ली जय। सर्व जी जग जीवन एको, नानक प्रतपाल करी जय। कल्याण महला चौथा, रामा हम दासन दास करी जय। जब लग सास होए मन अंतर, साधु तूर कवी जय रहाओ। शंकर नारद शेख नाग मुन, तूर साधु की लो चीज है। पवन पवन पवित्र हो है सब, जय साधु चरण धरी जय। तज लाज अहंकार सब तजिए, मिल साधु संग रही जय। कर्म राय की कान चुकावे, दिख दुबदा काड कटी जय। परम सुखे बहु उबसुक कही है, मिल साधु संग हरी जय। आते बिलम पल टिल न की जय, जय साधु चरण लगी जय। राम नाम कीर्तन रतन वत, हर साधु पास रखी जय। जो बचन गुर सत्स

अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद राज परवाती विपास महला पहला चौक दे कर पहला नाई

ना तेरे मान मह परवान तेरी नजरी कर्म पवे निशान ना तेरे सहज ना सालाह ना तेरा अमृत बिख उठ जाए ना तेरे सब सुख वसे मन आए बिन नावे बांधी जमपुर जाए नारी देरी कर बरदेश मन किया खुशिया की चैवेश जा सदे ता फिल न पाए नानक कूड़ कूड़ो हो जाए प्रभाती महला पहला तेरा नाम रतन कर्म चानन सुरख तिथे लोए अंधेर अंधी वापरे सगल ली जय कोय त्यो संसार सगल विकार तेरा नाम दारू अवर नाश करणहार अपार रहाओ पाताल पुरिया एक पार होवे लाख करोड़ तेरे लाल कीमत ता पवे जा सिरे होवे होर दुखा ते सुख उपजे सुखी होवे दुख जित मुख तू सालाई है सित मुख कैसी भूख नानक मूर्ख एक तू हवर पला सहसार जित तन नाम न उपजे से तन होए कुवार प्रभाती महला पहला जय कारण वेद ब्रह्मे उचरे संकर छोड़ी माया जय कारण सिद्ध पै उदासी देवी मर्म न पाया बाबा मन साचा मुख साचा कहिए करिए साचा होई दुश्मन दुख न आवे नेड़े

ते सस्कर जो नाम ना लेवे वासे कोट पंचासा जे को एक करे चंगियाई मन चित बहुत बसावे एते गुण एतिया चंगियाईया दे ना पछोतावे तुद सलान तिन तन पल्ले नानक का तन सोई जे को जियो कहे ओना को जम की तलब न होई करवाती महला पहला जा के रूप नाही जात नाही नाही मुखमासा सतगुरु मिले निरंजन पाया तेरे नाम है निवासा औदू सहजे तत विचार जाते फिर ना आवो सहसार रहाओ जा के कर्म नाही धर्म नाही नाही सुचमाला शिव ज्योत कन्नो बुध पाई सतगुरु रखवाला जा के बरत नाही नेम नाही नाही बकबाई गत अवगत की चिंत नाही सतगुरु फुरमाई जा के आस नाही निराश नाही चित सुरत समझाई संत को परम संत मिलिया नानका बुध पाई प्रभाती महला पहला कांका तया दर परवान दिख अमृत दो संकर जान क्या कही है सर्वे रह समाए जो किछ वर्त

सोजन जान साची दरगे पावे मान कहना सुनना अकथ पर जाए कफनी बदनी नानक जल जाए प्रभाती महला पहला अमृत नीर ज्ञान मन मज्जन अष्ट तीर्थ संग गहे गुरु उपदेश जवाहर मानक सेवे सिख सो खोज लह गुरु समान।

पूरा नावन पशु परे तो देव करे रत्ता सच नाम तल ही अल सो गुर परमल कही है जाकी वास बनास पत कौर है पास चरण लिव रही है गुरमुख जी प्राण उपजे गुरमुख शिव कर जाइए गुरमुख नानक सच समाइए गुरमुख निज पद पाइए प्रभासी मैला पहला गुर कर सादी विद्या विचार है पर कर पावे मान आपा मध्य आप प्रगासिया पाया अमृत नाम करता तू मेरा जजमान एक दखना हो तै तै मांगो देहे अपना नाम रहाओ पंच तस्कर कावत राखे चूका मन अभिमान दिष्ट विकारी दुर्मत भागी ऐसा ब्रह्म ज्ञान जत सत चावल दया कनक कर प्राप्त पाती धान दूध कर्म संतोष कियो कर ऐसा मांगो दान क्षमा तीरज कर गऊ लवेरी सहजे बछरा खीर पिए सिफत कर्म का कपड़ा मांगो हर गुण नानक रवत रह प्रभाती महला पहला आवत किने आवाख्या जावत क्यों राख्या जाए जिसते हुआ सोई पर जाने।

और न करना जाए रहा। जैसे हर हट की माला टिंड लगत है, एक सखनी होर फेर परियत है, तैसो ही यो खेल खत्म का, ज्यो उसकी वड्याई, सुरती के मार्ग चल के उल्टी नजर परगासी, मन विचार देख ब्रह्म ज्ञानी, कौन गिरही कौन उदासी, जिसकी आशा तिस ही सौंपते, एहो रहा निर्वाण, जिससे होआ सोई कर मान्या, नानक गिरही उदासी सो करवाण। प्रभाती महला पहला, दिष्ट बिकारी बंधन बांधे, हों तिसके बल जाई, पाप पुन की सार न जाने, फूला फिरे अजाई, बोलो सच नाम करतार, सुन बहुर ना आवन।

ताको समझावन जाये जे को भूला होई। आते खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई, नाव पर भाचे सब त्याई है छोड़ो दुनी परीता। प्रणवत नानक दासन दासा जग हारिया तिन जीता, परवाती महला पहला मन माया मन ताया मन पंखी आकाश तस पर शब्द निवारिया मगर उठा साबास। जा तू राखे राख ले साबत हो गए रास, ऐसा नाम रतन निध मेरे गुरमत देह लगो पग तेरे रहाओ। मन जोगी मन भोगिया मन मूर्ख गावार, मन दाता मन मंगता मन सिर गुर करतार। पंच मार सुख पाया ऐसा ब्रह्म विचार, कट कट एक वखाणिए कहो न देखिया जाए। फोटो पूठो रालिए बिन नावे पच जाए, जा तू मिले ता मिल रहा जा तेरी होए रजाए। जात जन्म ने पूछिए सब कर ले हो बताए, सा जात सा पत है जे कर्म कमाए। जन्म मरम दुख काटिए नानक छूट सुनाए, प्रभाती महला पहला जागत बिगसे मूठो अंधा, गलफाही सिर मारे तंदा। आसा आवे मनसा जाए पुरजी ताणी किछ ना बसाए, जागस जीवन जागन हारा सुख सागर अमृत भंडारा रहाओ। कहो न बूझे अंग न सूझे ओंदी कार कमाई, आपे प्रीत प्रेम परमेश्वर

वह सोए हरवाती महला पहला खाया मैल हुबाया पेंदे कर की हान बक बक वाद चलाया बिन नावे बिख जान बाबा ऐसा बिखन जाल मन वासिया बिबल चाग सहज परगासिया रहाओ बिख खाना बिख बोलना बिख की कार कमाए जम गरबा दे मारिए छूट सा चैनाए जिव आया तिव जाए सी किया लिख ले जाए मन मुखमूल गवाया दरगे मिले सजाए जग खो तो सच निर्मलो गुर शब्दी विचार ते नर बिरले जानिए जिन अंतर ज्ञान मुरार अजर जड़े नीजर चढ़े हमर अनंत स्वरूप नानक जल को मीन से थे पावे राखो प्रीत हरवाती महला पहला गीत नाद हर्ष चतुराई रह सुरंग सुरमाइश पाई पैन खां चीत न पाई सात सहज सुख नाम वसाई क्या जाना क्या करे करावे नाम बिना तन किसना सुखावे रहाओ जोग विनोद स्वाद आनंदा मत सत पाए भगत गोविंदा कीरत करम कार निज संदा अंतर रव तो राज रविंदा प्रयो प्रयो प्रीत प्रेम उर्धारी दीना नास्तियो बनवारी हम दिन नाम दान व्रतकारी त्रिपुत तरंग तत विचारी अकथो कथो क्या मैं जोर भगत करी कराहे मोर अंतर वसे चूके मैं मोर किस से भी दूजा नहीं होर गुर का शब्द महारस मीठा ऐसा अमृत अंतर दीठा जिन चाखिया पूरा पद होए नानक प्राप्यो तन सुख होए परवाती महला पहला अंतर देख शब्द मन मानिया और न रंजन हारा एनस जिया देख संभाले किस ही की सरकारा मेरा प्रभु रांग कनो अत रूड़ो दीन दयाल प्रीतम मनमोहन अत रस लाल सगूड़ो रहाओ ऊपर कूप गगन तनिहारी अमृत पीवन हारा जिसकी रचना सो विधि जाने गुरमुख ज्ञान विचारा पसरी किरण रस कमल विगासे सस्तर सूर समाया काल बिंदु से मन सामन मारी गुर प्रसाद प्रभ पाया अति रस रंग चलू ले राती दूजा रंग न कोई नानक रसम रसाए राते रब रहया प्रभ सोई परवाती महला पहला बारे में रावल खप जावे चहो छह में सन्यासी योगी का पड़िया सिर खूथे बिन शब्द गल फासी शब्द रते पूरे बैरागी औ हथ हस्त में पीछिया जाची।

मन मुख विच्छेद दुख पाए शब्द मिले से सूचा चारी साची दरगह माने अंग दिन नाम रतन लिव लागे जुग जुग साथ समाने सगले कर्म कर्म सुख संजम जप तप तीरथ शब्द वसे नानक सतगुरु मिले मिलाया दुख पराचित काल नसे करवाती महला पहला संता की रेण साध जन संगत हर की रत कर तारी कहां करे बपुरा जन बरते गुरमुख हृदय मुरारी जल जाओ जीवन नाम बिना हर जप जाप जपो जप माली गुरमुख आवे साध मना रहाओ गुर उपदेश सात सुख जाको क्या तिस उपमा कही है लाल जवेहर रत्न पदार्थ खोजत गुरुमुख लही है।

ने ज्ञान ध्यान तम साचो एक शब्द लिवलावे निरालंब निरहार नहीं केवल निरपौता लीलावे सायर सपत करे जल निर्मल उल्टी नाम चरावे बाहर जातो ठाक रहावे गुरमुख से समावे सो गिर ही सो दास उदासी जिन गुरमुख आप पछानिया नानक कहे अवर नहीं दूजा सात शब्द मन मानिया राज करवाती महलाती जा चौपदे इको अंकार सतगुर प्रसाद गुरुमुख बिरला कोई बूझे सब दे रहा समाय नाम रते सदा सुख पावे साथ रहे लिवलाई हर हर नाम जपो जन भाई गुर प्रसाद मन अस्थिर होवे हम दिन हर रस रहा अघाई रहा हम दिन पगत करो दिन राती इस जुग का लाहा भाई सवा जन निर्मल मैल न लागे सच नाम सितलाई सुख सिगार सतगुरु दिखाया नाम वड्डी वड्याई अकुट पंडार करे कदे तोट ना आवे सदा हर सेवो भाई आपे करता जिसनो देवे तिस वसे मन आई नानक नाम ते आए सदा तू सतगुरु दिया दिखाई करवाती महला तीजा निर्गुणी आरे को बस ले स्वामी आपे ले हो मिलाई तू बेअंत तेरा अंत ना पाया सब दे दिहो बुझाई हर जियो तुद विटो बल जाई तन मन अर्पी तुद आगे राखो सदा रहा शरणाई रहाओ अपने पाने विच सदा रख स्वामी हर नामो दे वड्याई पूरे गुरते पाना जापे हम दिन सह समाई तेरे पाने भगत जे तुद भावे आपे बख्श मिलाई तेरे पाने सदा सुख पाया गुर कृष्णा अग्न बुझाई जो तू करे सो होवे करते अवर न करना जाई नानक नावे जेवड अवर न दाता पूरे गुर ते पाई करवाती महला तीजा गुरमुख हर साल आया जिन्ना तीन साल आहे हर जाता विचों परम गया है दूजा गुर के शब्द पछाता हर जियो तू मेरा इक सोई तुद जपी तुद ऐसा लाही गत मत तुझते होई रहाओ गुरमुख सालान से साध पायन।

गुर के शब्द कमल पर गासिया सौ में दुर्मत खोई सब नाम एक को सच वरते विरला बूझे कोई गुरमति मन निर्मल हुआ अमृत तत्व खाने हर का नाम सदा मन वस्या विच मन ही मन माने सद बलिहारी गुर अपनी विटो जित आत्म राम पछाने मानस जन्म सतगुरु न सेविया बिरथा जन्म गवाया नजर करे ता सतगुरु मेले सहजे सहज समाया नानक नाम मिले वडियाई पूरे भाग से आया प्रभाती महला तीजा आपे पांत बनाए बहुरंगी शिष्ट उपाय प्रभ खेल किया कर कर वेख करे कराए सर्व जिया नो रिजक दिया कली काल में रव्या राम कट कट पूर रहा प्रभे को गुरमुख प्रगट हर हर नाम रहा गुप्ता नाम वर्त विच कल जुग कट कट हर पर पूर रहा नाम रतन तिना हृदय प्रगटिया जो गुर शरणाई पग पया इंद्री पंच पंचे वस आने खिमा संतोष गुरमत पावे सो तन तन हर जनवड पूरा जो कह बैराग हर गुण गावे गुर ते मोह फेरे जे कोई गुर का कहया ना चित धरे कर आचार बहु संतोष संचय जो किछ करे सो नरक परे एक को शब्द एक को प्रभु वर्ते सब एक स्ते उत्पत्तल है नानक गुरमुख मेल मिलाए गुरमुख हर हर जाए रले प्रभाती महला तीजा मेरे मन गुर अपना सालाए पूरा पाग हो गए मुख मस्तक सदा हर के गुण गाए रहा अमृत नाम भोजन हर दे कोट मदे कोई विरला ले जिसनो अपनी नजर करे गुर के चरण मन माए वसाए दुख अनेरा अंदरों जाए आपे फाचा ले मिलाए गुर की बाणी सो लाए प्यार एथे ओथे एव आधार आपे देवे सृजनहार सच्चा ननाए अपना भाणा सोई तगत सुगड़ सुजाना नानक तिसके सब कुर्बाना प्रभाती महला चौथा विपास एक ओंकार सतगुरु प्रसाद रसक रसक गुण गावे गुरमत लिव उन मन नाम लगान अमृत रस पिया गुर शब्दी हम नाम विटो कुर्बान हमरे जग जीवन हर प्राण हर उत्तम रिद अंतर भायो गुरमंत दियो हर कान रहाओ आवो संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर नाम बखान कित विद क्यों पाई है प्रभ अपना मोको करो उपदेश हर दान सत संगत में हर हर वस्या मिल संगत हर गुण जान वड्डे पाग सत संगत पाई गुर सत गुर परस भगवान गुण गावे प्रभ अगम ठाकुर के गुण गाए रहे हैरान जन नानक को गुर कृपा भारी हर नाम दियो खिन दान प्रभाती महला चौथा उगवे सूर गुरमुखर बोले सब रैन संभाले हर गाल हमरे प्रभ हम लोच लगाई हम करें प्रभु हर पाल मेरा मन साधु तूर गवाल हर हर नाम दृढ़ायो गुरमीठा गुर पद तारे हम बाल रहाओ साकत को दिन रैन अंधारी मोय फाते माया जाल खिन पल हर प्रभ हृदय नवस्यो ऋण बादे बहु विद्वाल सत्संगत मिल

आए भगत हर सो मन माना, सुन सज्जन संत मीत सुहेले, नाम रतन हर अगै अतोले, सदा सदा प्रभ गुण निध गाइए, कहो नानक वड पागी पाइए। प्रभाती महला पंजवा, से तनवंत सोई सत्सा, हर की दरगै नाम विसाहा, हर हर नाम जपो मन मीत, गुरपुरा पाइए।

गुरपुरा पाये वडपागी, दर्शन को जाये पुरबान रहाओ। चिलगुठ में तो शब्द संतोख, नाम आराधन हो आजोग, साध संग हो आप्रगास, चरण कमल मन माय निवास, जिनकी आकिन लिया राख, प्रभु पूरा अनाथ का नाथ, जिसे निवाजे कृपाधार, पूरन कर्मता के आचार, गुण गावे नित नित नित नवे, लख चौरासी जोर न भवे, इहा उहा चरण पुजारे, मुख उजल साचे दरबारे, जिस मस्तक गुर तरिया हाथ, कोट मदे को विरला।

गुर गुर करत सदा सुख पाया, दीन दयाल पहल तुरपाला, अपना नाम आप जपाया रहाओ। संत संगत मिल पया प्रगास, हर हर जपत पूरन भैयास, सर्व कल्याण सुख मन बूठे, हर गुण गाए गुरु नानक तूठे।

राम राम राम राम जाप, कल कलेश लोभ मोह बिन सुजाए अहंताप। रहाओ आप त्याग संत चरण लाग, मन पवित्र जाहे पाप। नानक बारक कछु ना जाने, राखन को प्रभु माई बाप। प्रभाती महला पंजवा, चरण कमल शरण टेक। ऊंच मूच बेअंत ठाकुर, सर्व ऊपर तू ही एक। रहाओ प्राण आधार दुख बिगार, दैनहार बुद्ध विवेक। नमस्कार रखनहार, मन आराध प्रभु मेक। संत ऋण करो मज्जन, नानक पावे सुख अनेक।

अंतर कपट महा दुख पाए, सतगुरु को कैसो जी पाए, सच्चे नाम रहे लिवलाए, सच्चे शब्द सच कमावे, सच्ची बाणी हर गुण गावे, निज कर वास अमर

सुत कंचन स्यों हेत बधाया, सब कुछ अपना इकराम कराया। ऐसा जाप जपो जप माली, दुख सुख पर हर भगत निराली रहाओ। गुण निधान से राम तना पाया, सात शब्द तुझ माए समा।

खगल सरोवर जोत समानी, अनद रूप वित्तो कुर्बानी, आओ पगत दुर्मति पाए, हम मैं विच्चो सबक जलाए। तावतरा

जीवन मुक्त जा शब्द सुनाए, सच्ची रहत सच्चा सुख पाए, सुख दाता दुख नेता हारा, अवर न सूजस भी जी कारा, तन मन तन हर आगे राख्या, नानक कहे महारस चाख्या, प्रभाती महला पहला, निवली करम पुलंगम पाथी, रेचक पूरक कुंभ करे, बिन सतगुर किछ सोजी नाही, पर में पूला बूड मरे, अंदा परया पर कोवे, अंतर की मल कदे ना लहे, नाम बिना फोकट सब कर्मा, जो बाजीगर परम पुले, खट कर्म नाम निरंजन।

कैला दक्षिणी गौतम तपा अहिल्या स्त्री किस देख इंद्र लुभाया सह शरीर चिन्ह पग हुए हा मन पछोताया।

क्यों पयाल जाए क्यों चलिए जे बल रूप पछाने राजा जनमेजा दे मती ब्रज ब्यास पराया तिनका जग अठारे काए चिरत न चले चलाया गणत न गनी हुकम पछाना बोली पाए सुवाए जो किछ वरते तुरे सवाही सब तेरी वडियाई गुरमुख अलिपत लेप कदे न लागे सदा रहे शरणाई मनमुख मुगद आगे चेते नाही दुख लागे पछताई।

अंकर झूठा क्यों सुच होए, सब दी तो वै विरला कोए, गुरमुख कोई सच कमावे, आवन जाना खाक रहावे।

मन तन शीतल गुरु बूझ बुझाई, प्रभ निवाजे किन कीमत पाई, कहो नानक गुरु बूझ बुझाई, नाम बिना गत किने न पाई, प्रभाती महला पहला, इक तुर बख्श लय गुरु पूरे, सच्ची बनत बनाई, हर रंग राते सदा रंग साचा, दुख बिसरे तप पाई, झूठी गुरमत की चतुराई, दिन सत बार न लागे काई, रहाओ मन मुख को दुख दर्द भी आपस, मन मुख दुख न जाई, सुख दुख दाता गुरमुख जाता, मेल ले शरणाई, मन मुख ते अब पगत न होवस, हो मैं पचे दीवाने, इव मनुआ खिन ऊब प्याली, जब लग शब्द न जाने, भूख प्यासा जग पया, तित नहीं दिन सतगुर पाए।

ज्ञान रतन प्रगट होए। मन मुख मूल न जाननी मानस हर मंदर न होए। हर मंदर हर जियो साजिया रखिया हुकुम सवार। तुर लेख लिखिया सो कमावना कोई ना मेकन हार। सबद चीन सुख पाया सच्चै नाए प्यार। हर मंदर सब दे सोहना कंचन तोट अपार। हर मंदर एहो जगत है गुरबिन कोरंतार।

पवित्र पावन सृजन निर्मल हर के नाम समाए, हर मंदिर हर का हाथ है रखिया शब्द सवार। इस विच सौदा एक नाम गुरमुख लैन सवार, हर मंदिर में मन लोहत है मोया दूजे भाई। पारस पे कंचन भया कीमत कही ना जाए, हर मंदिर में हर वसे सर्व निरंतर सोए। नानक गुरमुख बन जिए सच्चा सौदा होए, प्रभाती महला की जा तय पाए जागे सृजन जागरण करें। होमे मेल उतार सदा जागे कर अपना राखें, पंच तस्कर का डैमार। मन मेरे गुरमुख नाम ध्याए जित मार्ग हर पाइए, मन से ही कर्म कमाए रहाओ गुरमुख सहज तुन उपजे। दुखों में विच्चों जाए हर नामा हर मन वसे, सहजे हर गुण गाए गुरमति मुख सोने। हर राख्या उधार ऐसे ओके सुख गणा, जप हर हर उतरे पार। होमे विच जागरण ना हो वही हर पगत न पवई थाए, मन मुख दर टोई।

सुहोग विपास प्रभाती मैला पंजवा अष्टपदियां इको अंकार सतगुरु प्रसाद मात पिता पाई सुत बनता चूगे चोग आनंद स्यों जुगता उर्ज परयो मन मी

ताला अंतर कपट सुरे बेताला वर्मी मारी साप न मुआ प्रभ सब कुछ जाने जिन तू किया तू वरताप गेरी के बस्तरा अपदा का मारिया दे के नस्ता देश छोड़ पर देश ढाया पंच चंडाल ना ले ले आया कान पर आए हिराए तू का कर कर मांगे तृप्तावन ते तू का बनता छोड़ बद नजर पर नारी वेश ना पाये महा दुखियारी बोले ना ही हो बैठा मोनी अंतर कल्प पवाई है जोनी अंते रहता दुख देही सहता हुकुम ना बूझे व्याप्या ममता बिन सतगुर किने न पाई परम गते पूछो सगल वेद सिमरते मन मुख कर्म करे अजाई जो बालू कर ठौर न ठाई जिसनो पै गोविंद दयाला गुर का बचन तिन बांध्यो पाला कोट मदे कोई संत दिखाया नानक तिन कै संग तराया जे होवे पाग का दर्शन पाई है आप तरह सब कुटुंब तराई है रहाओ दूजा प्रभाती महला पंजवा सिमरत नाम तिलक सब काते धर्म राय के कागर पाते साध संगत मिल हर रस पाया पार ब्रह्म रिद माए समाया राम रमत हर हर सुख।

हर हर प्रेम भगत मन सन सदराता, प्रभु जनाया तब ही जाता, कट कट अंकर रविया सोए, तिस बिन भी जो नाही कोए, बैर विरोध छेद ते परमा, प्रभु कुन आत्मे कीने धर्मा, महातरंग ते कांडे लागा, जन्म जन्म का टूटा गांडा, जब कब संजम नाम समा लिया, अपने ठाकुर नगर निहालिया, मंगल सुख कल्याण तिथाई, जय सेवक गोपाल गुसाई, प्रभु सो प्रसन्न पै गोपाल, जन्म जन्म के मिटे विकाल, होम जग उर्द तप पूजा, कोट तीर्थ स्नान करीजा, चरण कमल निम्ख हृदय धारे, गोविंद जपत सब

सब कला प्रीतम भरपूर, मात पिता हर प्रीतम नेरा, नीत साजन भरवासा तेरा, कर गय लीने अपने दास, जप जीवे नानक गुणतास। विपास करवा की बाणी भगत कबीर जी की।

जो जन जान बजे पुरखोत्तम काची अवगत बाणी नामा कह जग जीवन पाया हृदय अलस बिडाणी परवाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत न जानिया।

की हृद अंतर कर तलकाती। ठग दुष्ट बगा लिव लागा, देख बैसनो प्राण मुख भागा। कल भगवत बंद चिरामं, क्रूर दुष्ट रता निस्वादं रहाओ। नित पट स्नान शरीरं, दो तोती कर्म मुख खीरं। हृदय चुरी संध्यानी, पर दर्द हिरन की बानी। शिल्पू जस चक्र गणेशं, निस्जागस पगत परवेशं। पग नाचस चित अकर्मं, एलं पट नाच अधर्मं। मृग आसन तुलसी माला, कर उजल तिलक कपाला।

रे लंपट कृष्ण अवाखं जिन आत्म तत्व न चीनिया सब फोकट धर्म अवीनिया कहो बेणी गुरुमुख त्यावे बिन सत गुरु बाप न पावे।

राम भज जन्म सिरात है, कहो कहा बार बार समझत न क्यों गवार, बिन सत न लगे बार पूरे समगात है रहाओ। सगल परम डार दे गोविंद को नाम ले,

हाथ है। जय जावंती मेला नावा। रे मन कौन गत होए है तेरी, यह जग में राम नाम सो तो नहीं सुनियो कान। बिखिया

कनिता विनोद सुत कतंच भात मीट हित बंध कतंच मोह कुटुंबते कतंच चपल मोहनी रूपं ते खंते त्यागं करोत रहंत।

धने। दयाल एक भगवान पुरखे नानक सर्व जी कृत पालके। अनित्य वित्तं अनित्य चित्तं अनित्य आशा बहुविध प्रकारं अनित्य हेतं अहम् भं अहम्।

बिरंत बिर पतित पाताल जलंत दैदीप दैशांतरे बहंत अगा तोयं तरंगं दुखंत जय चिंता जन्मं तमरं अनित साधन।

से अंधकार सिमरत प्रकाशन गुण रमत अग खंडने ऋग बसंत भयभीत दूते कर्म करत महानिर्मले जन में मरण रहंत श्रोता

तृप्यते सहनशील संतन सम्मित्र सह दुर्जन नानक भोजन अनेक प्रकारेण निंदक आवद होए उपतिष्ठते।

मन निगमन नच गुण गय नाम कीर्तने नच राग रतन कंठन नह कंचल चतुर चातुरे भाग उद

अनाथ नाथे शरण नानक पुरख अचते जिन कला धारो आकाशन बैसंतर काशत बैसतन।

गुसाईन्द्र स्वरूपेण सिमरन सर्वत्र जीवन लब्धं संत संगेण नानक स्वस्थ मार्ग हर भक्तन मस्तं भगनंत शैलं कर्दमं तरंत पपीलक

ਪਿਆਲ ਖਰੇ ਬਿਖਮ ਸਥਾਨ ਮਨ ਮੋਹ ਮਦਰੰ ਮਹਾ ਅਸਾਦ ਪੰਚ ਤਸਕਰੇ ਹੀਤ ਮੋਹ ਭੈ।

परम बादम अवते एते सुत अक्षणे गोविंद दामोदर माधवे गर्भंत नारी मदोन मतन बलवंत बलात् कारणे शरण कमल में भजंत तृण समान धृग।

मजारुदर दुर्गंधा नानके अथ गर्भेण अज्ञानड़ो परमाणु पर्यंत आकाश है।

करेन चित्तो जाचा अस्थल तोल अमितो सोई नानक सखा जी संग के तो अप जसन मिटंत सत पुत्र सिमर तवर गए गुरु मंत्र ने।

जप तप संजम हरक सुख मान महत अर गर्बे मूसन निमक के प्रेम पर वार वार देऊ सरबे।

लागी मंदर द्वार से अब क्या काढ़िया जाए। कबीर कारण सो भयो जो कीनो करतार तिस दिन दूसर को।

गुरु क्या करे जो सिखा में चूक, अंधे एक ना ला गई जो बांस बजाये फूक। कबीर है गए बाहन सगन कन छत्रपति की नार, ताश पटन कर ना पूछ।

हर सिमरिया ऐसा सिमरो नित अमरा पुरबासा करो हर गया बहोरै बित कबीर सेवा को दोए भले।

0: कीचड़ आटा गिर परया किछु न आयो हाथ, पीसत पीसत चाबिया सोई निभिया साथ।
1: कबीर मन जाने सब बात, जानत ही औगन करे।

कबीर राम रतन मुख को तेरी पारख आगे खोले कोई आए मिले दो गाती ले दो महंगे मोल। कबीर राम नाम जानियो नहीं पालियो कटक कुटुंब संदेही में मर गयो बाहर पई न बंब। कबीर आखी केरे मात के पल पल गई बिहाए मन

जीवन पे पंछी चले दिसावरी बिरखा सुफल कलंक। कबीर साधु संग परापति लिखिया होए लीलात मुकुट पदार्थ पाये खाक न अवगत काट। कबीर एक कड़ी आदि करी।

खेलत खेलत हाल करे जो कुछ होए ता होए कबीर जो तुम्हें खाद तिरम के ताके से तू खेले।

कंध कुहारा सिर कड़ा वन के पर लोहारे खरीदा हो लोड़ी सो अपना तू लोड़ है अंगियार खरीदा इतना आटा अगला।

ना पलवे जेजल टुबी दे फरीदा जो दोहागन रब दी चूरे दी चूरे जा कुआरी सा चाओ विवाही सा मामले फरीदा एहो पछोताओ वत कुआरी ना किए कलर केरी छपड़ी आए उलते हंजे सिंजू बोलन ना पीवे उड़न संधी डंज हंस उदर कोदर पया लोक विदारण जाए गहला लोक ना जानदा हंस ना कोदरा खाए चल चल गईया पंखियां जिनी वसाए तल फरीदा सर परिया पी चलसी थके कवले कल फरीदा इत सिराने पोए सन कीड़ा लड़े मास केतड़िया

नौबत वजी सुबह क्यों चलन का करसाज फरीदा रात पूरी वंडी है सुतिया मिले न खाओ जिना नैन निंद्रावले तिना मिलन को आओ फरीदा मैं जानिया दुख मुझको।

जो जन पीर निवाजिया तिना अंक न लाज। महला पंजवा फरीदा उम्र सुहावड़ी संग सुवनड़ी देहे विरले के पाये ने जिना प्यारे ने। कंदी रहन ना चाहे तो भी लेखा देवना जे तार रब रजाए वैं चिदाओ गौ करे। फरीदा दुखा से पी दियो गया सूला से पी रात खड़ा पुकारे पातनी बेड़ा पत्थर वात। लम्बी लम्बी नदी वह कंदी के रहे के बेड़े नो कप

रब खजूरी पत्तियां माके नहीं वहन जो जो वंजे दीहड़ा सो उमर हथ पवन फरीदा तन सुखा पिंजर किया तलियां खूंडे काज अजय सुरज न बहुड़ो देख बंदे के पाज काजा करंग तंडोलिया सगला खाया मास एगे लेना मत हो फिर देखन की आस कागा चूड ना पिंजरा बसे ता उदर जाहे जित पिंजरे मेरा सो वसे मास न तिद्दू खाहे फरीदा गोर निमानी सड करे निकरिया कर आ

अमल आखी से था बंदगी चलन अज के कल फरीदा मोतैदा बन्ना एवें दिसे ज्यों दरिया वैता अगे दोजक तपिया सुनिए हूल पवे कहा इतना नो सब सोजी आई इक फिर देवे कर

काय पटोला पाड़ती कंबलड़ी कहरे नानक कारी बैठिया सौ मिले जे नियत रास करे महला पंजवा फरीदा गर्भ जिना।

क्या चलै किस नाल इक जागन दे नाल हन कितना सुतियां दे उठाल तू देंदिए सुहाग को सौ तन काई कोर जिन्ना नाव सुहागनी तिन्ना छाप न होर सबर मंज कमान ए सबर का नीहनो।

सिर तल उपर पाए मैं जानिया वड हंस है ताने की पासंग जो जाना बग बकुड़ा जन्म न पेड़ी अंग क्या हंस क्या बगुला जाको नदर करे जो किस पाव

तो कमस को अखर कहाँ गुण कमस को मणिया मंत्र कमस को वे सोहा करी जित वस आवे संत निहंस को अखर खान गुण जो बा मणिया मंत्र।

आन नहीं तुम भते हर अंत नहीं पारावार कौन है करे विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भगत दर कुले ब्रह्म संसार एक दिन क्या बखाने हाँ के बल बल बल बल सद बल हार अमृत प्रवाह सर अतुल भंडार भर परे ही ते परे अपर अपार पर आपनो भावन कर मंत्र न दूसरो धर उप तो कर लो एक निमक तो घर आन नई समसर उजियारो निर्मल कोट पर छते जाए नाम लिए हर हर जन नानक भगत दल कुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हाँ के बल बल बल बल सद बल हार।

जन नानक भगदर तुल ब्रह्म समसर ए जी क्या बसन है हाके बल बल बल बल।

कै सूत है जहानी कवन उपना उपमा देओ बड़े ते बड़ान जाने कौन तेरो धेओ अलख अपार देओ अकल कला है सब सर्व को धान जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर।

निरंकार आकार अचल पूरन अविनाशी हर्षवंत आनंद रूप निर्मल विगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं।

धन धन ते धन जरण जे कृपाल हर हर भयो हर गुरु नानक जिन परसो से जन्म मरण दो ते रहो सत सत हर सत सत सत सत भणिए दूसर आन ना।

अमृत हर को नाम ले मन सब सुख पाए। जे रसन साखो तै जन तृप्त अधाए। जे ठाकुर सो प्रसन्न भयो सतसंगत तै प्यार। हर गुरु नानक जिन परसियो तिन सब कुन कियो उधार। सच सभा दी बां सच सचे पै धरियो। सचे तख्त निवास सच तटावस करियो। सच सुन जो सन

हर तारन तरन समरथ सवैद कुल समूह उदारन सो चित चेत अचेत जाम सत संगते भरम अंधेर मोयो कत भौ मूरत घड़ी सापल सिमरन राम नाम रखना संगलो होतो काज अलग सुख बंधन कोट जन्म कहाँ दुख भौ सिखा संत नाम भजनान के राम रंग आत्म स्योरौ रंच करेत खेत तन निर्मत दुर्लभ दे सवार भरी खान पान सो दे सुख भुंचत संकट काट विपत हरी मात का भाई अर बंधते बूधन के सब सोज परे बरमान होवत दिन प्रतिनित आवत निक

ज्ञान के काट भरम भरे रे मन मूस बिलावे गर्वत कर्तव करत महाम भुना संपत धौल झूल संग झूलत माया मगन भरमत भुगना सुत बनता साजन सुख बंदते तासु मो बड़ो सुघना बोयो भीत अहं मम अंकुर बीतत औध करत अधना मृत मंजार पसार मुख निरखते भुंचत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सतसंगत नानक जगे जानत सुपना देह न ने न नीता माया मत कहा लो मादारो देह न देह न ने न नीता माया मत कहा लो गारो छत्र न पत्र न चौर न चावर बैठी जात हृदय न विचारो रथ न अश्व न गज सिंहासन छिन में त्यागत नाम सिधारो सूर न वीर न मीर न खानम संग न को दृष्ट निहारो कोट न ओट न कोश न छोटा कर्त विकार दो कर झारो मित्र न पुत्र कल्प साजन सुख उल्टत जात बिरख की छारो दीन दयाल पुरख प्रभु पूरन छिन छिन सिमरो अगम अपारो श्रीपत नाथ शरण नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारो प्राण मान दान मग जोहन चीत चीत दे ले ले तारी साजन सैन मीत सुत भाई ताऊ ते ले रखी निरारी धावन पावन सूर कमावन एहद करत पौध तन जारी करम धर्म संजन सुख सुचनेमा करम धर्म संजन सुचनेमा चंचल संग सगल बिदहारी पस पंखी बिरख अचतावर बौद जौन भम्यो अत भारी छिन पल चसा नाम नहीं सिमरियो दीना नाथ प्राण पत सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उधरे और माया मगन चले सब डारी ब्रह्मांडक शिव छंद मुनि सर रसक रसक ठाकुर गुण गावे इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरत धरण गगन आवत फुन धावत

रस्यो जम दो तन डन मृत मरो है। अंत धोन संकट नरक भुंचत शासन दुख गर्त गर्यो है। प्रेम भगत उधरे सेनान के कर कृपा संत आप करो है। गुण समूह फल सगल मनोरथ पूरन होई आसमारी। औषध मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मद सर तृष्णा बिन सजाए हर।

बुधे मन दर्श मग पावत जरो न जात रहो जन भूर लग नींद न साकस बोर चले हर पंथ मगे नानक रोग दोख अगमो छिदे हर नाम खग उदम कर लागे लौ भाती बिचरे अन सास बौ खटुआ भस्म लगाए तीरथ बौ घमते सूखम दे बंधे बहु जटुआ दिन हर भजन सगल दुख पावती ज्यों प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चक्र करत सोम पाका अनक भात फाटे कर खटुआ सोये मले तले ते एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक मन पुरख दयाय वरदाता संत सहार सदा दिखयाता

गंभीर भीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान भरे। गांग राज भगत प्रहलाद आत्म रस

कब कल सुदसदाओ गुरु नानक राज जोग दिन मानियो। गावे गुण बरन चार खट दर्शन ब्रह्मा दत्त स्मरंत गुणाम। गावे गुण शेष सहस जेदा रस आद अंत

भगत दीन गुण रहे आत्म रंग माने, योग ध्यान गुरु ज्ञान बिना प्रभ और न जाने। सुखदेव परिखत गुण रहे गौतम रिख जस गायो, कब कल सुजस ना।

करतार करह समरथो। सतगुरु धन नानक मस्तक तुम धरयो जिन हथो, तैं धरयो मस्तक।

जाकु दृष्ट अमृत धार, काल को खन उतारे, तिमर अज्ञान जाए दर्श द्वारे, ओ जो से

सतसंगत सहज सारे जागिले गुर बिचारे निमरी भूत सजीव परम प्यारे कौ तीर्थ कल सहारे सतत दीप मझारे लेना जगत गुर पर समुरारे तै तो दर्यो नाम अपारे बिमल जास बिखारे साधक सिद्ध।

हर हर दर्श समानी आत्मावंत ज्ञानी जाने अकल गत गुरु परवानी जाके दृश्य अकल ठानी बिमल बुद्ध सुठानी पैर शील सन।

लैणा जगत गुरु पर समुरार। दृष्ट भरत तम हरन दहन अघ पाप परासन। सबद सूर बलवंत काम अर क्रोध विनाशन। लोभ मोवश करण शरण जाचक प्रतपालन। आत्मरत संग्रहण कहन अब

गरल नाश कन न थयो अम्यो अंतर्गत पियो रुद बिगास जागयो अलग कल धरी जुगंतर सतगुर सहज समाद रव्यो सामान निरंतर उदारो चित दारद हरन तिखंते कलमल प्रसन्न सब रंग सहज कल उचरे जस जमतो लेने रसने नाम औखद नाम आधार अर नाम समा

है, नाम परस जन पायो सत प्रगट हो रवलो। दर्शन परसे गुरु कै अब सठ मजन हो, सच तीर्थ सच स्नान और भोजन भाव सच, सदा सच भाषंत सो है, सच पायो गुरु सबर सच नाम सुगंती बो है। जिस सच संजम वर्त सचे कब जन कल खाने, दर्शन परसे गुरु कै सच जन्म परवा।

तीरथ राव तिर प्रगट संसारे सात सरोवर मवल सरा। उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम जय जयकार जपंत नरा। हर नाम रसन गुरुमुख बरदायो उल्ट गंग पश्चिम।

सोई नाम अचल भगते भवतार। अमरदास गुरु को पुरिया चित नाम लागते तुस धयावे, जसी कपी सर मनवसया। सोई नाम सिमर गंगे पितामे, चरण चित अमृत रसया। चित नाम गुरु गंभीर गुरु मत, सत कर संगत उदरिया। सोई नाम अचल भगते भवतार, अमरदास गुरु को पुरिया। नाम कित संसार किरण रहो, सुर कर साथे। उत्तर दक्षिण पूब देश पश्चिम जस भाके, जन्म तयो सके अत जित नाम हर दे निवासे। सुर नर गण गंधर्व छे दर्शन आशा से। भलो प्रसिद्ध तेजो तनु कल जोड़ कर ध्यायो। सोई नाम भगत वच भव जल हरन, गुर अमरदास तय पायो। नाम धयावे देव कैपीश, अर साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मंड धारे। जय नाम समाधयो हरक सोग समतर सहारे। नाम शिरोमण सर्वमय भगत रहे निवधार। सोई नाम पदार्थ अमर गुर तुस दियो करकार। सत सूरो शील बलवंत सत भाय संगत सघन, गुरु मत निर्वैर लिया। जिस धीरज धुर धवल भुज

बताओ अमर गुरु की खोजो। नाम नावन नाम रस खान अर भोजन नाम रस सदा चाय मुख मिष्ट बाणी। धन सतगुरु सेवे जिस पसाए।

चरण तपर सकत चरण गुर अमर पवल हथ तपर सकत हथ लगे गुर अमर पे जी तपर सकत जी गुर अमर भजे

सरवणी गुर अमर सुन जय सत सोहियो जित ही बसे गुरु अमरदास निज जगत पिते सत्यत सो सुर जालक भणे जो सुर ने गुरु अमर नितें।

नर उठत बिथते सुख लेते नर संसार में अभय पट रिद में बिते सत्यकते नर जालत भणे गुर अमरदास सो पर समझे तई पढ़ो एक मन धर्यो एक कर एक।

गुरु अमर रास निज भगत है, देख दर्श पावो मुकते। गुरु अमर दास परसिए कहुं पासित बिनासे। गुरु

गुरु दास कर सिंह अभो लभ है गुरु तुक एक बंधु गण जो तो रहे जासमंत मानो लहे जाल पा पदार्थ इतने गुरु अमरदास जिथे मिले सच नाम करतार सुदृढ़ नानक संग्रह हो ताते अंगद ने।

तात गुण कवण वखाणो जो गुण अलख अगम तिने गुण अंत न जानो बोलतो विधाते निर्मयो सब संगत कुल उधरणे गुरु अमरदास।

जप तप सत संतोष तिख दर्शन गुर सिख सरण परे ते उबरे छोड़ जमपुर की लिखे भगत भाए भरपूर हृदय उचरे करतारे गुरु गौहर दरिया पलक डूबंते तारे नानक कुल

जब गुरु देखे सुबदिष्ट नाम करता मुख मेवा। अगम अलख कारण पुरख जो फुरमावे सो कहो गुरु अमरदास।

क्रोधवश करे पवन उदंत न धावे। निरंकार के वशेष हुकुम बोझ विचार पावे। कल माए।

धर्म धन कर गयो भगत शील सर लड़ो धन गोहर अटल मन सबद गुरु ने जाग लियो काम क्रोध लोभ मोह अपत